فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

ज्यादा अफजल कुछ नहीं होगा इल्ला ये कि किसी ने उसके बराबर या उससे ज्यादा मर्तबा ये तस्बीह पढ़ी हो। रिवायत है मुस्लिम की।

0: जो हमारी जिंदगी को सवार दे। रोजाना 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
2: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक। साथ होंगे आपके आरजे तला अशरफुज़्ज़मान हर वेंसडे सुबह 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। तो बस एफएम 107 ऑन कीजिए और अरबी जुबान को सीखिए।
2: दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है पी फॉर पुल, यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है ए, यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर। नंबर तीन है एस, जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से एस, यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। एफएम 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
3: एब्सोल्यूट सिनेमा,
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: आप सुन रहे हैं एफएम 107
0: दिल से देसी।

और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. گڈ مارننگ. میں دراصل صبح سے جو ہے انجینئرنگ میں لگا ہوا ہوں, یہ ڈگری بھی میں جلدی لے ہی لوں گا. جس حساب سے میں فون کو چارج کرنے میں لگا ہوں, میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی محنت کرتا ہوگا یہ فون کو چارج کرنے میں. سو السلام علیکم. جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں, ٹیون کر چکے ہیں, نو آپ کا واٹس ایپ میسج شاید ڈیلیور نہ ہوا ہو اور آپ سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہیں ڈیلیور ہو رہا ہے, اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ فون جو ہے وہ جا چکا ہے. تو اب جب وہ آن ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو ہے میرے میسج آئیں گے اور آپ کے میسج میرے پاس ڈیلیور ہو جائیں گے. تو کبوتر ابھی خط لے کے اڑ چکا ہے, بس وہ کہیں اترا نہیں ہے, ابھی ہو جائے گا, ڈونٹ وری. باقی 6:14 میں دوحا والا کبیر. کافی کچھ ہے, کافی کچھ ہے, مطلب اتنا کچھ ہے بتانے کے جس کی ادری. مگر سب سے پہلے میں شروعات اسی بات سے کروں گا کہ جو کہانی میں سنا نہیں پایا تھا اس ویکینڈ پہ, اور میں نے بہت بہت کوشش کری تھی, میں نے وعدہ تک کر دیا تھا کہ اتنی بڑی کہانی آئے گی مزہ ہو جائے گا, اوور سیل کر دیا تھا میں نے, لیکن کچھ ہوا نہیں تھا. تو وہ جو کہانی تب نہیں آئی تھی وہ اب آئے گی, بڑا ضروری ہے معاملہ. تو آج کی سٹوری مجھے پتا ہے, میں آلریڈی مان کے چلوں, جیسے مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی کچھ لوگ اچھی لگی کچھ کو نہیں لگے گی, آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ یہ تک بول دیں گے کہ بھائی کبیر صاحب مزہ نہیں آیا. تو میں جانتا ہوں ہر کسی کے ٹیسٹ کی نہیں ہے, مگر یہ کہانی میری فیوریٹ ہے جو میں نے پورے ہفتے میں ٹرائی کری ہے. تو کیونکہ میرے فیوریٹ کی بات آ جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ ڈیلیور کر دینی چاہیے. حالانکہ یہ سٹوری کے پیچھے بہت سارے انسپریشنز ہیں کیونکہ میں نے بہت پہلے سے تیار کیا تھا, بٹ اب میں اور کچھ نہیں بولوں گا, یہ جب آپ سنیں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. بٹ شروعات بڑھیا ملے گی آپ کو, پورے ہفتے بہت ساری اسٹوریز ہیں لائنڈ اپ, بہت بڑھیا پڑھائی کر کے آیا ہوں لگاتار لگ کے. پر پہلے بتایا کہ ویکینڈ کیسے گئے, کیا کیا ویکینڈ میں, میں نے تو کچھ نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے میں بہت سیدھی سادھی زندگی جیتا ہوں, میں باہر بہت کم نکلتا ہوں. نہیں کل میں نکلا, تھوڑا سا باہر نکلا, کل میں نے بکرا منڈی بھی دیکھی اور سمجھ میں آیا کہ منڈی بہت خوبصورت ہو رہی. بھائی بائی دا وے آپ گئے ابھی؟ چلے جائیے, بتا رہا ہوں میں, آخری کے اگر دنوں میں آپ جانے کی کوشش کریں گے, اور جن لوگوں بھی یہاں پہ انشاءاللہ قربانی کرانی ہے تو پہلے نکل جائیے بھائی, اتنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اب تو میسج آ سکتے ہیں, اب تو فون بھی کھل گیا ہے. لیٹ می سی کہ لوگ کتنے آئے ہیں واٹس ایپ پہ, ڈیلیور ہوا کہ نہیں ہوا میسج. ہاں ہو تو رہا ہے. 666-22-107 یہ نمبر ہے, فائنلی اٹس آن. اینڈ آلسو میں نا آج جو سوال پوچھنے والا ہوں نا, میں نے اس سوال پہ بنا ایک پورا ویڈیو دیکھا تھا جس نے مجھے انسپائر کیا. میں نے کہا یہ سوال تو میں ایک بار ذرا 107 پہ پوچھ کے بھی دیکھ ہی لیتا ہوں. بٹ مین ویل ایک میں سے السلام علیکم کبیر بھائی, آپ کچھ بھی سنائیے اچھا ہی ہوگا, امید تو یہ کر رہا ہوں, امید تو یہ کر رہا ہوں. بٹ دیکھتے ہیں بھائی, پھر بھی آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں لوگوں کو ہضم ہو گئے نہ ہو گئے آج کی کہانی. ایک میسج, السلام علیکم بھائی, میں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ آپ ابھی آئیں گے اور سٹوری سنائیں گے اور میں تیار ہوں. ویسے آپ کا ایوننگ شو کب سے ہے؟ پھر سے کسی نے بتایا کیا آپ کو ایوننگ شو؟ بھائی 1 June سے, ابھی ٹائم ہے, ابھی اچھا خاصا ٹائم ہے. سو ایک میسج ہے رمیش یادو بھائی کا, رمیش یادو بھائی گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ میسج کرنے کے لیے. اینڈ ایک میسج آ رہا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. باقی میسج نا ابھی لوڈ ہو رہے ہیں, میں دیکھ ہی رہا ہوں دھیرے دھیرے, ہاں تو پلیز بیئر ود می, پلیز پلیز بیئر ود می. ایک میسج ہے, کیا لکھا ہے انہوں نے, اچھا تو پہلے کا میسج ہے, آتے کے ساتھ ڈیلیٹ ہو گیا. تو میں جو سوال پوچھنے والا ہوں آج وہ جڑا ہے ہاٹ لائن نمبر سے, ہیلپ لائن نمبرز, ہاٹ لائن نمبرز, لیٹس کال دیم ہیلپ لائن نمبرز. ہیلپ لائن نمبرز کا کیا سین ہے نا, بڑا کمال کا معاملہ ہے. آج کل ہیلپ لائن نمبرز بھی الگ الگ طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی ٹیلی کمیونیکیشن کے نمبر پہ کال کرتے ہیں تو مین کسٹمر سروس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سارے بٹن دبانے پڑتے ہیں, کہ عربک کے لیے 1 دبائیں, انگلش کے لیے 2 دبائیں, اس کے بعد 3 دبائیں, 4 دبائیں, 9 دبائیں, بڑا آرٹ ہے اس میں, سمجھ رہے ہیں آپ. بہت ساری اگر سامنے والے کے پاس سروسز اور بھی زیادہ ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ ٹائم لگے گا. کئی مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کسٹمر سروس سے کیسے بات کروں, چلتا رہتا ہے کہ یہ سننے کے لیے مینیو کو دوبارہ سننے کے لیے 0 دبائیں, 0 دبائیں, بٹ یو نو اٹ جسٹ گوز آن اینڈ آن. مگر آپ سوال سنیے گا, اگر آپ کی ہیلپ لائن ہوتی, اگر آپ کی ہیلپ لائن ہوتی تو کس لیے لوگ آپ کو کال کر رہے ہوتے, یہ بتائیے. آپ کون سی آپ مدد دے رہے ہوتے کہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کال کرتے, कि फॉर एग्जांपल हेलो कबीर साहब मुझे ये चाहिए था वो चाहिए था, तो आपकी अगर हेल्पलाइन होती तो किस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होते आप, ये सवाल है। 666-22-107 नंबर है, आप ज़रूर ज़रूर बताएं। बाकी आई एम स्टिल ट्राइंग के जो है अभी मैसेजेस लोड होना शुरू हो जाएं, बिकॉज आई थिंक एक दो मैसेज के बाद लोड इंटरनेट चल रहा है भाई, लग सा तो नहीं रहा मुझे, रुको आई एम स्टिल ट्राइंग माई लेवल बेस्ट के चल जाए। आई होप अब चल जाएगा, पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हम सिर्फ मैसेज पे बात करेंगे। 444-344-377 और अभी तक अगर आप यहाँ पे कुर्बानी करवा रही हैं नहीं गए हैं तो दिक्कत है। एक और मैसेज आया है, एक सेकेंड भाई, क्या हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैसेज ऊपर से नीचे सारे के सारे मिक्स हो चुके हैं, बस धीरे धीरे लोड हो रहे हैं, धीरे धीरे लोड हो रहे हैं। एनीवे आप कॉल कर सकते हैं 444-344-377 पर एंड लेट मी नो। मैं जो हूँ आपको एक और चीज़ बता दूँ, अभी से चले जाइए क्योंकि मंडी में अभी फिर प्राइस बढ़ जाएगा बकरा मंडी में और कंपेरेटिवली ज़्यादा होता चला जाएगा, तो मेरा ये सजेशन है जो यहाँ पे हैं भाई करवा लो, देख लो हो जाओ, जिनका यहाँ पे मसला ही नहीं है कोई टेंशन ही नहीं है। सो एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं? मैं बढ़िया मेरे भाई, आपके बारे में एक आदमी सरवर भाई और नादिया के शो में बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? बहुत पहले की बात कर रहे हैं ना आप। एक मैसेज है, आई वॉन्ट टू एयर हर नेम, एयर हर नेम, आई हैव सम डिटेल्स ऑफ हर एड्रेस एंड हर एम्प्लॉयर है। एक और मैसेज, समझा नहीं भाई क्या लिखा आपने। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, अगर मेरी हेल्पलाइन होती तो मैं बहुत अच्छा कुक हूँ और एक अच्छी चटनी भी बना लेता हूँ और मैं इसी चीज़ की सर्विस करता, इनफैक्ट मैं क्लाउड किचन शुरू भी करने वाला हूँ बहुत जल्द, इंशाल्लाह दुआ करें। जी भाई बिल्कुल दुआ करेंगे आपके लिए, कैसे नहीं दुआ करेंगे। एक मैसेज हमारे भाई का, फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे इंशाल्लाह, यू टू मेरे भाई, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे। एंड हफ्सा मैंने लिखा है, गुड मॉर्निंग बहन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। एंड अब मैसेज आना शुरू हुए हैं, अब मैसेज आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है भाई के। एंड देन मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मेरी हेल्पलाइन होती मॉरल सपोर्ट की, आई एम वेरी गुड इन गिविंग एडवाइसेस, बड़ा ज़रूरी है आजकल मॉरल एडवाइस देने में से इस तरह जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर पता क्या है, मॉरल एडवाइस देने के लिए भी आपको बड़ा थिन लाइन फॉलो करनी पड़ेगी, एज इन ज़्यादा ज्ञान हो गया तो आदमी बोलेगा अरे पकाओ मत यार, और अगर अच्छा ज्ञान दिया तो फिर आपकी हेल्पलाइन जो है बहुत बिजी रहने वाली है। एक मैसेज है, अलीना का, अलीना अस्सलाम वालेकुम लिखती हैं कबीर अंकल हाउ आर यू, आई एम गुड अलीना, सब कुछ कैसा रहा बच्चे, इंग्लिश का एग्ज़ाम था आपका उस दिन, आपने बताया नहीं कैसे गया। और कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, देन एक वॉइस नोट है मेरे पास, तो वॉइस नोट तो अभी मैं सुनूंगा, ये सरवर इमाम साहब की तरफ से मैसेज है। देन मेरे पास मैसेज आया है, ये मैसेज क्या है, समी भाई क्या हाल है मेरा भाई, बढ़िया। खादर अब्दुलाजी भाई वालेकुम अस्सलाम, अच्छा ये एक तो भाई ये सोशल मीडिया मैंने जाना छोड़ दिया अभी, श्रद्धा कपूर जो हैं, देखो चलो मेरे क्रश हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन कितना क्यूट इंस्टाग्राम इनका यार, मैं चला जाऊं तो फिर मैं जा ही नहीं पाता हूं, मैं हट नहीं पाता हूं सोशल मीडिया से, बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, पर ठीक है, बहकना भी ज़रूरी होता कई मरतबा, ये तो मासूम बहकना है। एनीवे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी अगर हेल्पलाइन होती तो किस चीज की आपकी हेल्पलाइन होती, क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते आप। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, मुनीर भाई का कह रहे हैं, भाई मेरी अगर हेल्पलाइन होती तो मैं गाड़ी सिखा रहा होता है, फोन पे गाड़ी कैसे सिखाओगे ये क्या है, तुम्हें दो पेडल नजर आ रहे हैं, हाँ बीच वाला दिख रहे हो, नहीं दबाना था तो फोन पर गाड़ी कैसे सिखाओगे भाई, कैसे सिखाओगे गाड़ी। खादिम भाई ने मैसेज किया है, एक सेकंड, खादिम भाई क्या कह रहे हैं, खादिम भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, प्यारा दुआएं आपकी, लव यू कबीर भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग क्या चल रहा है पार्टी। एक मैसेज और है, क्या इतना आसान नहीं है फोन पर, वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे इतना आसान क्या, फोन पर गाड़ी कैसे सिखाओगे, खादिम भाई खुद इंडस्ट्री में है, वो कह रहे हैं आसान नहीं, फोन पे बिल्कुल आसान नहीं है भाई, फोन पे कौन, पर ठीक है उन्होंने कह दिया तो कह दिया। तो किस चीज की आपकी सर्विसेज होती, किस चीज की आपकी हेल्पलाइन होती, अगर आपकी कोई हेल्पलाइन होती तो ये बताएं। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। अच्छा वालेकुम सलाम मेरे भाई। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। इनका नाम है मिजान भाई। अच्छा ये लिखते हैं, भाई मेरी ऑलरेडी हेल्पलाइन सर्विसेज है, भाई मैं आपका बिजनेस का नाम नहीं ले पाऊंगा, आई एम रियली रियली सॉरी। तो उन्होंने कहा है कि इनकी स्नीकर्स क्लीनिंग की सर्विस है, ऑलरेडी एक हेल्पलाइन है और ये चाहते हैं उसे एक्सटेंड करना। ये बता रहे हैं कि स्नीकर्स की बेसिकली वो करते हैं, बहुत क्लीन उन्हें चिट्टा बना देते हैं, चिट्टा तो नहीं जो बेसिकली साफ कर देते हैं। तो भाई बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। तो एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये ANU अनु ही नाम है आपका या फिर कुछ और नाम है? लिखा है कि मेरी अगर हेल्पलाइन होती तो क्या, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ, ग्लास पेंटिंग, और मैं इससे आइडिया ले सकती हूँ। मेरी हेल्पलाइन होती तो मैं लोगों की ग्लास पेंटिंग्स बनाती, आई रियली लव इट। और मेरे घर पे सभी पेंटर्स हैं। आई एम लिसनिंग टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई वॉज हुक्ड ऑन टू योर स्टोरी ऑन वेंसडे एंड दिस इज द सेकेंड और थर्ड टाइम आई हैव बीन लिसनिंग टू यू। थैंक यू सो मच अनु, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहली मरतबा सुना है मुझे। अरे मैं तो ऐसे बात करूँ जैसे पता नहीं कितनी मशहूर हस्ती हूँ, पहली मरतबा सुना है, जी कैसे लेती हूँ अनु। नहीं पर थैंक यू सो मच। अच्छा आप ग्लास पेंटिंग करती हैं, माशाल्लाह वेरी नाइस। ग्लास पेंटिंग में हलवा नहीं है मतलब, ये तो अगर सर्विसेज ग्लास पेंटिंग की कोई देना शुरू करे तो वेरी गुड आइडिया। मुझे ही लगता आज तक मुझे कोई याद भी नहीं है ग्लास पेंटिंग की सर्विसेज देता होगा कोई। खादिमा लिखते हैं, हम प्रैक्टिकल परेशानी होती है, फ़ोन पे तो इम्पॉसिबल, फ़ोन पे गाड़ी सिखाना भी नहीं खादिम भाई, फेंक देंगे आप फ़ोन को, आग लगा देंगे। तो सवाल थोड़ा पेचीदा है लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मन है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी हेल्पलाइन होती कोई, है ना, तो आप कौन से किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे होते, ये जरूर बताइएगा। बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए सुबह से मुझे, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल क्योंकि आप जरा खुल के बात करते हैं तो अच्छा लगता है। तो जो मैसेजेस आए, अनु ने लिखा कि उन्हें ग्लास पेंटिंग की उनकी हेल्पलाइन होती, एंड एक भाई ने मैसेज किया कि वो ऑलरेडी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, एंड क्लाउड किचन की उनकी हेल्पलाइन होती और वो जो है चटनी और बाकायदा पुलाव बेच रही होती है, बहुत बढ़िया। एक हेल्पलाइन आई है इसरा जी की, उन्होंने बोला कि वो मॉरल सपोर्ट दे रहे होते हैं लोगों को, कॉल करके आपको कोई भी दुख है आप कह दीजिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन है आज की तारीख में। पर इसरा जी बहुत बोर हो जाती हैं आप, पता नहीं कतर में दुख बताने का भी अलग सिस्टम है मुझे ऐसा लगता है। लोग कुछ ज़्यादा ही बता देते हैं और बताते भी कैसे हैं, आपके गम के कंपेयर करके बताएंगे। आप बोल दीजिए किसी से चलते फिरते, यार कल तो मेरे साथ ये हो गया, ये तो कुछ भी नहीं मेरे साथ तो ये हुआ। एंड खुशी का भी इजहार इसी तरीके से करते हैं। आप किसी से बोलिए, भाई कतर में माशाल्लाह मुझे 10 साल हो गए, अरे मुझे भाई साहब जब ये बिल्डिंग नहीं थी ना सामने तब से हूँ यहाँ पे, अरे तो मैं कौन सा कंपेयर कर रहा हूँ तुमसे भाई, मैं तो बता रहा हूँ। यहाँ पे सारे जवाब हाइपर एक्टिव मिलते हैं, हाइपर एक्टिवली मिलते हैं, तो ये कमाल की बात है। बड़े नहीं भाई, अगर आपकी हेल्पलाइन सर्विसेज होती तो क्या हेल्पलाइन नंबर होता और क्या सर्विस होती आपकी? नंबर छोड़िए आपकी क्या सर्विसेज होती हैं जो आप प्रोवाइड करा रहे होते हैं। एक और मैसेज आया है मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम सलमान, मैंने मैसेज किया है, सलमान भाई कह रहे हैं, भाई अगर मेरी हेल्पलाइन सर्विसेज होती हैं तो बहुत सिंपल है, मैं लोगों को खुश करने की हेल्पलाइन देना चाहता था, हैप्पी हेल्पलाइन। क्या बात है, लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं उनको खुशखबरियाँ सुनाता और साथ में उनके बारे में अच्छाइयाँ बताता बिना उन्हें देखे। वैसे वेरी गुड आइडिया, वेरी वेरी गुड आइडिया, हैप्पी हेल्पलाइन। इस पे हैप्पी सिंह बात करते हैं उनसे। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज किया एक भाई ने, लिखते हैं कि भाई मैं शादी का एडवाइज़र होता, अरे अरे क्या बात है, कह रहे हैं इनकी हेल्पलाइन सर्विस होती कि ये शादीशुदा लोगों को एडवाइस दे रहे होते। कितने साल हो गए आपकी खुद की शादी को, है शादी पर एडवाइस दे रहे हैं बताओ, कितने साल हो गए आपको? ये कह रहे मेरी शादी ही नहीं हुई है। वेल डन, वेल डन, शाबाश शाबाश। यही उम्मीद थी मुझे आपसे। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा अपना ख्याली पुलाव का बिजनेस है, बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं, इसमें लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ये देखो, ये है मेरे टाइप का बिजनेस, ये है मेरे टाइप का बिजनेस। ये हसन भाई कह रहे हैं, इनका ख्याली पुलाव का बिजनेस

0: है और ये उसी की सर्विस लाइन जो है ओपन करते हैं कि आइए मुझे कॉल कीजिए, अगर आपको ख्याली पुलाव बनाने दिन में सपने मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन क्या है। हसन भाई ये बड़ा अच्छा बिजनेस है वैसे, बताऊँ आपको, जो लोग थोड़े से उदास हों कॉल कर लें तो आप जो है उनकी उम्मीदों को 10 गुना बढ़ा देंगे, पेड़ के झाड़ पर चढ़ा देंगे। लगा अरे भाई कॉल रखते के साथ ही भाई को लग रहा मैं हीरो हूँ, आज मैं ही सब कुछ उखाड़ूंगा दुनिया में। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अय्याम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज किया है युक्ति नाम है आपका, ओके। बड़े नए नए मैसेज आ रहे हैं माशाल्लाह सवेरे सवेरे, क्या हो गया अचानक से, कोई मार्केटिंग करके आया है क्या मेरी। युक्ति लिखती है कि आई एम एक्चुअली अ मैरिज काउंसलर, आई मीन आई हैव बीन इन इंडिया एंड मेरी अगर सर्विस लाइन होती, सर्विस नंबर होता तो यही सर्विसेज प्रोवाइड करा रही होती मैरिज काउंसलिंग की। वहाँ पर कहाँ कहाँ से निकल के लोग बाहर आ रहे हैं। युक्ति जी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपके काम की, ये बड़ा नेक काम है ये। पर एक भाई ने ऐसे बोला उनकी शादी भी नहीं हुई और कह रहे हैं मैं मैरिज एडवाइज़र होता। बेटे मैं बताऊँ आपसे मैं झगड़ा करता लेकिन सवेरे सवेरे अभी चाय नहीं पी है मैंने तो कर नहीं पाऊंगा। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, इन्होंने मैसेज किया कि भाई अगर मेरी सर्विस लाइन होती, हेल्पलाइन होती तो मेरी हेल्पलाइन पे मैं लोगों को कस्टमाइजेशन का आइडिया देता, मेरा खुद का बिजनेस है। अच्छा ओके वेरी नाइस। ये भाई ये जूते पे आर्ट बनाते हैं, मुझे लग रहा है आज छोटे छोटे सारे बिजनेसेस कतर के डिस्कवर कर लूँगा मैं। सब कुछ ना कुछ बता ही रहे भाई। कह रहे हैं मैं जूते पे डिज़ाइन बनाता हूँ घर पे बैठ के और मुझे अभी लगता है कि इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो अगर मेरी हेल्पलाइन होती सो आई वुड क्रिएट आर्ट ऑन शूज़। ये बताओ कितने में बेचते, ये बताओ कितने में, पहले ये बताओ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो। मुझे याद है एक मैंने ऐसा बिजनेस देखा था जहाँ पे वो वाइट शूज़ पे और आर्ट बना रहे थे, ड्रैगन बॉल जी और सब कुछ बना बना के, और फिर कहते ये जूता अब हो गया है 1400 रियाल का। हमने कहा भाई सफ़ेद सफ़ेद जूते पे सिर्फ एक ड्रैगन बॉल जी बनाने के 1400 रियाल, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। तो एक मैसेज है, ये कह रहे हैं अमन जावान भाई क्या टॉपिक है, गुड मॉर्निंग भाई। टॉपिक ये है कि अगर आपकी हेल्पलाइन सर्विसेज होती, आप किस्म की जैसे हॉटलाइन होता है ना, तो अगर आपकी हेल्पलाइन सर्विस होती तो आप क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते, क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैसेज किन्होंने किया है, एक सेकंड, ये मैसेज क्या, लियाकत साहब ने, लियाकत साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम लियाकत साहब, कह रहे हैं कि अगर मेरी हेल्पलाइन सर्विसेज होती तो मैं लोगों को एडवाइस दे रहा होता कि पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करें। अच्छा जी, अच्छा जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। लेकिन ये बताए भाई आप लगा रहे हैं कहीं पर पैसा, ये आप सिर्फ एडवाइस ही दे रहे हैं, क्योंकि हम देसी लोग जो हैं सिर्फ एडवाइस देते हैं, पैसा लगाते हैं तो बताते नहीं हैं। तो अगर आप पैसा लगा भी रहे हैं और एडवाइस भी देना चाहते हैं तो भाई आप इस दुनिया के तो नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बताइए आप ज़रा, आप ख़ुद भी इन्वेस्ट करते हैं? अच्छा भाई वेरी नाइस, वेरी नाइस, लिख रहे हैं खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, वेरी नाइस लियाकत साहब, वेरी गुड। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर मेरी सर्विसेज होती, अगर मेरा हेल्पलाइन नंबर होता तो मैं लोगों को एडवाइस दे रहा होता किस तरीके से गाड़ी चलाएं। एक तो ये बात ज्ञान देने की, मैं बताऊं, आपको लगता है कि आप कोई कॉल कर रहा होता और कॉल करके ये कह रहा होता हेलो यस मेरे को ये जानना था गाड़ी कैसे चलानी है, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बहक जाता हूँ, मैं लेफ्ट में आ जाता हूँ और मैं हटता नहीं हूँ। जी जी जी नहीं, मेरा एक और मसला है, मैं वो 120 पे ना 70 से ऊपर जा ही नहीं पाता रोड पे। जी जी जी जी मुझे बताया मैं क्या करूँ, ये थोड़ी ख़तरनाक हेल्पलाइन है। ऐसे गाड़ी चलवाने के लिए तो कोई आपको कॉल नहीं करेगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: खादिम भाई क्या हाल है?
1: बिल्कुल सब अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या टॉपिक लेकर के आते हो, कहाँ कहाँ से लेकर के आते हो, और क्या क्या तासुरात, क्या क्या ख्यालात और क्या क्या जज्बात लोगों के, माशाल्लाह।
0: देख रहे हैं, देख रहे हैं आप जी,
1: मैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, और सुबह सुबह आपने लोगों को ऐसे लगाया हुआ है ना कि न सो सकते और न जागते रहते हैं।
0: ऐसा ही है जी,
1: मिसाल के तौर पर मैं

0: बस ये बताइए मिसाल के तौर पे ही सही, अगर आपकी सर्विसेज होती, हेल्पलाइन नंबर होता आपका खादिम भाई, तो क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते आप?
1: मैंने तो ऐसे कभी सोचा भी नहीं है, और अभी अभी अगर मैं सोचूं भी तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो आपको वही कि हमें तो वही एक काम मालूम है कि हम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन वो फोन पे नहीं हो सकता, आपने बताया भी इसलिए कि ट्रेनिंग देना, ड्राइविंग ट्रेनिंग देना ये फोन पे बिल्कुल मैं कहता हूं कि कोई भी नहीं कर सकता।
0: हाँ तो ये तो नामुमकिन है, तो आपका काम ही ऐसा।
1: नामुमकिन नहीं, वो सोच भी नहीं सकता कोई, इसलिए कि अगर आप फोन पे लगे और उधर एक बंदा गाड़ी चला रहा है आप उसको बोलो कि क्लच पकड़ो मिसाल के तौर पर, और वो उसको ये नहीं मालूम कि क्लच किधर है और ब्रेक किधर है,
0: बस
1: वो आप उसको बोलो कि गेट चेक करो, इधर
0: टिकट टिकट कर जाएगा। बोलो
1: हाँ, हम लोग हर वक्त ऐसे मौत से खेलते हैं, जो नया नया स्टूडेंट आता है मौत से खेलते हैं।
0: अच्छा, मैं चूंकि आपने बता दिया, कभी कोई ऐसा स्टूडेंट आया जो बिल्कुल मतलब वो चल ही नहीं रही है उससे गाड़ी, आप गाड़ी सिखाने में लगे हुए लेकिन वो मतलब ऐसा है कि कोई चांस नहीं लग रहे हैं उसके सीखने के, ऐसे भी आते हैं?
1: ये मेरी आवाज कबीर भाई, मेरी आवाज शायद शायद मेरे कुलीग भी सुन रहे होंगे।
0: हाँ,
1: शायद
0: हाँ,
1: ज्यादा हमारे कुलीग जो वो अक्सर सुनते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसा ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए कि मैं खुद अपने मैनेजमेंट से ये बात की कि सर बिल्कुल मैंने हथियार मैंने शिकस्त मान ली है और ये नहीं सीख सकते।
0: ऐसे भी लोग आते हैं? अरे बाप रे,
1: ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं कि वो जिंदगी में डेढ़ डेढ़ घंटे क्लास के में स्टेयरिंग पकड़ पकड़ के घुमाना, अपने अपने से ज्यादा वो स्टूडेंट की जान पहले बचानी है, फिर गाड़ी और फिर उसके बाद अपनी जान बचानी है। वो जो कहते हैं ना कि पायलट जो है, पायलट जब भी वो पहले कोशिश करते हैं कि जो पैसेंजर प्लेन होता है
0: उनको उनको बचा लिया जाए, पहले
1: बचा लिया जाए किसी तरीके से, नहीं तो वो उनको क्यों पैराशूट नहीं देते? अगर पैराशूट दे देगा तो वो तो पहले छलांग मार के भागेगा निकलेगा।
0: So, तो बिल्कुल क्या करते हैं इन स्टूडेंट्स का जो बिल्कुल हार मान चुके होते हैं, तो इन स्टूडेंट्स का क्या होता है बाद में?
1: उसको उसको फिर ऐसा होता है कि आगे लेकर के जाते हैं, और जो हमारे एक या ट्रेनिंग मैनेजर होता है, हमारे जो ग्रुप लीडर्स होते हैं वो फिर उसका प्री टेस्ट लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या कहाँ कहाँ,
0: और उनसे कहते हैं भाई तुम्हारे ये रहे पैसे घर जाओ।
1: हाँ, फिर उनको अभी एक स्टूडेंट आया था मेरे साथ, वो डिफेंडर थे, और डिफेंडर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है।
0: अच्छा, फिर क्या हुआ?
1: तो डेढ़ डेढ़ घंटे उसको मैं स्टीयरिंग पकड़ पकड़ के घुमाया, दो तीन बार उसको मैंने मैनेजमेंट में भी उधर में उसका वो रिपोर्ट दे दिया कि ये प्लीज ऐसा इसका ये प्रॉब्लम है, और मैं कभी भी इसको टेस्ट में नहीं भेज सकता, इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर ये टेस्ट में गया तो ये डिफेंडर उसकी तो कीमत आपको मालूम है कि कितनी कीमत होती है, वो गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। कभी भाई ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। तो फिर हमारे हमारे जो बॉस है उसने क्या किया कि उसको हमारे ग्रुप लीडर में उसमें उसको कॉल की कि आ जाओ इसका प्री टेस्ट ले लो। प्री टेस्ट के लिए जब भी हो गए तो उसने मेरे ख्याल में 10 मिनट के अंदर ही मुझे कॉल किया कि सैयद से इसको कंट्रोल कर रहे हो, कैसे कंट्रोल किया आपने इतने क्लासेस में डेढ़ डेढ़ घंटा? मैं तो 5 मिनट भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। बस वो उसके बाद उसको बोला कि भाई ये आपके आपके काम नहीं, आपके बस का काम नहीं है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो दूसरे, फिर राफोर में कर दिया।
0: अरे भाई
1: राफोर पे तो फिर
0: कैसे
1: तो चलो अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर गाड़ी भी लग जाए तो उसकी कीमत इतनी नहीं होती, बहरहाल वो डिफेंडर की तो कीमत भी ज्यादा होती। ये ऐसे ऐसे लोग आते हैं।
0: बहरहाल अल्लाह ताला आपको सबर की ताकत अता फरमाए। मेरे
1: सबर तो मुझे अल्लाह पाक ने बहुत दिया हुआ है, लेकिन मैं बहुत सख्ती भी करता हूँ।
0: अरे बाप, नहीं ऐसे लोगों पे सख्ती का भी क्या ही फायदा है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने खुल के बात करी, अच्छा लगा मुझे खादिम भाई।
1: मैं कबीर भाई एक बात ये कि हकीकत को कभी छुपाना नहीं चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: कभी भी अगर कोई बंदा हकीकत मिसाल के तौर पर अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ और आप मुझे बार बार बोले कि बहुत अच्छे और बहुत अच्छे, और मैं उधर जाऊं टेस्ट में जाऊं उधर फेल हो जाऊं, तो मेरा अच्छा जो है वो किधर गया? वो वेरी गुड किधर गया? स्टूडेंट को बताना पड़ता है और सीधा सीधा बताना
0: तो आप
1: है।
0: आपके लिए एक हेल्पलाइन हो गई है फिर खादिम भाई, आप जो है जो स्टूडेंट फेल हो गए आप उनसे बात किया करें, आपकी हेल्पलाइन ये होनी चाहिए कि आप मुझे कॉल करें और बताएं कि आपसे क्या गलती हुई थी।

0: मैं आपको होश सिखाने लगाऊंगा।
1: सिर्फ इतना कर सकते हैं कबीर भाई की जो एलपी होता है, एलएनपी जो होता है, उसको आप थोड़ा बहुत उस पर समझा सकते हैं, मोबाइल पे फोन पे समझा सकते हैं। बाकी जो है रोड का टेस्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वो अगर अगर आप उसको बोलें जैसे राउंड अबाउट में मिसाल के तौर पर या सिग्नल में ये करो वो करो, वो नहीं कर सकते।
0: ओके
1: बिल्कुल हाँ, वो प्रैक्टिकली उसके साथ बैठ के उसको प्रैक्टिकली सिखाना।
0: जाहिर है, जाहिर है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई, आपने अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच।
1: अल्लाह पाक खुश रखे। कबीर भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है,
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया। अक्सर में ऐसा होता है ना, अभी तो खैर सुबह में ड्यूटी नहीं है, तो जब आपकी इवनिंग में प्रोग्राम हो, आप करते थे आपका शो इवनिंग में, तो कभी सिग्नल पे खड़े हो के मैं दूसरी गाड़ी में सुनता था तो मुझे बहुत खुशी होती
0: थी, थैंक यू सो मच,
1: बहुत ज्यादा। और अक्सर लोग ऐसे सुनते हैं कि माशाल्लाह वो वॉल्यूम भी थोड़ा सा और
0: बढ़ना ही चाहिए खादिम भाई, आपको ही बढ़ना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
1: हाँ, हमें खुशी होती है, हमें फहर है माशाल्लाह,
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत प्यार खादिम
1: भाई। चलो के बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत रखे।
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खादिम भाई के बाद एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
0: मेरा नाम है कबीर। फैजान भाई, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू। कैसे फैजान
2: भाई? मैं ठीक हूं, आप बताएं कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह फैजान भाई, एकदम बढ़िया, बड़ा चंगा। तो भाई अगर आपकी हेल्पलाइन होती तो किस क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते फैजान भाई?
2: जी, मैं जब था ना पाकिस्तान में, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, तो हम नक्शे बनाया करते थे, मैप बनाया करते थे। तो वो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कंपनी बनाई थी, वो तो वहाँ काम कर रही है, लेकिन अभी भी ना 3 दिन में 4 दिन में मेरे पास कोई एक या दो मैप आ जाते हैं, तो मैं फिर यहाँ से रूम पे जाने के बाद ना वो मैं करता हूँ।
0: अच्छा, क्या
2: तो
0: बात
2: वो
0: है,
2: तो हमारा चल रहा है ऑलरेडी।
0: अच्छा ऑलरेडी, क्या बात है, ये थोड़ा मुश्किल नहीं होता होगा ऐसे समझाने, क्योंकि आप तो माशाल्लाह माहिर हैं इसमें, तो ये थोड़ा मुश्किल काम?
2: मुश्किल तो है, लेकिन अभी जो है ना, एक बंदा जब मास्टर्स मतलब उसमें वो एक प्रोफेशनल हो जाता है एक चीज में, तो फिर ये तो खेल लगता है हमें करना है।
0: क्या बात है, बहुत ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग ग्लिच कर गया, पता कि सोच के क्या कैसे बताते हो गए। नहीं पढ़े भाई।
2: अच्छा। और सेकंड नंबर पे अगर मेरी कोई हेल्पलाइन होती तो वो इस तरह की होती कि कोई मुझे कॉल करके कहता है कि फैजान साहब हमें शेर सुना दे।
0: अरे हे फैजान साहब मुझे शेर सुना दे, फिर पब्लिक इंतजार में है फैजान भाई, हो ही जाएगा सुबह सुबह, कुछ याद आ रहा है आपको?
2: जी, जी। चले मैं सुना देता हूँ आपको।
0: इरशाद,
2: हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं, और जब उसे जरूरत बाकी नहीं रहती मेरी, दर्जनों ऐब मेरी जात में आ जाते हैं।
0: अरे रे रे रे रे,
2: ये हिजर के दिन अमूमन भी नहीं है आसान, और मुझ पर ये बरसात में आ जाते हैं। पहुंच जाते हैं जहां रिस्क बुलाता है हमें, घर से निकलते हैं मजाफात में आ जाते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: हम सितारे हैं, मुयस्सर नहीं आते दिन में, इश्क ज़ादों के लिए रात में आ जाते हैं। और ये आखिरी शेर बहुत ही शानदार है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और हाथ क्या आता है किसी का हाथ में मेरे, सभी हालात मेरे हाथ में आ जाते हैं।
0: हाय, ये हैदराबादी स्टाइल बोलूंगा, कफन दफन मौत ब्रो, क्या क्या शायरी रे। मजा आ गया भाई, सेट कर दिया आपके। बिल्कुल ये सर्विस आपकी होनी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर भाई सही है आपका, शायरी सुनने के लिए, क्योंकि पता लग जाता है कि आदमी को सुनाने का तरीका कैसा है। बहुत बढ़िया फैजान भाई, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई,
2: होगी ना हेल्पलाइन अगर होगी फ्यूचर में, तो
0: ये वाली फ्यूचर में आप ऑन कर लीजिए, शायरी सुनने के लिए दो दबाए होना चाहिए, एक्सटेंशन आपको जुड़ जाना चाहिए। बहुत बड़े फैजान भाई, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। फैजान भाई के बाद जो है, फैजान मैंने बहुत बढ़िया शेर सुनाया और काफ़ी अच्छी हेल्पलाइन रखी इनकी मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, गुलरेज भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरी हेल्पलाइन होती तो मैं लोगों को मोटिवेशन और उनका मोराल बूस्ट करने का काम करता, और लोगों की नेगेटिव एनर्जी ड्रेन करने का और पॉजिटिव काम करने के लिए उन्हें मतलब बताता। एक मैसेज, कैन ही टाइप और रिकॉर्ड दिस वन। फैजान भाई अगर आप सुन रहे हैं तो जो आपने शेर सुनाया मेरे भाई, प्लीज़ टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा प्लीज़, ये हमारी हफ्सा बहन की गुजारिश है, तो प्लीज़ इफ़ यू कैन टाइप एंड सेंड इट टू मी। काफ़ी बढ़िया सुनाया भाई ने। फरहत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहत अली, मैं सहेलिया से हूँ। मैं कबीर और मैं दो ऐसे हूँ, नहीं बताऊंगा। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं लिसनिंग सर्विस प्रोवाइड्स करता

0: जिसकी कोई नहीं सुनता सुनेगा, लाइक जिसकी बीवी नहीं सुनती उसे हम सुन लेंगे. ये बहुत ही नेक सर्विस है आपकी, ये बहुत नेक सर्विस है आपकी. बिजी रहेगी आपकी हेल्पलाइन, मुझे लगता है एक्सटेंशन आपको और पूरा इसके लिए कॉल सेंटर खोलना पड़ सकता है. नसीम साहब वालेकुम अस्सलाम. फराज भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, हाउ वाज योर वीकेंड? वीकेंड भाई बहुत चिल रहा और थोड़ा सा थका हुआ भी रहा, बट इस बार अभी बकरा मंडी होके आया हूँ, मज़ा ही आ गया मुझे रात में मंडी जाके. वैसे है मेरी हेल्पलाइन नहीं होती, ज्ञान नहीं दे सकता. नहीं, और चीज़ों की हेल्पलाइन हो सकती है ज्ञान के अलावा, मतलब मेरी अगर हेल्पलाइन होती तो क्या होती, कुछ अच्छी बात है ही नहीं मेरे अंदर. मैं कभी सोचता हूँ कभी कभी अकेले में बैठ के. एक मैसेज है, आई विल एडवाइस ऑन बिजनेस कंसल्टेंसी. क्या बात है, मतलब आपका नंबर तो लेजिट डायल करना पड़ेगा कि आई विल हेल्प ऑन बिजनेस कंसल्टेंसी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक मैसेज है, मुझे भी सेंड करो, फैजान भाई ने जो सेंड किया. फैजान भाई शायरी भेज दो भाई, क्या कर रहे हो फैजान. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, और मैं जैस खान हूँ, मैन खालिद से हूँ पर बताऊँगा नहीं. तुम्हारी तो लोकेशन निकालूंगा. जय, सुबह सुबह उठ के बैठे हो 6:44 पे, शर्म नहीं आ रही है? सो जा बेटे, सो जाओ, थोड़ी देर में उठना फिर बात करेंगे. जैस भाई मेरा, मुझे लगता है कि जैस भाई जैसे पूरे वीक पे होते हैं वैसे मैं वीकेंड पे होता हूँ. पूरे दिन फर्नीचर रहने का जो मज़ा है आपको क्या पता, ये जैस भाई समझते हैं और मैं समझता हूँ. तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम. दैनिक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, अगर मेरी हेल्पलाइन होती तो मैं लोगों को क्या, लोगों को आगे क्या भाई, ये हैरी पॉटर वाली लैंग्वेज लिखी, मैं समझ नहीं पाएगी. वो ऐसा लगा है पेट्रिफिकस टोटलेस लिख दिया आपने कि आगे क्या लिखा है. अरे कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ, क्या है ये. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इन्होंने बोला है कि मैं मेरी हेल्पलाइन, अगर मेरी हेल्पलाइन सर्विसेज अगर होती तो ये शादीशुदा मर्दों के लिए होती. मैंने उन्हें एडवाइस देता किस तरीके से चुप्पी बना के रखें, ज़िंदगी आसान बनाए रखें. वाह वाह, ये जो सारे के सारे शादी में एडवाइस दे रहे हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनकी खुद की भी नहीं हुई है. सुबह से दो लोग, तीन लोग आ चुके. सही बताना, शादी नहीं हुई ना तुम्हारी, ईमानदारी से बताना. मैंने कहा था मैं गलत हो ही नहीं सकता. भाई बोलने अभी हुई नहीं, तो फिर कह रहे मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जिनकी हुई है. इतना आसान नहीं है, ठीक है बेटे, ये आग का दरिया है डूब के जाना ऐसे नहीं कहते हैं. पहले डूबना पड़ेगा. एक मैसेज जस भाई कहते, भाई अगर मेरी हेल्पलाइन होती तो मैं सब कुआरे कपल का ब्रेकअप करवाता. वेरी नाइस, तभी तो आपकी सर्विस लाइन छीन ली है. इनके हाथ में फोन नहीं आना चाहिए. जैस भाई ये कहाँ पे, एन खालिद में रहते, फोन छीन लो इनका. हाँ फौरन छीन लो. एक मैसेज है, मोहब्बत क्या उनसे करके बदनाम हम हो चुके. अच्छा शायरी भी जी भाई हैं तो कमकम भाई कह रहे हैं, कमकम भाई हमारे फेवरेट नाम वाले भाई, इन्होंने भी बताया कि इनकी सर्विस लाइन होती तो शायरी की हेल्पलाइन होती. और शायरी भेजी कि मोहब्बत उनसे करके बदनाम हो चुके हैं, मेरी मोहब्बत का चर्चा खुलेआम हो चुके हैं. कुछ तो हिंदी में दिक्कत हो रही है. मोहब्बत उनसे करके बदनाम हम हो चुके, मेरी मोहब्बत का चर्चा खुलेआम हो चुके. उसे कमखत, उस कमखत ने दिल जब तोड़ा, जब हम उससे ग़ुलाम हो चुके. क्या हो गया कमकम भाई, कोई दिक्कत? आपने बहस करके भगा दिया, उन्होंने भगा दिया, हुआ क्या? किस तरफ से ये सुबह सुबह इतनी कातिलाना शायरी सुनाने, सारे आशिक जाग चुके हैं. कमाल है भाई. एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम. ये मुझे मैसेज किया है अमार भाई ने. अमार भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई. वालेकुम अस्सलाम अमार भाई. कहते हैं अगर मेरी हेल्प, अगर मेरी हेल्पलाइन सर्विसेज होती तो मेरी हेल्पलाइन पर मैं लोगों को दिल टूटे लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए सर्विस लाइन खोलता. क्या हेल्प, क्या कर लेते आप, मैं जानना चाहता हूँ. व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस वुड यू गिव. बड़ा ही पेचीदा मामला लग रहा है. एक कॉल आ रही है, रुकिए. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई.
0: नदीम भाई कैसे हैं? नदीम भाई मेरे भाई, मेरे भाई
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: नदीम भाई क्या क्या सर्विस लाइन खुल रही है? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई. देख रहे हैं आप क्या क्या हो रहा है मार्केट में?
1: लोग बस चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग कर ले
0: जिंदगी, बस
1: फोन पे बात करा दो.
0: फोन पे बात करा दो. ये वो वाले एरा से लोग हैं, बता रहा हूँ, जब वो रात की 11 से सुबह के 6 कॉल फ्री आती थी ना. तब वाले. तो नदीम भाई आपके अगर सर्विस लाइन होती, हेल्पलाइन सर्विस होती तो आप क्या?
1: देखो हमारी, मेरी तो होती तो मैं है ना ऑफिस वालों के लिए एक हेडलाइन रखता कि भाई तुमको अगर अपने ऑफिस में किसी की बुराई करनी है, बॉस को गाली देनी है, जो
0: मुझे
1: भी करनी है, हमारा नंबर डायल करो और बोलो हम साथ देंगे।
0: मैं साथ
1: बोलेंगे हाँ भाई बहुत खराब है हम भी साथ में बोलेंगे आपके, तो आपके दिल को तसल्ली होगी कि हाँ आज मेरी भड़ास निकल।
0: और इस हेल्पलाइन पे स्पेशल अगर सब्सक्रिप्शन कोई देता है तो आप ये भी कर सकते हैं ना, मुझे अपना बॉस समझो सुना
1: हाँ,
0: दो
1: मुझे अपना बॉस समझो, मेरी मेरे ऊपर भड़ास निकाल दो
0: ये लेकिन ये स्पेशल सर्विस, ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने सब्सक्रिप्शन खरीदी हो। ये बड़ी अच्छी सर्विस हो सकती है, इसमें कोई शिकायत भी नहीं कर सकता हाँ, बहुत क्लियरली
1: दबा के कॉल आएगा, अच्छा बिजनेस चलेगा।
0: हाँ ये सब्सक्रिप्शन कितने के रखे हैं? 20 रियाल की रख दे पर महीने चलेगा इतने में तो?
1: हाँ एकदम, मैं 20 रियाल में अगर किने 100 लोग तो आराम से आ जाएंगे
0: भाई। 100 लोग क्या बात कर रहे हैं नदीम भाई, आपको कॉल सेंटर खोलना पड़ जाएगा, क्या बात कर रहे हो।
1: अच्छा तो अलग अलग बंदे बिठा देंगे ना, बॉस के नाम के बंदे बिठा देंगे, बोले नाम भी वही रखेंगे जो आपको चाहिए।
0: हाँ और ये मतलब अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, जब भी आप कॉल करेंगे वो बॉस उसी नाम से आपसे बात करेगा।
1: हाँ उसी नाम से बात करेगा कि मैं ये बोल रहा हूँ।
0: वेरी नाइस आइडिया नदीम भाई, ये तो एक्चुअली में मजाक में अच्छा आइडिया निकल गया। वेरी गुड वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने। और हो सकता है कि एक और प्रीमियम अगर होता ना वो प्रोमैक्स,
1: मुलाकात वाला भी कर लेंगे,
0: मुलाकात वाला भी कर सकते
1: हैं, मिलके गाली दे के जाओ
0: कि आपके बॉस की हमें तस्वीर भेजिए और हम जो है उन्हीं का जो है पहन के आएंगे मास्क और आपसे मिलेंगे, आप दबा के सुनाइए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी सर्विस है नदीम भाई, ये आपने आंखें खोल दी। हो सकता है कि कोई जिसके पास पैसा है फालतू वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करे। थैंक यू नदीम भाई। वैसे नदीम भाई कैसा रहा वीकेंड?
1: वीकेंड चला गया गेमिंग में, और कैसा रहेगा अपना वीकेंड?
0: हाई फाइव मेरे भाई, हाई फाइव। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बाकी बातें फोन पे इंशाल्लाह। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह
1: हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़। तो भाई नदीम भाई का आइडिया तो एक नंबर है भाई, एक नंबर है आइडिया, मतलब मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, ये स्ट्रेस बस्टिंग आइडिया। एक मैसेज है, शायरी करने सुनने के लिए इश्क होना ज़रूरी नहीं। हा हा हा हा, हफ्सा बहन ये भी एक मतलब हो सकता है शेर का वैसे तो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वीकेंड वाज नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज नाइस। एक मैसेज है, तबस्सुम महंगे लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, नाइस टॉपिक, अच्छा लग रहा है सबका आइडिया सुन के। बहन देख रही कैसे कैसे आइडिया, नदीम भाई बहुत बढ़िया आइडिया दे गए, बहुत ही बढ़िया आइडिया दे गए। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, तला भाई फरमान खोर लिखते हैं, भाई अगर मेरी हेल्पलाइन होती तो सजेशंस के लिए होती, खास तौर पे पुराने ऑफिस वाले अभी भी मैसेजेस पे पूछते हैं तो कॉल पे पूछते हैं। वेरी नाइस तला भाई, ऐसा क्या आपने मतलब इतनी डल्ली इमेज बना रखी है। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर मेरी हेल्पलाइन होती मैं इस्लामिक बातें शेयर करता लोगों के साथ। नसीम भाई कोई पर्टिकुलरली आप किसी टॉपिक की बात करते क्या करते? बाकी याया भाई ने मैसेज क्या लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी हेल्पलाइन सर्विस होती तो मैं ज्ञान हेल्पलाइन सर्विस, जो ज्ञान देना है दे दो। ये क्या तुमने साइलेंटली से नेक्स्ट बिग बिजनेस आइडिया मालूम कर रहे हो कबीर भाई? जी भाई, मैं साइलेंटली ये नेक्स्ट बड़ा आइडिया जो है तैयार कर रहा हूँ, अगर आप इसमें पार्टनरशिप में आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जैस भाई कह रहे हैं, लो भाई एक तरफ से शायरी ले लो, दिल में बसी तेरी याद की महक, हर सांस में तेरा नाम लिखा है तो दूर है पर इतने करीब, हर पल तेरा ही पैगाम लिखा है। अरे जैस भाई समझ में आ रहा है, ये रात की 11 से सुबह के 6 की जो फ्री हेल्पलाइन होती है उसका बहुत फ़ायदा उठाया तुमने। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मेरी हेल्पलाइन एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, मुझे लोग इसी काम के लिए याद करते हैं। अरे भाई ये हकीम भाई कह रहे हैं, अगर उनकी हेल्पलाइन सर्विस होती तो वो एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते। इतनी मदद हकीम भाई, माशाल्लाह नाम के हिसाब से जा रहे हैं आप। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अगर मेरी हेल्पलाइन सर्विस होती तो मैं क्या है, अच्छा सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता इसलिए, तो ये हमारी एक बहन है जिन्होंने मैसेज किया है और ये कह रही हैं, अगर मेरी हेल्पलाइन सर्विस होती तो मैं जो हूँ और अपनी सहेलियों की क्या ख्वातीन की गॉसिप सुनती, ताकि वो घर जाके गॉसिप अपने शोहर को ना सुनाएं और शोहर भी सुकून से रह सकें। उसे किटी पार्टी कहते हैं। लेकिन नहीं, किटी पार्टी में दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि वहां का सुना हुआ वहां पे जो भरी बात होती है वो घर जाके निकलती है, तो

एक और मैसेज है, अब गम नहीं तेरे जाने के बाद, अब भूख भी नहीं लगती खाने के बाद, क्या बात है, चाय पियोगे? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने वॉइस नोट भेजा है मुझे। तो शायरी की हेल्पलाइन सबकी मौजूद है, सबकी मौजूद है शायरी की हेल्पलाइन, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी हेल्पलाइन सर्विसेज होती तो किस किस्म की सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे होते, ये बताइए। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, मुझे गलत मत समझिएगा, तो बोले नहीं आपने कुछ, अच्छा आगे लिख रहे हैं, ओके ये क्या था कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कोई हाउ आर यू, नहीं आप मुझे गलत मत समझिएगा, वाह क्यों समझूंगा भाई, आगे लिखा है अहमद भाई, अहमद भाई लिखते हैं, पहले लिखा था कि आप मुझे गलत मत समझिएगा, दूसरे लिखा कि मेरी हेल्पलाइन होती कि मैं देर रात को क्या कहते हैं, क्या लव गुरु बनता उन लोगों के लिए जिन्हें लव एडवाइस चाहिए, क्योंकि रात में जो लोग अकेले में रोते हैं मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या रुला दिया मुझे, मत करो ये सर्विसेज, बहुत ख़राब सर्विसेज हैं ये भाई, कल्ले कल्ले रोने दो, खामा खा पक जाओगे, इधर रोने रोने दो ने, तुमको क्या करना है ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम करो भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो रोते रहेंगे इनका कुछ नहीं है, तुम भाई कुछ और करो। अहमद भाई चाय पियोगे ये बताओ, एक मैसेज क्या देखो मैं बता रहा हूँ, लव गुरु बनने कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, अगर आपको लगता है ना कि आपके एडवाइस मोहब्बत में बहुत खतरनाक जा रही है तो मेरे दोस्त ये गलत फहमी है। तो बस मैंने मैसेज किया है, मे बी शी इज सेइंग ससुराल वाली की बुराई वाली गॉसिप, किसी कोई किसी को जानता ना हो और भर भर के दिल खोल के बड़ा निकाल सके, तबस्सुम मैन अच्छा आइडिया है वैसे, वो लगता है वो जो बोल के गई उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, वो यही कहना चाह रही होंगी कि उनकी हेल्पलाइन सर्विस होती तो ऐसी होती कि खवातीन जो है वो ससुराल की सारी बुराइयाँ सारी गॉसिप इस कॉल पे कर सकती हैं वो तो इंतज़ार भी नहीं करती, अगर वो कहता कि चुगली करने के लिए दो दबाएं वो दो का बटन ही तोड़ देती, टच स्क्रीन में मतलब कांच एकदम चटक जाता कि दो दवाएं चुगली करने के लिए दो दवाएं। खालिद भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं मैं हेल्पलाइन में सबको सोने को बोलता, रात है भाई सो जाओ ये सही है खालिद भाई कह रहे हैं अगर उनके हेल्पलाइन सर्विस होती तो लोग उन्हें कॉल करते देर रात को, और ये उनसे ही कहते भाई क्यों कॉल कर रहे हो, सो जाओ यार हर कॉल 10 सेकंड की ये सही है। एक मैसेज है, भाई मैं दिल्ली में FM शो होता था लव गुरु बोल के नाइट टाइम में, भाई फैसल भाई जो लव गुरु करते थे मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, मतलब अब तो बेचारे उनका इंतकाल हो गया जो एक्चुअली में लव गुरु वाला शो करते थे, मगर या यूज़ टू हियर, वो लखनऊ के थे ये नेचुरली, वो ओरिजिनली वो लखनऊ के थे, पर उनके अलावा भाई किसी को जरूरत नहीं लव गुरु बनने की। मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं अनीस अख्तर रास लफान से, अगर मेरी हेल्पलाइन होती तो मैं उनके लिए काम करता जो लोग भूखे सोते हैं जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं होता, तो आपको फिर अपने अपने मुल्कों में जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो हेल्पलाइन सर्विस ये फेल हो जाएगी अनीस भाई, पर आप फ़ोन पे कैसे मदद करते, इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक लाल रंग का कपड़ा है नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ इसको मजाक में ले रहा था, अच्छी बात है मदद करें, अल्लाह ताला आपको इतना दे क्या मदद कर सके। ओके एक मैसेज आया है, अरे पूरा शेर भेजा क्या आपने, मोहम्मद फैजान भाई थैंक यू सो मच, फैजान भाई का शेयर जिनको चाहिए भेज दूंगा, आई वाज ड्राइविंग बिफोर लेट सेंड किया माजरत, भाई आपने भेज दिया, ये आपका बड़प्पन है फैजान भाई, आप जैसे बुजुर्ग हमारी जिंदगी में हैं तभी तो हम सही रहा पे हैं फैजान भाई। एक मैसेज है, तबस्सुम बहन के लिखते हैं, इन भाई को ऐसे मिलना चाहिए, ये शबनम है, ये शबनम का आशिक है और ये जिस शबनम से शादी की थी हर रोज मोहब्बत करो ना, हाँ वही ना, लव गुरु बने बहुत नुकसान है भाई, लोगों को लगता है हलवा है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी ना जिंदगी ऐसी पलट जाएगी, तख्त पलट जाएगा पूरा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, इफ आई हैड अ हेल्पलाइन आई वुड एडवाइज ऑल चाय पियो मजियो जस्ट चिल डुंडू, बाकी सब बकवास क्यों की, एडवाइस से क्या होगा, रमेश बाबू जो तकदीर में लिखा है वही होगा। और ये मैसेज किया है शफी भाई ने, शफी भाई बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से आपने अपना नाम लिखा है व्हाट्सएप पे, माशाल्लाह। फराज भाई कह रहे हैं जेंजी को लव सर्विस चाहिए होगी, वही तो मेरा भी सवाल है, ये आजकल जो जेंजीज हैं इनको कहाँ एडवाइस दे रहे हैं इनको लव एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई एक मैसेज है, क्या कौन सा सांड आ गया भाई, इसको लाल कपड़े दिखा रहे हो, मुझे पता था ये बात पकड़ लोगे फौरन, बहुत तेज़ हो रहे हो।

तुम जस्ट बहुत तेज हो रहे हो, जल्दी आंख खुल गई तुम्हारी। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, थर्सडे मिस हो गई थी। अजीज भाई कहानी मुझे थर्सडे वाली मेरे पास होगी तो इंशाल्लाह जरूर। नदीमा कह रहे हैं, कबीर भाई दूसरी हेल्पलाइन आइडिया ये है कि जो हस्बैंड्स को घर से निकलने नहीं मिलता वो हमसे सब्सक्रिप्शन लें, किसी के साथ बाहर जाना है या दोस्तों में पार्टी करनी है, हमारी हेल्पलाइन सब्सक्राइब करें और डिटेल्स मैसेज करें, हम उनको कॉल करके इमरजेंसी मीटिंग बुला के घर से निकलने में हेल्प करेंगे। अगली सर्विस के लिए कॉल करें 1800 9 पीस 9 पीस्तान। मैं नंबर नहीं बोल सकता ना, पता चला किसी का नंबर हो तो। नदीमा वैसी वेरी गुड हेल्पलाइन। तो नदीमा कह रहे हैं बेसिकली एक ऐसी हेल्पलाइन जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, जिनको परमिशन नहीं मिलती है बीवी से, तो उनके लिए हेल्पलाइन है कि वो कॉल करें। स्पेशल सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी क्योंकि फ्री की सर्विस हो नहीं सकती है, और उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग की जाएगी कॉल पे, बाकायदा लोग आएंगे उन्हें निकालने के लिए। वेरी गुड आइडिया। नदीमा वैसे कोई आइडिया बताइए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हो सकता है आपके पास कोई आइडिया हो घर से बाहर निकलने का। एक मैसेज है, इन आर प्रोफेशन फोन नंबर इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज हेल्पलाइन बाय रिलेटिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट लुकिंग एट द टाइम। बात तो सही है। ताहिर भाई कहते हैं अच्छा उस टाइम पे जब मामले थोड़ा ख़राब था नहीं पूछा, ऑल इज़ वेल, लेकिन सोर थ्रोट भी हो तो कॉल करके पूछ लेते हैं। बात तो सही है, रिश्तेदारों ने तो पहले ही हमारे नंबर को हेल्पलाइन बनाए रखा है। ताहिर भाई यू नॉट रॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट। एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, अगर मेरी हेल्पलाइन सर्विस होती तो क्या मेरी हेल्पलाइन सर्विस भी उन मर्द हजरात के लिए होती जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। मुझे पिछले क्या मुझे शादी को 3 साल हो चुके हैं, मुझे घर से निकलने के लिए परमिशन लगती है, और मैं जानता हूं कि नदीम भाई किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं भी उनकी हेल्पलाइन सर्विस में ज्वाइन होना चाहता हूं। हम मिलके उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती। अरे बाप रे। मामला बहुत सीरियस है नदीम भाई, आपको तो फ़ोन पर बात ये शो पर बात करते करते नया बिजनेस खुल गया भाई। तो कमाल ही हो गया। एनीवे जरा जिंगल चला, जब तक हेल्पलाइन देखते हैं और क्या क्या है।

0: FM 107. Time check.
1: साथ दो घड़ी में भी हो रहे हैं आपको पता ही है। इस टाइम में यही बोलूंगा, इट्स अ क्लीशे थिंग, वी ऑल नो। अब तो आपको इससे बोर भी नहीं होना चाहिए, तो आदत पड़ जानी चाहिए। हाँ, जब ये शो नहीं होगा तब जब भी घड़ी में 7:02 होंगे हर सुबह आपको मेरी याद आएगी। देख लेना, मेरी याद आएगी। ऐसा कुछ नहीं, वापस आ जाऊंगा कभी ना कभी वापस। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे। एंड बिफोर आई मूव ऑन, मैं कुछ एक बात कहना चाह रहा था। सर्विस लाइन बेहतरीन बता रहे हैं लोग, भाई बेहतरीन। एक मुझे मैसेज आया है अहमद भाई का, और उन्होंने तो मतलब कमाल की बात, वो भी कह रहे हैं हेल्पलाइन ऐसी होती है एक फ्रस्ट्रेटेड लोगों की भड़ास निकालने वाली हेल्पलाइन पर सामने वाला जो है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बहुत ज़्यादा ही सब्र देना, सब्र रखना पड़ेगा भाई, बहुत सुनने को मिलेगा। अमन भाई कह रहे हैं आई विल गिव मॉरल एडवाइस टू दोज हु आर फाइटिंग विद डिप्रेशन एंड फेसिंग ट्रबल्स इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। मेरे से तो लोग, मेरे यार दोस्त हर महीने 500, 200, 1000, 1500, 2000 बोरो करते हैं, कुछ ने वापस किए, कुछ कल्टी मार दिए। वेरी गुड, ये अभी तक आपको सीख नहीं मिली अमन भाई? इसी बात पे 1000 रियाल निकालो अमन भाई।

0: हट जाना फौरन, उसे लगना नहीं चाहिए कि तुमने उसकी नाक दबाई। हाँ फिर भी कराटे लेना, एक काम करो, एक एक गाल में चार्टर रसीद दो और साइड हो जाओ, मर दो मर दो मर दो, हाँ साइड हो जाओ, पता नहीं लगना चाहिए।
1: यही यही आइडिया दे रहे हो तो शायद। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: विमलेश भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। छह नो से कहना विमलेश भाई आए थे, विमलेश भाई कैसे हैं? एकदम भला चंगा। तो विमलेश भाई क्या
2: टॉपिक?
1: हाँ
2: बढ़िया टॉपिक है तुम्हारा, हमको कुछ नहीं पता इस टॉपिक का, लेकिन हम कर्ज बता देंगे कहानी।
1: जी भाई, क्या क्या होती है हेल्पलाइन सर्विस अगर विमलेश भाई आपकी होती है?
2: हेल्पलाइन सर्विस हमारे यहाँ जब मैं कंपनी में ज्वाइन 3-4 साल हो चुका था, सीनियर हो चुका था,
1: हाँ,
2: तो वहाँ पे क्या था ना, कुछ फ्रेशर्स ऐसे थे जो मतलब बहुत रिच वाले फ्रेशर्स नहीं होते, अमीर पप्पा के बेटा है ना,
1: हाँ,
2: तो वो आते थे, उनको ना अब ऑफिस आने का मन नहीं करता था जब वो कॉलेज से लगे,
1: हाँ,
2: मजबूरी थी कि करना था, तो वो बंदा ऐसे ऐसे बहाने लेके आता था कि सर आज पता है क्या हुआ, दिल्ली गेट के पास में मेरे सामने ऊंट आ
1: गए। क्या आ गया?
2: ऊंट आ गए, कैमल।
1: अरे भाई।
2: और वो रोड ना उसके चक्कर में मुझे लेट हो गया। ठीक है, तो मेरी हेल्पलाइन सॉलिड होगी उस बंदे की याद में, वो भी बहुत बड़े पोजीशन पे है क्योंकि पप्पा की कंपनी थी। ठीक है, कि मैं जिनको ऑफिस ना जाने का बहाना नहीं मिल पा रहा, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। बॉस भी कंफ्यूज।
1: इसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी होनी चाहिए कि अगर आपके
2: बाहर डिस्काउंट उनको मिलेगा, डिस्काउंट शादीशुदा लोगों को डिस्काउंट,
1: शादीशुदा लोगों को डिस्काउंट। अच्छा,
2: मैं समझ सकता हूँ।
1: अच्छा, तो उन्हें डिस्काउंट मिलेगा, और अगर इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो हम आपको बाकायदा फोटो भी भेजेंगे सड़क पे ऊंट के साथ, ताकि सबूत रहे।
2: तुम बिलीव नहीं करो, भगवान ना करे सुन रहा हूँ मेरी बात मेरे ऑफिस में, लेकिन हमने एक दिन किया नहीं, मतलब आइडिया निकाल लिया था।
1: हाँ,
2: हमको लगा कि ऐसा है ना कि यार आज जाने का मन नहीं, हम बोल देते हैं पैर में स्वेलिंग है, मतलब फुट में जो है हमारा स्वेलिंग आ गया है।
1: अच्छा।
2: मैंने सोचा अगर कहीं बॉस ने बोल दिया कि दिखाओ तो, तो मैंने बताया क्या है,
1: हाँ,
2: मैंने क्या किया था, इंडिया की कंपनी को बता रहा हूँ,
1: हाँ,
2: मतलब लिटरली एक बंदे को जो मेरा एकदम तगड़ा दोस्त है, जब फोटोशूट में बहुत सॉलिड हो, सेम फोटोशूट अभी आई आ गया ना,
1: हाँ,
2: तो सरदार जी थे, मैंने उनको बोला पाजी एक फोटो बना दो जिसमें पैर सूझा हुआ हो, क्या पता बॉस मांग ले।
1: तो बना के दिया उन्होंने,
2: मजा भाई सीरियसली, इसमें कोई जोक नहीं, उसने बोला ले रंजन ले भाई बना के दिया, अच्छी बात है कि बॉस ने नहीं मांगा, अगर मांगता तो मैं भेज देता।
1: अरे क्या बात, ये तो बहुत बड़ी आवाज है। ये पता है आपने इनडायरेक्टली बहुतों को आइडिया दिया है कि वो लोग जो है अगर उन्हें बुखार बोल दिया उन्होंने ऑफिस में, तो वो फोटो खींचे जरूर भेजेंगे, मेक माय फेस लुक लाइक आई एम हैविंग फीवर।
2: राइट, मैं तो तुम्हारे लिसनर को कहता हूँ कि सूझे तो पैर की फोटो मांगो, अपनी पैर दे के किसी और की पैर मत दे देना, वरना पता चला हमारे पैरों का रंग जो है वो सांवला है, उसमें एकदम गोरा चट्टा दिख रहा है, बॉस तो कहेगा कुछ गड़बड़ है।
1: बात तो सही है, बात तो सही है।
2: तो मेरे हेल्पलाइन होगी खुलेगी, और मैं मतलब प्रीमियम डिस्काउंट दूंगा सारे सुधा मर्दों को, जितने एक्सपीरियंस 15-16 साल वाले साथ उनको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा।
1: भाई बहुत लोग अभी इंतजार में है आपका बिजनेस जल्दी खुले। ये आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी मिलेश भाई, I'm pretty sure.
2: पीता तुम ही चकट
1: पाओ। डन मेरा भाई, डन, ये बात चल रही है सबसे पहले, ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके अल्लाह हाफिज। तो मिलेश भाई ने जो आइडिया दिया है इस पे अमल करना चाहें तो आपकी मर्जी है। एक मैसेज है, ये मुझे अमन भाई ने भी किया है, इस बात पे 1000 रियाल, क्या बात है भाई ने सीधा लो नोट आगे रख दिए। नदीम भाई ने मैसेज किया है, नदीम भाई कह रहे हैं कि लोगों की हेल्प करने के लिए उनका दर्द समझना ज़रूरी है कबीर भाई, तभी तो बिजनेस चलेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ हूँ। अगर फेल हुआ तो मैं साइड में हूँ। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद खान साहब ने मैसेज किया है, फिर फैसल भाई कह रहे हैं भाई वैसे एक सर्विस क्या है? एक सर्विस आप भी कर रहे पता है, हस्बैंड पे वाइफ का जुल्म, सब हस्बैंड को बचाने में लगे हैं, वाइफ ने हस्बैंड को बहुत सताया हुआ है। फैसल भाई ये मैंने नहीं, आपके लफ्ज़ हैं, मैंने कुछ नहीं बोला है, आप मुझे अपने मामले में नाक घसीटें प्लीज़। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम भाई, वालेकुम अस्सलाम। फरहत भाई कह रहे हैं भाई ये केस हमारा मेरे साथ होता है, बुखार में मैं नहीं आता, आज तो बॉस बोलते हैं प्रूफ चाहिए। देखो अभी क्या AI का ज़माना आ चुका है, वैसे भी अगर आप

0: बॉस बोले कि दिखाओ तुम्हें बुखार हुआ है, तो लोग सीधा अपनी फोटो अपलोड करते हैं एआई पे और नीचे लिख देते हैं प्लीज मेक मी लुक लाइक आई एम हैविंग फीवर, और एआई कुछ अलग ही कर देता है, आंखें लाल पानी निकल रहा है आंखों से, और बॉस को भेज रहे हैं ये ट्राई मत करना, आई एम जस्ट टेलिंग यू प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, पकड़े जाओगे फौरन। सुदीप्त सर लिखते हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई, कैसे हैं सर, लिखते हैं मेरा तो हेल्प सर्कल है नॉट जस्ट हेल्प लाइन फॉर एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अरे वाह वेरी नाइस सुदीप्त सर, इज देयर एन एक्चुअल नंबर, इज इट लाइक रनिंग इन इंडिया। इरफान भाई वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं मेरी अगर हेल्पलाइन होती तो मैं चार सर्विसेज देता, कॉर्पोरेट वालों के लिए अपने बॉस और कलीग को सुनाने की शांति सर्विस, हस्बैंड वाइफ की शांति जो रोज़ रोज़ दूर करवाती, आशिकों के लिए स्पेशली रात की हेल्पलाइन होती ब्रेकअप के करीब होते ही उनको शांति सर्विस, लेडीज़ फ्रेंड्स को सुनना और शांत करता। इरफान भाई इतनी सारी सर्विसेज कितना कमाओगे, इतना पैसा कहाँ ले जाओगे इरफान भाई? क्यों चाहिए इतना पैसा आपको? इमरान भाई ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरी हेल्पलाइन होती मैं लोगों का दुख सुनता और रो रो कर सुन के अलग चार्ज करता। ये अच्छा इमरान भाई, दिस वाज क्रिएटिव भाई, कह रहे लोगों का दुख सुनता और अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए रोऊं तो स्पेशल पैसा लगेगा, अगर वो मुझे 100 रियाल एक्स्ट्रा दे दें मैं उनके गम में दहाड़े मार मार के रोऊंगा। ये सही है कि इनका लीजिए डिस्क्रिप्शन लिखी होती स्पेशल डिस्काउंट और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुख और दर्द में मैं अपनी छाती पीटूं तो इसके लिए 100 रियाल अलग से। आप कॉल करेंगे हाँ छाती पीटो बताओ और फिर क्या हुआ। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: अरे क्या हो गया भाई आवाज को,
1: क्या हाल ठीक ठाक है?
0: अब ठीक है, अब लग रहा है तौफीक भाई की आवाज हमारे को। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हो गया पहाड़ उठा रखा, कैसे तौफीक भाई क्या चल रहा है?
1: बढ़िया गुड, आप कैसे हो? ठीक हो
0: अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक भाई। तो आपकी सर्विस लाइन क्या होती है मेरे भाई? अगर आप
1: मैं सबसे अच्छा सर्विस करूंगा, जो नशे मशे करता है वो लोगों को मना करने वाला वो लाइन को लूंगा।
0: अच्छा आप इसमें एडवाइस देने में अच्छे, जिंदगी में कभी किसी का छुड़वाया नशा वशा कुछ, मतलब
1: आपने छुड़वाया ना आप कर रहा तब।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी जिंदगी में आए तौफीक भाई, मैं तब से और अब तक बिल्कुल बदल चुका हूँ। थैंक यू आपके एडवाइसेस के लिए। पर आप कभी लिटरली ट्राई किया कभी जिंदगी में पाकिस्तान में यहाँ पे कभी?
1: हाँ किया, अभी भी जब मैं दुकान शॉप के लिए एक आदमी को ला रहा था, मैं सबसे पहले उसको बोला क्या नशे करते हो, बोलता है मैं सिगरेट मिगरेट कुछ भी, मैं बोला ना बोला मैं तंबाकू लाता है, मैं बादशाह पे रम को नहीं चाहिए,
0: वाह वाह
1: तो मना कर दिया उसको, मना करके लाया उसको।
0: पर ये एडवाइस देने के इस मामले में तो डांटने वाली आवाज होनी चाहिए, आपकी तो इतनी प्यारी मधुर मीठी आवाज है, इसमें तो आप डांट भी नहीं सकते तौफीक भाई, ये तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, नहीं आपको नहीं लगता? क्यों आप लव गुरु नहीं, आप लव गुरु बन सकते तौफीक भाई?
1: बिल्कुल, क्यों मुझे नशे से नफरत है, कोई भी नशा हो
0: वो तो ठीक है,
1: सिगरेट तंबाकू कुछ भी
0: वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ
1: मैं आदमी को लाया वाला नशा करके, बाद उसका फैमिली हमको दुआ दे रहा है, इतना साल हो गया नहीं मना, हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसकी वाइफ बाबा सब लोग,
0: तो बिजनेस ऑन कर लो
1: बस एक ही झटके में आपने उसको मना कर दिया, बहुत दुआ दे रहे हैं।
0: माशाल्लाह तौफीक साहब बहुत बढ़िया जा रहे हैं, ऐसे इस पे लगे रहे, और अगर ये नेक काम करना चाहें तो मैं तो कह रहा हूँ फुल फ्लेजेडली कर रही है, बहुत बढ़िया है। पर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक साहब, जज़ाकअल्लाह। मैं तो आप कॉल मैसेज करते रहा करें, इसी तरीके से अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच भाई।
1: अच्छा मुलाकात कब होगी, पता नहीं चला आप लोगों की
0: है, क्या होगी
1: मुलाकात
0: इंशाल्लाह हो जाएगी मेरे भाई, अभी तो बस है
1: शादी में तो वैसे नहीं आया, बिजी था
0: भाई बहुत ज्यादा, भी जिले थे बहुत ज्यादा, दिन का हिसाब किताब कुछ नहीं, कब क्या तारीख आ रही है पता ही लग रहा है। तो कुछ भी चल रहा है,
1: फाजिल भाई तो हाजिर हो गया था,
0: फजील भाई अलग चीज है, फजील भाई यार
1: अलग टीम है, अलग टीम, आप बहुत मसरूफ हो ना, मुंतजम में भी बहुत दूर भी हो इसलिए।
0: नहीं वो मैं, हमारा तो दूर वो कोई बात नहीं है, पर उस दिन हम बिजी थे इसलिए। पर तौफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, कॉल करने अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो तौफीक भाई ने ताना देने के लिए कॉल करी थी मुझे, बताने के लिए नहीं, वो तो ऐसे उन्होंने कंटेंट बीच में ले आए, ताना देने के लिए कॉल करी थी उन्होंने। अच्छा एक मैसेज है, सलाम कबीर भाई, मेरी अगर हेल्पलाइन सर्विस उन लड़कों के लिए होती जिनको शादी का भूत सवार है, मैं उनको इतना डिस्करेज कर देता कि शादी का सोचे भी नहीं। शुएब भाई क्यों भाई? अरे शुएब बहुत डेंजर आदमी हो यार, बहुत डेंजर आदमी हो। एक गाना चला के थोड़ा सा वेट करते, फिर हम बाकी मैसेज

पढ़ता हूँ. अच्छा, जैसे मैंने कहा कुछ देर में जब कहानी आएगी, सो आज की कहानी इज माई फेवरेट. बट आई नो कि बहुत सारे लोगों के टेस्ट की स्टोरी नहीं है, बट मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे साथ रहेगा, बिकॉज ये कहानी बहुत ख़ास है. मैं सुनाने वाला था थर्सडे को, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने सुनाई नहीं थी, बिकॉज अब वो रीज़न में आपको पता लग जाएगा जब कहानी सुनाऊंगा. बट इवेंचुअली या तो आपको कहानी बहुत अच्छी लग सकती है, या तो आप बोलेंगे कबीर क्या सुना दिया, बट आई एम रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म टुडे, नो प्रॉब्लम हो, बट आई होप आपको अच्छी लगे. अभी नहीं तो देर में आएगी, 16 मिनट है अपने पास. मैं दोहा वाला कबीर, लग दी लाहौर दिया, काला जादू कर दिया, तेरी आंख सोनी, तुलसी कुमार गुरु.

लेडीज के ग्रुप ज्वाइन करते वाले मेरा भाई, किसकी बात कर रहे हो? एक मैसेज है, किसी ने ट्रांसलेशन सर्विस ऑफर नहीं की जो वाइफ्स की बातों को रियल ट्रांसलेट कर सके. ताहिर भाई कह रहे हैं ऐसी हेल्पलाइन सर्विस होनी चाहिए जो वाइफ की बातों को ट्रांसलेट करके बता सके. पता चला कॉल करके लोग बोले अरे वो कह रही है कि हाँ तुम बाहर जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है. इसका क्या मतलब है? घर पे रहना, इसका मतलब यही है ना. हाँ मैं बस चेक करने के लिए कॉल कर रहा था, क्योंकि वो कह रही थी मेरी वाइफ कि बाहर तुम जा सकते हो, मैं नहीं, मैं क्यों रोकूंगी तुम्हें. तो मैंने कहा एक बार पूछ लूँ इसका मतलब ये है कि नहीं. घर पे रहना है ना. अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है घर पे रहना है. समझ गए आप भी? एक मैसेज और आया, क्या है? फॉर अफेक्टेड फीमेल्स मेल्स एंड कपल्स हुज फैमिली. ओके वेरी नाइस. सो दीप्त सर, ये जो आप नेक काम कर रहे हैं, सुदीप्त सर की हेल्पलाइन है. काश मैं उसके बारे में और एक्टिवली बात कर पाता, बट वेरी नाइस सर, सो प्राउड ऑफ यू. डैन अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये मैसेज किया है अरफात भाई ने, थैंक यू. और कौन सा मैसेज था? एक शायद मुझसे मैसेज मिस हुआ है. लेट मी सी. नहीं कोई मैसेज मिस नहीं हुआ. खामा खा मुझे वहम हो रहा है. जावेद भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम. हेल्पलाइन क्या है? हेल्पलाइन एलियंस MIB हेल्पलाइन. सर मुझे एक उड़न तश्तरी दिखी है सर, उड़न तश्री सर हवा में. एक मैसेज आया, एक हेल्पलाइन सीरियस वाली फॉर पीपल नीडिंग मोटिवेशन टू डू एनी टास्क एंड नॉट एबल टू डू बिकॉज ऑफ लेजीनेस वगैरह. अच्छी बात है. अहमद भाई कह रहे हैं ऐसी हेल्पलाइन सीरियस वाली जहाँ पे जो है लोग जो आलस के चक्कर में काम नहीं कर रहे हैं. भाई मैं सबसे पहले कॉल करता आपको अहमद भाई, सबसे पहले मैं कॉल करता. और दूसरी एक फन हेल्पलाइन जिसमें वेयरिंग ग्रेट्स, दर्द सुनने के लिए सॉरी याल, साथ में चुगल गुट्टी करने के लिए 150 रियाल, साथ में रोने के लिए 200 रियाल, और साथ चल के लड़ने के लिए 1000. बहुत महंगी सर्विस नहीं है लास्ट वाली अहमद भाई? अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी डिस्काउंट देंगे आप जरा? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई. क्या है? उधार वापस लेने की सर्विसेज. जहाँ से मैंने तो गुंडा कर दी कि हेल्पलाइन खोल दी सीधा. उधार वापस चाहिए आपको, हमें कॉल करें तुरंत, ऊबर से कमीशन. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. मुझे याद रखना भाई, मुझे याद रखना, कहीं भूल, मैं क्यों भूलूंगा आपको. जॉइनल भाई, एक तो आपने नाम नहीं बताया मुझे, सॉरी मतलब नहीं बताया इसका. ये जॉइनल का मतलब क्या है? अच्छा बताया था, सॉरी. जॉय बंगाल बांग्ला, जॉय बांग्ला बंधु, नाम मालूम है. जॉय तो मैं समझ गया, जॉय मतलब हैप्पी है ना, होगा मतलब. मुझे बता दीजिएगा जब आपका मन करे. एक मैसेज, व्हाट इज द टॉपिक टुडे? टॉपिक इज वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल. मैं कह रहा था कि अगर आपकी हेल्पलाइन सर्विसेज होती तो आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे होते या होती. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? मैं आजी वदिया. ये मैसेज क्या है? आरिफ अंसारी भाई ने एक मैसेज किया है, आयशा जी ने, वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी सर्विस होती है कि जितनी भी ससुराल की बातें करनी हैं तमाम ख्वातीन मुझे कॉल करके कर सकती हैं और हम सब आपस में सब कुछ सेटल कर सकते हैं ताकि कोई भी बात ऐसी ना हो जो लीक हो सके. वेरी नाइस बहन, ये तो बहुत नेक सर्विस है आपकी. कितने की सर्विस होनी चाहिए वाली? अहमद भाई लिख रहे हैं, प्रीमियम मेंबर्स के लिए डिस्काउंट रहेगा, रिस्क भी तो देखिए. हाँ ये भी है, ये बात तो अहमद भाई, ये मैंने देखा नहीं. वेरी गुड, आपकी कंपनी बहुत आगे जाएगी. अरसलान भट्ट साहब कह रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज यूजुअल. आई एम ऑलरेडी गिविंग एस्केप सपोर्ट सर्विसेज टू माय न्यूलीवेड फ्रेंड्स. अरसलान भट्ट साहब ऑलरेडी ये कर रहे हैं. मेरी वाइफ सीईओ है कंपनी की, और सब लेडीज को गैदर कर लेती है और अरे और सब बॉयज बाहर. अरसलान भाई के लिए मैं, अरसलान भाई चाय पीएंगे आप? कितनी चीनी? बहुत नेक काम कर रहे हैं, सुना आप लोगों ने, ध्यान दिया. मैं बताता हूँ दोबारा, अरसलान भाई क्या कह रहे हैं? अरसलान भाई कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो एक हेल्पलाइन सर्विसेज दे रहे हैं. उसमें होता क्या है कि जो हमारी बहन है, इनकी वाइफ जो है, वो जो है कंपनी की सीईओ है, तो वो जो है बाकी हस्बैंड्स की वाइफ जो इनके ग्रुप में है उनको इकट्ठा कर लेती हैं, तो बाकी आदमी फ्री आज़ाद किधर भी जा सकते हैं. वाह, ये सपना सुन के ही कितना अच्छा लगा अरसलान भाई. आप सिर्फ इतना ही बोल दिया ना, आपने आधे लोग गाड़ी में रो रहे हैं अभी. थैंक यू, मैं ही भूलूंगा नहीं. आपके सब्सक्रिप्शन कितने का है वैसे? एक मैसेज है, शेब भाई की बात से सहमत हूँ भाई. मैंने आज से 70-60 साल पहले जब US में लोग क्या है पुलिस की, इस वक्त इंडिया एक सेकंड क्या. एक मैसेज, आई कैन फील यू पेन भाई. जावेद भाई कह रहे आई कैन फील यू पेन मगाए. लेकिन जावेद भाई आपके साथ क्या सीन है वैसे? अरे अरे अरसलान भाई, ये तो क्या, अरसलान भाई से दोस्ती बनानी.

0: बड़ी अर्सनल भाई, एक बात बताइए, ये हेल्पलाइन सर्विस अब रियलिटी में क्यों नहीं चालू कर देते? फैजल भाई कह रहे हैं कि भाई आज सुबह दो दफा श्रद्धा कपूर को याद किया है, हमारी भाभी यानी आपकी बेगम सुन रही है, खाना मिलना बंद हो जाएगा आपको, आदमी सिर्फ प्यार का भूखा होता है। फैसल समझ में आ रही है फैसल तुम्हारे, आदमी प्यार का भूखा होता है। नहीं सही कह रहे हो, अच्छा कि आपने वार्न कर दिया, आपको मेरी फिक्र है फैसल भाई, बहुत आगे जाओगे। एक मैसेज है यार, ब्लैक शर्ट वाला बंदा हबीब है, न्यूली मैरिड है, खुशी चेक करें इसकी। अरे मैं वही देखा मैंने अभी अभी। कितना खुश नजर आ रहा है ये आदमी, पर अभी न्यूली वेड है ना। एक साल बाद अरसलान भाई इसकी वीडियो भेजिएगा मुझे, अगर एक साल बाद भी ये खुश इतना ही नजर आया तो मुझे बताइए। फिर आपकी हेल्पलाइन सर्विस कामयाब हुई है, मैं मान लूंगा। एक कॉल आ रही है, रुकिए। अस्सलामुअलैकुम, फोन ही कट गया। एक और कॉल, एक मैसेज। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग भाई, इफ आई हैड अ हेल्पलाइन माय बिगेस्ट सर्विस आई विश आई वुड बी हेल्पिंग हस्बैंड्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑलवेज रनिंग इन वाइफ माइंड्स। इतने तेज हैं हम। खान भाई कह रहे हैं कि अगर इनकी हेल्पलाइन होती तो खान भाई मर्द हजरात की मदद करते उन्हें ये बताने के लिए कि औरतों के दिमाग में क्या चल रहा है। खान भाई अब मुझे नहीं लगता आपका बिजनेस दिन या साल चलता, आई थिंक मिनटों में बंद हो जाता भाई। ये करना बहुत मुश्किल काम है। एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू भाई।
0: मैं सुबह से वही सोच रहा था, मैंने कहा एक आदमी है उसकी आवाज नहीं आई है, मैं ऐसे मतलब छटपटा रहा था, बुखार तेज हो गया मेरा। मैंने तो आपका पोस्टर बनवा लिया था, मैंने उस पर लिखा है गुमशुदगी का पोस्टर, बाकायदा मंसूरा में लगा हुआ है।
1: बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं,
0: थैंक यू सो मच। तो तला भाई अगर आपकी सर्विस होती हेल्पलाइन सर्विस तो आप क्या सर्विस प्रोवाइड करवाते?
1: नहीं पहले तो मैं लोगों को बता दूं कि मासूम लोगों, ये आदमी जो है सारे प्लान ले रहा है, ये लिख रहा है, सारे नोट करवा रहा है, ठीक है, तुम्हारी मासूमियत का फुल फायदा उठा रहा है और तुम बह रहे हो उसकी बातों में आके।
0: सही कह रहे हो,
1: चिंता है, मासूम लोग हैं भाई,
0: सही कह रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, तो खुद इसमें बिजनेस पार्टनर हो।
1: और इसने अभी बीच बीच में दो तीन बिजनेस पार्टनर भी ढूंढ ली जिनको इसने ना मक्खन लगाना शुरू कर भी दिया। अरे भाई आप तो भाई है मेरे,
0: आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है।
1: आप तो दोस्ती कैसे की जाए, ये शुरू ही ऐसा करता, बता रहा हूँ लोगों,
0: नाइस पिक
1: शुरू किया था, आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे बना जाए,
0: तरीका क्या है उसके नीचे फोटो के नीचे लेने का, नाइस पिक डियर। ये पहला स्टेप है दोस्ती का, क्या
1: तरीका है वारदात।
0: तो तला भाई क्या हेल्पलाइन सर्विस आपको लगता है कि आपके हिसाब से होती है? बहुत सारे
1: यार आप बताओ ना, मेरी मेरी मेरी मेरी
0: मुझे लगता है कि आपकी अगर हेल्पलाइन होती तो मुझे लगता है कि तला भाई को लोग कॉल कर रहे होते जिनको ज्ञान देने की बीमारी है, तो वो लोग तला भाई को कॉल करते और फिर कॉल एंड होने तक डिप्रेशन में चले जाते, फिर कभी किसी को ज्ञान नहीं देते। ये हेल्पलाइन होती है।
1: सही सही पकड़े, मैं कहता आउट टॉक करें,
0: आउट टॉक करें।
1: आउट टॉक करें।
0: और बीच में कोई एक्सटेंशन नहीं है कि हिंदी के लिए दो दबाएं, आपको जो जो
1: डायरेक्ट
0: कॉल लगती, तला भाई डायरेक्ट कॉल उठाते और इसमें अगर आपको ज्ञान देने की बीमारी है तो 3 मिनट में आपका इलाज हो सकता है, 3 मिनट के अंदर
1: गारंटी। आजमाई शर्त है भाई, आजमाई शर्त, पहले आजमाए फिर पेमेंट करे।
0: और तला भाई के इस कॉल का ये एड भी लगा होता, ऑटो के अंदर लगा होता कि ज्ञान देने की आदत के लिए इधर कॉल करे।
1: इधर कॉल करे बगैर किसी एक्सटेंशन के, बस बस बस ट्रिंग ट्रिंग करे।
0: 3 मिनट के अंदर बदले अपनी जिंदगी, ये सच है।
1: 3 मिनट,
0: 3 मिनट
1: होता वो, मिनट नहीं होता, मिनट होता वो, 3 मिनट,
0: 3 मिनट, ये सही है, अच्छा आइडिया यार, अच्छा
1: 3 मिनट।
0: पर
1: भाई अपनी चल नहीं रही होती लोगों की दुकानें, कसम खुदा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर, वो एडवाइजरी इन्वेस्टर बने होते तो तूने कितना कमा ले ये बता, अपना अपना तो बैंक मैनेज दिखा, 1000 रियाल से ऊपर है नहीं तेरे पास। बातें तो करोड़ मिलियन डॉलर
0: सबसे सबसे महंगी बातें 1 रियाल की कड़क पे होती है भाई। ये तो फैक्ट है।
1: भाई बिल्कुल फैक्ट है। अब भाई वो फ्रूटफुल हो ना, दोस्तों में हो तो फिर चलो समझ में आता, पहली बात तो दोस्तों में ये बात होती नहीं है,
0: होती नहीं है, पहली बात नहीं होती,
1: पहली बात दोस्त। अब आप पैसे दे के किसी से एडवाइस ले रहे हो तो लानत, मतलब सॉरी, तकफरुल्ला, मतलब आप यार सॉरी सॉरी यार, थोड़ा सा होश के ना खुल लो यार।

0: कौन तरीके जा रहा
1: है नफ से कराओ दादा ते दौड़ रही रुका नहीं जा रहा
0: जज्बाती जज्बाती अभी
1: आप बताओ तो ये
0: भाई
1: बर
0: अच्छा आप अपनी तो बताओ हेलो फुफ्फो के मेरी दुनिया की कुरेपता है
1: मेरी हेल्पलाइन देखो बड़ी सिंपल होती है एक तो पहली वाली जो मैंने आपको बताया हेल्पलाइन वो मैं भी रखता एक्सटेंशन उसका टू होता और कहानी सुनने के लिए
0: कद्दू होती तुम्हारी
1: क्यों क्यों
0: मैं बात तो सिंपल और तुम अबे बस कर दो
1: भाई मेरे से सिंपल
0: शहद में शक्कर का भी खाने वाला आदमी
1: किस में क्या
0: शहद में शक्कर का भी खाने वाला आदमी
1: क्या बात है अच्छी कहावत है किस लिए यूज होती है बताओ जरा मुझे बताओ
0: बस ये तुम्हारी ऐसे लोगों पे होती है
1: अच्छा मतलब बात को जहर कर देने वाला ना ऐसा कुछ होता होगा अच्छी कहावत
0: बात की वो कर देने वाला
1: शहद में शक्कर
0: मतलब बात करो पीर की कहेगा बटेर की
1: अच्छा तो इसको क्या कहते हैं शहद में शक्कर डालना यार क्या बात
0: हाँ।
1: भाई आज नई डिस्कवरी करी है आपने आई फील लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस थैंक यू
0: भाई आपका भाई डीप बहुत है दिखाता नहीं है
1: नहीं सही है तो एडवाइस टेकन मेरा भाई पर अभी कहानी सुनेगा तला भाई हो सकता है आज वाली आपको अच्छी लगे कहानी बिकॉज बहुत स्पेशल है आज की
0: आज वाली मतलब क्या मतलब पहले किसी बुराई करी है मैंने तुम्हारी कहानी की
1: नहीं
0: तुमने मतलब... इतनी पेल पेल के हमें एविएशन की कहानी सुना दी मैं यकीन करो मैं चला गया था उस दिन एयरपोर्ट जाना था मैं कहा उतर भी उतर पायलट मैंने तो उससे अच्छा रिजाल में चला लूंगा मुझे पता उतर भी उतर
1: अब मुझे
0: चला रहा तूने ये वाला बट मैंने कहा तूने लाल वाला बटन गलत दबा दिया ये नहीं दबाना था मैं दबाऊंगा मैं चलाऊंगा
1: भाई तो आप थोड़ा टेढ़ा चला रहे हैं आप मुझे दे दें हैंडल मैं संभाल लूंगा
0: तू जाते नहीं चलाना मैं चलाऊंगा कबीर ने सिखा दिया मुझे अबे कौन कबीर है बस एक
1: है बस एक ठीक है तो आज की कहानी सुनिए इंशाल्लाह अच्छी लगेगी आपको
0: इंशाल्लाह
1: ओके भाई अल्लाह हाफिज तो आखिरी के मैसेज जल्दी से पढ़ देता हूं मैं शहजा सलीम भाई सॉरी भाई कॉल करने का वक्त नहीं मिला लेकिन इंशाल्लाह आगे कॉल कर लेंगे आपको एक मैसेज है तला भाई को सही पकड़े हैं आप कबीर के बारे में ये बंदा सच है कबीर के बारे में अच्छा फवाद भाई बताओ मैं गुस्सा आ गया ना मुझे आ जाऊँगा वगैरह में नवेद भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मैं फ्री एडवाइस देता रहता हूँ लेकिन वो बात अलग है कोई फॉलो नहीं करता नवेद भाई कह रहे फिर तबस्सुम अस्सलाम वालेकुम यस जो आपने कहा है यस ही वॉन्ट नो मैंने लिख दिया आपके मैसेज का रिप्लाई एंड एक मैसेज है रिश्ता हेल्पलाइन ओके ये उज्मा जी ने मैसेज किया है लिखती हैं कि कसम से सबसे ज़्यादा चलती है सर्विस अपनी प्रोफाइल डालने के लिए एक दवाई पहले शादी के लिए दो दवाई तीसरी शादी के लिए तीन दवाएं हेल्पलाइन शादी में गलत रिश्ता हुआ तो अपना सर दबाएं इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है बहुत खतरनाक हेल्पलाइन है आपकी आदिल भाई गुड मॉर्निंग वालेकुम अस्सलाम ओके तो अब मैं सीधा कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ एंड क्रिस्टल ने मैसेज किया है अनवांटेड एडवाइस हॉटलाइन द हेल्पलाइन यू कॉल व्हेन रिलेटिव स्टार्ट्स गिविंग यू 30 मिनट टॉक अबाउट समथिंग यू नेवर आस्क्ड वेरी गुड फॉर व्हेन एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन ऑन योर लाइफ एक्सेप्ट यू इट्स बेसिकली इमोशनल फर्स्ट एड फॉर देसी अच्छा नाम है इमोशनल फर्स्ट एड वॉट अ कूल नेम फॉर पीपल हु वॉन्ट टू गिव ज्ञान बेडली ज्ञान देने वालों से बचना चाहते हैं या सर में दर्द है तो कॉल करें क्रिस्टल को हस्बैंड को सॉरी बोलने की ट्रेनिंग अगर आप एक हस्बैंड हैं और सॉरी बोलने से कतराते हैं तो हम आपको ट्रेन करेंगे कॉल आरिफ अंसारी ऑन 1800 हैप्पी संडे वालेकुम सलाम एंड मुझे फिर मैसेज आया सीधा बहरीन से क्या हाल है आपके बहरीन में क्या क्या चल रहा है सीन इज एवरीथिंग गुड एवरीथिंग बढ़िया एंड क्या है मैसेज अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम ओके अब मैं स्टोरी की तरफ बढ़ाऊँ सो बिफोर आई मूव ऑन आज की स्टोरी जैसे मैंने कहा इट हैज़ बीन माय फेवरेट स्टोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम लेकिन मैंने सुनाई नहीं पर आज आई एम गोना टेक द रिस्क सो एक गाने के बाद ये स्टोरी आ रही है देखो आज की स्टोरी मैं सीधा नहीं भेज पाऊँगा या तो मैं कल भेजूँगा या अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो कोई बात नहीं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फिर आप मुझे भेज दीजिएगा आज की कहानी मैं क्यों अलग से कह रहा हूँ भेजने के लिए बिकॉज आई वॉन्ट कि आप म्यूजिक के साथ सुने ठीक है तो आज की कहानी सीधा कल वाली कहानी के साथ क्लब करके भेजूंगा बट फॉर नाउ 3:30 के बाद आज की स्टोरी इफ यू आर लिसनिंग टू मी लाइव बहुत बढ़िया है दल जीत महंगा जी 7:33 मिलते हैं डॉट लगा के भेज दीजिएगा

हाँ जी, तो वॉल्यूम बढ़ा के रखिएगा। जैसे मैंने कहा, आज मैं नर्वस हूँ भाई, बट ठीक है, कभी एक बार चलता है। ये नर्वसनेस भी अच्छी चीज है। So, जैसे मैंने कहा कि आज की कहानी मैं आपको कल ही दूंगा, उसके पीछे एक वजह है, बिकॉज इसमें बिना म्यूजिक के थोड़ा मजा नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में और बीच में बहुत कुछ है। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज जो मैंने तैयार करके रखी थी। सो नाउ मैं शुरू कर ही देता हूँ और फिर आपको एक साथ मिल जाएगी, ठीक है? तो तैयार हैं आप? आई होप यू आर रेडी। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं। कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टोरीज। तो वॉल्यूम जरा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। ठीक है, आज हम जाने वाले हैं सीधा जापान। और आज का जो किस्सा है, इसे शुरू करते के साथ ही मैं आपको बता दूं, हम कई सौ साल पीछे जाने वाले हैं। आज के किस्से के लिए आपको ले चलता हूं 1584 में, साल 1584। जापान का सबसे खराब दौर था ये, यहीं का सबसे खराब दौर में से एक। हर तरफ से लोग जापान की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, और इस तूफान और टेंशन के बीच एक छोटा सा गांव था मियामोतो, और मियामोतो में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम था बिनोस्के। ये उसी का किस्सा है।

मगर जिंदगी शुरू होने से पहले ही, इससे पहले कि वहां खोलता और दुनिया को अपने मां बाप के साथ देखता, जापान के उस वक्त के हालात की तरह बिनोस्के की जिंदगी भी बहुत भारी होने वाली थी। बिनोस्के की मां ओमासा उसे जन्म देने के साथ ही दुनिया से अलविदा कर चुकी थी, वो जिंदा नहीं रह पाई। एंड ही वॉज अ न्यू बॉर्न विदाउट अ मदर। ये चीज बहुत गहरा असर छोड़ने वाली थी उसकी चाइल्डहुड पे। एंड उसका साथ देने वाले, उसके साथ देने वाले सिर्फ घर पे उसके बाप थे और उसके अंकल जो उसके फादर थे बिनोस्के के, वो एक सॉर्ड मास्टर थे। जस्ट इमेजिन 1500s में एक सॉर्ड मास्टर, बहुत जबरदस्त वॉरियर, और उनका नाम था मियामोतो मोनोसाई। और उसके एक अंकल थे जो बिल्कुल ऑपोजिट थे, वो एक मंक थे। और जैसे जैसे बिनोस्के बड़ा हो रहा था, एक अजीब सा अकेलापन उसके दिल में घर कर रहा था। उसी अकेलेपन से उसे चाहत भी थी और उसी अकेलेपन से वो भागना भी चाहता था। अंदर एक कश्मकश और अंदर एक आग। उसके जो फादर थे मोनोसाई, वो अपनी बीवी के गुजर जाने के गम की वजह से बहुत परेशान थे और उन्होंने इस चीज का भी ब्लेम अपने बेटे पे ही डाल दिया था, विच वॉज वेयर्ड एंड रॉन्ग ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। और असर यह रहा कि अपने बेटे को, क्योंकि घर से तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत जोर दिया ट्रेनिंग का। वो चाहते थे कि वो ट्रेनिंग उनकी तरह करे, उनके हिसाब से करे, ट्रेडिशंस को फॉलो करे और उनके नजरों के सामने रहे, क्योंकि वो खुद एक समुराई थे। और वो ट्रेनिंग बिनोस्के को वैसे ही देना चाहते थे जैसे बड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है। बिनोस्के में एक नेचुरल एबिलिटी थी, वो एक गिफ्टेड बच्चा था जो सीखना भी चाहता था और एक हथियार हुआ करता था। अभी भी है जापानीज कल्चर में जेजेते, और वो एक हथियार होता है जो लोहे का होता है, आयरन का, लेकिन उसके एंड में एक हुक होता है। ये उसके फादर की स्पेशलिटी थी चलाने में, और बिनोस्के को भी वो यही सिखा रहे थे जो वो अच्छे से सीख रहा था। मगर उसका अपना एक स्टाइल था। बिनोस्के जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, तलवार की ट्रेनिंग ले रहा था, वो थोड़ा अग्रेसिव हो रहा था। और ये उसके अंकल ने नोटिस किया था। वो बहुत टेंशन में थे कि कहीं कहीं ये लड़का अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया तो बहुत परेशानी आ सकती है। तो उन्होंने उसे एडवाइस देना शुरू करी, बहुत कोशिश करी बिनोस्के को बताने के लिए कि अपने अंदर कंपैशन कितना जरूरी है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है और खुद की नॉलेज को बढ़ाना कितना जरूरी है। मगर बिनोस्के कुछ अलग करने वाला था। ही वॉज अ रेबेलियस चाइल्ड, बागी था वो। बाप बेटे का रिश्ता धीरे धीरे, जैसे वो बड़ा होता गया, रिश्ता अच्छे होने की जगह खराब होता गया। बिनोस्के की परेशानी ये थी कि वो और भी चीजें सीखना चाहता था, मगर उसके जो फादर थे वो टीचिंग्स वही दे रहे थे उसे जो उनको मिली, वो ट्रेडिशनल समुराई ट्रेनिंग्स, उसके बाहर की दुनिया से वो उसको वाकिफ नहीं करवाना चाहते थे। और इसीलिए बिनोस्के अपने फादर की टीचिंग्स पे सवाल खड़े करने लगा था। वो ट्रेडिशनल समुराई नहीं बनना चाहता था, वो कुछ और सीखना चाहता था, एक अपना यूनिक स्टाइल बनाना चाहता था। और ये लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में बढ़ता गया। बिनोस्के के फादर मियामोतो मोनोसाई, वो अपने बेटे की इस बगावत को एक आर्ग्यूमेंट मानते रहे। उन्हें लगता था ये क्यों सीखना चाहता है कुछ और, जब मैं इसे वो सिखा रहा हूं जो मुझे आता है, क्यों सीखना है, क्यों कुछ और करना चाहता है। और एक दिन हुआ ये कि दिल का गुबार सारा का सारा निकल गया अपने बेटे पे, और बिनोस्के ने भी घर छोड़ने का फैसला किया। अब वो नहीं रहना चाहता था, अब वो अपनी राह खुद चुनने वाला था और अपने ही फादर को गलत साबित करने के लिए घर से बाहर निकल गया, एक अपनी पहचान बनाने। और नई पहचान बनाने के लिए उसने अपने आप को एक नया नाम भी दिया, और ये नया नाम था ताकेजो। ये नाम उसकी आजादी को सिग्निफाई करता था, एक फ्रेश शुरुआत, अपने माजी से दूर और आने वाले कल की अपने हिसाब से

से की जाने वाली तलाश, कोई ट्रेडिशन नहीं, ताकि जो अब जंगल में घने जंगलों में घूमता वहीं रहने लगा, पर उसके अंदर जंगल की तरह ही एक बीस्ट दिल में पनप रहा था और वो वक्त के साथ साथ अग्रेसिव होता गया, बहुत गुस्सैल हो गया। जब भी वो मेन टाउन जापान में आता तो जितने भी नौजवान समुराई थे उसकी उम्र के या उससे एक दो साल बड़े जो ट्रेनिंग लेते वो उनके सामने जाता और उनको चैलेंज करता। ताकेजो अपने ऊपर किसी को नहीं मानता था, वो जानबूझकर लोगों से डूल करता था। बेसिकली डूल क्या होता है, तलवारबाजी का एक मुकाबला, और वो इसलिए भी भिड़ता रहता था लोगों से कि वो जो सीख रहा है जंगल में, खुद को सिखा रहा है, वो अप्लाई कहां करे। तो वो लगातार लड़ाइयां खुद ही मोल लेता रहता था। वो बेशक बहुत ताकतवर था, बहुत बहादुर था, और हर जीत की वजह से उसका जज्बा और उसका ईगो, उसकी अना बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में जो एक आग थी वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि अगला किस्सा आपको भी हैरान कर देगा। ताकेजो 13 साल का था और अब वो तलाश कर रहा था किसी ऐसे शख्स को जो उसको तलवारबाजी में हरा सके। और ऐसे में उसे खबर पता चली, एक बहुत बहुत शानदार और बहुत ऊंचे दर्जे के समुराई थे, आरिमा की है जो थे वो समुराई होने के साथ साथ एक स्कूल, शिंतो रियो स्कूल के मास्टर भी थे, और वो अभी जापानीज सड़कों पर निकले हुए थे। आरिमा की ये चाहते थे कि कोई उनसे उन्हें चैलेंज करे, किसी में भी हिम्मत है उन्हें चैलेंज करने की, उन्हें हराने की, तो वो आगे आए। वो ऐसा इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि वो मशहूर हो सके और पूरे जापान को पता लगे कि वो कितने काबिल हैं। आरिमा की है अपने कॉम्बैट स्किल का शो ऑफ करना चाहते थे, शौहरत पाना चाहते थे, और ताकेजो, उसके फादर को पता था कि मेरा 13 साल का लड़का इस शानदार समुराई से नहीं बढ़ सकता, मगर वो भिड़ना चाहेगा, इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया उस पर कि जहां दिखे इसको वहां से रोकना है। पर ताकेजो जो घर छोड़ चुका था, एक बागी हो चुका था, वो नहीं सुनने वाला था। उसे अपने बाप के ट्रेडिशंस के खिलाफ जाना था और अपनी काबिलियत को साबित करना था। तो उसने जहां पर लड़ाई के लिए सब अपना नाम लिख रहे थे उसी बिलबोर्ड पे अपना नाम भी लिख दिया। खबर फैल गई कि 13 साल का एक लड़का आरिमा की है इतने शानदार समुराई से भिड़ने वाला है, और सब यही बात करने लगे कि आरिमा की है को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, और उसे बहुत बुरा लगा। जस्ट इमेजिन कि आप किसी हुनर, आप बहुत हुनरमंद हैं और किसी काम में बहुत सालों से हैं, कोई बच्चा आपके सामने आके आपको चैलेंज कर दे तो क्या होगा। आरिमा की है को पता लगा कि 13 साल का लड़का उन्हें चैलेंज कर रहा है, तो उन्होंने उसके अंकल को बुलाया और उसे बोला, अपने लड़के को बोलो मुझसे माफी मांगे, ये कोई मजाक चल रहा है यहां पे। और ताकेजो के जो अंकल थे उन्होंने बोला, मैं बात करूंगा उससे, मगर आप भी एक बात याद रखिएगा, वो नॉर्मल बच्चा नहीं है। और वो सही थे, ताकेजो ने नहीं मानी, अपने अंकल की भी नहीं मानी और आरिमा की है की भी नहीं मानी, और वो मैदान में उतर गया। अब सजा देने के लिए जस्ट इमेजिन के लोगों का पूरा सर्कल ताता लगा हुआ है, और बीच में एंट्री ली आरिमा की है ने, ये समुराय जो ब्लैक रोब शानदार कपड़ों में और बिल्कुल चमचमाती कटाने के साथ उतरा था, और उसके सामने था ताकेजो, एक 13 साल का लड़का। उसके हाथ में थी एक लकड़ी की बोकन, एक किस्म का हथियार जो लकड़ी का होता है, तलवार जैसा, अनप्रिपेयर्ड, कम उम्र का, और वो सामने खड़ा था मैले कुचैले कपड़ों में। आरिमा की है को लगा कि ये माफी मांगने आया है, लेकिन ताकेजो माफी मांगने नहीं आया था, वो लड़ने आया था। लड़ाई शुरू हुई और सबके सब जो आमूमन लड़ाई देखने पे शोर मचाते थे वो एकदम चुप थे कि 13 साल का लड़का आज शायद जिंदा नहीं बचेगा। जब ये बैटल शुरू हुआ तो आरिमा की है ने ताकेजो पर बहुत जोरों से हमला किया, सामने से दौड़ के आए और तलवार घुमाई, लेकिन ताकेजो क्योंकि एक 13 साल का लड़का था तो उसकी मूवमेंट, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट थे। वो एकदम से मूव करके डॉच करते हुए बचता हुआ वहां से निकला, और कुछ देर में वार किया ताकेजो ने, और ताकेजो को जो वार था वो सीधा कंधे पे जाके लगा आरिमा की है के।

उन्हें थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि 13 साल का लड़का इतना तेज कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर से हमला किया, फिर से ताकेज़ उन्हें डॉच किया और उसके बाद ताकेज़ उन्हें घूम कर जो वापस अपनी वुडन बोकिन, जस्ट इमेजिन के सामने वाले के पास कटाना है, लिटरल शाइनिंग कटाना सूरज की रोशनी से पड़ रही है, लेकिन ताकेज़ की वो लकड़ी का जो बोकिन वो लेके आए थे हथियार, उन्होंने सर पे मारा। और जब ये सर पे लगा, आरिमा की है कि वो जमीन पे गिर गया और वो इतनी जोर का लगा था कि हेड ट्रॉमा की वजह से एक मास्टर समुराई अपनी जान से हाथ धो बैठा। पूरे जापान में उस वक्त ये बात फैल चुकी थी कि 13 साल के एक लड़के ने विद अ वुडन बोकन उसने एक समुराई को हरा दिया एक डोल में। और इस जीत की वजह से जो होना था वही हुआ, वो और भी ज्यादा ये 13 साल का लड़का खूंखार हो गया, कॉन्फिडेंस भी आया लेकिन उसका ईगो, उसकी अना भी दोनों ऊंचाइयों को छू रही थी। लोग हैरान थे और किससे इधर उधर घूमने लगे। और अब उसे एक नाम मिला, मुसाशी। वो काबिल भी था, खतरनाक भी था, स्किल्ड भी था और वो जहां जाता वहां दुश्मनी मोल लेता, कभी पीछे नहीं हटता था। ताकेज़ो इज्जत करवाना चाहता था तलवार की नोक पे। फूकू जो जगह थी उसकी हर गली में उसे जहां जहां लोग मिलते वो वहां वहां उनसे डोल करता, उनसे बैटल करता। नतीजा ये हुआ कि एक दिन, बहुत मजेदार किस्सा ये सुनिएगा, एक दिन हुआ ये कि किसी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि बच्चा है ओबियसली, तो पकड़ के उसको ले गए एक मंक के पास। उनका नाम था तकुआना सोहो। सो जब ये सोहो साहब के पास इन्हें ले गए ताकेज़ो को पकड़ के, उसे कहा गया, ऑर्डर दिया गया सोहो ने कि इसे पेड़ से बांध दो, पेड़ से लटका दो उसको, और पेड़ से लटका दिया ताकेज़ो को। अब जब वो टंगा हुआ था, ऑलरेडी इतना खूंखार था, इतनी ज्यादा उसका हाई ईगो था, चिल्लाने लगा, मुझे एक बार उतारो फिर बताता हूं तुम लोगों को, मैं उतरते ही तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऊपर वो टंगा हुआ था पेड़ से और जो ये मंक थे ताकुआन सोहो, वो उसके किसी भी चीखने चिल्लाने पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। ताकेज़ो के लिए पहली बार था, काफी टाइम बाद उसे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी और पहली मर्तबा उसे निहत्ता महसूस हो रहा था। वो वापस उसी अकेलेपन में चला गया जिस अकेलेपन से वो भागना चाहता था। ताकेज़ो को ताकुआन ने कुछ दिनों ऐसे ही पेड़ से लटका के रखा, बस खाना देते थे और कहते थे मैं कल आता हूं। वो दरअसल ये चाहते थे कि ये लड़का जो इतना स्किल्ड है, जिसके अंदर बात है, बस ये खुद से मिल ले एक बार तो शायद सुधर जाए। वो उसे छेड़ते थे, उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाते रहे, फिर उसे सीख भी देते थे। ताकि जो उन्होंने बोला कि तलवार उठाने वाले का एक डिसिप्लिन होता है, ताकत तुम्हारी तलवार में नहीं तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तुम चाहो तो नेकी करो, चाहो तो बर्बादी। और जब 3 दिन बीत गए तो धीरे धीरे ताकेज़ो, जो अभी पेड़ से लटका हुआ था, उसका गुस्सा कम होता गया, जो चीख पुकार कर रहा था, ऐसा हुआ जैसे ताकेज़ो अपने अंदर के उस शख्स से मिला जिससे वो डर रहा था, और जैसे ही खुद से मिला उसे अपनी सही ताकत का अंदाजा हुआ। वो खुद पे काबू करना धीरे धीरे सीखने लगा। उसे ताकुआन के रूप में एक गाइडिंग लाइट, एक किस्म का टीचर मिल चुका था, जिन्होंने उसे डिसिप्लिन और सही राह दिखाने का फैसला किया। और ये दौर जो था जिस वक्त ताकेज़ो था, इस वक्त जापान जो है बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, 2 क्लैंस थे जो आपस में भिड़ने वाले थे और बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था। एक तरफ थे तोयोतोमी क्लैन और एक तरफ तोकुगावा क्लैन। अब इन दोनों के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना समझ लीजिए कि एक वेस्टर्न थे जो जापानीज जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और तोकुगावा जो थे वो जापान के अंदर से लड़ रहे थे। दोनों में से जो जीतेगा ये जापान की जमीन उसकी।

खबर जब ये पहुंची ताकेजो के पास तो वो चाहता था कि बस वो उतर जाए और अपनी स्किल को टेस्ट करे, वो भी इसका हिस्सा होना चाहता है, वो बैटल ग्राउंड में उतरना चाहता है। और फिर उसका सपना पूरा हुआ, हुआ बैटल ऑफ सिकागहारा 1600 जापान में। इस वक्त तलवार की नोक पे वफादारी और धोखेबाजी चल रही थी। ताकेजो अपने आप को प्रूव करना चाहता था, वो चाहता था कि लोग उसकी भूख को पहचान सकें, वो कितना महान है, और वो मैदान में कूदने के लिए तैयार था। उसने फैसला किया कि वो तोयातोमी क्लैन की तरफ से, शिनमैन क्लैन की तरफ से लड़ेगा। और उसे एक मास्टर भी मिल गया था, उकिदा। वो उनकी बड़ी इज्जत करता था क्योंकि उकिदा बहुत पावरफुल और लॉयल लॉर्ड्स थे। और फिर ये बैटल हुआ। अपने तलवार की नोक पे जापानीज फ्यूचर को बिल्कुल पेंट करने के लिए तैयार था ताकेजो। अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं था, तो दोनों ही तरफ के लोग तैयार थे जंग के मैदान में। दोनों आर्मीज आपस में भिड़ गई सिकागहारा प्लेन्स में। धुंध थी चारों तरफ, एक गोस्टली एटमॉस्फेयर। आर्मर्स जो पहनते थे उनके आपस में टकराने की आवाजें, आर्मर और तलवार के टकराने की आवाजें, और ताकेजो का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब वक्त था एक असली असली बैटल में उतरने का। उसका जो खून खोल रहा था, उसने उसको चैनलाइज किया, अपने गुस्से को चैनलाइज किया और मैदान में उतर गया। कैनन्स की आवाजों के बीच जमीन कांप रही थी, समुराय आपस में भिड़े हुए थे, तलवारों की टकराने की आवाजें थी और गन पाउडर की महक। ताकेजो उतरा एक हंगरी भेड़िए की तरह, सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ, बिल्कुल बिल्ली की तरह रिफ्लेक्सेस। ऐसा लग रहा था कि वो सॉर्ड से डांस कर रहा हो। एक नौजवान समुराय एक गोस्ट की तरह मूव कर रहा था। ताकेजो ने एक के बाद एक समुराय को अकेले हराया। उसकी सॉर्ड जब चल रही थी तो लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्जिकल प्रिसिशन है, इतनी क्लीन तरीके से मूव कर रहा था। बीच में मैदान में उसके कंधे पर तलवार किसी ने मारी, बट ही डिडंट स्टॉप। वो रुका नहीं, उसे अपनी वफादारी दिखानी थी, मगर वो अकेले कितना करता। किस्मत को कुछ और मंजूर था। तमाम चीजों के बावजूद वो जिनकी तरफ से लड़ा था तोयातोमी, वो हार गई। सिकागहारा की जमीन पूरी तरह से खून की बारिश में थी। ताकेजो वापस अकेला था, जिंदा था वो, बच गया, पर उसकी अंदर की अना अब मर चुकी थी, उसका एम्बिशन मर चुका था। वो बहादुरी से लड़ा, लड़ता गया, मगर जीत हाथ से निकल गई। एक भार उसके कंधों पे आ गया। ओकिता हिदे, जिनको वो मास्टर मानता था, जिनके वो अंडर था, उन मास्टर को भी कैप्चर कर ले गया। शिनमैन क्लैन ने पकड़ लिया उन्हें, और अब वो एक मास्टरलेस रोनिन था। बेसिकली रोनिन वो होता है जिनका मास्टर नहीं होता है, अगर मास्टर होता तो वो समुराय होता। सो वो एक मास्टरलेस रोनिन बन चुका था, जिसका कोई मकसद नहीं था जिंदगी में। जापान अब बदल रहा था, और अब उसके पास एक चॉइस थी, या तो अपनी लॉयल्टी को जिंदा रखे ताकेजो और गम मनाए, या फिर वो सामने वाली टीम की तरफ चला जाए जो अब जापान पे कब्जा कर चुकी है। मगर उसने दोनों ही रास्तों को नहीं चुना। अब वो अपने आप को लिमिट में नहीं बांधना चाहता था, अब अपना रास्ता खुद चुनना चाहता था। उसे अपने अंकल की बात याद आई कि सारी ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में है, दिल में है, और वो अपना मकसद ढूंढ रहा था जीने के लिए। उसने तलवार के साथ साथ, जब उसका जख्मी कंधा था तो वो रुका रहा, इस दौरान उसने फिलॉसफी की पढ़ाई करी, और उसे समझ आ गया कि मुझे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना है, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। तलवार जो उसकी कभी घमंड की निशानी थी, अब यही तलवार उसकी टीचर बन रही थी, मास्टरी के साथ साथ एक मेंटल डिसिप्लिन। ताकेजो ने अपना पूरा नाम ही बदल दिया, और अब नाम उसका हो गया मियामोतो मुसाशी, जिसके पैरों में किसी भी किस्म की ट्रेडिशनल जंजीरें नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हां, हारने का गम था, पर उसने देखा कि किस तरह लोग जो अनजान है जापान में उसकी मदद कर रहे थे, फर्स्ट एड दे रहे थे। रिकवरी उसकी स्लो थी, मगर अजनबी लोगों पर भरोसा करना उसने कभी सोचा नहीं था कि यह भी दिन आएगा। और जब वो ठीक हुए तो मियामोतो मुसाशी

वो चले गए जंगल की गहराइयों में। उन्होंने कोने में बिल्कुल आखिर में एक झोपड़ी ली और उस झोपड़ी के अंदर बसर कर ली। बोर्डम उनका दुश्मन बनता चला जा रहा था, मगर वो इंतजार कर रहे थे कि कब अपनी तलवार को अच्छे से उठा पाएंगे, पूरी तरह से रिकवर हो पाएंगे। बचपन में जो आग दिल में थी वो अब भी झुलस रही थी। कई दिन रात उन्होंने अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी जो उनके अंकल ने उन्हें सिखाई थी, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करी और अपने गुस्से को काबू करने में की पूरी पूरी कोशिश हर रोज हर दिन रात करते रहे। उन्होंने तलवार के साथ साथ किताबें उठाई, फिलोसफीज पढ़ी और स्ट्रेटेजी की पढ़ाई करी कि शिन मैन क्लैन आखिर हारा कैसे। वो सबक ले रहे थे, हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, वॉर टैक्टिक्स पढ़ रहे थे, मार्शल आर्ट्स उन्होंने कभी नहीं छोड़ा क्योंकि ये उनका मेन मकसद था। मियामोतो मुसाशी ने खुद ही को ट्रेनिंग दी, नई टेक्निक बनाई और एक फ्लूडिटी अडेप्ट करी। अब उनकी बॉडी एक वेपन की तरह हो चुकी थी, हाथ में हथियार और खुद एक हथियार बन चुके थे। अब ये बंदा जो बचपन में बिल्कुल अलग था, आज वो बदल चुका था। ऑब्जर्वेशन, सामने वाले को पढ़ना, टाइमिंग को समझना, और वो इस चीज को करने के लिए लंबी लंबी वॉक्स पर जाते थे, माउंटेन्स में, पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, जंगलों में अकेले चल रहे हैं। और मुसाशी जो थे वो कहते थे कि एक अंदरूनी ताकत उन्हें मिल रही है, अब वो एक मैच्योर वॉरियर बन चुके थे। अब एक नया बंदा एक लेजेंडरी स्टेटस पाने के लिए जब बाहर आया जापान में, तो उसका प्लान था कि वो एक लेजेंडरी स्टेटस तो पा ही लेगा। और क्यों तो जापान में, क्यों तो एक जगह है जापान में, वहां पे कई सारे स्कूल से उस टाइम पे ये सारे स्कूल्स टेक्निक सिखाते थे तलवारबाजी की। ये इंटरेस्टिंग किस्सा है, वहां पे बहुत सारे स्कूल थे और इन स्कूल्स पर नजर थी मियामोतो मुसाशी की। 21 साल के हो चुके थे और उनका प्लान था कि सबसे बेस्ट को वो चैलेंज करेंगे। और उनका टारगेट बना योशियोको स्कूल, जहां पर जो लीडर था योशियोको सिजोरो, वो बहुत फेमस था, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि यार क्या क्या तलवार चलाता है, क्या परफेक्ट परफेक्ट वॉरियर है। और ये परफेक्ट चैलेंज था मियामोतो मुसाशी के लिए। योशियोको सिजोरो को मियामोतो मुसाशी ने खत भिजवाया चैलेंज के लिए, उसे चैलेंज किया कि पब्लिक में वो चैलेंज एक्सेप्ट करे, और उसने एक्सेप्ट किया। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, सिजोरो ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, रेडी हुआ, मैदान में पहुंचा अथॉरिटी के साथ और खुखार, एकदम महंगी रोब पहने हुए, और इंतजार कर रहा था कि मियामोतो मुसाशी सामने आएगा और वो उनको हरा देगा। मगर मियामोतो मुसाशी जो अब बहुत दिमाग से खेलने लगे थे, वो जानबूझ के लेट पहुंचे। वो चाहते थे कि वो लेट पहुंचे, वो चाहते थे कि उसको गुस्सा आए, क्योंकि वो खुद जानते थे कि गुस्सा कितना बड़ा दुश्मन है। और बहुत लेट होने के बाद जब उसको पूरा उन्होंने पूरा उसका खून खोला दिया, तब वो वहां पर पहुंचे। सामने थे मियामोतो मुसाशी, मैले कुचैले कपड़ों में, हाथ में वही अपना वुडन बोकन, और उनके सामने खड़ा था अपनी कटाना के साथ सिजोरो। उसने फौरन चार्ज अटैक किया मियामोतो मुसाशी, जो अब एकदम साइलेंट थे अंदर से। उन्होंने ऐसे डॉज किया, ऐसे उससे बचे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने तलवार से एक साइलेंट ब्लो दिया उसके हाथ पे, जिस हाथ पे उसकी तलवार दी, क्योंकि गुस्से में सिजोरो को समझ में नहीं आ रहा था, वो बस मारना चाहता था कि मुझे कैसे इंतजार कराया। उसके हाथ से जैसी तलवार गिरी, वो जमीन पर गिर गया। सिजोरो के हाथ से जब तलवार गिरी और वो जमीन पे गिर गया, तो उससे लगा कि अब वो बचेगा नहीं, लेकिन मियामोतो मुसाशी ने उसकी जान नहीं ली। उसे कहा उठो और तलवार उठाओ, लेकिन वो खुद बहुत बेइज्जत हो चुका था सबके सामने, उसने हार मान ली। योशियोको सिजोरो ने हार मान के, क्योंकि सारी पब्लिक उसे देख रही थी क्यों तो की, उसने रिटायरमेंट ले ली और वो चला गया पहाड़ों में। एक और जीत मियामोतो मुसाशी को मिल चुकी थी, और क्योंकि मास्टर ऑफ द स्कूल को हराया था, तो लोग तो समझ रहे फैंडम उस जमाने में। मगर ये फैंडम अभी खत्म नहीं हुआ। योशियोको सिजोरो, जिनका स्कूल था, जिन्हें हरा के रिटायर करवा दिया था मियामोतो मुसाशी ने, उनके भाई को बहुत गुस्सा था उनसे, और भाई थे योशियोको गेंचिचोरो, तो वो जो थे वो लड़ना चाहते थे। अब ये जो भाई था, इसके पास थी नोडाची। जब आप इंटरनेट पर देखेंगे, नोडाची बहुत लंबी सॉर्ड होती है और

हर अटैक ऐसा लग रहा था जैसे सॉर्ट डांस हो रहा हो। मुसाशी को पता था कि सामने इसके दिल में इसके भाई का गुस्सा है और ये बदले की फीलिंग के साथ, जज्बात के साथ आया है। बहुत फास्ट और वायलेंट था, लेकिन मियामोतो तो मुसाशी उतने ही अंदर से चुप थे और उन्होंने जब हमला किया, और 3 हमले किए एज पर द रिपोर्ट्स, उसमें उन्होंने गेंचिचिरो को हरा दिया। इनफैक्ट ऐसा हराया कि उसकी जान ही चली गई। अब जो बाकी लोग बचे थे इस स्कूल के, उनको तो बहुत गुस्सा था कि अब हम मिलके इसको छोड़ेंगे नहीं, और अब वो मार देना चाहते थे। मगर मियामोतो मुसाशी किल्ड एवरीबडी, उस स्कूल का एक एक स्टूडेंट अपनी जान से हाथ धो बैठा। लोगों ने पूछा कि आपने किया कैसे, तो मियामोतो मुसाशी ने कहा कि इंसान को एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, मैं वही कर रहा था, जितने भी थे मैं एक टाइम पे एक पे फोकस कर रहा था, इसलिए मैं सबको हरा पाया। फिर एक बार एक बंदा हथियार लेकर आया, उसके पास था कुसारीगामा, बेसिकली एक चेन होती है, बहुत लंबी चेन, उसके आखिरी में एक पॉइंटेड हथियार होता है घुमा के मारने वाला। उसने तक, और बाय द वे ये बहुत बड़ा मास्टर था, इसने मियामोतो मुसाशी को चैलेंज किया, मगर ये भी हाथ धो बैठा। मियामोतो मुसाशी पर जब इसने हमला किया उस चेन से, उसे लगा उनकी तलवार दबा दी है उसने और इस समुराय अब हार चुका है, लेकिन मियामोतो मुसाशी ट्रेडिशनल समुराय नहीं थे, उन्होंने दूसरे हाथ से एक डैगर निकाला, एक चाकू निकाला और सीधा उसकी जान ले ली। लोगों ने अब एक टाइटल दे दिया था मियामोतो मुसाशी को, they were calling him ghost, और इस ghost से बढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मगर एक बंदा जापान के कोने में तैयारी कर रहा था, उसका नाम था कोजिरो। ये पूरी तरह से तैयारी कर रहा था कि मैं एक दिन मियामोतो मुसाशी को जरूर हराऊंगा, और ये एक दिन हराने के लिए वो बहुत ईगोइस्टिक हो रहा था। उसने बेताबी से सबसे पहले तो इनविटेशन भेजा, गया मुझसे लड़ने आओ, अब मैं मास्टर बन चुका हूं, एक पॉलिश्ड डिसिप्लिन्ड समुराई, एक आर्टिस्ट, और लोग भी उसे बहुत मानते थे। और ससाकी किजोरो इसका नाम था, इसने डिसाइड किया कि जहां मियामोतो मुसाशी बोलेंगे वहीं पे मैं उनसे लड़ाई करूंगा। और मियामोतो मुसाशी ने एक आइलैंड चुना जो कोजिरो के इलाके के लिए था, मतलब वो चाहते थे कि वो अपने इलाके में ही लड़े ताकि उसे बेइज्जती ज्यादा महसूस हो। सब जगह ये बात फैल गई, इंटेंस ट्रेनिंग, नोडाची की ट्रेनिंग, सबकी ट्रेनिंग लेके मियामोतो मुसाशी का इंतजार कर रहा था बीच पर। यहां पर बहुत सारे लोग थे, पॉलिटिकल लोग, गवर्नमेंट के लोग, सब इंतजार कर रहे थे कि कब ये लड़ाई शुरू होगी। वो अपने मैट्रेस पर बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि कब ये आएंगे, और आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा था। मियामोतो मुसाशी बहुत देर तक नहीं आए, फिर एकदम से एक छोटी सी बोट आई जिसमें मियामोतो मुसाशी थे, अपने ट्रेवलिंग क्लोथ्स पहने हुए जब लैंड किया उतरे, बाकी सब चुप थे। अपनी सिल्क की मैट से कोजिरो भी उठा, अपनी ओडाची उठाई और बहुत बहुत गुस्से में था, और मियामोतो मुसाशी यही चाहते थे। कोजिरो ने बहुत कोशिश करी, वो बड़ा शार्प था, उसका एक ऑरा था, मगर तमाम चीजें करने के बाद मियामोतो मुसाशी के आगे नहीं टिक पाया और जान से हाथ धो बैठा। मियामोतो मुसाशी को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने इतने बड़े वॉरियर को हरा दिया, क्योंकि अब ये वो बंदा नहीं था जो घमंड से जी रहा था। उन्होंने अपनी तलवार को जमीन पर रखा और बो डाउन किया और वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने कई यंग समुराइज को सिखाया और बहुत सारी जगहों पे जहां जहां उन्हें जो दिखता उसे ट्रेनिंग देते। मियामोतो मुसाशी बहुत वक्त तक गुफा में रहे जहां पे बीमार भी हो गए थे, और वहां पे वो लिख भी रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे। और मियामोतो मुसाशी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। एंड में उन्होंने एक बंदे को चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि जिसको भी बैटल करना है मुझसे, एक आखिरी मौका देता हूं। एक लड़का उनसे बैटल करने के लिए पहुंचा, और जब वो हार गया, एक बुजुर्ग मियामोतो मुसाशी से,

उसने सर झुकाया इज्जत के साथ, और मियामोतो मुसाशी ने उससे बोला कि मेरे लिए काम करोगे, मेरी बात को दुनिया में फैला देना। और मियामोतो मुसाशी ने एक किताब भी लिखी जो मैं चाहूंगा कि आप कभी पढ़ें, बुक का नाम है द बुक ऑफ फाइव रिंग्स। मियामोतो मुसाशी 19th of May 1645 को दुनिया से चले गए, ही डाइड, मगर द लेजेंड ऑफ मियामोतो मुसाशी, द गोस्ट ऑफ जापान, द मास्टर समुराई ताकेजो ऑफ मियामोतो मुसाशी लिव्ड फॉरएवर। ये थी कहानी मियामोतो मुसाशी की FM 107 पर। अब आपके हवाले, आपको कैसे लगी है बता सकते हैं 666-22107 पर। मैं दो हवाला कबीर आपके मैसेजेस के इंतजार में। पहली मरतबा कुछ नया सुनाने की कोशिश करिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो, प्लीज बताइएगा 666-22107 पर, 666-22107 पर। एंड या इनके बारे में मुझे एक गेम से पता लगा, सो इन केस वीडियो गेम से लोग चिढ़ते हो, स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: तो 8:12, आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो। बहुत मेहनत करी थी मैंने इस पे विद द म्यूजिक एंड ऑल। सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज बता दीजिएगा। आई नो सबके टेस्ट की नहीं थी ये कहानी, बट जिनके टेस्ट की थी, जिन्हें अच्छी लगी है, प्लीज बताइएगा। इट विल रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत दिल से पढ़ाई करी है भाई। एक कॉल उठा लेता हूँ पहले मैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शुक्र है कॉल उठा ली आपने।
2: अरे
3: कॉल लगाया फिर मैंने मैसेज डाला कभी भाई कॉल।
2: अरे मैं उस टाइम कर नहीं पाया भाई, सॉरी भाई।
3: सही है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो उसके बारे में था ना, आपका टॉपिक जो था ना, क्या होते हेल्पलाइन होते क्या?
2: हेल्पलाइन
3: हाँ ऐसे होते ना। तो मैं ना हेल्पलाइन पर ना एडवाइजर होता, जो टूटा हुआ है ना, एकदम बिखरा हुआ टूटा हुआ है ना, तो मतलब एकदम से हथियार डाल दिया एकदम से, क्या मैं, क्योंकि अपने इतने भाई ऐसे ना, मैंने उनको किया भी हूँ अपना खुद भी। एक बंदा आया वहाँ से फ्री वीजे में और एकदम से खत्म, एकदम से आईडी खत्म।
2: आप क्या कर लेते उसमें, आप क्या कर लेते उसमें?
3: मैं उसको बोला नहीं तू फाइट कर, तू नहीं जाएगा।
2: अच्छा।
3: तू जाएगा ही नहीं। मैंने उसको पकड़ के रखा, उसको बहुत मोटिवेशन दिया, बहुत एडवाइस दिया तरह तरह तरह की। तो बहरहाल बंदा एक जगह जॉब पे लग गया, अभी चार सैलरी ऑलरेडी उठा चुका है वो।
2: बहुत बढ़िया शहजादा सलीम, बहुत बढ़िया।
3: उसको मैं बोला हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, मैदान छोड़ के भागना नहीं। मैं बोला क्या फायदा, मैं बोला लेडीज देखो, औरतों को देखो, नर्सों को देखो, वो औरतों की इतनी हिम्मत करती है, तू तो मारते यार ऐसा मैदान छोड़ के भागेगा।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सजा सलीम।
3: वो आज बंदा लगा हुआ है, नहीं गया हो तो मैं इस तरह का ना एक एडवाइजर बनूंगा कि कोई भी है ना हथियार ना डाले, फाइट करे निकले आगे, करके निकले।
2: चलो किसी काम तो आना चाहिए हर किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी इस टॉपिक बात नहीं कर रहे हैं, कुछ देर में वापस आता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो भाई ये तो टॉपिक भी बोल गए, लेकिन अगर आपने कहानी सुनी है एंड यू लाइक इट इवन 2%, 2% भी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताइएगा। मैं बहुत बहुत इंतजार में हूँ आपके मैसेजेस के, बहुत सारे आ चुके हैं मैसेजेस। बात नहीं, बट बताइएगा कैसी लगी। ओके वेटिंग। कितना जालिमा विशाल मिश्रा।

0: ओके दालिमा 8:17 बाद क्लॉक और मुझे नंबर दिए हैं 100 में से 75। ये अमन भाई ने, मैंने कहा था ना सबके डिस्क की स्टोरी नहीं है, बट यू लाइक इट, ये अच्छी बात है। 75 नंबर भी अच्छे हैं, पासिंग नंबर है, पासिंग का डिस्टिंक्शन आ गई है मेरी, कोई गाल नहीं। कॉल आ रही है, रुको भाई। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नींद नहीं आ सकती भाई, 3 घंटे तो मुझे कुछ भी नींद नहीं आ सकती, कोई मेरी दूसरी फीलिंग नहीं होती, सिर्फ रेडियो होता है। आप बताए।
1: बस अलहमदुल्ला बढ़िया। उनका भाई कितना आईडिया आ गई बताओ आपके पास?
0: क्या आ गई
1: आईडिया? कितना आ गए?
0: बहुत सारे भाई घट्टे, मैं तो पूरा सेंटर खोलने के लिए तैयार हूँ भी।
1: मुझे लगा था ना, लगा था भाई के, भाई जो है ना सुबह सुबह जो है ना हाँ। दूसरों की राय लेके के ना अपना बिजनेस सेटअप करने के तैयार
0: मैं राई का पहाड़ बनाता हूँ, राई का पहाड़। तो वही करूंगा मैं। आई एम प्रीटी श्योर कहानी तो तुमने नहीं सुनी है, जयेश भाई सो गए होगे बीच में।
1: नहीं,
0: ज्यादा काम, हाथ पैर दर्द कर रहे होंगे यार। क्यों?
1: नहीं,
0: अभी शुरुआत हुई है। अगली नींद का कितने बजे?
1: अब तकरीबन 8:30 होने वाले हैं, 10 बजे वो 9:30
0: तक ठीक है, ठीक है ठीक है। जैस भाई आप नींद पूरी करें इंशाल्लाह, फिर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
1: इंशाल्लाह
0: ओके मेरा भाई, ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई क्या दो कॉल करनी है मुझे, तो नियाज भाई को करनी है, और नियाज भाई के बाद जो है मुझे कॉल लगानी है आसिफ भाई को। तो पहले नियाज भाई ने बोला, तो पहले नियाज भाई बाड़ी बाड़ी जाएंगे पूरा ईमानदारी के साथ। और बाकी मैसेज अभी पढ़ाऊँ, बहुत प्यारे मैसेजेस हैं मेरे पास आज, बहुत बहुत प्यारे मैसेजेस। मुझे पता था अगर पसंद आएगी तो बहुत पसंद आएगी, नहीं आई तो नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई कहाँ हैं आप?
2: अरे आपके दिल में है जनाब।
0: अरे नियाज भाई क्या चल रहा है भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है।
0: भाई
2: आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार।
2: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
2: कहानी सुना दी आप तो नॉस्टैल्जिया में ले गए बचपन की लकड़ी की तलवार बना के खेलते थे। शो शो शो शो।
0: हाँ ये वही लकड़ी की तलवार थी भाई, ये वही लकड़ी की तलवार थी वैसे ही। तो आप भी बचपन में मियां वो तो मुसाशी थे। हाँ तो ये उसी का फायदा है भाई, उसी का नतीजा है। क्रेडिट गोज टू गेमिंग ओनली, वरना मुझे तो पता भी नहीं लगता मियां मुसाशी के बारे में।
2: भाई इस कहानी से एक चीज तो समझ में आती है,
0: क्या
2: पेशेंस बहुत जरूरी है
0: भाई, बहुत। और मैं बताएं, मैं बोल, ये बुक ऑफ रिंग्स उन्होंने लिखी है ना, वो जनरली मैंने उस बुक का ऑडियो सुना है, काफी हद तक पूरी नहीं सुनी, मतलब जहां तक मैंने सुनी है कमाल का लिखा है भाई, कमाल का लिखा है। मतलब कोई भी सुन सकता है रिगार्डलेस कहीं से भी किसी भी जगह का हो, बट यू विल लव इट। आप सुन के देखिएगा, बहुत सारे ट्रांसलेशन है इसके, इंग्लिश में भी है, कभी वक्त मिले तो सुनना, अच्छी किताब है।
2: मुझे एक बार इस बुक का नाम एक बार टाइप करके भेज दीजिएगा कि याद तो है ना नहीं।
0: हाँ।
2: और एक मेरा एक सवाल है कबीर भाई, आपकी इस स्टोरी से सुनने के बाद आया।
0: हाँ।
2: सवाल ये है, पूछने की इजाजत है?
0: अरे भाई बिल्कुल भाई, कैसी बात कर रहे हैं भाई।
2: सवाल ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि एक जगह एकाग्र होकर हमें किसी भी काम को करना चाहिए।
0: हाँ।
2: मगर आज के वक्त में कोई भी हर कोई प्लान बी लेके चलता है।
0: हाँ चलता है।
2: अगर प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी चलेगा,
0: ऑफ कोर्स।
2: इस मसले को कैसे हल करा जाए?
0: ये तो पता नहीं मुझे। इनकी एक बात जो अच्छी लगी थी ना, वो जो उन्होंने किताब में भी लिखी है और उनके किस्से में भी, उन्होंने बोला कि अगर सब चीजों को एक साथ देख रहे हो ना तो प्रॉब्लम है। सब चीजें बहुत सारी अभी लाइफ में चीज चल रही होंगी, अगर एक टाइम पे एक चीज पे फोकस किया जाए तो बहुत बढ़िया है, एंड दैट्स हाउ ही लिव्ड। तो मुझे लगता है कि यही एक सोल्यूशन जो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा दिस इज इंस्पायरिंग इनफ। बाकी तो अभी थोड़ा माहौल चेंज हो चुका है, 1500 की बात है, अभी तो हम 2026 में जी रहे हैं, जस्ट इमेजिन। कितने साल हो चुके भाई, 550 साल से ऊपर।
2: फिर भी ओल्ड इज गोल्ड
0: भाई, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये पर मैं आपको किताब का नाम भेजा नहीं आज भाई, जब भी मौका मिले ऑडियो बुक में पढ़ोगे तो नहीं, मुझे पता मैं भी नहीं पढ़ता, मैं रीडर नहीं हूँ, बट ऑडियो बुक भी अवेलेबल है इसकी, कभी गाड़ी में ऐसी ड्राइव करते हुए जाओगे तो अच्छा लगेगा सुनते हुए, दैट इज व्हाट आई फील।
2: पर अच्छी कहानी कर भाई, ऐसी हम लोगों को नई नई कहानी के द्वारा बहुत सारी चीजें समझ में आती है, जो हालांकि जिंदगी में हम लोग आजकल किताबें नहीं पढ़ते सुनते नहीं है, मगर आपकी कहानी फिक्शन ना होने की वजह से बहुत सारी चीजें नई नई चीजें चलती, एविएशन की दुनिया हो गई हो या जैसे गेमिंग की दुनिया, सब समुराय को उठा के ले आए हो या हर रोज कोई बंदा मार देते हो, कभी बचा भी
0: आज भी लोगों ने बोला, मैंने कह रहे भाई नेचुरल मरा है, भाई मैंने थोड़ी मारा है उसको, तो नेचुरली गए हो, बट
2: बहुत बहुत शुक्रिया
0: मेरे भाई, और भाई के बाद जो है मैं एक जरा कॉल करने वाला हूँ, एक कॉल आ भी रही है, उसके बाद दो कॉल और हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई,
3: अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है ना दूसरा टाइटल दिया जाए, सपने वाले कबीर भाई।
0: सपने वाले
3: रोज सुबह सुबह एक सपना बेच रहे हैं।
0: हाँ
3: भाई, आज एक सपना लेके आ गए सबका जो है।
0: कौन सा बेचा?
3: कौन क्या?
0: कौन सा सपना बेचा आज मैंने?
3: कौन क्या खुलना चाहता है, कौन क्या बनना चाहता है, किसके अंदर क्या टैलेंट है, अपने अपने सपने को जो है साकार करिए।
0: तो देखा ना आपने कहाँ कहाँ से निकल के आए लोग।
3: वही बोल रहा हूँ ना भाई।
0: जी भाई,
3: तो मुझे एक सपना आप लेके आ जाते हैं। अच्छी बात,
0: कहानी कैसी लगी कमल भाई?
3: लोगों के दबे हुए जज्बात को आप बाहर निकालते हैं।
0: बहुत जागे
3: कहानी। देखिए कहानी में तो एक सबक है कि उस दौर में जो है ना, बहुत से मैंने चाइनीज मूवी और कोरियन मूवी भी देखी है, जापानी भी देखी है, उसमें एक उस्ताद का होना बहुत जरूरी था। और आज वो लोग जो है ना, जो टैलेंट पे है हमारे यहाँ, वो चीज नहीं रह गई है, बहुत सी जगह पे नहीं रहेगी, हमारे यहाँ तो छोड़िए। उस टाइम पे देखिए, उसको अगर वो उल्टा नहीं लटकाता और सबर से काम नहीं लेता, चाहता तो उसको मार मार के भी जो है वो करता था।
0: हाँ, ऑब्वियसली बदला ले सकता
3: है। उसको उल्टा लटका के, उसको उल्टा लटकाया, तो वहां से उसको एक सबक मिला। एक उस्ताद का काम ही वही होता है कि अपने आप को पहले उसने कंट्रोल किया है कि उसको भाई उल्टा लटका के उसने चिल्लाया, लड़ने के लिए वो किया, उतारता था, खाना देता था, फिर उसको लटकाता था, 3 दिन लटकाया, बाद में उसने उसको समझाया, उसने उसका जब गुस्सा ठंडा हो गया, मतलब एक तो पहले तो गुस्सा बहुत से लोग ऐसे बदले की आग में, लेकिन वो कुछ सीखना चाहता था, कुछ उसके अंदर था। उस दौर में लोगों को समझाने पे कुछ लोग समझते भी थे।
0: हाँ, अभी तो किसी को बांध तो
3: भाई, अभी आप इधर से गाली दे के किसी को जाओ, पीछे से आकर तुमको जो है मार के भाग जाएगा, फिर आप गाली दो, फिर मार के भागेगा।
0: हाँ,
3: हाँ, सबर नहीं है,
0: सिचुएशन ही अलग है।
3: तो एक उस्ताद का होना इसमें ऐसी सबक मिलती है, एक उस्ताद का अच्छे उस्ताद,
0: बेहद जरूरी है भाई, बेहद जरूरी है।
3: अभी आपने शायद देखा होगा, जैकी चंद की जो पिक्चर आई थी कराटे किड,
0: कराटे किड है,
3: उसमें दो उस्तादों को दिखाया गया था। एक जो है हमेशा अग्रेसिव रहता था, उसको जो है ऐसा नहीं ऐसे लड़ो, ऐसे नहीं ऐसे तोड़ो, और एक जो जैकी चंद जो था उसको सिखाता था, उसने उसको ये बताया कि लड़ना मतलब जो है कि किसी को मारना नहीं है, जितना एक सबक होता है कैसे ट्रिक है वो सब उसने दिखाया, एग्रेसिव होना नहीं सिखाया।
0: वही ना, तो वही सेम इनके साथ हुआ ना, इनकी भी कहानी ऐसी है, इनकी भी कहानी ऐसी है। पर पता नहीं, मुझे मूवीज तो बहुत सारी हैं वैसे तो इन पे बनी हुई, पर कभी मिले तो देखिएगा, मुझे बताइएगा, ढूंढ पाए तो, मैं ढूंढ नहीं पाया, वक्त नहीं मिला, बट अगर मुझे मिली तो देखिए, क्योंकि आप मूवीज देखते हैं इसलिए।
3: हाँ, नाम बताइए,
0: मैं आपको लिख के दूंगा, मैं लिख के दे दूंगा आपको नाम, मैं लिख के देता हूँ, फिर आप ढूंढिए,
3: क्योंकि ये बंदे ने तो भाई 3 से 4 नाम बदल चुका है।
0: नहीं, जो मेन नाम है मियामोतो मुसाशी नाम है, पर मैं दे दूंगा आपको, देखिएगा जरा,
3: मियामोतो मुसाशी,
0: ठीक है, ओके कमल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
3: ओके
0: भाई, अल्लाह हाफिज। और कमल भाई के बाद एक कॉल करने के लिए कहा गया है, तो मैं जरा कॉल कर लूँ, प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। बाकी मैसेज बहुत प्यारे प्यारे आ चुके हैं, अरसलान भाई से लेकर फरहत भाई सब ने बहुत प्यारे मैसेज किए, मैं सारे मैसेज पढ़ूंगा अभी, लेकिन एक जरा दो कॉल करनी है मुझे बस, क्योंकि भाई ने बोला मुझे को भी, ओके उठा लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम
0: जी, बताइए
4: जी। मैंने बस ये बताने के लिए कॉल करना चाहता कि आज की स्टोरी वाकई में बहुत अच्छी थी,
0: जज़ाकअल्लाह,
4: स्पेशली वो जो पीछे से जो साउंड इफेक्ट था, वो कहानी को मतलब और भी ऊपर लेकर गया
0: साउंड इफेक्ट। इस बार मैंने ट्राई किया, मैंने कहा क्योंकि जापानी स्टोरी तो मैंने कहा थोड़ा बैकग्राउंड भी जापानीज लगाया जाए तो
4: हाँ बिल्कुल उसी की वजह से, क्योंकि यूजुअली पता है ना आपको लेडीज को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एक्शन मूवीज या एक्शन स्टोरीज, लेकिन जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक थी वो उसको एक रियल इफेक्ट दे रहा था, लाइक यू नो वाओ अच्छा ओके ओके अभी क्या होगा के
0: मकसद पूरा हो गया, चलिए मकसद पूरा हो गया यही मैं चाह रहा था।
4: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंड मैं कोइंसिडेंटली आपकी स्टोरी सुनी थी मैंने अभी नहीं कुछ महीने पहले मॉर्निंग ऑफिस जाते वक्त, एंड देन पहले दिन दूसरे दिन तब सुना था तो समझ नहीं आया क्योंकि ज्यादा फोकस करना पड़ता था ना, नॉट यूज्ड टू लिसनिंग स्टोरीज ऑडियो तो समझ नहीं आया। मैंने कहा ओ पता नहीं लोग कॉल कर रहे बहुत तारीफें कर रहे हैं बट मुझे समझ नहीं आया, मैं स्टोरी समझ नहीं पा रही हूँ, दो दिन तीन दिन ऐसे ही हुआ, बट देन आफ्टर अ वीक मैंने कहा ओ माय गॉड
0: थैंक यू सो
4: वाओ वाओ। और फिर उसके बाद में जब ऑफिस जाने के लिए जब रेडी होती हूँ मैंने कहा आई डोंट हैव टू मिस, मुझे जल्दी जल्दी कार में जाना है ताकि मैं उस स्टोरी को कैच कर सकूं।
0: जज़ाक अल्लाह, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू सो मच, मेरे लिए मींस अ लॉट टू मी क्योंकि क्या मैं समझ सकता हूँ क्योंकि टाइम स्पेंड थोड़ा कम होता है सुनने का और मुश्किल होती है, बट उसमें अगर टाइम निकाल के आपने सुना मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आप आगे भी सुनेंगे। जज़ाक अल्लाह, अपना ख्याल रखिए,
4: बिल्कुल
0: इनके बाद जो है एक लास्ट कॉल है, लास्ट कॉल किधर गई, और अब भाई आसिफ नंबर कहाँ गया, भाई आसिफ का नंबर ये रहा, एक सेकेंड कॉल की जाए, अगर इन्होंने कॉल उठा ली तो उठा ली, नहीं तो कोई गल नहीं भाई, नेक्स्ट ट्राई करो, क्या ट्राई करो, जैपनीज स्टोरी जैपनीज वॉइस में सुनाओ, अरे जैपनीज स्टोरी जैपनीज वॉइस में सुनाओ, एक बार था मैं वो तो मुझा जाए ऐसे मत करनी पड़ेगी, जैपनीज एक्सेंट थोड़ा मुश्किल है, 107 एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस कबीर भाई, लव यू, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, मस्त स्टोरी थी, फैजल भाई ने मैसेज किया है, देन एक वॉइस नोट है, एक मैसेज है, कॉल करें मुझे, ठीक है जी मैं कॉल कर दूँ थोनू भी, एक सेकेंड किथे गई कॉल, एक सेकेंड मैं आपको कॉल मिला रहा हूँ, किधर गया नंबर, ओके देखो आज की कहानी कल मिलेगी आपको, मैं पहले ही बता दूं, तो जो लोग कह रहे हैं कहानी चाहिए कल मिल पाए, क्योंकि मैं चाहता हूं बैकग्राउंड स्कोर के साथ मिले आपको, तभी इसका मजा है, समझ रहे हैं आप, कुछ चीज़ें ऐसे ही होती हैं वो ऐसे ही दी जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो भाई, बहुत दूर से आ रही है आपकी आवाज़, बहुत दूर से,
5: एक मिनट में छत से नीचे उतर के आ जाओ,
0: अच्छा छत से नीचे उतरो उतरो, इरफान भाई नीचे आओ,
5: अस्सलामुअलैकुम,
0: आप ठीक है बड़ी जल्दी कूद कूद गए छत से, क्या बात है मेरा भाई,
5: जंप ही लगा दिया मैंने कहा जल्दी जाओ भाई,
0: जी इरफान भाई कैसे भाई,
5: कैसे हो, ठीक मतलब ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खैरियत अल्लाह का,
5: आज फर्स्ट टाइम यार मुझे ट्रैफिक ने फायदा दे दिया,
0: अच्छा मजा गया ट्रैफिक में आपको,
5: मैं आज छत से निकल रहा था जाने वाला था पुरनेश की तरफ, बड़ी जबरदस्त ट्रैफिक मिली मुझे, गुस्सा नहीं आया पहली बार, आपकी स्टोरी चल रही थी मेरे सामने ऐसे कोई बड़ी एलसीडी, मैं स्टॉप करके सुन रहा था, मैंने कहा सिग्नल खुलना ही नहीं अभी
0: थैंक यू भाई, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया,
5: मजा लिया जबरदस्त एंजॉय आया, मेरे सामने तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी शैलीमा के अंदर बैठा हुआ हूँ, जबरदस्त कोई स्टोरी,
0: थैंक यू सो मच, मेरा मकसद पूरा हो गया भाई, ये मतलब आपने इतनी बड़ी तारीफ कर दी, मैं ये चाह रहा था कि मतलब लगे एकदम सिनेमा वाली फील आनी चाहिए, आज की कहानी भी ऐसी थी,
5: नहीं बिल्कुल वो भी फील आई, और वो आई नहीं किसी की अपनी सोच है मगर मुझे तो जरूर आई,
0: थैंक यू सो मच भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है
5: भाई,
0: बहुत प्यार बहुत प्यार बहुत प्यार, ट्रैफिक का फायदा मुझे हुआ उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं मेरे भाई, इस मोहब्बत के बहुत शुक्रगुजार हूं, थैंक यू, इरफान भाई की इस मोहब्बत के बाद मैं कुछ मैसेज जल्दी से पढ़ देता हूँ, फरहत भाई ने भी मैसेज किया है, फरहत भाई ने बोला है भाई इतनी जबरदस्त स्टोरी है भाई साहब, बैकग्राउंड म्यूजिक जान डाल दी आपके अंदाज तो क्या ही कहने, जज़ाकअल्लाह, म्यूजिक का मकसद यही था, मैं चाह रहा था बैकग्राउंड स्कोर जो है ना बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, एकदम डेडली, एक मैसेज है म्यूजिक इज ऑसम एट द एंड, थैंक यू सो मच, ये एंड वाला म्यूजिक में प्ले करूंगा बिकॉज ये गेमिंग का ही है, एक मैसेज आया है द वे यू टेल द स्टोरी सीम्स यू आर अ वेरी गुड रीडर, आई एम नॉट अ गुड रीडर, रीडर ही तो नहीं हूं मैं, एक मैसेज है भाई लाजवाब स्टोरी थी स्पेशली जब आपने बोला था यूथ फॉट एंड लॉस्ट अगेंस्ट द लेजेंड एंड बाउ डाउन टू हिम, और अंकल ने कहा सबको बता देना, रोंगटे खड़े हो गए, लव्ड इट भाई, थैंक यू सो मच भाई, ये आज मेरा मकसद पूरा हो गया. आई हैड द बेस्ट टाइम. मैंने सोचा नहीं था कि ये कहानी इतनी अच्छी लग सकती है लोगों को, लेकिन अच्छी लगी. अरसलान भाई लिखा है, लेट मी क्या लिखा है, बैकग्राउंड स्टोरी ने तो तबाही कर दी भाई, उफ किलिंग, थैंक यू सो मच. नाजिया में लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, 31st एनिवर्सरी टू हबी आजम एंड मी. अरे मुबारक हो, मुबारक हो बहना, बहुत बहुत मुबारक हो, 31 साल माशाल्लाह. अल्लाह ताला ऐसी आपको जोड़ी को सलामत रखे, बहुत बहुत मुबारक. जुल्कनैन साहब वालेकुम सलाम, 100% नाइट स्टोरी. एंड इन्होंने लिखा भी है, टुडे आई मीन द आइडिया वी कैन सेंड. अच्छा ओके, थैंक यू सो मच. और कोई मैसेज, नदीम भाई ने मैसेज किया, नदीम भाई कह रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स, ऐसा लग रहा था सुन के, आई एम लिविंग द स्टोरी ऑफ गोस्ट ऑफ यूटे. ये जो नाम था ना गोस्ट, हम गेम्स खेलते हैं पर मुझे पता नहीं था कि कहाँ से स्टोरी इंसेप्ट होती है, और आज जो मैंने कहानी सुनाई वो गेमिंग ने मुझे दी है, गेमिंग की दुनिया से. सो आई कैन नॉट फॉरगेट. तो लास्ट म्यूजिक जो लोगों को पसंद आया था वो ये था, आई एम गोना प्ले इट बिकॉज ये म्यूजिक बहुत बढ़िया था. एंड आपने अगर मियामोतो मुसाशी की कहानी सुनी तो आप अभी बता सकते हैं, डू लेट मी नो कि आपको कैसी लगी. एंड ऑल्सो देर इज दिस बुक ऑन हिम, द बुक ऑफ फाइव रिंग्स, ये किताब का नाम है. ऑडियो वर्जन भी है, जो लोग रीडर्स हैं, किताबें पढ़े हैं, अभी DECC में भी बुक फेयर है, तो यू कैन गो एंड एंजॉय. ये वाला म्यूजिक था वो जो आप लोग कह रहे थे ना, दिस इज वॉट पीपल लाइक्ड. एक मैसेज है, ये वाला म्यूजिक था. This was the opening music of a game. तो मैंने वहीं से उठाया. ये थी आज की स्टोरी, मियामोतो मुसाशी. पे तो थैंक यू सो मच. आज एक जैपनीज स्टोरी सुना के भाई अपना काम तो हो गया, बढ़िया लगा मुझे, मजा आ गया. तो कुछ देर में आपको कतर की बहुत सारी खबरें सुनने को मिलने वाली हैं, तो मेरे साथ आ जाएगा 666-221-107 पर. एंड बाकी मैं मैसेज तो आपके मैसेज पढ़ लेता हूँ. अरिजीत सिंह, रंग तुम्हारे दिल चीज तुझे दे दे. 834 मैं दोहा वाला कबीर, स्टे ट्यून्ड.

y el 5 o'clock. आप लोगों ने इतने ज़्यादा प्यार से मैसेजेस किए ना आज की स्टोरी पे, मेरा भाई सेट हो गया दिन. मैं बता रहा हूँ, मेहनत सफल रही. मैंने सोचा भी नहीं था कि अच्छा लगेगा, पर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. और जितने मैसेजेस भी आए हैं वो इतने अच्छे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. एक भाई ने लिखा है, भाई फुल अंगार. थैंक यू सो मच भाई. इससे बड़ी तारीफ क्यों हो सकती है. और एक भाई ने बोला है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं गाड़ी में बैठे हुए पूरी फिल्म देख रहा था. थैंक यू सो मच. और ये मैसेज क्या है, मेरा मोहिद्दीन साहब ने, थैंक यू सो मच भाई, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड एक भाई ने बाकायदा वीडियो बना रखा, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो. एक भाई ने लगा अंगार लगा दिया, अब्दुल करीम भाई, थैंक यू भाई, अंगार महसूस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब ज़रा मैं कुछ जल्दी से खबरें बता दूँ जो कतर से जुड़ी हुई हैं. तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन की तरफ से जिन्होंने अनाउंस किया है एक्सटेंशन अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड का. ये रजिस्ट्रेशन था वो जो ओपन हुआ है थर्ड कोहोर्ट फॉर द खिबरत टीचर्स फेलोशिप के लिए. ये प्रोग्राम मंडे तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, 25 मई 2026. और इसका मकसद है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाए एलिजिबल एजुकेटर्स को, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए. इनके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, उन्होंने एडवाइस दिए लोगों को जिन्हें सीलिएक कहते हैं, सीलिएक डिजीज, ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें और ग्लूटेन क्रॉस कंटेमिनेशन से बच सकें. और दुनिया में क्योंकि सेलिब्रेट किया गया था 16 तारीख को, कल के दिन सीलिएक डिजीज अवेयरनेस डे, तो इसको लेकर मिनिस्ट्री ने भी पेशेंट्स को अर्ज किया कि अपने हाथ हमेशा साफ रखें, किचन सर्विसेज का सब साफ सफाई रखें और जो कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं उनका ख्याल रखें खाना बनाते वक्त और खाना बनाने के बाद भी. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से आया है एक खबर आई है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हिस्सा ले रही है क्यूके रेल 2026 में, जो कि कंक्लूड हो चुका है एंड काफ़ी सक्सेसफुल रहा है. इस बीच एक और खबर है कतर रेल से जुड़ी हुई, उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ सनफ्लावर प्रोग्राम. बड़ा खास प्रोग्राम है सनफ्लावर प्रोग्राम, ये उन पैसेंजर्स के लिए है जिनमें हिडन डिसेबिलिटीज हो सकती हैं. अक्रॉस दोहा मेट्रो एंड लुसेल ट्रैम नेटवर्क सब में ये लागू होगा. और हिडन डिसेबिलिटीज सनफ्लावर प्रोग्राम ये ग्लोबली रिकग्नाइज है और इसका इनिशिएटिव अब कतर में भी लिया जा रहा है. काफ़ी सिंपल, वॉलंटरी वे से पैसेंजर्स की मदद की जाएगी एंड उनको सफ़र में आसानी दी जाएगी. इसके अलावा कतर फिल हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंट करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत शाम, फिर से एक शाम ओपरा की. एंड ये शाम बड़ी खास होगी, दोबारा से तो इंशाल्लाह जल्द होगी, लेकिन कल जो हो चुकी है उसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है. 16 मई को कतारा ओपरा हाउस में हुई है, ज़बरदस्त रहा. और इंशाल्लाह दे कमिंग बैक रियल सून. ये कॉन्सर्ट जो है जब भी आता है भाई, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो जब भी ऑनलाइन दिखे आपको कहीं पर भी बिल्कुल अंधा होकर टिकट ले लेना इसका. बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है. आई नो कि कतर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा जितना हैवी लग रहा है, ओ माय गॉड फैंसी होगा, है थोड़ा फैंसी, मगर टिकट फैंसी नहीं है. जाने लायक होता है, एक्सपीरियंस करने लायक होता है. कुछ चीज़ें ऐसी भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ज़रूरी होती हैं. सो 666-221-037 ये नंबर, और आप मुझे ज़रूर बताएंगे. और आज की कहानी पर अभी भी मैसेज आ रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. जाना नहीं मैं दोहा वाला कबीर आपके साथ. जैसे मैंने कहा कहानी लोग मांग रहे हैं, कहानी कल मिल गई आपको, कल वाली कहानी के साथ साथ. ओके ओके ठीक है, गाना चला दो. 8:42 गुड मॉर्निंग.

पुर होने से पहले मैं जरा बता दूं, आज कुछ दिन है जो मार्क्ड किए गए इंटरनेशनली. इत्तफाकन आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, इत्तफाकन इसलिए क्योंकि हम आज हेल्पलाइन की बात कर रहे थे. हमने इतना नहीं दिमाग लगाया था मैंने कि आज ये है तो ये सवाल पूछूंगा, बट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है आज. आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जो लेनी नहीं है आपने. वॉलनट डे है, अखरोट खाओ जी अखरोट. इसके अलावा राइड अ यूनिसाइकिल डे, मत करना राइड, नॉट सेफ हेयर. इसके अलावा इंटरनेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन डे है, जिसकी वजह से मैंने ढूंढा था सवाल. इसके अलावा एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज डे है, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, रिस्पेक्ट सलूट लव. इसके अलावा रूरल लाइफ संडे, जो आपको मिलनी नहीं है ना मुझे मिलनी है, तो क्या सोचना. तो बाकी इसी के साथ मेरे इजाज़त लेने का वक्त आ गया आपसे. आज की कहानी आपको कल मिलेगी, तो ये मत समझिएगा कि कबीर ने मुझे इग्नोर कर दिया. बड़ी अजीब आ गई, आदमी घमंडी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. कल आपको मिल जाएगी स्टोरी विद द म्यूजिक एंड ऑल. बट फॉर नाउ 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, एंड इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात सीधा कल सवेरे 6 बजे इंशाल्लाह ताला. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar. एंड फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मा सलामा.

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं, बस हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
1: The radio station with more music. FM 107. दिल से देसी।
2: एक अच्छी दोपहर वो होती है जहाँ अपनों का साथ हो और दिलों की बात हो।
3: दिलों की बात हो
2: तो अपने अपने कुर्सी की पेटियाँ बांध लें, क्योंकि अब आफ्टरनून का माहौल बदलने वाला है।
3: बदलने वाला है।
2: पेश है आफ्टरनून एक्सप्रेस।
0: जहाँ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का होगा एक बेहतरीन संगम, आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
2: हर टॉपिक पर होगी खुलकर बात, हंसी मजाक, लाइव इंटरेक्शन
0: और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स।
2: चाहे आप घर पर हो या अपनी कार में, बनाइए अपनी आफ्टरनून को यादगार।
0: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
2: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
0: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
1: The radio station with more music. FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107, दिल से देसी।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज एक अजीम दुआ हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजाना सोना चांदी के बराबर करार दिया, बल्कि इससे भी ज्यादा कीमती बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शद्दाद इब्न औस रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए शद्दाद, जब तुम देखो कि लोग सोना और चांदी जमा कर रहे हैं तो तुम इन कलिमात को जमा कर लो और ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका थबात फिल अम्र, ए अल्लाह मैं तुझसे दीन पर उमूर पर साबित कदमी का तालिब हूँ, तलबगार हूँ, वल अज़ीम ताला रुश्द, सीधी राह पर चलने का मजबूत इरादा, व मुजीबात रहमतिक, व आमाल जो तेरी रहमत के मुस्तहिक बना दे, व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, व तौफीक जो तेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बने, व शुक्र नेमतिक, तेरी नेमतों पर शुक्र का तलबगार हूँ का सवाल करता हूँ, बहुसन इबादत एक बेहतरीन इबादत, कलबन सलीमा पाकीज़ा दिल, व लिसानन सादिका सच्ची ज़बान, व असअलुका मिन खैर मा तअलम, और वो सारी भलाइयाँ जो तू जानता है वो भी मैं तुझसे मांगता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन शर्र मा तअलम, और हर उस चीज़ के शर से मैं पनाह मांगता हूँ जो तू जानता है, وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ, मैं तुझसे गुनाहों की माफ़ी इस्तग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ जिन्हें तू जानता है, इन्नका तअल्लमुल ग़ुयूब, बेशक तू ग़ैब का सबसे बड़ा जानने वाला है। आमीन किराम, ये दुआ दरअसल एक मोमिन की मुकम्मल ज़िंदगी का नक्शा है। इसमें कई सारे पहलू एक ही दुआ में आ गए, ईमान, अमल, अखलाक, मुस्तक़बिल, हिफाजत और आखिरत। तो ये दुआ दरअसल एक मुकम्मल इस्लामी ज़िंदगी का खाका है। अब इस दुआ को ख़जाना कहा गया, क्यों? क्योंकि सोना चांदी सिर्फ दुनिया संवारता है, ये दुआ दुनिया कब्र और आखिरत तीनों को संवारती है। ये दुआ ईमान को महफूज रखती है, दिल को साफ करती है, आमाल को संवारती है। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी दुआएं तो कबूल करता है, हमें खाली हाथ न लौटाना मेरे मौला। ए अल्लाह तो हम सब की मगफरत फरमा, दिलों को साफ कर दे, आमाल को सवार दे और हमारा आखिरी अंजाम जन्नत लिख दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह सामने किराम, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीगर सहाबा इकराम को भी इस तरह के मुख्तलिफ कलिमात बताए हैं और उनसे ये तलब किया है कि वो अल्लाह से इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह से सवाल करे और बकसरत इन दुआओं को दोहराए। इनमें से एक हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए सलमान, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि तुम्हें चंद ऐसे कलिमात अता करें, इन्हें हदीये में दें, जिनके ज़रिए तुम अल्लाह से सवाल करो, تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن, और इसी से तुम जाना रगबत रखो अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला की तरफ जो रगबत और शौक इन्हीं दुआओं के ज़रिए तुम रखोगे और ज़ाहिर करोगे, वतदउ बिहन्न।

0: फिर लेल व नहार रात दिन इन्हीं के जरिए दुआ करते रहोगे। अब वो दुआ क्या है, अब आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुक सिहतन फी ईमान। मजीद हमें सवाल है ऐसा ईमान का जो अच्छे अखलाक में जाहिर हो, ऐसे कामयाबी का जो दायमी फलाह बन जाए, और हमें तेरी रहमत का सवाल है, तेरी तरफ से आफियत और मगफिरत का सवाल है, और हम तो तेरी रजा ही तलब करते हैं। तो इस तरह जो है सामने कराम इस दुआ के पहले हिस्से में आप देखेंगे कि सहतन फी ईमान, यानी ऐसा ईमान जो शक से महफूज हो, निफाक से पाक हो, फितनों में न डगमगाए। तो ईमान की सेहत ये काफ़ी एक अहम पॉइंट है। इसके बाद है ईमान फी हुस्न खुलुक, यानी अखलाक हुस्न अखलाक में भी ईमान का सवाल है, यानी ईमान सिर्फ दिल में नहीं, ईमान ये झलकता है अखलाक बर्ताव नरम दिल और अदल में भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हों। फिर दुआ की अगली लाइन है, नजाहुन यतबाहु फलाह, यानी रिज़्क शोहरत तरक्की सब मिले मगर वो हमें अल्लाह से करीब करे, दूर ना कर दे। तो यहाँ इस दुआ में भी आप देखेंगे कि चारों अल्फाज में अल्लाह की नेमतों का तज़किरा है, रहमत का तज़किरा है, आफियत मगफिरत रिज़वान। तो दुआ में भी एक ख़ास पैटर्न का लिहाज आप देख रहे हैं रखा गया है। जिस तरह दुआ में भी बंदा बड़ी दिलचस्पी लेता है दुआ करते हुए भी, और जब इस तरह जो है ना कवाफी सब कुछ बहुत ही उम्दा होते हैं। बस ये दुआ हमें ये सिखाती है, हमें हम अल्लाह से ईमान अखलाक फलाह रहमत हिफाजत माफ़ी और उसकी रजा भी मांगते हैं। ये वो दुआ है जो अगर कबूल हो जाए तो इंसान दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी सरखरो हो जाता है। تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال امين يا رب العالمين
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी। हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से RJ सर्वर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
1: ये आइडियाज कहां से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
2: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड

0: मूड, एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन, जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर एक बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil Se Desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: Well, आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एंड योर बॉडी की. पानी एक ऐसी चीज है जो हम रोज यूज करते हैं पर सीरियसली कम ही लेते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम भूख को तुरंत पहचान लेते हैं पर प्यास को अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बॉडी क्वाइटली एडजस्ट कर लेती है. पर डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं होता. कभी कभी डिहाइड्रेशन का सिग्नल होता है लो एनर्जी, हेडेक, ड्राई लिप्स, पुअर कॉन्सेंट्रेशन और बिना वजह का थकान. हमारी बॉडी का ज्यादा हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए पानी सिर्फ थर्स्ट क्वेंचर नहीं बॉडी का फ्यूल होता है. पानी डाइजेशन को स्मूथ रखता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. और एक और इम्पोर्टेंट बात, हाइड्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन मूड से भी होता है. जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो माइंड भी थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है. अक्सर हम सोचते हैं चाय पी ली, कॉफी पी ली, काफी है. पर सच ये है कि चाय और कॉफी हाइड्रेशन का रिप्लेसमेंट नहीं होता. कभी कभी वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है. वेल, हाइड्रेशन का बेस्ट तरीका ये है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए. सिर्फ तब नहीं जब प्यास लगे, बल्कि इसे रेगुलर हैबिट बना ले. प्यास लगना ऑलरेडी एक लेट सिग्नल होता है कि बॉडी थोड़ा पीछे रह गई है. और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर वक्त बॉटल लेके साथ घूमे. बस अवेयरनेस चाहिए कि हाँ, हर आधे घंटे में मुझे कम से कम 4 सिप पानी के पीने ही पीने हैं. सो अपना स्केड्यूल सेट कर लीजिए. सुबह उठते ही एक ग्लास पानी, मील्स के बीच थोड़ा सा सिप, वर्कआउट या गर्मी के दिनों में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और रात में सोने से पहले भी एक ग्लास फुल पानी. साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाइड्रेशन को, पानी पीने को एक पनिशमेंट ना बनाइए, उसे रूटीन बनाइए. नींबू पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोकोनट वाटर, ये सब काउंट करते हैं. जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है ना तो एनर्जी नेचुरली बेटर होती है, स्किन फ्रेश लगती है और फोकस भी इम्प्रूव होता है. तो आज का एक सिंपल सा रिमाइंडर, नेक्स्ट टाइम जब आप लो फील करें पहले अपने आप से पूछिए, मैंने आज कितना पानी पिया है. हो सकता है सोल्यूशन आपके सामने ही हो, क्योंकि जब आप पानी का ख्याल रखते हो आप अपनी बॉडी से ये कह रहे होते हैं मैं तुम्हारी जरूरत को समझता हूँ. और जब बॉडी को समझ लिया जाए ना तो सेहत और सुकून दोनों साथ आ जाता है. इसलिए याद रखिए, हाइड्रेशन सिर्फ हैबिट नहीं, सेल्फ केयर का साइलेंट फॉर्म है. एंड योर हेल्थ मैटर.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर आफताब बलोच के बारे में, जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक अहम नाम रहे। आफताब ने 1975 ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलकर कौमी टीम की नुमाइंदगी की और अपनी बैटिंग और ऑलराउंड स्किल से लोगों का दिल जीता। इनफैक्ट उन्होंने कई एक्सपर्ट्स को मुतासिर भी किया था। उन्होंने कराची के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दी, जहां उनका 428 रन का रिकॉर्ड अब तक याद रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, 1970 की दहाई में पाकिस्तान टीम वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम और उस टीम में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल था और इसीलिए आफताब बलोच के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर उनका करियर ज़्यादा लंबा ना हो सका, लेकिन जो असर उन्होंने छोड़ा वो आज भी क्रिकेट लवर्स के जहन में ताज़ा है। आफताब बलोच की कहानी हमें याद दिलाती है कि टैलेंट और मेहनत हमेशा याद रखे जाते हैं, चाहे सफ़र कितना भी छोटा हो। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ और आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। रोजाना 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: हे बच्चों, आर यू रेडी गेम्स, मस्ती, स्टोरीज और सुपर फन के लिए?
3: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
4: ये शो कौन सा है?
2: द सुपर किड शो।
3: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी।
4: I love the Super Kid Show.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: आपको ईमेल आता है, डियर कस्टमर आपका KYC एक्सपायर हो रहा है, लिंक पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। KYC यानी नो योर कस्टमर। तो कई दफा आपकी डिटेल्स कुछ बची रह जाती हैं, जिसके चक्कर में कई सारे इदारे आपको KYC के लिए ईमेल करते हैं। मेनली ये बैंक या फिर सिम नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से आता है, लेकिन ये लिंक्स फेक होती हैं, बट आपको बिल्कुल भी फेक नहीं लगेंगी। ये रियल वेबसाइट्स की इतनी ज्यादा रेप्लिका होती हैं कि आप खुली आंखों से समझ नहीं पाएंगे, आपको काफी डिटेल में देखना पड़ता है। जैसे कि .qa की जगह .qv हो सकता है। तो ऐसे स्कैम्स में क्या होता है, लिंक फेक होती है, आप डिटेल्स डाल और अकाउंट कंट्रोल स्कैमर के पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए बैंक लिंक्स पे क्लिक मत करो। KYC सिर्फ ऑफिशियल ऐप ब्रांच से जाके कीजिए। SMS में स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर है, जो भी आपको SMS आया है या जो भी आपको ईमेल आया है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक या उनकी राइटिंग में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल सकता है, तो समझ लो ये स्कैम का हिंट है। लेकिन आजकल स्कैमर भी समझदार हो गए, बिकॉज दे आर ऑल्सो यूजिंग AI चैटबॉट्स। तो दोस्तों KYC अपडेट करो, पर दिमाग अपडेट रख के, ऑफिशियल एप्स का इस्तेमाल करके या फिर बैंक की ब्रांचेस में विजिट करके।
2: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ, उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
1: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
0: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है हाल चाल दोस्तों, कतर 101 एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जहाँ पर आपको कतर के कल्चर से लेकर कतर के ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल से लेकर कस्टम तक सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। और आज हम कतर के बारे में एक ऐसी ही खूबसूरत चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कतर की शान है, कतर के ट्रेडिशन को भी जो रखती है, कतर के कल्चर को भी जो संजो कर रखा हुआ है, कतर के उस ज़माने की बात से लेकर कतर के आज यानी कि मॉडर्न ज़माने तक की बात इसमें है। बिल्कुल स्काई स्क्रेपर्स और लग्जरी लाइफस्टाइल से पहले कतर एक ज़मीन था, सादगी और ताकत की ये मिसाल था। और सदियों पहले कतर के लोग जो है वो बिदाऊं के तौर पर रहते थे, और लोगों ने यहाँ पर पर्ल डाइविंग करी। हमने पर्ल डाइविंग की बात करी है, कैसे धाव बनाया है, धाव की खूबसूरती, ऊँट का कैसे इस्तेमाल किया है। और कतर जो है तरक्की लगातार करता रहा है, ट्रेड सेंटर एक ज़माने में था और आज मॉडर्न दुनिया का एक लौता मरकज़ बन गया है, जहाँ फैमिली के लिए, रेसिडेंट्स के लिए ये सबसे एक मुफीद जगह है। तो कतर 101 में जैसे कि हर बार हम बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक पर, और इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं कतर के म्यूजियम के बारे में। कतर का म्यूजियम ऐसा म्यूजियम है जहां पर आपको बहुत पुराने जमाने की चीजें मिलेंगी और इस जमाने के मॉडर्न आर्किटेक्ट मिलेंगे। एक ऐसी चीज मिलेगी जिसे आप करीब से देखेंगे और आपको लगेगा कि ये उस तारीख में, हिस्ट्री में किसी के गले का हार था। और आपको कुछ ऐसे म्यूजियम्स के बारे में बताऊंगा जिस म्यूजियम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि मॉडर्न जमाने का आर्किटेक्ट क्या इतना कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग भी बना सकता है। सारी बातें होंगी आज इसी शो में, तो चलिए शुरू करते हैं जिसका नाम है शो कतर 101। दोस्तों सदियों पहले कतर के लोग बिदों के तौर पर रहते थे, रेगिस्तानों पर चला करते थे, सख्त हालात में जिंदा रहा करते थे और एक जिंदगी अपनी अलग बना रहे थे जो इत्तेहाद, हिम्मत और सब्र पर मबनी थी। मछली पकड़ना, मोती निकालना, मईशत की रीढ़ की हड्डी थे ये। और समंदर सिर्फ पानी नहीं था उस वक्त, ये जिंदा रहने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधन कह सकते हैं वो था। मोती निकालना खास तौर पर सबसे अहम पेशों में से एक था, और गोताखोर अपनी जान का खतरा उठाते थे, गहरे समंदर में उतरते थे मोती जमा करने के लिए, जो फिर दुनिया भर में तिजारत होते थे। ये खतरनाक काम बहादुरी

मिलकर काम करना और बर्दाश्त मांगता था। ये सारी बातें हमने पिछली बार भी करी थी और सब कुछ ये बदल गया दोस्तों तब जब 20वीं सदी में तेल और गैस जो है वो कतर में मिला। कतर

तो रेगिस्तान में एक अजीब सा पत्थर जो है वो बन जाता है जिसे कहते हैं डेजर्ट रोज क्रिस्टल। और ये जो म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, ये बिल्कुल उसी डेजर्ट रोज पर बनाई गई है जो इंटरलॉकिंग डिस्क के जैसे लगती है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक। बहुत ही कम मुल्क हैं जो इस तरह के डिजाइन के लिए सोच भी सकते हैं और कतर ने तो ये करके दिखाया। अंदर से अगर आप इस म्यूजियम को देखेंगे, ये पूरी कहानी जो है वो कतर की बताता है, पुराने जमाने से लेकर मॉडर्न तरक्की तक। इसमें हर एक चीज शामिल है, कदीमी आसार, रिवायती लिबास, तारीखी तस्वीरें, मोती और जेवर। इसके सबसे मशहूर नुमाइशों में से एक है पर्ल कार्पेट ऑफ बड़ौदा, जो लाखों मोतियों और कीमती पत्थरों से सजा हुआ है। ये म्यूजियम सिर्फ तारीख के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बड़े खूबसूरत और लाजवाब समझे जाने वाले, लाजवाब दिखने वाले मथफ म्यूजियम के बारे में। अरब मॉडर्न आर्ट का ये म्यूजियम बड़ा ही लाजवाब और अपने आप में एक यूनिक म्यूजियम है, जिसे अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कहते हैं या मथाफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। मथाफ तवज्जो देता है मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी अरब आर्ट को। ये नुमाइश करता है आर्टवर्क्स अरब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, जो सामाजिक मसाइल, पहचान और तब्दीली को दिखाते हैं। रिवायती म्यूजियम के अलावा मथाफ माजी को जोड़ता है, मॉडर्न फनकार का इजहार जो है वो करता है। ये दिखाता है कि अरब फनकार आज की दुनिया को कैसे देखते हैं, अरब के जो आर्टिस्ट हैं वो आज की दुनिया को कैसे देखते हैं। ये म्यूजियम प्रूव करता है कि कल्चर स्टैटिक नहीं है, ये वक्त के साथ बदलता रहता है, ये वक्त के साथ बदलने का कायल है। और अब दोस्तों हम बात करेंगे कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम के बारे में। दोस्तों अभी हम बड़े मुख्तसर से लफ्ज में सारे म्यूजियम के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। 3-2-1 कतर ओलंपिक और स्पोर्ट्स म्यूजियम के बारे में भी बात करना उतनी ही जरूरी है जितना नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के बारे में बात करना है, जितना मतहफ के बारे में बात करना है। कतर सिर्फ तारीख और आर्ट या आर्टिस्ट के बारे में नहीं है, ये खेल के बारे में भी उतना ही है। और 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम भी एक्चुअली आपको खेल के बारे में सारी जानकारी भी बताता है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें या इस तरह के पुराने ज़माने के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं जो आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, जिनको असल में हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और एक्चुअली में मुझे हिस्टोरिक चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि फील होता है ना कि यार ये उस वक्त नवाब साहब ने पहना होगा, या फला जो है जवाहरात उन रानी के गले में होगा, फिर ये भी कि यार इस क्रिकेट बैट से उस ज़माने में फला ने शुरुआत करी थी खेलना, और ये बैडमिंटन, ये हॉकी या ये चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। और इन म्यूज़ियम में जाने के बाद आपको दुनिया की कोई भी चीज़ अलग सी यूनिक नहीं लगती, क्योंकि वो पुरानी चीज़ जब आप देखते हैं तो आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो कतर सिर्फ तारीख और आर्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है, ये खेल के बारे में भी है। और तारीखी खेल के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, देखना है, तो 1 & only 3-2-1 कतर ओलंपिक और स्पोर्ट्स म्यूजियम आपके लिए। दोस्तों ये म्यूजियम दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता स्पोर्ट्स म्यूजियम में से एक है। ये मनाता है ओलंपिक की तारीफ, मशहूर खिलाड़ी, कतर का ग्लोबल स्पोर्ट्स में किरदार, ये भी के कतर ने कैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 जैसे ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट किया और दुनिया की स्टेज पर खुद को, कतर को एक मरकज भी बनाया। और दूसरे अहम म्यूजियम के बारे में भी बात करना उतना ही जरूरी है। कतर में और भी बहुत से म्यूजियम हैं जो तवज्जो के लिए मुस्तहिक हैं, जैसे कि शेख फैसल बिन कासिम अल थानी म्यूजियम। उसके अलावा कई ऐसे और खूबसूरत, अलग और इम्पॉर्टेंट म्यूजियम भी हैं जिसके बारे में बिल्कुल बात होनी चाहिए और उनको भी अटेंशन की ज़रूरत है, जैसे कि शेख फैसल बिन कासिम अल थानी म्यूजियम, जो कि रेयर आर्टिफैक्ट्स को शोकेस करता है। उसके अलावा मुशरिफ म्यूजियम, जो कि पुराने और बड़े ही तारीख दोहा के बारे में, सोशल हिस्ट्री के बारे में आपको कहानी सुनाता है। न्यू इमर्जिंग म्यूजियम्स, जो कि ग्लोबल आर्ट और कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे म्यूजियम ये पावरफुल कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं। और फिर कतर में जो म्यूजियम के नेटवर्क हैं वो भी बड़े मजबूत हैं, इसके लिए अलग से आपको वेबसाइट भी जो है वो कतर में मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आर्किटेक्चर के बारे में तो वो भी बड़ा ही लाजवाब है, जहाँ फन और पहचान मिलती है कतर के

0: म्यूजियम्स का सबसे मुनफरिद पहलू उनकी इमारतों का डिजाइन है। दोस्तों ये थी कुछ म्यूजियम्स के बारे में जरूरी बातें जो हमने करी कि कौन से म्यूजियम में आपको क्या कुछ मिलेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है बात करने का म्यूजियम के कुछ डिटेल्स के बारे में भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मजीद इन पर बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: Excuse me, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
0: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे फजील के साथ दोस्तों, और ये शो आप सुन रहे हैं कतर 101, जहां पर हम म्यूजियम के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं और कैसे कितने प्यारे प्यारे यहां पर म्यूजियम हैं जो कतर की तारीख को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और सदियों पहले जो म्यूजियम का थॉट रखा गया था, धीरे धीरे एक एक करके म्यूजियम बनाया गया था, चाहे रिटायरमेंट से बाहर निकल के आ रहे हों, IMPI हो या फिर कोई और हो, है ना, हर इंसान ने कतर के म्यूजियम को खूबसूरत बनाया है, कतर के ट्रेडिशन और कतर के कल्चर को जिंदा रखा है। हमने अभी तक बात करी नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के बारे में, हमने बात करी मतहफ म्यूजियम के बारे में, उसके अलावा हमने बात करी 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम के बारे में। उससे पहले हमने बात करी थी कतर के एक ऐसे म्यूजियम के बारे में जो कि इस्लामिक आर्ट को दर्शाता है, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के बारे में, जिसकी जो कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन है वो बड़ा ही लाजवाब है। और अब थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि जब भी आप म्यूजियम में जाएं तो किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट की। जब आप म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में दाखिल होते हैं, माहौल पुरसकून है, लोग खामोशी से पुराने आर्ट को और पुराने मखतूत और चीज़ों को देख रहे हैं। अचानक कुछ टूरिस्ट जोर से बात करना और हंसना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोग बेचैन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि कतर में म्यूजियम्स को सोच और एहतराम की जगह समझा जाता है, ना कि आम तफरी की जगह। इसलिए जब भी आप इन जगहों पे जाएं तो खामोश गैलरी में जब एंट्री लें तो धीरे बात करें, करीब आकर बात करें और तेज बात ना करें। अगर आपकी बात या आपकी आपका अंदाज थोड़ा तेज बात करने का है तो म्यूजियम्स में जाकर थोड़ा धीरे बात करें, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि जब आप इन जगहों पे जाएं तो उस जगह की रिस्पेक्ट करें, उन चीजों की रिस्पेक्ट करें और वहां के लोकल जो ट्रेडिशन है उनकी रिस्पेक्ट करें। उसके अलावा अगर तस्वीरें की बात करें, आप एक खूबसूरत चीज़ देखते हैं और फौरन अपना फ़ोन निकालते हैं तस्वीर लेने के लिए, ये हमारी और आपकी आदतों में शुमार है। और बड़ा अच्छा भी लगता है कि आप जब इस खूबसूरत जगहों पे जाएं, आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पर तारीखी चीज़ रखी है, 1400 साल पुराने खत रखे हैं, खंजर रखे हैं, तो आपका बड़ा दिल करता है कि इनकी तस्वीरें ली जाएं। लेकिन इनकी तस्वीरें लेने से पहले बड़ा ज़रूरी है कि एक स्टाफ मेंबर से आप नरमी से बात करें, आप स्टाफ मेंबर से पूछें कि क्या आप तस्वीर ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों आइए अब जरा इन म्यूजियम्स के कुछ फैक्ट्स चैलेंजेस के बारे में पता करते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कितने लंबे वक्त के बाद ये तैयार हुआ, कब ये प्लान हुआ। तो सबसे पहले नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर। दोस्तों नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर को बनाने में लगभग 10 साल का टाइम लगा। इस प्रोजेक्ट का आइडिया पहले 2001 या 2000 के स्टार्ट में सोचा गया था, लेकिन प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम बाद में स्टार्ट हुआ और फाइनली 2019 में म्यूजियम ओपन हुआ। इस म्यूजियम को बनाने का मेन गोल कतर की हिस्ट्री, कल्चर और डेजर्ट लाइफ को मॉडर्न तरीके से दिखाना था। साथ ही नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के कुछ चैलेंजेस थे। इस म्यूजियम को बनाना बहुत आसान तो कभी नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज इसका यूनिक डिजाइन था। बिल्डिंग को डेजर्ट रोज यानी कि रेगिस्तान के फूल जैसा शेप दिया गया। इस डिजाइन में 600 से ज्यादा कर्व्ड डिस्क यूज हुए हैं जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स था। और एक और चैलेंज इसके लिए वो ये था कि एक ओल्ड हिस्टोरिक पैलेस को प्रिजर्व करते हुए उसके अराउंड न्यू बिल्डिंग बनाना था। ओल्ड स्ट्रक्चर को डैमेज किए बिना मॉडर्न आर्किटेक्ट कनेक्ट करना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन बावजूद इस मुश्किल काम के इसे बिल्कुल खूबसूरती से अंजाम दिया गया। कतर का एक्सट्रीम वेदर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि हीट और सैंड स्टॉर्म कंस्ट्रक्शन को

इफेक्ट कर सकते थे। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ये डिजाइन डेजर्ट रोज क्रिस्टल से इंस्पायर्ड है। म्यूजियम के अंदर एक लॉन्ग वॉकिंग जर्नी है जो कतर की हिस्ट्री बताती है। इसको फेमस आर्किटेक्ट जीन नोवेल ने डिजाइन किया था। और एक फैक्ट और, बिल्डिंग के अंदर की जो लाइटिंग और मल्टीमीडिया इफेक्ट्स है वो हिस्ट्री को अलाइव बनाते हैं। आपको लगता है कि आप उस हिस्ट्री के हिस्से में हैं, आप उस हिस्ट्री के उस जंगल में मौजूद हैं, उस जगहों में मौजूद हैं या उन रेगिस्तान में मौजूद हैं जहां कतर ने सांस ली। ये म्यूजियम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि कतर की आइडेंटिटी और कल्चर का सिंबल है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों चीज़ों को कंबाइन करता है। और अब बात करते हैं दोस्तों म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के बारे में। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट को बनाने में तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त लगा। इसका कंस्ट्रक्शन 2006 में स्टार्ट हुआ और 2008 में म्यूजियम ओपन हुआ। ये म्यूजियम कतर के सबसे पहले और मोस्ट फेमस कल्चर म्यूजियम्स में से एक है। दोस्तों इसके चैलेंजेस क्या रहे अगर हम इस पे नजर डालें तो इस म्यूजियम का सबसे बड़ा चैलेंज इसका लोकेशन था। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया है जो समंदर के बीच में है। इस वजह से फाउंडेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि समंदर को जो पानी है, जो सॉल्ट है, वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता था। दूसरा चैलेंज ये था कि इस्लामिक आर्किटेक्चर को मॉडर्न डिजाइन के साथ बैलेंस करना। ट्रेडिशनल इस्लामिक पैटर्न और मॉडर्न ज्योमेट्री को एक बिल्डिंग में कंबाइन करना ईजी बिल्कुल नहीं था। जिसके आर्किटेक्ट थे वो काफ़ी लंबे वक्त बाद जो है रिटायरमेंट के बाद वापस आए और इस स्ट्रक्चर को बनाया। आर्किटेक्ट आई एम पाई ने डिज़ाइन बनाने से पहले इस्लामिक कंट्रीज की डिटेल्ड स्टडी और ट्रेवल रिसर्च भी की। साथ ही अगर इस फैक्ट्स के बारे में जाने तो म्यूजियम का शेप इस्लामिक ज्योमेट्रिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। इसमें 1400 साल पुरानी इस्लामिक आर्ट के कलेक्शन भरे पड़े हैं। म्यूजियम समंदर के ऊपर एक प्राइवेट आइलैंड पर बना है। ये फैक्ट है कि यहाँ पर बाकायदा समंदर के ऊपर स्टील की रॉड से लेकर हर उन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये स्ट्रक्चर खड़ा रहे और समंदर के नमकीन पानी से बचा भी रहे। बिल्डिंग के अंदर नेचुरल लाइट ब्यूटीफुल तरीके से इस्तेमाल की गई है। ये म्यूजियम इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर को दुनिया के सामने एक मॉडर्न और एलिगेंट वे में प्रेजेंट करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 3-2-1 ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक स्टेडियम कह लें या ओलंपिक म्यूजियम कह लें, ये भी बड़ा यूनिक म्यूजियम है। इसके भी अपने चैलेंजेस रहे हैं, इसके भी अपने फैक्ट्स हैं। अगर हम ओलंपिक म्यूजियम के बारे में बात करें जो कि कतर में मौजूद है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स से मुतालिक चीज़ों को ही देखने का मौका मिलता है। 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम कतर का एक बहुत फेमस और मॉडर्न स्पोर्ट्स म्यूजियम है जो दोहा स्पोर्ट्स सिटी के अंदर लोकेटेड है। इस म्यूजियम का नाम 3-2-1 इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्पोर्ट्स की स्पिरिट, काउंटडाउन और एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस म्यूजियम को ऑफिशियली 2022 फीफा वर्ल्ड कप से पहले ओपन किया गया। इसका डिजाइन और प्लानिंग का काम कई सालों तक चला, लगभग 5 से 8 साल का वक्त लगा इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने, डिजाइन करने और बिल्ड करने में। इसके कुछ चैलेंजेस भी थे। इस म्यूजियम को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि स्पोर्ट्स हिस्ट्री को मॉडर्न और इंटरैक्टिव वे में प्रेजेंट करना ताकि यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े तक बड़ी ही इंटरेस्टिंगली इस म्यूजियम में एंट्री लें और जब बाहर निकलें तो कुछ सीख कर निकलें। सिर्फ ओल्ड आइटम्स डिस्प्ले करना इनफ नहीं था, इसलिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, वीआर स्क्रीन्स और डिजिटल एक्सपीरियंसेस ऐड किए गए। दूसरा चैलेंज ये था कि म्यूजियम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटीग्रेट करना जहां ऑलरेडी स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर मौजूद थे। स्ट्रक्चर को ऐसे डिजाइन करना था कि स्पेस भी एफिशिएंट हो और विजिटर्स को स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। तीसरा चैलेंज कलेक्शन मैनेजमेंट था क्योंकि यहाँ दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जर्सीज, मेडल्स और हिस्टोरिकल आइटम आए हुए थे। साथ ही अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं 3-2-1 ओलंपिक स्टेडियम के बारे में या म्यूजियम के बारे में। दोस्तों म्यूजियम में ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री का कंप्लीट रिकॉर्ड है। यहाँ इंटरैक्टिव ज़ोन्स हैं जहाँ विजिटर्स स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। म्यूजियम कतर नेशनल ओलंपिक कमेटी से लिंक्ड है और मॉडर्न

आर्किटेक्ट और ग्लास डिजाइन यूज हुआ है जहां स्पोर्ट्स एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है। एजुकेशन और यूथ इंस्पिरेशन के लिए बनाया गया ये खूबसूरत सा 3-2-1 स्पोर्ट्स म्यूजियम। ये म्यूजियम सिर्फ हिस्ट्री शो नहीं करता बल्कि लोगों को स्पोर्ट्स के लिए इंस्पायर भी करता है। दोस्तों अब बात करते हैं अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी कि मजाफ म्यूजियम के बारे में। अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कतर का एक फेमस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम है जो दोहा एडुकेशन सिटी में लोकेटेड है। मताफ का मतलब है अरेबिक में म्यूजियम और ये म्यूजियम स्पेशली अरब दुनिया के मॉडर्न आर्ट को शो करता है। इस म्यूजियम को ऑफिशियली 2010 में ओपन किया गया लेकिन इसको बनाने और प्रिपेयर करने में लगभग 3-5 साल लगे। आइडिया ये था कि अरब आर्टिस्ट की मॉडर्न पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और क्रिएटिव आर्टवर्क को एक ही जगह में प्रिजर्व किया जाए, लेकिन इस जगह को बनाने का जो चैलेंज था वो भी अपनी जगह बहुत बड़ा था। जैसे कि मताफ को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मॉडर्न अरब आर्ट को ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज करना। अरब दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारी आर्टवर्क आई हुई थी, उनको प्रॉपर सिस्टम में अरेंज करना बड़ा मुश्किल था। दूसरा चैलेंज बिल्डिंग को आर्ट गैलरी सिस्टम और मॉडर्न डिजाइन के साथ कंफर्टेबल बनाना। म्यूजियम को ऐसे बनाना था कि विजिटर्स को आर्ट समझने में आसानी हो और स्पेस ओवरक्राउडेड बिल्कुल ना लगे। तीसरा चैलेंज आर्ट वर्क्स को प्रिजर्व करना था क्योंकि पेंटिंग्स और ओल्ड मॉडर्न आर्ट पीसेस को टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से बचाना बड़ा जरूरी हो जाता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप इन कतर की म्यूजियम्स में जाएं, म्यूजियम का लुत्फ उठाएं, तो क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स। और जितने नए लोग हैं ये खास तौर पे उनके लिए, पुराने लोगों को तो पता चल गया। तो दोस्तों डूज में अगर हम देखें कि आप क्या कर सकते हैं, गैलरीज के अंदर हल्की आवाज में बात बिल्कुल आप कर सकते हैं, आर्ट वर्क का एहतराम करना और एग्जिबिट्स को हाथ ना लगाना जब तक इजाजत ना। कई लोगों का बड़ा दिल करता है, इवन मेरा भी बड़ा दिल करता है कि इसको करीब से मैं देखूं और इसको छू कर देखूं, है ना। तो आप टच करना चाहते हैं यार, 1400 साल पुरानी, 1000 साल, 500 साल पुरानी ये चीज़ है भाई, 1200 की कोई चीज़ है, सन 1500 की कोई चीज़, आपका दिल करता है इसको छू कर देखे, इसको करीब से देखे, इसको हाथ लगा ले, लेकिन इजाज़त नहीं है। जब तक आपको इजाज़त ना हो तो ऐसे आर्टवर्क का एहतराम करें, उसे छुए नहीं। लेकिन ऐसे कई आर्टवर्क है जिन्हें आप छू सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद स्टाफ के इजाजत के बगैर ना करें। साथ ही अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो भी बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को समझें। दोस्तों पहला फैक्ट्स है कि म्यूजियम में 9000 से ज्यादा मॉडर्न अरब आर्टवर्क्स का कलेक्शन है। यहाँ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी और इंस्टॉलेशंस डिस्प्ले होती हैं। म्यूजियम एडुकेशन सिटी के अंदर लोकेटेड है जो कतर का नॉलेज हब है। इसका फोकस अरब आइडेंटिटी और मॉडर्न क्रिएटिविटी को कंबाइन करता है। यहाँ यंग आर्टिस्ट के लिए वर्कशॉप्स और एग्जीबिशन भी होती है। अगर हम सिंपल अल्फाज में समझना चाहें तो मताफ सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि ये अरब आर्टिस्ट के आइडियाज और क्रिएटिविटी का घर है। ये लोगों को बताता है कि मॉडर्न आर्ट भी कल्चर और आइडेंटिटी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों ये था आज का शो FM 107 पे जिसका नाम था कतर 101, जहां पर हमने म्यूजियम के बारे में बात करी, डिटेल्स में उनके फैक्ट्स के बारे में बात करी, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करी। उसके अलावा ये तीनों, खास तौर पे ये जो तीन म्यूजियम्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत मेरे दिल के करीब हैं। सबसे पहला 3-2-1 ओलंपिक म्यूजियम क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स से मोहब्बत है। उसके अलावा हिस्ट्री को अगर देखना हो तो भाई ये हिस्ट्री आप सिर्फ नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में देख पाएंगे जो कतर के सकाफत को, हिस्ट्री को, मोहब्बत को, डेजर्ट को दिखाता है। और फिर अगर आपको इस्लाम से मोहब्बत है तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर यू गाइज, जहाँ पर आपको बैलेंस चीजें देखने को मिलेंगी, आपको जमाने पहले 1400 साल पुरानी जो खूबसूरती है इस्लाम की वो देखने को मिलेगी, वहां की आर्ट देखने को मिलेगी। तो ये आज का शो पूरी तरह से मुकम्मल था और मुझे बड़ा मजा आया म्यूजियम के बारे में। एक्चुअली मैं जानकर भी कई चीजें नई थी मेरे लिए और मुझे इस बात की खुशी है कि ये चीजें मैं आप तक पहुंचा पाया। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड में। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: Parenting सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है पी फॉर पुल, यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है ए, यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर। नंबर 3 है एस, जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और 4th है दोबारा से एस, यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है। Are you ready? फ्राइडे शाम 8 बजे लेकर आ रहे हैं आरजे फजील, वो शो जिसका इंतजार होता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check.
2: हला हला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई 11:02 हो गए हैं और ये नया नया हफ्ता आपके लिए शुरू किया गया, एकदम ताज़ा ताज़ा, जिसको कहते हैं ना कि चूल्हे पे तो तरा हुआ, वो लेकर आ गए हैं सरवर नाजिया। 11:02।
1: यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस। तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
3: सुबह 11:00 से दोपहर के 1:00 तक
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। राइट गाइस, सलाम आदाब, अ वेरी वेरी गुड वाली मॉर्निंग एंड इट्स अ संडे मॉर्निंग। हम दोनों आ चुके हैं पूरे एक हफ्ते आपके साथ और बिताने के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए। और दो दिन की छुट्टी के बाद आते हैं तो वैसे तो आइडियली बहुत सारी बातें हमारे पास होनी चाहिए, बट वी एक्सपेक्ट कि आपके पास बहुत सारी बातें अगर हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी आपको मिस कर रहे होते हैं जैसे आप हमें मिस करते हैं। तो आज मुझे बताइए भाई, आपने दो दिन क्या किया एग्जैक्टली, क्या कुछ रहा, क्या कुछ इन दो दिनों में स्पेशल रहा, या फिर आपने भी समर्स को यू नो आराम से रिलैक्स होके इंजॉय किया, व्हाटसोएवर, जो भी आपको बताना है आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। नंबर है 666-22107 या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77।
2: बिल्कुल भाई, हम दोनों आपके साथ। और जैसा कि नाजिया ने कहा कि आप लोगों ने क्या क्या किया इस दौरान, क्या क्या नई चीजें आपकी जिंदगी में आई, क्या क्या किस्से कहानियां हुए, क्या क्या आपने दिल तोड़े, क्योंकि मेरा तो इस हफ्ते नाजिया ने यहाँ पे दिल तोड़ दिया, बहुत ही चकनाचूर कर दिया। और वो ये अब ये कहेंगी कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने इनको एक बहुत ज़रूरी काम बताना था, बहुत ज़रूरी काम करना था, गलती से मैं छुट्टी पे था और ये ड्यूटी पे थी, मगर फिर
1: मैं भी छुट्टी पे होती हूँ सैटरडे।
2: ये तो कहने वाली बातें हैं मिस नाजिया, सैटरडे में आप मौजूद होती हैं, मैं कैमरा तो चेक नहीं कर सकता, मगर इतना बड़ा काम अंजाम देना था जो इन्होंने बिल्कुल मतलब
1: तो सरवर मिर्जा, अल्लाह ताला ने आपको दो पैर, दो हाथ, एक गाड़ी, एक अकल, नहीं चलिए वो तो गलती से कहेगी, आई एम सो सॉरी, वो तो नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें तो आपको दी हैं, माशाल्लाह दो आंखें भी हैं, चार माशाल्लाह आपके पास जबान है, जबान से तो खैर आप ड्राइव करके नहीं आ सकते, लेकिन हाँ जितनी चीज़ें और ज़रूरी थी उन सब को इकट्ठा करके समेट के यहाँ आ सकते थे।
2: नादिया जी देखिए,
1: कितना बड़ा काम अगर था तो इतने बड़े काम के लिए
2: एक छोटी
1: आपने इतनी छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई।
2: आपको बहुत छोटी सी बात, एक कहावत याद दिलाता हूँ, A friend in need is a friend indeed, मिस नाजिया। कल मुझे इतना जरूरी काम था जो लाइफ में शायद साल में एक आध बार आता हो, मगर वो भी
1: ये काम आपके लाइफ में मेरे ख्याल से हर दो घंटे बाद आते हैं उस तरह के काम।
2: बहरहाल
1: अगर इतने बड़े काम है तो व्हाई यू ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट योरसेल्फ,
2: इंसान
1: अपने आप पे क्यों नहीं आप
2: इंसान जिंदगी में देखिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, और यकीन जानिए आज मुझे एक सीख मिली है अपनी लाइफ में।
1: अब इसको इसको याद रखिएगा,
2: मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यकीन जानिए कि दोस्ती में भी हुदूद होनी चाहिए, ये आज मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया।
1: प्लीज इसे राइट डाउन समवेयर।
2: जो साफ और सच्चे दिल के लोग होते हैं
1: जुड़ा हुआ है
2: उनके साथ ऐसा होता रहता है, आपके साथ भी क्या हुआ आप हमारे साथ शेयर कर सकते
1: नहीं,
2: हैं।
1: आज हमारा टॉपिक ही लगे ये है ही नहीं।
2: नाजिया ने यहाँ पर लाइन ओपन कर दी है, तो आइए अब पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कैसा रहा उनका वीकेंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वेरी वेरी
2: जयपाल हमारे साथ
1: जी, जयपाल जी, अरे आपने आफत नून कहना क्यों छोड़ दिया?
4: अभी अभी हमारे

0: मैं जा नहीं पाया मम्मी के दर्शन करने के लिए. एक मार्च को मेरा टिकट था कैंसिल हो गया, टिकट लड़ाई चालू हो गई थी. अब मेरा मतलब प्रोग्राम है अगले साल जाना.
1: अगले साल जाएंगे आप?
0: 15 मार्च एक बच्चे की सगाई था, वो हो गया, वो शादी भी जा रही है.
1: अच्छा अच्छा, चलिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं. हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जब आप प्लान कर रहे हैं ज़रूर आप जाएं, अपनी फैमिली से मिलें, अपनी जो भी आपके काम है ज़रूरी इम्पोर्टेंट वो भी पूरे करें इंशाल्लाह.
0: और 7 साल के बाद प्रमोशन भी हो गया मेरा.
1: अरे वाह
2: जयपाल,
1: क्या बात है. सबसे अच्छी बात आपने सबसे लास्ट में बताई.
2: कितने साल बाद? 7 साल बाद.
0: और 15 साल मैंने एक और दूसरी कंपनी में काम किया, 21 साल हो गए.
2: क्या बात है भैया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे. और जाहिर है हमारी कतर ऐसी जगह है जहाँ पर एक बार जो आ जाता है और फिर यहाँ से जा ही नहीं पाता है. मोहब्बत ऐसी है,
1: सही बात है,
2: और इतने फायदे होते हैं हम सभी को.
0: जैसे घर नहीं है, घर जाकर क्या करेंगे.
1: चलिए अच्छी बात है,
0: बन जाता
1: घर की तरह माहौल बन जाता है. वैसे आज का जो दिन है यानी 17 मई, आज बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे. तो मोबाइल फोन्स की ही आज हम बात करेंगे और एप्स की भी बात करेंगे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की ऑफकोर्स बात करेंगे. लेकिन शुरुआत इस बात से कि आप ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, मतलब आप ज़्यादा क्या पसंद करते हैं. आप कॉल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली कॉल करके बात कर लूँ, या फिर आपको लगता है कि जस्ट मतलब मैं मैसेज ड्रॉप कर दूं और जब बंदे को कन्वीनियंट होगा तो वो उसका जवाब दे देगा और वो बात कर लेगा. व्हाट यू प्रेफर, ज्यादा क्या करते हैं?
2: जयपाल भाई, बात की शुरुआत यहां से करेंगे कि आपने क्या बताया, कितना टाइम हो गया आपको कतर में?
0: मुझे मैं 2005 में आया था जी.
2: 2005 में आए थे तो तकरीबन 21 साल हो गए हैं. तो ये बताइए, 2005 में जब आप आए थे तो टेलीफोन तो था नहीं जब, या था आपके पास, मतलब मोबाइल था आपके पास?
0: मोबाइल तो था पर कॉल बहुत महंगा था जी.
2: बहुत महंगा था.
0: तो हम क्या करते, एक हफ्ता में जाते थे नदिया पैदल पैदल. तो जो ऐसे कंप्यूटर थे, कंप्यूटर पर मोबाइल जैसे थे,
2: वहाँ पे उस तरीके से कॉल करा करते थे. तो ये बताइए, घर पे भी मोबाइल होता था या घर पे लैंडलाइन होता था, नंबर वाला डायल करने वाला?
0: दो तीन फोन लैंडलाइन थे, वो घर से
2: यही जानना चाह रहा था, यही जानना चाह रहा था.
0: लड़के का फोन आया, फोन
2: आओ, भाई जल्दी आ जाओ, लड़के का फोन आएगा, 5 मिनट दोबारा करेगा, जल्दी से आ जाओ सबके सब. वो भी एक याद है भाई.
0: नेट पे चालू होने लगा
2: फिर तो खैर मुख्तलिफ चीजें जिंदगी में आती चली गई. बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल सही. तो चलिए ये अच्छा लगा जान के.
0: अब तो सर डायरेक्ट कॉल करने का मन ही नहीं करता, अब तो ऐसा लगता है वीडियो कॉल ही डायरेक्ट करते हैं हम लोग.
1: वीडियो कॉल सारे करते हैं, ऑडियो नहीं आप पसंद करते हैं
0: ना? मैसेज पसंद है ना एकदम डायरेक्ट कॉल.
1: चलिए बड़ी बात है कि लोग इतना अवेलेबल भी हैं जिन्हें आप डायरेक्टली वीडियो कॉल करते हैं, वो उस टाइम उठा लेते हैं, आपसे बात भी कर पा रहे हैं. ये भी आज के टाइम में काफी चैलेंजिंग हो गया है.
0: इतनी तरक्की पे आ गई है विज्ञान, डायरेक्ट बात तो हम कॉल क्यों करेगा, हम डायरेक्ट वीडियो कॉल करेगा नहीं.
1: आप में माशाल्लाह बहुत अच्छी अकल और समझ है. चलिए बहुत अच्छी बात आपने की, अच्छी शुरुआत हो गई हमारे टॉपिक की भी. थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू फॉर योर कॉल. एंजॉय रेस्ट ऑफ योर डे, अपना ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ये सेट 10 की लाइफ. चलिए बहुत ही अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट आपको. ये सही है कि मतलब अपना दिल का सारा हाल जो है वो ये भी लगे हाथ बता दीजिए क्या खाएंगे, क्या खा चुके.
0: अभी मैं जा रहा हूँ ईरानी मार्केट में भी, उधर से वो हिसाब किताब खाने का जो चीज मन करता वही खा लेता हूँ मैं.
1: ये सही है, जो दिल चाहा वो खा लिया, अच्छी लाइफ एकदम जी रहे माशाल्लाह. वेरी नाइस, चलिए थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए. हाँ जी, अच्छा आप शाकाहारी.

0: अरे वेजिटेरियन है मेरी तरह, हाँ ये सही करते हैं, ये अच्छा करते हैं। तो चलिए हेल्दी भी आप हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो हेल्दी नहीं है, वो भी माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं और वो भी एक अच्छा सोर्स है ही ऑफ कोर्स प्रोटीन का, तो हमें लेना भी चाहिए लेकिन बैलेंस्ड होकर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्रिया जयपाल जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही आपके साथ बात करके, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।
1: ओके जी, ओके जयपाल भाई, ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। तो भाई ये थे जयपाल साहब हमारे साथ, और अब जैसे कि सिलसिला शुरू हो गया है, आप लोगों के जुड़ने का नंबर बता देते हैं आपको, 443-443-7-7-443-443-77 इज द नंबर। इस पे आप कॉल करके हाल अहवाल अपने बता सकते हैं, हमारा हाल अहवाल पूछ सकते हैं, और वहीं हमारा मैसेज करने के लिए नंबर आपको पता ही है 666-22-107। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, हेलो सलाम वालेकुम।
0: हेलो
2: वालेकुम
0: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु, कौन है हमारे साथ?
2: जी आपके साथ शाकिरुल्लाह बात कर रहे हैं।
0: शाकिरुल्लाह जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, कैसी आप मैम?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ।
2: सरवर भाई कैसे हैं?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं शाकिर भाई, खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का शुक्र है।
1: क्या नहीं ताजे है आज इतवार के दिन?
2: बस हाँ, कुछ हाँ नहीं है, ड्यूटी पे बस।
1: अच्छा
2: चल रहा है,
1: ड्यूटी पे हैं और हमारे साथ भी कनेक्टेड हैं, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए यार, ये तो मोहब्बत है आपकी शाकिर भाई।
2: सुबह से बस आपको सुन रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं।
1: वेट मेरा नहीं कर पाएंगे, मशीन ही नहीं बनी कोई ऐसी जो वेट कर सके अभी तक।
2: बिल्कुल
0: सर, मेरा आपके साथ एक किस्सा भी हुआ है मशीन का, तो
1: अरे किस्से तो रोज हो रहे हैं हमारी जिंदगी में नादिया जी, क्या बताएं, कल एक इतना बड़ा किस्सा हो गया, मैं कहां तक
0: वो भी वजन का
1: वो भी वजन का ही हुआ, दिल का वजन भारी हो गया है। हाँ
2: अच्छा मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों का वीकेंड कैसा रहा?
1: बहुत खराब कर दिया मिस नादिया ने वीकेंड,
0: मेरा तो बहुत ही अच्छा,
1: इनका तो अच्छा ही जाता है, अच्छा ही जाता रहेगा भी
0: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह ताला। मशगूल इतना रहती हैं, बस दूसरों का खराब करने में लगी रहती हैं, तो वो इनका काम है ही, उसमें कामयाब भी हैं ये।
0: वीकेंड खराब नहीं है, दिमाग सरवर मिर्ज़ा आपका खराब रहता है, उसको ठीक करिए, वीकेंड में कोई बिचारे का कोई दोष नहीं है, ये आपके सारे जो ब्रेन का दोष है ना, इसको थोड़ा सा ले जाइए डॉक्टर के पास, इसे मरम्मत की जरूरत है मुझे लगता है, रफू कराइए, डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी पॉलिश।
1: डॉक्टर कर रहे हैं आजकल ये काम?
0: ये सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ले जाइए आप कम से कम जाइए।
1: ये काम तो आपके थे मिस नादिया एक टाइम तक, अब आपने ही छोड़ दिए, तो
0: मैं कहाँ डॉक्टर हूँ,
1: नहीं ये मरम्मत रफू डेंटिंग पेंटिंग वाले।
0: आज हमारा जो दिन है उस पे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम पर्टिकुलरली सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो इस दिन के हवाले से छोटे मोटे सवाल ऐसे कर रही हूँ मैं आपसे, आपसे बहुत ही सिंपल सा ये जानना चाहूंगी कि हमें बताइए आप जो है वो ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, मतलब डायरेक्टली कॉल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, या आपको अच्छा लगता है कि मैं मैसेज करूं एंड देन लेटर ऑन जब जो फ्री होगा मुझे जवाब दें, या डिपेंडिंग
2: ऑन द सिचुएशन? या मैं जो है ना पहले अगर मैसेज कर ले बंदा उसका मतलब हाल अहवाल पूछे, अगर वो फ्री है तो फिर कॉल पसंद करूंगा, अगर फ्री नहीं है तो बस मैसेज पे अपना जो है ना हाल अहवाल बता दूं, या कोई सवाल जवाब है या कोई मतलब कोई ऐसा चीज है जो उसको मतलब बताना है मैसेज छोड़ के, तो सुन लेगा बाद में, अगर फ्री है तो कॉल करना बहुत
0: जरूरी है। वेरी नाइस। अच्छा एक और चीज बताइए मुझे कि वो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बगैर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते?
2: आजकल तो मोबाइल
1: मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं,
2: आजकल तो मोबाइल है बस, लेकिन मैं कभी कभी जो है ना ऐसा करता हूँ कि पूरा दिन मोबाइल नहीं उठाता हूँ, बस मोबाइल के बगैर घूमता हूँ, जैसे मैं ड्यूटी पे होता हूँ या गाड़ी में, आजकल जो जब भी मैं बैठता हूँ तो डायरेक्ट 107 ऑन करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ।
1: अच्छा जब गाड़ी में होते हैं जब भी सुनते हैं, या क्यों घर पे होते हैं या गाड़ी के बाहर होते हैं तो हमें क्यों नहीं सुनते, हमारे साथ कनेक्ट क्यों नहीं रह पाते?
2: उस टाइम में क्या होता है कि घर में आपको पता है बच्चे वगैरह या घर के काम इतना मतलब फिर वो बंदा सुन नहीं पाता है ना, आराम से बैठ के अकेले।
1: अच्छा आपको पता है कि किस तरह सुनना है गाड़ी के अलावा हमें?
2: ओ मैंने ट्राई नहीं किया वैसे मोबाइल पे,
1: मोबाइल पे सही नहीं किया, कुछ भी करना ही नहीं है उसमें, सही या गलत उसमें तो बहुत आसान है, हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है। आपने करना क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है या वेब एड्रेस है दोनों के जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।
2: फेसबुक पे मैंने फॉलो किया, इंस्टाग्राम में
1: नहीं, वो तो ठीक है। अगर आप जो हमारा वेब एड्रेस है ना www.urduradio.qa, बहुत आसान है, या फिर आप जब जाते हैं ना ऑनलाइन तो आप लिखिए, जाकर गूगल पे आप जाकर लिखिए कि उर्दू रेडियो कतर, तो आपको जो सबसे पहले आ जाएगा उसमें आपने क्लिक करना है और बस उसके बाद आप हमसे कनेक्ट हो जाते हैं कहीं भी किसी भी वक्त बहुत आसानी से।
2: बस ये
0: अब
2: तो
0: आप ये ट्राई कीजिएगा, हाँ अभी करिएगा, जैसे आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे भी हम सुन सकते हैं।
1: तो ये भी कम्युनिकेशन का ही एक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ने का ही तरीका है शागिर भाई, और बहुत ज्यादा आसान है, यकीन जानिए। सोशल मीडिया पे तो हम हर जगह आपके लिए हाजिर खिदमत हैं, और आपने कनेक्ट कर भी लिया हमारे साथ, बट वेब एड्रेस के जरिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, हमें लाइव सुन सकते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम दे सकते हैं, और मुझे भी देख सकते हैं आप वहाँ खासम खास।
2: वो तो फेसबुक में पहले भी देखा हुआ है, और आपको देखना फिजिकली कब इंशाल्लाह, कब देखेंगे आपको, कब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह,
1: इंशाल्लाह ताला जरूर मिलेंगे।
0: बस आप दावत प्लान कीजिए और आप जरूर मिल जाएंगे।
2: और भाई और आपके लिए दोनों को मेरे दिल से दावत है, कभी भी आप फ्री है इंशाल्लाह तो हाजिर है बस।
0: अहलन वसहलन, मोहब्बत
1: है शाकिर भाई की, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह आप मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: थैंक यू सो मच।
2: एक बात जो है ना दूसरा ऐड करूंगा, हमीज के दिन मैं आपको कॉल कर रहा था आफ्टरनून में जो 12 बजे के बाद, ओ शेख अली था एक आया था बंदा अरबी
1: जी,
2: उसने मुझे बहुत हैरान किया उस दिन।
1: अच्छा
2: वो जो मतलब वो अरबिक पर्सन था ना,
0: हम हमें भी बहुत हैरान किया,
1: ये मोहब्बत है आप लोगों की और तमाम
0: और
1: लोगों
0: इतना
1: की।
0: अच्छा नहीं फोन करना तो चलो इतना हैरान हम नहीं हुए, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म कर गए, इतना अच्छा खेल गए, उससे हम दोनों ही वाकई बहुत हैरान हुए कि इतनी अच्छी इन्हें नॉलेज है गानों की, एक्टर एक्ट्रेसेस सब पता था। तो
2: बिल्कुल मैं खुद देखता भी हूँ, पहले मूवी वगैरह में देखता हूँ, गाने भी सुनता हूँ, लेकिन मुझे इतना इलम उसके बारे में नहीं है कि किसका गाना है, किसने गाया है, कौन सा फिल्म है। कभी कभी मैं वो करता हूँ, जस्ट करता हूँ, लेकिन उसको बहुत इलम था उसके साथ,
0: बहुत इलम
2: मेरे साथ इतना नहीं था।
1: ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं सुनने वाले, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआएं मोहब्बत नवाजिश,
2: ओके दुआएं, अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे, अल्लाह
0: हाफिज़, अल्लाह ताला आपको भी खुश और सलामत रखे, आमीन। ऑलराइट यहां पर आई थिंक अब हम जो है कॉल्स की तरफ जाएं, और
1: हम मैसेज ले लेते हैं नाजिया जी, यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी हैं, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इनसे भी। और कहाँ से पहला मैसेज, रमेश भाई हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं और कहते हैं नाजिया जी और सरवर जी को गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग,
1: ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन कहते हैं, और अच्छी सी यहाँ पर चाय भी भेजी है। जाहिर बात है जब आग खुले जब सवेरा है, इसको अगर हम उर्दू हिंदी में बोले तो अपनी एक नई सुबह की शुरुआत आप कर सकते हैं, नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, नई चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। तो कहते हैं कौन है हमारे साथ, उसामा मोहम्मद हैं और कबीर भाई को यहां पर याद कर रहे हैं। उसामा साहब वो तो निकल लिए अभी से 2-3 घंटे पहले, ओके कहते हैं आओ क्या हाल है जी, ईद कब है, आओ से मेरा मतलब अस्सलाम वालेकुम होगा इनका, ईद कब है, कब है ईद, ईद कब है हारून अकबर आवाम,
0: 27th भाई, 27th आप कैसे बोल सकते
1: हैं हारून भाई, अभी तक ईद को ही ढूंढ रहे हो, जानवर कब ढूंढोगे जाके भाई। इसे कई हैं, ये छोड़ देता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई बहन, वेलकम माई डे,
0: थैंक यू सो मच, हम लोग खैरियत से हैं, उम्मीद करें आप भी।
1: आसिफ भाई हमारे साथ, ओके बढ़ते हैं आगे, यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ गए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग नाजिया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल। आफ्टरनून एक्सप्रेस में सबको वेलकम कहते हैं, संडे मॉर्निंग कहते हैं। कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहा होगा। कहते हैं मैं यूजुअली मैसेज करने को प्रेफर करता हूँ, हाँ

0: अगर कोई अर्जेंसी है तो मैसेज करने के बाद फौरी कॉल भी कर देता हूँ। घर पे तो नॉर्मली कॉल से बात होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, यूसुफ भाई कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी आदत भी रहे। सरवर जी तुसी ग्रेट हो। जसविंदर पाजी यहाँ पर हमारे साथ, एलन वसैलन जसविंदर भाई, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो एक कॉल लेते हैं और उसके बाद हम
1: ब्रेक की तरफ जाएंगे।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भाई,
0: खैरियत? एलन आसिफ भाई, कैसे हाल
2: भाई? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआएं।
0: कैसे गुजरे दो दिन?
2: हाँ जी, आपको एक पहले छोटी सी एक मैसेज था, वो आप पढ़ते ना, इसे काई चार्ली शॉट, ये हरियाणा लैंग्वेज में मैंने कबीर भाई को भेजा था ये।
0: वही मेरे समझ में नहीं आया, ऊपर चला गया, मैंने कहा कुछ और ना पढ़ दूं, मेरे कभी जूते पड़ जाएं।
2: मैंने कबीर भाई के लिए सेंड किया था, इसे काई चार्ली शॉट, यानी वो अलग मैटर था हरियाणा लैंग्वेज में। बाकी आप कैसे हो भाई दोनों?
0: अच्छा,
1: हम दोनों बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
2: बहुत बहुत खूबसूरत,
0: बहुत खूबसूरत। आप भी बेटे, वही तो मिला सुबह से यार, जो ऐसी बात कहे, वेरी गुड।
2: मतलब कुछ तो नया लाना चाहिए ना भाई,
0: कुछ नया लाना चाहिए, और अपने आपको हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए भाई, ये हमेशा याद रखिए। चलिए साहब आसिफ भाई, तो क्या कहते हैं, आज खासम खास दिन है, टेली कम्युनिकेशन डे है, और उसके हवाले से
2: पहला दिन है हमारा,
0: ड्यूटी का पहला दिन है। अच्छा, मतलब हफ्ते का पहला दिन है। तो ये बताइए कि टेलीफोन वगैरह से मुताल्लिक कुछ यादें हैं आपके पास, और क्या ज्यादा बेहतर लगता है आपको, बात करना, मैसेज करना, और कुछ ऐसी याद जो पुरानी टेलीफोन से जुड़ी हुई हो, कुछ शेयर करना चाहते हैं आसिफ भाई?
2: मैं बोलता हूँ भाई, मतलब मेरे घर वाले मेरे को बोलते इरिटेट पर्सन,
0: ज्यादा फोन करने की वजह से। ऐसे ही है, रख दे फोन, कितना दिमाग खाएगा, रख दे बस, कल बात करेंगे।
2: मेरी मम्मी, मेरे पापा लोग, मेरे भाई लोग, मैं लोगों को मैसेज नहीं करता कभी भी। मैं कोई भी टाइम पे ना, मतलब डायरेक्टली कॉल करता हूँ, वो भी वीडियो कॉल, डायरेक्ट वीडियो कॉल। तो मेरी मम्मी तो मेरे को दो चार बार बोल चुकी, तू इरिटेट पर्सन है हम लोग के लिए, बोले।
0: अरे भाई,
2: बहुत इरिटेट करता है।
0: यही टाइम है, अल्लाह ताला आपके वालिदैन को अच्छा रखे, सेहतियाब रखे, लंबी जिंदगी दे, उनका साया आपके ऊपर हमेशा खैरियत से बरकरार रखे। मगर यकीन जानिए, ये दिन भी याद आएगा आपको, और यादें बहुत खूबसूरत होती हैं, बनाते रहिए। और माँ बाप की यही बातें हैं जो हमेशा याद भी रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं। और एक बात और बताऊं कि ये अल्लाह का शुक्र भी भेजिए कि आप ऐसे दौर में हैं और आपकी उम्र ऐसी है, या आप अब इतना ज्यादा कनेक्टेड हैं। वो भी दौर था जब खतो खिताबत थी, खैर उससे पहले तो कबूतर थे, वो बात तो होती जाएगी पुरानी। बहरहाल मैं अगर अपनी बात करूं,
1: कबूतर तो कभी भी नहीं।
0: हाँ, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो भाई, जैसे कि अभी जयपाल साहब ने भी बताया कि जब मैंने होश संभाला है और फोन संभालना शुरू किया है, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि इनकमिंग भी 7 रियाल की थी, 7 रियाल की कदर की अगर मैं बात करूं, जो मुझे होश में याद रहता है कि जब घर वालों ने मेरे सुपुर्द मोबाइल किया, तो वो हम उस लायक जब भी नहीं थे, हम खैर आज भी इस लायक नहीं है कि मोबाइल रिचार्ज करवा सके, हमारी तो बात वैसी की वैसी है, दूसरा ही कॉल कर रहा हमें। है आसिफ भाई?
2: और भाई एक बात और है भाई, मतलब मैं अगर अपने घर में डेली फोन करता हूँ वीडियो कॉलिंग, तो वो लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं इरिटेट पर्सन है तू हम लोग के लिए, मगर जब मैं एक दिन छोड़ के 2 दिन अगर कॉल नहीं करूँ तो वो लोग मेरे को 10 बार कॉल करेंगे, भाई तू फोन क्यों नहीं किया, क्या बात है ऐसा।
1: वो लोग यही पूछते होंगे, अरे हम 2 दिन से इरिटेट ही, आदत हो गई है,
2: मतलब मेरे फोन की, मेरी भाई, मेरी बहन सबको आदत हो गई है, मेरा भाई फोन नहीं किया, मेरा बेटा फोन नहीं किया, ऐसा मतलब बोलते बाद में। और एक सवाल और आपने पूछा था कि मतलब अभी वो भाई पिछले कॉल पे, आप घर पे कैसे कनेक्ट करते हो? मैं बोलता हूँ भाई, मैं अगर ये सवाल मुझसे पूछना तो मैं तुमको एक झटके में बोलता डायरेक्टली सीधा, मेरे घर मेरे रूम में ना, मैं एक तुम लोग के लिए ये शो सुनने के लिए, रेडियो सुनने के लिए मैं एक टेप रिकॉर्डर लेके आया हूँ।
0: हाय मेरा भाई, कैसा पैसे ही पैसा।
2: नहीं भाई सच्ची, मतलब भाई मैं मतलब लेके आया हूँ ऐसी टाइम पास के लिए, मगर मेरे को ये भी मालूम था गूगल में कैसा आपको सुन सकते, ये भी मुझे मालूम है, मैं डेली कभी भाई
1: का आपको पता है, ये बात अच्छी है कि एटलीस्ट आपको पता है।
2: और दूसरा, मेरे रूम में जो टेप रिकॉर्डर है उसमें रेडियो लगाता हूँ और चलते रहता अपना कारवा।
0: क्या बात है यार, एहलन और सहलन, ये आपकी मोहब्बत है, और जिस तरीके से बताया आपने, इसी तरीके की अपनी शख्सियत रखिए कि आपके छोड़े ना बने महफिल में, आपके आए ना बने, दोनों तरह से परेशान रहे लोग, आप आ जाए तो भी परेशान हो जाए, और आप ना हो तो भी परेशान रहे, बस ऐसी बन के रहो, ठीक है?
2: और भाई यही बात।
0: चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अब वक्त हो गया कि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, और अजान सुनेंगे, और वापस आने के बाद बातचीत जो है वो जारी रहेगी।
1: बिल्कुल, सुनते रहिए FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: कौन सा रास्ता चुने? नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कंपास सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन टू आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: You are listening to
0: Afternoon Express. Afternoon
1: Express. तो ट्यून इन करें Afternoon Express Sunday to Thursday RJ Nazia और RJ Server के साथ
2: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: Only on FM 107. दिल से देसी।
3: हाँ जी, वेलकम बैक है सहलन, खुश आमदीद, स्वागत हम। बिल्कुल आफ्टरनून एक्सप्रेस इस वक्त जारी सारी है, चल रही है तेजी से, जहां पर सर्वर और नाजिया आपके साथ बने हुए हैं और यहां पर कुछ मैसेजेस, आपकी कॉल भी। कहते हैं अफवाह फैली हुई है कि नाजिया बहन सुबह में आने वाली हैं। वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: भाई अफवाह नहीं फैली है, ये बिल्कुल सच है, सही है, लेकिन बस मैं आऊंगी और जाऊंगी, ये बस मैं आपको कह सकती हूँ अभी के लिए। तो
3: कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अबू बकर साहब कहते हैं कि इस बात पे बहुत अच्छे कह रहे हैं। अबू बकर साहब हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है।
4: हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन है हमारे साथ?
5: सरताज खान।
3: इम्तियाज खान साहब, अहलन व सहलन, कैसे हैं इम्तियाज भाई?
5: सरताज
3: खान, ओ सॉरी सरताज भाई, कैसे हैं सरताज भाई?
5: खैरियत मैडम?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल खैरियत से। ये वही है जिनके बारे में आपने कहा था कि इनकी आवाज से इनकी एज गेस नहीं कर सकते।
3: यस यस यस यस यस यस,
4: आप वही?
5: अरे
4: वो नहीं है,
3: मैं वही हूँ।
5: 1972 11 4।
4: अच्छा जी, चलिए वेलकम, खुश आमदीद।
5: अच्छा शुक्रिया बहुत बहुत। आज बात कम्युनिकेशन की हो रही, सर मोबाइल और टेलीफोन, ये मुझे पुराना जमाना आ गया याद।
4: हाँ जी।
5: मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ केबल एंड वायरलेस पहले था महकमा, अभी तो ये हो गया ना दूसरा रीजो, पहले था केबल एंड वायरलेस उसका नाम।
4: अच्छा।
5: और ये मुशेरप में जहाँ बस स्टैंड बना है मेन, इसके कॉर्नर पे था इनका
4: ऑफिस। ओके, नाइस।
3: अभी भी है ऑफिस, वो हटाया नहीं गया है, यादगार के तौर पे ही वो अभी तक कायम धायम है।
5: और वहाँ कम से कम 6 बूथ थे जहाँ से हम लोग कॉल करते थे। बताने का मतलब ये है कि 70s में हमारे मोहल्ले में तकरीबन 50 घर थे और एक घर में लैंडलाइन फोन था। तो मैं भाई वहाँ जाके फोन करते थे, हमारे घर में फोन तो था नहीं, तो पहले वो घर था, उनको मैसेज देते थे कि हम फोन कर रहे हैं, हमारे घर से किसी को बुलाते, फिर वो अल्लाह की मखल कर फौत हो गई। हम खाला जी कहते थे बहुत नेक और जमाने में कोई भी नहीं जाता भाई।
3: सही।
5: तो वो फिर वालदैन आके बैठे हो जाते थे, फिर इंतजार करते थे, फिर हम कॉल करते थे। क्या जमाना था।
3: सही सही।
5: मेरा ख्याल 10 रियाल या 14 रियाल पर मिनट की कॉल उसको।
3: सही।
4: नाइस।
3: 14 तो मुझे भी याद है, क्योंकि हमें याद है कि अब्बा जब करते थे तो हमें ये पता होता था कि कितनी बात करनी है और किस हिसाब से बात करनी है। सबको अपने अपनी बातें और टाइम बता दिया जाता था, पेपर पे लिख के सब तैयार रखते थे।
5: हम भी हिंदू घर जाते थे, कभी टाइम जाया ना हो तो। क्या जमाना,
4: आवाज कोई भी नहीं सोचता, आराम से हम घंटों बात कर लेते हैं। तो देखिए ये भी आसानी तो हुई है, बेहतर तो हुआ है, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बेहतर इम्प्रूव तो किया है।
5: उसके बाद तो घर घर में फोन हुआ और अब तो हाथ हाथ में फोन हो गया।
4: ये आपने जगह हाथ हाथ में फोन है आजकल तो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आज के दौर में। हाँ जी जी।
5: तो कदर नहीं इस चीज की वाकई, वो जब तक वो जिंदा रही, मैं जब यहाँ से जाता था उनको मिलने के लिए जाता था, बहुत खुश होती थी वो। कि मेरा पुत्र आया है. मैं कहा जी बिल्कुल अच्छे लोग थे पहले सब अच्छे लोग
4: पहले के लोग जो थे सीधे लोग थे सच्चे थे. ये बात तो
5: बहुत खुलूस था ये बात है.
4: और आप ये देखें खुलूस भी था.
5: यहाँ आने से पहले हम लोग हर घर में जाते थे. सियाने भी हो गए. मैं 74 में यहाँ से आया सबको मिल के आया सब वो मासी जी और क्या खाला कहते थे हम लोग. तो जब मैं 3 साल के बाद गया अब मुझे शर्म आ रही थी सबसे जाके सलाम लेने में और उनके घर जाने में. वो सब दरवाजे पे खड़ी हो गई हमारी हमसाएं गली हमारी बंद थी आखिर तक उन्हें पता लग क्या आ रहा है. फिर उन्होंने शायद क्या हुआ वही है तू. मैं कहा मुझे अब शर्म आ रही है और सर पे प्यार देना वो खुलूस खत्म हो गया. सब कुछ
3: सर पे हाथ रखने तक का वक्त नहीं है आज बड़ों के पास और छोटों के पास इतना वक्त नहीं है कि ये बात कहें ये अर्ज करें उनसे कि भाई हमारे सर पे हाथ रखिए. चीजें बात ही सरताज भाई बहुत बदल गई.
5: खुद रखते अपने बच्चों में फर्क ही कोई नहीं किया भाई साहब कोई फर्क नहीं है.
3: अल्लाह ताला खैर करे. बहुत बहुत शुक्रिया सरताज साहब आप जुड़ते हैं कुछ ना कुछ आपसे सीखने समझने के लिए मिलता है.
5: नहीं हम किस काबिल को सिखाने के आप तो माशाल्लाह सब कुछ जानते हैं.
3: इंशाल्लाह कभी रहा तो मैं जरूर मुलाकात करने का
5: बहुत शुक्रिया
4: जी. थैंक यू बहुत शुक्रिया. अल्लाह तो दोस्तों आज हम इस दिन को यानी टेली कम्युनिकेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं पुराने टाइम में जब आप फ़ोन यूज़ करते थे किस तरह के फ़ोन्स थे किस एज में एग्जैक्टली आपको जाके प्रॉपर अपना अलग से फ़ोन मिला था या फिर कोई और फ़ोन से रिलेटेड आपकी कोई बहुत ही अच्छी स्टोरी है कोई मोमेंट है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए. नाउ वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर.
3: बिल्कुल यूसुफ भाई हमारे साथ कहते हैं कि ये जनाब अली वजदाद साहब अच्छा वो जो उस दिन फोन आया था कतरी हैं लेकिन ही इज डाई हार्ड फैन ऑफ बॉलीवुड. इनको इन्होंने पहले भी सुना है और अब यहाँ पर फेमस रेडियो शो जो है आफ्टरनून एक्सप्रेस उनको खींच लाया और इन्होंने पहली बार यहाँ पे कॉल किया और यूसुफ भाई इस बात को सराहते हैं. भाई बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपने इतनी अच्छी बात कही और हमारा भी दिन बनाया. कहते हैं कि सरूर भाई आप बहुत प्यारे हैं. यूसुफ भाई अब हंसी का मत आप ये मैसेज सुन के मैंने मैसेज पढ़ दिया है. अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई. एक दिन मैसेज किया था आपको नाम से लेकिन सुबह से कबीर भाई का शो सुन रहा Hello? था इसलिए उसी नाम जल्दी जल्दी लिखा
6: अरे
3: दिया.
6: भाई फोन तो उठाइए.
3: अरे कौन है भाई. हेलो
6: हेलो सरवर सर कैसे हैं.
3: हेलो हेलो आवाज आ रही है.
6: एकदम नहीं सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है.
3: अरे सुरेश साहब सुरेश यादव
6: जी
4: विमलेश
6: बिल्कुल सर कैसे हैं. रमेश बोल रहा हूँ.
3: रमेश भाई अहलन वास्त अहलन कैसे हैं रमेश भाई.
6: बढ़िया सर बढ़िया. आप लोग कहते हैं
3: इसी के हवाले से बात हो रही है जो दिल के तार हमारे कानों तक पहुंच नहीं रहे या मिल नहीं रहे हैं आज इसी के हवाले से बातचीत हो रही है. क्या कहना चाहते हैं. वैसे रमेश भाई ये 74 साल की उम्र में आपने तो बहुत कुछ देखा होगा जिंदगी में यार. क्या हिसाब लगा
6: बहुत देखा हूँ ऐसी बात नहीं.
3: हिसाब लगाने लगा
4: मैं सलवा
6: रोड
4: जो
6: नहीं सही में देखा हूँ मैं सलवा रोड जब बन रहा था ना जब सलवा रोड.
3: अरे ये तो अभी की बात है.
6: सलवा रोड जब बन रहा था उस 2010 में आया हूँ मैं.
3: वो ये तो कह रहा हूँ ये तो 2010 की बात करेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि ये तो अभी की बात है.
6: अभी है अच्छा. उसके बाद फिर ये जो आप बता रहे ना फोन वाली बात जो घर पे लैंडलाइन वगैरह ये मैं लगाया था तो उस समय BSNL का चल रहा था जमाना था BSNL.
3: अच्छा मैं समझा कि शायद आप वाकई कबूतर से या किसी तोते के हिसाब के साथ उसके पैर में पर्ची बांध के. अच्छा अच्छा अच्छा जब तक आ गया था
6: मैंने प्यार किया पिक्चर निकला था ना उसके बाद से शुरू हुआ था.
3: हाँ ओके ओके. कबूतर तो फिर बाद में बहुत निकाले रमेश भाई ने जब इनको पता लग गया. दूसरे मैसेज बहुत भेजे तो ये भी रहा. क्या बात है भाई रमेश भाई कैसा रहा वीकेंड. रमेश भाई
6: वीकेंड सर अच्छा ही गुजरता. क्या आज वीकेंड में धूप में कहीं जाने लायक नहीं है. बस अपना बनाए खाए दोस्त को खिलाए खाए सो गए.
3: क्या पाए बनाए
6: शाम को उठे. हाँ
4: वेजिटेरियन है वो. अरे आप तो
3: पाया बनाया भाई दोपहर में वो भी ओए हो ये है पाया पाया. क्या बात है
4: खोया पाया
3: आपने खाया मैंने खोया ऐसा क्यों किया यार, जब बना ही रहे थे तो ये थोड़ा सा मतलब
6: मैं सोचा फोन करूं सरोवर जी को
3: हाँ थोड़ा इधर भी
6: किस टॉपिक पे बात हो रही है
3: हाँ
6: किस टॉपिक पे
3: टॉपिक तो निकल गया पिक पिक रह गया टॉप तो बता दी आपने यही बात हो रही थी भाई टेलीफोन
6: के हवाले से
3: टेलीफोन के हवाले से कनेक्शन के हवाले से तो कम्युनिकेशन के हवाले से नहीं आप इसमें ऐड कर सकते हैं और वो दौर तो था तो ये बताइए कि घर जब आप कब से बाहर हैं मतलब इंडिया कब छोड़ा 2007 में इंडिया छोड़ा आपने यार तो आप तो यार काफी मतलब यंग लग रहे हैं मुझे रमेश साहब बता दो रमेश भाई कोई बात नहीं आज यार
6: हमारी तो
3: 49 क्या बात है यार तो 2007 में जब छोड़ा है जब तो घर बात करते थे तो फोन तो मेरे ख्याल में आप वहाँ पे भी देखे आए होंगे और यहाँ पे भी होगा जब तो आपके पास ऑब्वियसली
6: नहीं नहीं सर फोन घर पे नहीं था लैंडलाइन
3: घर पे नहीं
6: वाला
3: राइट
6: वाला था तो जाते थे यहाँ पे भी 1-2 किलोमीटर जाते थे फोन करने के लिए
3: हाँ बिल्कुल
6: एक रियाल में
3: मुझे याद है जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
6: तो उसपे वही बस एक रियाल में 10 मिनट देते थे तो जब खत्म होता तो फिर एक रियाल दे करके फिर 10 मिनट लिया जाता था तो एक तरह से बात वो भी एक दिन हफ्ते में शायद जुमेरा
3: होता था बिल्कुल बिल्कुल जुमेरा जुमा अपने सहूलत के हिसाब से जब उधर भी सब लोग फारिग हों और हम लोग भी
6: और अभी तो ऐसा आ गया है कि मतलब महीने का तो जान ही लीजिए मतलब 100-150 रियाल अभी जा रहा है अभी तो कुछ पता नहीं चलता है
3: पता ही नहीं
6: और पहले उतने में खाना खा लेते थे
3: सही सही सही बिल्कुल
6: अभी 100-150 तो मोबाइल करके सिर्फ खर्चा आता है और खाने के लिए पहले इतना मतलब ऐसी महंगाई भी नहीं थी तब तो BSNL देख के BSNL जब से बंद हो गया तब से
3: इंडिया में बिल्कुल
6: बिल्कुल और लैंडलाइन वाला था ना जो बता रहे थे सर आप
3: जी
6: कि किसी का भी फोन आता था ना इतनी भीड़ हो गई थी हमारे घर पे एक लड़का को रखा गया था
3: अच्छा
6: वो
3: कि पर्ची काटते रहो भाई पैसे लेते रहो
6: हाँ कि जिसका फोन आता है भाई उसको बुला के ले आ उससे तू 5 रुपया ले लिया
3: क्या बात है लेते 10 थे बता 5 रहे 5 खुद के भी होते थे इसमें रमेश भाई
6: अच्छा कुछ नहीं बस हम लोग
3: क्या बात है यार ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है दूसरे से अपने को जोड़ देना इससे ज्यादा खूबसूरत बात इस दुनिया में
6: नहीं है काफी दिन तक चला उसके बाद फिर जब BSNL
3: दूसरी चीजें बढ़ गई सही
6: जी फिर वहाँ से मोबाइल आ गया लगे सब BSNL बंद बंद हो गया फिर कहाँ है अभी तो
3: सही सही
6: टाइम नहीं है अभी तो आप बगल में बैठे हैं और फोन आ गया किसी को बोलिए थोड़ा मोबाइल उनको दे के तो बोलेंगे तुम क्यों नहीं जाता जाके दे के आओ ना भाई मेरे पास टाइम नहीं
4: है सही बात है
3: बिल्कुल सही बात
4: है यही पोजीशन पे हम आ चुके हैं
3: चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए
4: थैंक यू जी थैंक यू सो मच Alright, एक और यहाँ पर कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं चलिए इनसे बात कर लेते हैं हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कौन है हमारे साथ
7: जी मेरा नाम है फैजान
4: फैजान है ओके कैसे हैं आप खैरियत से
7: जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप बताएं कैसी हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भी खैरियत से हैं बिल्कुल ठीक हैं आज बात हो रही है टेली कम्युनिकेशन जो डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे आप हमें बताएंगे कि आपको अपनी लाइफ में कौन सी एज थी एग्जैक्टली जब आपको आपका खुद का एक फ़ोन प्रॉपरली मिला था
7: मोबाइल मैंने लिया था 2010 में
4: अच्छा तो मतलब बहुत दूर
7: नहीं है जी लेकिन मैं उस टाइम पाकिस्तान में ही होता था
4: अच्छा।
7: और अभी मैं मैट्रिक में एंटर किया था मैंने तो वालिद साहब ने फिर मुझे मोबाइल ले दिया था तो खैर जो अभी ये मैं सुन रहा था रेडियो पे कोई बंदा कह रहा है कि कतर में नहीं था मोबाइल नहीं था ऐसे ये जो सीन था ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये था कि हमारे घर में था लैंडलाइन और दाएं बाएं से लोग आते थे हमारे घर में फोन सुनने के लिए
4: अच्छा
7: वो चीज है वो मुझे याद है कि कभी कोई आया होता था कभी कोई आया होता था हमारा फोन आया था हाँ जी, तो बड़ा जो है ना मजे।
4: तो कभी ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा आपके घर में ये डिस्टरबेंस हो रहा है, लोग आ रहे हैं कर रहे हैं कि हमारा फोन आएगा, मतलब
7: जी बहुत ज्यादा होता था। फिर ना जो था मेरे से बड़ा भैया ना, उसने स्कीम निकाली थी।

0: जब देखो ना टाइम काफी ज्यादा हो गया तो कहता था मम्मा खाना बना दे तो वो अगला बंदा शर्म से घर चले जाता था अपने।
1: ओहो, ये वाकई बड़ा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन पेशेंस का टेस्ट भी था। लोग कितने बेचारे हम्बल होते थे कि वाकई दूसरे को बेयर करते थे, उनका ख्याल करते थे और फिर उनके लिए वेट करते थे। सो दैट्स राइट। अब वो चीजें तो बिल्कुल नहीं है, अब हम सब मिस करते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, तो आजकल तो खैर टाइम नहीं है किसी के पास।
1: ट्रू, आजकल तो वाकई टाइम नहीं है।
2: खैर फैजान भाई, कैसी गुजर रही है छुट्टियों में?
0: जी बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: आपकी तो छुट्टियां चल रही हैं?
0: जी ऐसा ही है बस।
2: वीकेंड कैसे गुजारा पूछ सकता हूँ यहाँ पे या अलग से मैसेज भेजूं?
0: जी वीकेंड तो मैंने सोकर ही गुजारा था ये।
2: अच्छा नहीं, तो यहाँ तो यही कहना पड़ेगा, समझ सकता हूँ।
0: नींद पूरी की थी।
2: मैं समझ गया, मैं समझ सकता हूँ। जब फैमिली इंसान घर पे छोड़ के आया हो बैक टू पाकिस्तान और यहाँ अकेला हो तो सो ही सकता है बेचारा, और क्या कर सकता है इसके अलावा। पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ, ऐसा ही है बिल्कुल, मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। ओके,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हमारे साथ यहाँ पर सर्वर कनेक्ट हो रहे हैं,
2: बिल्कुल हो रहे हैं, कुछ मैसेजेस भी। गुड आफ्टरनून सर्वर एंड नाजिया मैम, कुछ शेर व शायरी शुरू हो गई है। कहते हैं चुप चुप रहते रहते वक्त गुजर जाएगा यार, मरने के
1: बोलूंगा
2: यार, मरने के बाद कौन किसको याद आएगा। जी लो ये पल मेरे साथ ऐ दोस्त, ना जाने कब ना जाने कभी ये चेहरा कफन में छुप जाएगा।
1: ओहो, गहरी।
2: नहीं बात तो सही। अब्दुल रहमान पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या बात है भाई। अब्दुल रहमान साहब काफी अच्छी बात कही आपने। हेलो सलाम अलैकुम।
1: हेलो
2: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं और कौन है हमारे साथ?
3: आपकी
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ।
2: आवाज कुछ साफ नहीं आ रही भाई की।
3: मेरा नाम रियाज है।
2: नहीं नहीं रियाज भाई वो तो ठीक है, आप डायरेक्ट फोन से बात करिए, मतलब ब्लूटूथ या हेडसेट से हैं तो जरा हटा दिए। तो
3: डायरेक्ट फोन ही से बात कर रहा हूँ।
2: अच्छा
1: चलिए,
2: फिर तो इसके बाद इधर ही डायरेक्ट आना पड़ेगा।
3: आवाज क्लियर नहीं है?
2: नहीं नहीं अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। कैसे हैं रियाज भाई, कैसी गुजरी दो दिन?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है।
2: अच्छा अच्छा हुआ मैंने ये
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे,
2: गुजर गई
1: वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह।
3: जी अभी रेडियो पे टेलीकम्युनिकेशन के
1: बिल्कुल कनेक्शन की बात हो रही है। जी
3: 2008 के लास्ट में आया था, हमारे पास तो फोन नहीं था।
1: अच्छा।
3: लेकिन बाद में हमने एक नोकिया फोन लिया था, लेकिन फोन यहाँ से करना, मैं नेपाल से चालू करता हूँ
2: जी,
3: बहुत महंगा था। इंटरनेट में जाकर के बात करते थे जुमा के दिन, जुमा की नमाज पढ़ के खाना वाना खा करके। लेकिन मसला ये था कि हम लोग जहाँ बात करते थे ना वहाँ पे ठीक है, घर पे रिसीवर लग की खिदमत तो बहुत थी, लेकिन वो बहुत बड़ा शैतान आदमी।
2: अरे अल्लाह हाफिज़ना, क्या हरकत करते थे ऐसी, बताने वाली है।
3: एक ही सारा सोने की और दूसरा कोई रिसीवर था ही नहीं।
1: अच्छा।
3: उनके इतनी भीड़ होती थी कि 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होने देता था, और अंदर से लाइन कट देता था और बोलता था कि तुम्हारा बेटा फोन रख दिया है।
2: ओ अच्छा अच्छा, ताकि सबका नंबर लग जाए। मगर ये भी तो है ना बेचारे, क्या करते
1: हैं, उन्होंने स्ट्रेटेजी निकाली थी कि ऐसे करना चाहिए।
2: तेवर अच्छा नहीं था,
1: लेकिन लोगों की मजबूरी थी फिर भी, है ना।
2: देवर अच्छे नहीं थे, उनके जेट तो अच्छे थे। अच्छा बस, तो फिर ठीक है यार, एक भी आदमी घर में अच्छा हो तो और क्या चाहिए रियाज भाई। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई हमारे साथ। हाँ कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए।
3: वो भी एक जमाना था और आज भी एक जमाना है, कितनी तरक्की हो गई है। आज तो घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास मोबाइल है।
1: अच्छा आज ऐसे होता है रियाज जी, आज ऐसे होता है कि कोई आज भी ऐसा आपका दोस्त है जो कहता है कि भाई मेरा मेरे लिए जरा एक नंबर डायल कर दो, मुझे किसी से बात करनी है। अभी कोई आपसे ऐसे बोलता है कि मेरे लिए मुझे बात करवा दो अपने फोन से?
3: कतर में कभी कभार लोकल फोन करने के लिए। कोई बंदा बोल लेता कभी कभार बस, लेकिन आप इस तरह शादी ना, जी जी शादी ना दे रही मिलता।
1: देखो ये चीज भी हम अब मिस कर रहे हैं ना, पहले तो लोग जो थे जाते थे दूसरों के घर, अपने नंबर डायल करवाते थे, बात करते थे, आज कोई ऐसे कहता नहीं है कि भाई हमारा ये नंबर डायल कर दीजिए, बहुत ही कोई रेयर या कोई बहुत ही इमरजेंसी है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज कोई नहीं कहता। हाँ ये तो सही
2: बात, क्या बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बड़ी प्यारी बात करने के लिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच,
2: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे रियाज भाई हमारे साथ। फराज भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, आज आप मूड में लगता नहीं है। मूड मेरा नहीं लग रहा है किसी से, या मैं मूड में नहीं लग रहा हूँ यार, वो संडे है असल में,
1: सुस्ती सवार है
2: और फिर नादिया जी ने भी सुबह सुबह मारा मुझे बहुत घेर घेर के, तो फिर इसलिए जरा सा मूड।
1: आपके लिए तो 5-6 लोग बुलाने पड़ते हैं मुझे,
2: आपकी तो बात काफी होती है नादिया, तीर की तरह दिल में घुसती है, यहाँ लोगों की जरूरत नहीं पड़ती।
1: अरे एक आदमी से नहीं होता।
2: अस्सलाम वालेकुम बहन जी, भाई साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई।
2: माई फेवरेट आरजेस, मे दिस प्रोग्राम कंटिन्यू। इनको इस तरह खौफ किस बात का है? रिफत भाई,
1: देखिए रिफत जी, हम लोग बता दें कि आप सर्वर को डेफिनेटली इसी टाइम पे सुनेंगे जिस टाइम पे सर्वर आते हैं, बट या मेरे टाइमिंग से यहाँ पर चेंज हो गए हैं, तो मैं मॉर्निंग में जा रही हूँ, लेकिन हाँ अभी मैं नहीं बताऊंगी, मैं जा रही हूँ फिर मैं जा रही हूँ, तो इस तरह से मैं आते ही जा रही हूँ, कुछ ऐसा है।
2: मैं नहीं दिल तोड़ना चाहता था आप लोग का, मगर नाजिया इस चीज में बहुत माहिर हैं, तो इन्होंने अभी से ही सोचा कि ये बात कह दी जाए।
1: ये बात तो ऑलरेडी लोग अपने शोज में बता ही चुके हैं,
2: क्योंकि इनको सुबह की जिम्मेदारी निभानी है, जाहिर है तो कोई तो जिम्मेदारी निभाने वाला होना चाहिए हर जगह। तो फिलहाल के लिए नाजिया इंशाल्लाह सुबह मिलेंगी, और दोपहर में मैं आपको मिलूंगा, हमारे साथ कोई ना कोई है तो वो भी अभी वक्त रहते इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में सुबह आपके साथ महविश ज्वाइन कर रही
1: हैं। और महविश अपने शो में बता चुकी हैं, कबीर भी हमारे शो अच्छा। अनाउंसमेंट कर ही चुके, तो अभी अच्छा, अच्छा। सब कोई भी ऐसा है नहीं कि सस्पेंस जैसा कुछ रह गया है, तो बिल्कुल मैं और महविश जो है वो मॉर्निंग,
2: और मेरे साथ एक बहुत ही क्या कहूँ, बस मैं कितनी बावला आदमी कनेक्ट होने जा रहा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जो मुझसे भी ज्यादा होशियार है, और वो है आरजे सफा। बट सुना ये है कि देखिए कब से कनेक्ट होती हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ राज है। अभी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सरूर भाई, खैरियत से हैं आप और नाजिया, मुझे आप लोगों का शो बहुत पसंद है, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें इनायत भाई, ऐसा ना करें इनायत भाई, आप भी ऐसा ना करें, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। कहते हैं सर्वर का दर्द किसने देखा है नाजिया ने नाजिया ने तो सिर्फ हंसते देखा है सर्वर को, रोते नहीं अक्सर तन्हाइयों में, नाजिया ने तो सर्वर को सिर्फ महफिल में हंसते देखा। कुछ शायरी अच्छी करना चाह रहे हैं मगर दिल टूटा हुआ है इनको मालूम है। नूर मोहम्मद साहब,
1: नूर जी क्या जोड़ा है आपने बीच बीच में, आपने फ्लो ही तोड़ दिया,
2: मगर नहीं कुछ कहना चाहता हूँ शायद मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। सर्वर का दर्द किसने देखा है, नाजिया ने तो सिर्फ हंसते देखा है सर्वर, रोलाता है अक्सर सर्वर, रोता है अक्सर तन्हाइयों में, नाजिया ने तो सर्वर को सिर्फ महफिल में हंसते देखा है। ओए ओए ओए ओए ओए, बहुत भारी है भाई, ये तो लौटाना पड़ेगा मुझे। कहते हैं कॉल भी प्लीज,
1: पैसे लौटाइए,
2: कॉल करने के लिए कह रहे हैं, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हम जरूर करेंगे।
1: अब हम जब वापस आएंगे तो हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, एंड ऑफ कोर्स हमारा जो गेम सेगमेंट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज हमने क्या सोचा है वो अभी सर्वर भाई जो है वो सोच ही रहे हैं, सोच के बताएंगे
2: आपको थोड़ी सी देर में, आपको बताएंगे। एक दो मैसेज और ले लूं जाने से पहले। सर्वर जी, आपकी और नाजिया जी की जोड़ी नहीं टूटनी चाहिए। जसविंदर पाजी यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। सर्वर भाई मंसूरा से सलाम कबूल फरमाइए, मैं अब ड्यूटी निकला हूँ तो सोचा चलो दुआ सलाम कर लूं। ओए होए होए, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, मुदस्सिर इधर से गुजरा था तो सोचा सलाम करता चलूं, क्या कहने
1: क्या
2: भाई
1: बात है?
2: एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर वापस आने के बाद आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी और मजीद बातचीत में हिसाब किताब भी जारी रखेंगे।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाला लीजिए साहब, बज गए 12, 12 बज के सही 3 मिनट।
3: वाओ
2: ये आईवा 2.0 ऑफ मेरे महबूब मेरे सनम उदित नारायण अलका लीजो एंड चीते डीजे चेतनिया। जा कीजिए ट्रैक आफ्टरनून एक्सप्रेस इस वक्त चल रही है तेजी से सरवर नाजी आपके साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Ek safar alfaz ka jo duniya ko badal gaya. Kitabein jo sirf likhi nahi gayi balki sochne ka rang bhar gayi. Jinhone tareekhon ko janam diya aur insaniyat ko naye raste dikhaye. Hum aapko le jayenge kitabon ki usi jahan mein jo tareekh aur tehzeeb दोनों को रोशन करती हैं। सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी अल्फाज जो तारीफ लिखते हैं।
2: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा Guiding Little Hearts RJ Safa के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर because this show is an inspiring companion for spiritual and personal growth.
3: दोस्तों गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस एम्बुलेंसेस फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।

0: सलमान मलिक, प्रगति नागपाल। पहला नशा का 2.0 वर्जन सुना आपने यहाँ पर।
1: यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून एक्सप्रेस। तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
2: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। राइट गाइस, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस, सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं 12:15 ऑन द क्लॉक। एंड यस, आज टेली कम्युनिकेशन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर हम तो आपसे बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी अपडेट भी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने यूके रेल 2026 कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है जो बर्मिंघम के NEC सेंटर में मुनक्किद हुआ। आपको बताएं कि वजारत के बयान के मुताबिक इस शिरकत का जो मकसद था वो ये कि आप किस तरह से कामयाब पार्टनरशिप को और ज्यादा मजीद मजबूत बनाया जाए और दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जदीद रुझानात और पॉलिसीज के साथ कदम मिलाया जाए। ये दो रोजा इवेंट यूके के रेलवे सेक्टर लीडर्स, प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स, सप्लायर्स, इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है जहां मुख्तलिफ अहम मौजुओं पर बहस होती है और कोई अच्छा कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकलता है। आपको बताएं कि कॉन्फ्रेंस में कस्टमर एक्सपीरियंस, डिजिटल इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड डीकार्बनाइजेशन जैसे टॉपिक्स पर खास तवज्जो दी जाती है, जबकि सिग्नल से रिलेटेड जो सिस्टम है उस पर, वहीं स्मार्ट रेल कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और रेल असिस्ट मैनेजमेंट भी, इन पर भी बातचीत हुई। वहीं वजारत ने मजीद बताया कि इस किस्म के जो इवेंट्स हैं उनके जरिए मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल अक्वामी इदारों के साथ तावन को फरोग दिया जाता है, जबकि बायलेटरल मीटिंग्स की जाती हैं जो कि कौमी मफादात और तजुर्बे के तबादले में मददगार साबित होती हैं। जी हां, यूके रेल 2026 और इसके साथ मुनक्किद एग्जीबिशन रेलवे सेक्टर की मुकम्मल वैल्यू चेन के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है जहां पर पार्टिसिपेंट्स सॉल्यूशंस का मुकाबला कर सकते हैं, चैलेंजेस का हल ढूंढ सकते हैं और अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, ये अपडेट आपके साथ हमने शेयर की एंड नाउ लेट्स गेट कनेक्टेड।
0: बिल्कुल, यहाँ पर हमें कॉल करने के लिए कहा गया था और जो भाई थे उनको मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि कहीं अभी मसरूफ हैं। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस, एक छोटा सा ब्रेक
1: yes.
0: और वापस आने के बाद आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, नाजिया कैसे हैं आप दोनों, और नए प्रोग्राम में आप लोग एक साथ नहीं हैं, सुन के परेशानी हुई। कौन है हमारे साथ? वाजिद साहब हैं। नाजिया क्या कहना चाहती हैं आप इसके हवाले से?
1: अब इसके हवाले से तो मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ, देखिए सब लोग आगे पीछे थोड़ा बहुत रोटेशन तो चलते ही आप जानते ही हैं। इंशाल्लाह वापस फिर हम जो है फिर आएंगे साथ इंशाल्लाह। तो बस ऐसे ही आगे पीछे थोड़ा बहुत तो होता ही है, आपको मालूम ही है।
0: तो भाई यहाँ पर जबरदस्ती अपडेट और नाजिया ने दो दो अपडेट दे दी आपको एक ही साथ।
3: तेरे संग यारा,
0: आतिफ भाई के साथ कनेक्ट होते हैं।
3: खुश रंग बहारा,
0: अब मैं क्या कहूँ, बाकी बातें तो ये कह ही रहे हैं।
3: रात दीवानी,
0: एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।
3: मैं जर्द सितारा,
0: आफ्टरनून एक्सप्रेस पे सर्वनाथी आपके साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से
1: देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए। इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सुनिए कुरान फॉर किड्स हर बुध शाम 3 बजे से RJ तलहा के साथ।
2: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर Every Monday, 10 a.m. onwards. Only on FM 107, Dil Se Desi. Your guide for a smarter, a strong financial decision. Sirf sunna hi nahi, samajhna bhi shuru kijiye.
3: Science can be fun? Nah, science will be fun. Kyunki experiments honge, tabhi to theories facts banengi. Hai na? To bas, duniya badalte dekhiye hamare saath. Kyunki hum karenge fun science experiments. दोहा वाले कबीर के साथ एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
2: क्या बात है भाई, तो यहाँ पर सिलसिला जारी है और आफ्टरनून एक्सप्रेस में इस वक्त सर्वर नाथिया आपके साथ बने हुए हैं और बात हो रही है आज टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से। भाई, अब वेदर भी इस वक्त जबरदस्त हो रखा है और इसके हवाले से हम बात करेंगे फिलहाल, क्योंकि बहुत देर से हमसे कोई कनेक्ट होना चाह रहा है, तो उनको आइए कनेक्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
2: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
5: नहीं, मैं हमेशा नाम बताता हूँ, आज पहचानो आप लोग।
6: अरे तो नूर जी हैं। नूर, नूर जी, नूर जी।
2: देखिए, बता दिया ना भाई,
6: पहचान लिया, सही बता।
5: मोहम्मद अय्यूब बलोच।
6: गलत पहचाना तो हजर
5: लेकिन मोहम्मद नूर मेरे वाले सब का नाम है।
6: अरे अरे, ऐसा क्यों करेंगे भाई, हम लोग आपको दोनों मिलेंगे लेकिन बिल्कुल अलग अलग टाइम पे हैं, तो खैर मुलाकात तो होनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए अय्यूब जी कि आप हम लोगों का साथ छोड़ दें। ये क्या,
5: वो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे,
6: मजा नहीं आएगा ना। नहीं, आप लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, तो वो तो आपको मिलेंगे, वो मिस नहीं करेंगे। सिर्फ हाँ, RJ बदल जाएंगे, वो एक अलग बात है, तो लड़ाई झगड़े वैसे ही चलेंगे, डोंट वरी।
5: नहीं, वो चीज वो नहीं मिलेगा, आप लोग एक दफा गया
2: बस, आप लोग
6: अरे एक बार गया फिर वापस आए, हम पहले गए थे फिर आए, देखिए अब फिर आएंगे इंशाल्लाह, तो इस तरह से शफलिंग तो चलती ही रहती है, तो वो तो है ही है।
5: चलो अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे हम लोग को। जी फरमाए, क्या मुझे आपका आज का टॉपिक वगैरह क्या है मुझे
2: आज? यू भाई, हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन, टेलीफोन, आपकी जिंदगी में क्या चेंज लाया, कोई पुरानी याद, कोई पुरानी बात हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। टेलीफोन से मुतालिक, फोन से मुतालिक।
5: अच्छा, फोन में ये फायदा है कि बहुत पुराने दोस्त मुझे जो फेसबुक वगैरह के जरिए मिल गए, बहुत पुराने पुराने जिनका साल पता नहीं था।
2: वाह वाह वाह, क्या बात है,
6: ये बहुत अच्छी,
2: ये तो बहुत अच्छी बात है वाकई, एक अच्छी
5: पुराने पुराने दोस्त, क्लास फेलो स्कूल के, बचपन के, डगुड़िया यार, मोमेरल यार, कुछ ब्रिटिश के, लंदन के, पेरिस के, उधर से मिल गए ये फेसबुक के जरिए।
6: वाओ नाइस, ये जान के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई।
2: क्या बात है भाई।
5: हाँ, बहुत पुराने पुराने लोग मिले तो जिंदा हो गए आदमी, दोबारा जिंदा हो जाते।
2: हाँ, जब दोस्त मिल जाते हैं तो ऐसा तो होता ही है वाकई, ये बात तो है ही है। और अल्लाह ताला आपके दोस्तों को खुश रखे भाई, आपको खुश रखे। बहरहाल आपकी बात बड़ी अच्छी लगी और बिल्कुल मायूस मत होइए, इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको एंटरटेन करने के लिए हर वो कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जो मुमकिन होगी।
6: इंशाल्लाह बिल्कुल
5: कहने में
2: भाई, आप ये भी तो देखिए कि नाजिया को जिंदगी में थोड़ा सुकून मिलेगा इसलिए खुश हो जाइए। है ना, ये भी तो है पॉजिटिव।
5: आपका खाना हजम भी नहीं होगा ना नाजिया के बगैर।
2: अब वो तो है ही, मैं नहीं, इंशाल्लाह मैं तो
6: बिरयानी को के आगे इनको ये कुछ नहीं देखते हैं भैया, सब भूल जाते हैं
2: जी।
5: और आप लोगों ने अभी एक बहुत आतिफ असलम का एक सुनता नहीं गाने, लेकिन ये
2: अच्छा लगा आपको।
5: ये आप लोगों ने खबर भी ऐसा सुना और सॉन्ग भी ऐसा डाल दिया।
6: ये सर्वर मेरे साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं गाने सारे।
2: चलिए साहब, कहीं ना कहीं से मैच हो गया हमारी सूरत हाल से इस वक्त।
5: अयूब भाई, बस मैं एक बात कह रहा हूँ, आखिरी बात। मैंने कहा कदर करिए लोगों का, दोस्तों का, खासतौर पर रिश्तेदारों का, खासतौर पर उनका कदर होनी चाहिए, एहतराम होनी चाहिए, खिलाओ पिलाओ, खुशते रहो, हंसते रहो। क्योंकि एक शेर इस पे भी आता है ना कि कदर करना है जिंदगी में करो,
6: सही
5: कदर करना है जिंदगी में करो, मरने के बाद पराये भी खांदा देते हैं जनाजे को।
6: बिल्कुल,
5: इसलिए जिंदगी में जाओ, मिलो, खाओ, पियो, हंसो, मजाक सब छोड़ दो, कुछ नहीं दुनिया में, सब जाने वाला है। वो सिकंदर आजम ना एक बादशाह था मुसलमानों का, चार बादशाह गुजरे, दो मुसलमान दो गैर मुस्लिम। उसमें सिकंदर आजम जो है बहुत 33 या ऐसे जवानी में फोत हो गया, अपने खादिम से कहा कि जब मैं मर जाऊं, उसको अल्लाह ने जिंदगी में जवानी में सब कुछ दे दिया। वो कहते हैं जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे कफन से दोनों हाथ बाहर रखना, पूरी दुनिया को पता चल जाए कितना बड़ा बादशाह भी खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। इसलिए भाई कदर करो अपनों का, वापस आओ, गले मिलो, खाना खिलाओ, पिलाओ, रिश्तेदारों को सब माफ करो, कोई कुछ नहीं लेके जाता साथ में।
2: सही,
5: हाँ, बस ये सरवर मिर्जा जो है खाना
6: ये खाना लेके जाते हैं
2: मेरे साथ जाएगा, मैंने कर दिया वसीयत। मैं भैया भेज दियो जरा सा, एक दो तीन देखें
6: कोरमा
2: साथ में ले जाएंगे, देखी जाएगी जो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अयूब भाई और तमाम हजरात के लिए। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और नाजिया आप लोगों को छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, हम तो आपके साथ इंशाल्लाह मौजूद हैं और रहेंगे भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
7: मोहम्मद उवैस।
2: उवैस भाई, क्या हाल चाल? उवैस भाई खैरियत से?
7: अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया ठीक ठाक है। वाकई आप लोग क्या मतलब वो हो रहा है अलग, आप लोग
6: मुझे लगता है आज का मौजू ही बदल गया हमारा,
2: हम वाकई अलग हो रहे हैं उवैस भाई, सही फरमाया, हम वाकई ही अलग हो रहे हैं।
6: नहीं नहीं, हम लोग हमेशा साथ हैं, हम एफएम 107 का हिस्सा है, अलग हो नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत शब्द
7: मतलब वो टाइमिंग आपकी अलग हो रही, मॉर्निंग में है और सरवर भाई यही सेम टाइम आएंगे, मगर वो पंचिंग वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा।
6: नहीं, ये सुबह के पंच करेंगे, मैं और सुबह के पंच करूँ?
2: हाँ नहीं, हमारी मशीन काम कर रही पंचिंग की, उसके बगैर तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही हमें,
6: हम तो बराबर पंच।
7: वो वाली पंचिंग नहीं, वो वाली पंचिंग नहीं, जो लोग जोक होता है वो मजा आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है।
2: अल्लाह ताला खैर करने वाले हैं इंशाल्लाह।
6: और नया शो जब नया स्टाइल आएगा तो आपको आई एम श्योर वो भी बहुत पसंद आएगा।
2: बिल्कुल,
6: तो हमारे साथ जुड़िए और
2: इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और कसर कोई नहीं छोड़ी जाएगी आप लोगों को खुश रखने में इंशाल्लाह।
7: बिल्कुल बिल्कुल, अरे मिर्ज़ा साहब से पुराना रिश्ता है।
2: अच्छा, हमारी रिश्तेदारी भी चल रही है, ये तो आज पता चला हुआ है भाई। चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई।
6: आमीन।
2: और उमेश भाई आज हम बात कर रहे हैं टेली कम्युनिकेशन के हवाले से, तो कुछ ऐसा याद रख पड़ता है कोई ऐसी बात टेलीफोन के हवाले से भाई? जैसे मसलन पहले
6: या किस तरह से आपको कभी सोशल मीडिया ने किसी पुराने दोस्त से जो है वो रीकनेक्ट किया, जैसे हमारे एक लिसनर ने आके हमें बताया, या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब तक का बेस्ट इन्वेंशन क्या है? क्या इंटरनेट आपको लगता है बेस्ट इन्वेंशन है, या स्मार्टफोन्स है, या फिर सोशल मीडिया है, या कुछ और ऐसा जो आपको लगता है कि या ये सो फार इज बेस्ट इन्वेंशन?
8: नाज़िया बहन सब सब बेहतर है, तो अच्छा। बस है यूज, आप यूज करने पे है, आप किस तरीके से उसको यूज करते हैं है तो सब बहुत अच्छा। मतलब इससे पुराने दोस्त आपके कनेक्ट रहते हैं, आपके रिश्तेदार कनेक्ट रहते हैं, और सोशल मीडिया पे भी आप मतलब आपके जो जानने वाले हैं क्यों हैं उसको आप देख सकते हैं, उनके वीडियो या फोटोज कुछ भी, तो उससे बेहतर है, अच्छी चीज है। आप बस आप बेहतर यूज करें उसका,
2: बेहतर यूज करें, ये बड़ी अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी अच्छी बातें करने के लिए। इसी तरह से बस मोहब्बतों से नवाजते रहिए और अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे साथ जुड़े भी रहना इंशाअल्लाह।
8: अरे आप से तो हम जुड़े ही हुए हैं।
2: अच्छा
8: आप से तो जुड़े हुए हैं।
6: अरे तो मुझसे क्या आपकी नाराजगी चल रही है, मुझसे भी जुड़े रहिए।
8: अरे नहीं भाई, अरे नाज़िया बहन से तो बिल्कुल है,
2: मतलब वो एहतियातन इज्जत और रेस्पेक्ट के हवाले से।
6: अच्छा
8: नाज़िया बहन की ज्यादा करते हैं,
2: हमारी तो है ही नहीं, हमारी तो मसला ही नहीं है रेस्पेक्ट से,
8: आप खुले देखिए मसला ही नहीं है,
2: अब
8: आपका तो हमारा कोई मसला ही नहीं है ना।
6: माशाल्लाह देखो कितनी अच्छी बात
2: कही, बहुत प्यारे हुए भाई,
6: हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ डेफिनेटली जुड़े ही रहेंगे
2: इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। अभी तो है, अभी टाइम है, अभी 10 दिन हम आपके साथ
6: हैं, 10 दिन है बहुत,
2: और साथ गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
8: इंशाल्लाह।
6: ऑलराइट एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट होते हुए।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
9: तरुण भाई अगर आज नहीं पहचाना ना तो जुदाई हमारी होगी 10 दिन पहले।
2: अरे यार मैं तो चाह रहा था कि जरा सा आप थोड़ा सा और इसी तरीके की मोहब्बत वाली बातें मुझसे कर दें
6: तो
2: ताकि थोड़ा अरख जो है ना वो और निकल आए मोहब्बत का।
9: मैं अभी बिरयानी की देख कर ढक्कन हटाता ना फिर आप पहचान जाते।
2: नहीं नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, आपकी आवाज बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी प्यारी आवाज है जमील भाई की। तो कैसे है सर, खैरियत से है?
9: सर भाई अलहमदुल्ला, ये क्या आप लोगों ने क्या इतना अच्छा सा कॉम्बो पैक मिला हुआ था हमें, मॉर्निंग किक मिली हुई थी। ये नाज़िया जी ना मुझे लगता है ये इनकी थोड़ी ना किसी के साथ कंफर्टेबल हो नहीं पा रही,
6: ये सारा कुछ
2: यार आप ये
6: नहीं नहीं
2: आप ये समझिए कि ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी हैं कि हर कोई इनके साथ रहना चाहता है। अब उसमें हम लोगों की लाइन लगती है तो भाई आज मेरा नंबर था, अब कल किसी और का, इसको ऐसे समझिए।
9: पर्ची
2: लगी हुई है।
6: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सैयद जी, ये तो बस हमारी जो मैनेजमेंट है ना,
9: हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, अलहमदुलिल्लाह ग्लोबल इवेंट अटेंड करती है।
6: हाँ नहीं इंशाल्लाह आपका और हमारा कनेक्शन बना भी रहना चाहिए इंशाल्लाह, और ये हमारे मैनेजमेंट की तरफ से होता है, वो शफलिंग तो होती ही है हर स्लॉट में।
9: ये अच्छी बात है, थोड़ा टेस्ट अलग होना चाहिए, कभी सुलेमानी पी ली,
2: कभी कश्मीरी पी ली गुलाबी वाली,
9: कभी बिरयानी,
6: ये यही सोच है कि
2: बदलते रहना,
6: थोड़ा थोड़ा चेंज हमेशा आता रहे और इस तरह से चलता है, बट इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे इस चेंज को भी। आपको मिलते रहना, ये नहीं कि फिर आप हमें नजर ही नहीं आ रहे।
9: आपने तो टाइमिंग भी अलग कर रखी है ना, आप तो अलग करनी पड़ेगी मजीद के नाज़िया जी शो में, सर्वर भाई हमारे ग्रुप इस शो में है,
6: तो बस आप ऐसी सेटिंग करिए कि अब सर्वर भाई से भी आपकी बात हो और मुझसे भी मॉर्निंग वाले शो में बात हो, ठीक है?
2: इंशाल्लाह ताला, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जमील साहब. कुछ टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से और बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? कोई याद
9: विशेष टिप्पणी यही है कि जो टेलीकम्युनिकेशन है ये अब तक की मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट इन्वेंशन है, सबसे बेस्ट, जिसने फासलों को भी कम किया, जिसने बिजनेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया. और स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है वो फिर उसका अपग्रेड वर्जन आ जाता है. मतलब पहले तो हम फोन पे, तो भाई मैं, हमें याद है 2004-05 में लाइनें लगा के पब्लिक बूथ में खड़े हुआ करते थे, 200 लोगों के बाद नंबर आता था जुम्मे वाले दिन. अब ऐसा नहीं है, अब रूम के ऊपर बैठ के करते हैं जैसे जैसे हालात बदल गए. बट अब तक की बेस्ट इन्वेंशन है अगर पॉजिटिवली कोई यूज करे. और लोग इसको जो है आपने देखा है हमारे मुल्कों में, देशों के अंदर इसको नेगेटिव भी यूज करते हैं, वो उन्हीं का ही नुकसान होता है. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें फायदा हुआ है. और अल्हम्दुलिल्लाह कतर ने तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा इतना अपग्रेड करके रखा हुआ है कि हमें अपने बिजनेस के लिए अब डोर टू डोर भागना नहीं पड़ता.
6: अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है यार, बहुत ही अच्छी बात है.
2: हमेशा की तरह बड़ी प्यारी बातें सईद जमील भाई की, और मोहब्बतों से नवाजते हुए इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और खुश रहें. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ.
6: बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
9: बहुत शुक्रिया.
6: ऑलराइट, और एक और कॉलर सर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो,
10: अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
10: गुलजार से बात कर रहा हूँ
2: जी. गुलजार भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं
10: जी? अल्लाह का करम है बड़ा. आप बोलते हैं ना टेली कम्युनिकेशन का जो है आपसे छोड़ गई, ये टेली कम्युनिकेशन है तो हम आपसे बात कर रहे हैं ना.
2: बिल्कुल सही,
6: बिल्कुल बिल्कुल
10: जी. तो पहले डॉक्टर लिखते थे हम लोग जी, ये बहुत अच्छा है. लेकिन कुछ अपना अपना हर किसी का जहन होता है ना, कैसे इस्तेमाल करते हैं
6: जी.
10: जो फेसबुक है या जो भी है, यूट्यूब है या कैसे भी है, वो अपना अपना इंसान का अपना अपना नेचर है या अच्छे के इस्तेमाल करके अच्छा, जो बुरा करेंगे तो वो उसका अपने हिसाब है, किसी को मना नहीं कर सकते,
6: मना नहीं कर सकते. बिल्कुल सही कहा.
10: अच्छा है. वैसे अयूब लोन साहब ने कहा कि वो बड़े बड़े अच्छे दोस्तों से दूर दूर से रबते हुए हैं इसमें. पहले तो घर में जाओ तो बच्चा पैदा होगा ना, दो साल बाद हम जाते हैं, बच्चा नहीं पहचानता है कौन आ गया. जा अभी तो मोबाइल सिस्टम है ना, उसमें वीडियो कॉल कर देते हैं, मालूम पड़ जाते
6: हैं.
10: ये कहते तो सही बात है,
2: सही,
6: बिल्कुल सही. हाँ?
2: बैठिए भाई, मैं घर पहुंचे तो बच्चे ने बिठा दिया ड्राइंग रूम में, बैठिए मैं अंदर से किसी को बुला के लाता हूँ.
10: नहीं नहीं, वो नहीं पहचानते, हकीकत है, मजाक नहीं है.
2: सही, नहीं, सही बात. सही बात.
10: मेरे साथ वास्ता हुआ ना, बड़े दो बच्चों के बाद में बच्ची को तो उस वक्त मैं था कॉल सिस्टम था वीडियो का, वो तो मुश्किल नहीं है. लेकिन बच्चों ने पाप पहचानने से इनकार दिया, ये कौन आ गया भाई.
2: बड़ी फनी चीजें भी होती हैं वाकई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और बड़ी अच्छी बात शेयर करी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया.
10: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह खैर करे. और इससे काफी काफी मुकदमात भी आलू हुए इससे, ठीक है. ये भी सब काफी मुकदमा, यानी कत्ल डकैती जो भी है ना, इससे वो लोकेशन से काफी मुकदमा पाकिस्तान में तो काफी आलू गए,
2: बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. सही, बिल्कुल सही.
10: बहुत शुक्रिया जी,
2: बहुत शुक्रिया. बहुत
6: शुक्रिया, खुश रहिए. थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज,
6: अल्लाह हाफिज.
2: ओके, यहाँ पर कुछ मैसेजेस कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सरवर भाई, खैरियत से हैं आप? सरताज भाई हमारे साथ. ओके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कॉल उठा ले सरवर. कौन
6: अच्छा,
2: है
6: तो यहाँ कॉल तो आ रही है हमारे पास.
2: ओके, लो भाई उठा लेते हैं, इतनी डाटा है मुझे कॉल के ऊपर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
9: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. मैंने तो मैसेज नहीं किया भाई, पहले बता रहा हूँ.
2: अच्छा, ओके. कौन है?
9: हालांकि बुध जुमेरात से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कॉल लगा नहीं और आज तो उठा ही नहीं रहे थे.
2: अरे लग तो गया सर, देखिए अब हम आपके साथ हैं. ऐसा हो रहा है वाकई में? मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने शाहरुख खान को आवाज दी थी डर में?
9: नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा लगा, लेकिन लेकिन मेरे दिल की बात किसी ने बोल दी, लेकिन मैं बोल नहीं पाया वैसा.
2: क्या बात है भाई, क्या बात है
9: जी.
2: तो कौन है हमारे साथ, नाम तो बताइए.
9: मजहर खान. मजहर
2: मजहर भाई. ये
6: मजहर खान
2: कैसे हैं मजहर भाई, खैरियत से?
9: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं. आप लोग कैसे हैं?
6: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत.
9: फोन लगाने के चक्कर में आपको तीन मरतबा गाड़ी पार्किंग से निकाला हूँ, तीन मरतबा पार्किंग में डाला हूँ गाड़ी.
2: अल्लाह ताला

0: अल्लाह ताला आसानी करे भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके लिए आसानियां पैदा हो। तो क्या बात शेयर करना चाहते हैं मदर भाई?
1: बस एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा था, वो जुमेरात के दिन भी कहा था उसमें, एक दो मिनट की बस।
0: हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड प्लीज।
1: जी जी जी, तो जैसा कि जुमेरात के दिन भी आप लोगों का मसला चल रहा था, वो एक अजीब सा टॉपिक चढ़ गया था, तो उसी के ऊपर एक कहानी याद आई थी, लेकिन उस वक्त पे मौका नहीं मिला, तो आज मिल रहा है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक पायलट अपने हवाई जहाज को लेकर जा रहा था, तो उसने एक ऐसे एयरपोर्ट पर जहां पर आम हवाई जहाज का आना बिल्कुल मना था, वहां पर उसने इमरजेंसी में अपने एरोप्लेन को लैंड कर दिया। तो जब उसने लैंड किया तो अतराफ से आर्मी ने उसे घेर लिया कि भाई लगता है कोई दुश्मन है। तो फिर उसको एक ने ले जाया गया, तफ्तीश की गई, रात भर उसे बिठाया गया, पूरे एरोप्लेन की जो है तो तफ्तीश की गई। बाद में पता चला कि अंदर कोई खराबी नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मशकूक नजर आए। फिर आर्मी ने उसे कहा कि भाई आइंदा अगर कोई भी मुश्किल हो जाए, कोई भी इमरजेंसी हो जाए, तुम दोबारा इस एयरपोर्ट के ऊपर अपना एरोप्लेन लैंड नहीं करोगे। उसने कहा कि भाई मेरा तो फ्यूल खत्म हो गया था, इस वजह से मैं लैंड किया, मैंने लैंड किया वरना मैं लैंड नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि आइंदा अगर कभी भी कोई भी कितनी भी इमरजेंसी हो, इस एयरपोर्ट के ऊपर तुमने लैंड नहीं करना, अगर लैंड करोगे तो सारी जिंदगी आपको जेल में बैठना पड़ेगा।
2: अच्छा।
1: तो अनफॉर्चुनेटली दूसरे दिन शाम के वक्त में फिर उस एरोप्लेन ने वहां पर लैंड किया एक पैसेंजर को लेकर। फिर से उसे आर्मी ने घेर लिया। जी, फिर से उसे पूरी आर्मी ने घेर लिया और कहा ने तुम्हें कहा था चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए इस एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करना। लेकिन उस पायलट के दर्द को, उसने जो कहा आगे, उस दर्द को सुनकर सारे आर्मी वाले भी उसके ऊपर रहम करने लग गए कि उसने कहा कि भाई आपको मुझे जो सजा देनी है दे दो, मुझे मंजूर है, बस मेरे साथ जो पैसेंजर बैठी है मेरी वाइफ इसे बता दो कल रात में कहा था। जुमेरात के रोज सरवर मिर्जा साहब का हाल ऐसे ही हो गया था, मैं भी जैन के सामने।
0: अरे भाई वाह, क्या बात है, और खूब उतारा आपने साहब एरोप्लेन को और खूब सवारियां मिलाई। बहुत खूब साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ही अच्छी बात शेयर करी, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
0: अल्लाह हाफिज।
2: पता नहीं किसने बोला था कि हमारी कॉल पिक कर लो, तो ये तो नहीं है, ये शख्स तो नहीं है।
0: कॉल करने का नंबर क्या है?
2: ऑलराइट, सो कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। इट्स लाइक 443-443-77।
0: अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई और नाजिया, कैसे हैं हाल आप दोनों के? समी हमारे साथ जुड़ गए, रमेश यादव आए हैं, कहते हैं सरोज भाई वेट जरा कम करिए, सुबह नींबू गर्म पानी से मिलाकर पीजिए। मेरा ख्याल कर रहे हैं सुबह नाजिया को आना, मुझे नहीं आना, तो मैं तो वैसी के वैसी जी रहा हूँ। ओके, अमजद इकबाल साहब यहाँ पर आ गए और सलाम कहते हैं, और बिल्कुल हम अमजद भाई को अपडेट भी हमें करना था। अच्छा हुआ अमजद भाई ने हमें याद दिलाया यहाँ पर। बिल्कुल अमजद साहब, इंशाल्लाह आपकी जो बात है हम आगे पहुंचाएंगे और आपको जरूर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर भाई और नाजिया सिस्टर, मुझे आज भी हंसी आती है वो बात जब याद आती है। 2012 की बात है कि मैं फोन लेकर आया, तब इन्होंने बताया कौन सा फोन था, मेरा तो जी ने मेरा तो ओके कुछ कहना चाहते हैं, पूछा कौन सा फोन है, कोई नाम वाम है या नहीं, तो मैंने बोला कि ये नाम है, तो वो बोले क्या टेंशन है। अच्छा मैं समझ गया कि वो मिलाना चाह रहे हैं, असल में नाम नहीं ले सकता गुलफाम भाई, इसलिए आपका मजाक अधूरा रहा। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है, अस्सलाम वालेकुम। अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
3: मैं मुनीबा बात कर रही हूँ, और अभी जब पहले स्टोरी सुना रहे थे वाकई में एक नतीजे में चेंज हो गई।
2: वो सच्चा किस्सा था जो उन्होंने सुनाना चाहा। जी जी हेलो,
3: आज किस मौजू पर बात कर रही हैं?
2: आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज सेलिब्रेट हम कर रहे हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात हो रही है। आपको क्या लगता है अब तक का आपके हिसाब से बेस्ट इन्वेंशन जो है वो क्या है, किसे आप समझती हैं?
3: टेक्नोलॉजी जो भी गैजेट आप यूज कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज अ मैन जनरेटेड वर्चुअल वर्ल्ड, और किसी भी चीज का जिस तरह मिसयूज ओवरयूज गलत है उसका भी गलत है, और अगर इसका दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत यूजफुल है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो गई हैं इससे. तो अगर सेलिब्रेशन जो कि आज जिसकी सेलिब्रेशन है तो इस लिहाज से फिर इसके बारे में पॉजिटिव बात भी अच्छी रहेगी. आसान हो गई है, पहले लोग दूर दूर से एक दूसरे को कॉल कर रहे होते थे, अब वो ऐसे कनेक्ट होते हैं कि ऐसे लगता है कि सामने बैठे हैं, तस्वीर भी देख पा रहे हैं और बात भी कर पा रहे हैं. और डॉक्यूमेंट्स है, सीवीज है, जॉब के लिए अप्लाई करना इतना आसान हो गया है, जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल करना इतना आसान हो गया है, घर बैठे आप सबसे कनेक्ट कर पाते हैं. आपको कोई रन पे कोई चीज देखनी है तो आप आराम ले लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है आपने, ऑनलाइन ग्रोसरी करनी है तो वो इतना आसान हो गया है. स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना इतना आसान हो गया है, अगर किसी किस्म के कोई डेंजरस सूरत हाल हो तो ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत मौजूद है, घर बैठे सब लोग हर तरह के हुनर सीख रहे हैं, हर तरह की चीजें सीख रहे हैं.
0: सही.
3: तो इसका फायदा बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मिसयूज है उससे भी मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए. अगर आप इसको मिसयूज करें, जैसे बच्चे गेम्स वगैरह के लिए इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये उनके ब्रेन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है. और देखिए वक्त आपके पास जो है ना लिमिटेड सा ही होता है स्टूडेंट लाइफ में. अगर वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को और अपनी स्टडीज को निग्लेक्ट करेंगे तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा. इसी तरह जो रिलेशनशिप से बाजूकात पार्टनर्स एक दूसरे को या अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, ज्यादा टाइम इसी पे गुजारते हैं, या ज्यादा टाइम अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लगे रहते हैं और बैलेंस नहीं रख पाते तो फिर ये उनके लिए अच्छा नहीं रहता.
2: सही सही.
3: तो बस
2: जी, गुड बैलेंस तो
3: होना चाहिए.
2: हाँ,
3: मिसयूज होना चाहिए. अगर आप बैलेंस दे लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं तो ये बहुत काम की चीज है,
2: बहुत ही यूजफुल है. सही बात है, there has to be a good balance. और जैसे आपने खुद भी कहा कि excess of everything and anything is bad, तो बहुत ज्यादा excess नहीं होना चाहिए, good balance control way में हो. और ये एक tool है, ये हम इसको चला रहे हैं, ये हमें dominate ना करे, that is the important thing. तो ये चीज
3: अगर ये dominate करने लग जाए ना हमें, ये समझे कि virtual world में आपको चीज ले जाती है, और फिर अगर कोई आपको रियल वर्ल्ड में लाना चाह रहा है ना तो इसका इफेक्ट भी इतना ज्यादा ब्रेन पे डेवलपमेंट पे कि आप एक माँ को भी अपने बच्चे को कंप्यूटर से उठाने के लिए एक रोबोटिक बॉय के साथ फाइट करना पड़ता है. बच्चे उसको प्रेफर करते हैं, माँ की बात नहीं सुनते, टीचर की बात नहीं सुनते.
2: हाँ, ये एक तरह का एडिक्शन में तब्दील हो ही जाती है हमारी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है निकलना.
3: और बहुत अर्ली एज से माई जो है ना इंट्रोड्यूस करा रही, खाना खिलाने के लिए लगा दी, क्योंकि है ना उनके अपने हाथ में दिया. तो इसी के हवाले से मुझे एक बहुत मजे की बात याद आ रही है. मेरी भांजी है, बहुत छोटी थी, वो अभी 2 साल की होने वाली है.
2: जी जी.
3: उसके मामा ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हैं और फूड पांडा से चीजें वगैरह भी ऑर्डर करती हैं. तो फिर उन्होंने उसने बहुत, वो आजकल अवेलेबल भी नहीं होती ना, ये किसी टाइम बच्चे को दिखा दिया तो वो ये चाहती है कि मेरी बेटी जो है ना वो इसका ज्यादा यूज ना करे. तो हुआ ये कि मेरे भाई को जो है ना एक डिलीवरी मौसूल हुई, फूड डिलीवरी फूड पांडा से. तो वो अनवांटेड थी और उनके लिए वो एक सरप्राइज थी. तो बाद में पता चला कि अपनी मामा की एब्सेंस में कहीं से अनलॉक फोन उस 2 साल से थोड़े कम महीने कम के बच्चे को, जुलाई में एक्चुअली वो 2 साल की होगी, उसको उसके हाथ लग गया. और मे बी शी वांटेड टू गो सम यू नो नर्सरी राइम, लेकिन वो टिक टिक करते करते उसके ऑटो पे जाके एड्रेस भी उसका वो हो गया और वो फूड डिलीवरी जो है किसी दूसरे शहर में जो एक्सटर्नल फैमिली का होम था वो डिलीवर हो गई. और जब भाई पढ़ने ये देखा कि नंबर तो मेरी डायल का है तो उसने फोन किया और फिर उसने अपना सारा इंस्ट्रक्ट करके बताया कि भाई ये तो मेरी छोटी सी बेटी का कारनामा है. और फिर उनको पे भी करना पड़ा और वो खाना खाना भी पड़ा और ये यानी लिट्टी तो बन गया कि माशाल्लाह से बच्चे आजकल जो है ना वो क्या से क्या कर जाते हैं. और
2: सही बात है, बिल्कुल. नहीं, गुड गाइडेंस की तो खैर बच्चों को जरूरत है ही, ये तो हम हमेशा ही कह रहे हैं.
3: छोटी बच्ची है ना,
2: वो तो खैर छोटी है,
3: दुबाती गई ना.
2: जी जी जी,
3: दुबाती छोटी है. हाँ, डिलीवरी हो गई और वो भी दूसरी जगह पे अनवांटेडली ना.
4: तो फिर जब मेरी बहन और भाई ने आपस में कम्युनिकेट किया तो उनको पता चला कि ये हुआ था, तो हम सब लोग भरते भी और साथ में

0: सही, चलिए ये भी आपने अच्छा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया. थैंक यू सो मच मनीवा, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय. ऑलराइट दोस्तों, तो आज ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस डे को सेलिब्रेट किया, वे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे. और आखिर में जाते जाते ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि टेक्नोलॉजी ने डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया और हमारी ज़िंदगी कनेक्टेड है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो या फिर वीडियो कॉल्स हो. ये जितनी भी इन्वेंशंस हैं, इन सब ने हमारी दूरियों को जो है वो कहीं ना कहीं कम किया है. लेकिन एक चीज़ हमें और आपको याद रखनी चाहिए, वो ये कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ज़रिया है. असली अहमियत इंसानी रिश्ते और कम्युनिकेशन की है, तो उस रियल कनेक्शन को लूज ना करें. बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वाइजली इस्तेमाल कीजिए और अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए कीजिए. इस तरह से नहीं कि ये आप पर और आपके रिश्तों पर हावी हो जाए.
1: बिल्कुल सही भाई, और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिए. साथ में यहाँ पर इजाजत लेने से पहले कुछ मैसेजेस भी. कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी एक राय है, एडवाइस है, मशवरा है कि ये जो नए प्रोग्राम आ रहे हैं, इस पर अगर व्हाट्सएप से भी कॉल ले ली जाए उन लोगों की जो नहीं है कतर में, तो कैसा रहेगा, ऐसा कहना है. तो अमजद भाई हमारे साथ, क्योंकि अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
0: अब इसके लिए पूरा हमें
1: और बाहर है,
0: हम कह देंगे आपकी. हाँ, ये बात क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये तो फिर टेक्निकल टीम ही इसमें कुछ कह सकती है.
1: आपकी बात आगे तक जरूर पहुंचाएंगे और आपका जवाब भी हमें लेना है इंशाल्लाह ताला, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे जरूर. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमें आपके साथ FM 107 शहजादा सलीम साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. कहते हैं किसी ने सरवर भाई से कहा है कि नींबू पानी पिया करो, फैट लॉस होगा. सरवर भाई ने कहा ओके, लेकिन सरवर भाई ने नींबू पानी पीकर नींबू के दरख्त के नीचे नींबू के पेड़ पर ओके. चलिए मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं पटाल भाई. वैसे है अपना रवैया ऐसे ही. फिलहाल आज के लिए अब आपसे ले लेते हैं इजाजत, हरदम हरदम के साथ प्रीतम और अजीत की आवाज में एंजॉय कीजिए ये ट्रैक. आप सुनून एक्सप्रेस पे सरवर और नाजिया कल आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट होंगे सही 11 बजे, तो 11 से 1 जरूर वक्त निकालिए, बाकी प्रोग्राम के लिए भी वक्त निकालिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते और सुनते रहिए FM 107
0: दिल से.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ, उसके लिए तो
1: वैसे
2: तुम...
1: कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
3: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ, जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107। दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिन किराम, आज एक अजीम दुआ हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजाना सोना चांदी के बराबर करार दिया, बल्कि इससे भी ज्यादा कीमती बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए शद्दाद, जब

तुम देखो कि लोग सोना और चांदी जमा कर रहे हैं तो तुम इन कलिमात को जमा कर लो और ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका थबात फिल अम्र, ए अल्लाह मैं तुझसे दीन पर उमूर पर साबित कदमी का तालिब हूँ, तलबगार हूँ, वल अज़ीम तआला रुश्द सीधी राह पर चलने का मजबूत इरादा, वो मुजीबात रहमतिक वो आमाल जो तेरी रहमत के मुस्तहिक बना दे, व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वो तौफीक जो तेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बने, व शुक्र नेमतिक तेरी नेमतों पर शुक्र का तलबगार हूँ का सवाल करता हूँ, व हुस्न इबादतिक बेहतरीन इबादत क़ल्बन सलीमा पाकीज़ा दिल व लिसानन सादिका सच्ची ज़बान, व असअलुका मिन खैर मा तअलम वो सारी भलाइयाँ जो तू जानता है वो भी मैं तुझसे मांगता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन शर्र मा तअलम और हर उस चीज़ के शर से मैं पनाह मांगता हूँ जो तू जानता है, व अस्तग़फिरुका लिमा तअलम मैं तुझसे गुनाहों की माफ़ी इस्तग़फार करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ जिन्हें तू जानता है, इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब बेशक तू ग़ैब का सबसे बड़ा जानने वाला है। आमीन किराम, ये दुआ दरअसल एक मोमिन की मुकम्मल ज़िंदगी का नक्शा है, इसमें कई सारे पहलू एक ही दुआ में आ गए, ईमान, अमल, अखलाक, मुस्तकबिल, हिफाजत और आखिरत। तो ये दुआ दरअसल एक मुकम्मल इस्लामी ज़िंदगी का खाका है। अब इस दुआ को ख़जाना कहा गया, क्यों? क्योंकि सोना चांदी सिर्फ दुनिया संवारता है, ये दुआ दुनिया कब्र और आखिरत तीनों को संवारती है। ये दुआ ईमान को महफूज रखती है, दिल को साफ करती है, आमाल को संवारती है। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी दुआएं तो कबूल करता है, हमें खाली हाथ न लौटाना मेरे मौला, ए अल्लाह तो हम सब की मगफरत फरमा, दिलों को साफ कर दे, आमाल को संवार दे और हमारा आखिरी अंजाम जन्नत लिख दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह सामने किराम, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीगर सहाबा इकराम को भी इस तरह के मुख्तलिफ कलिमात बताए हैं और उनसे ये तलब किया है कि वो अल्लाह से इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह से सवाल करे और बकसरत इन दुआओं को दोहराए। इनमें से एक हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए सलमान, रसूलल्लाह चाहते हैं कि तुम्हें चंद ऐसे कलिमात अता करें, इन्हें हदीये में दें जिनके ज़रिए तुम अल्लाह से सवाल करो, तसअलुहुन्नर्रहमान व तरग़बु इलैहि फ़ीहिन्न, और इसी से तुम जो है ना रग़बत रखो अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला की तरफ जो रग़बत और शौक इन्हीं दुआओं के ज़रिए तुम रखोगे और ज़ाहिर करोगे, तदउ बिहन्न फिल लैल वन्नहार, रात दिन इन्हीं के ज़रिए दुआ करते रहोगे। अब वो दुआ क्या है, अब आगे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सिहतन फी ईमान, मज़ीद हमें सवाल है ऐसा ईमान का जो अच्छे अखलाक में ज़ाहिर हो, ऐसे कामयाबी का जो दायमी फलाह बन जाए, और हमें तेरी रहमत का सवाल है, तेरी तरफ से आफियत और मगफरत का सवाल है, और हम तो तेरी रज़ा ही तलब करते हैं। तो इस तरह जो है ना सामने कराम, इस दुआ के पहले हिस्से में आप देखेंगे कि सहतन फी ईमान, यानी ऐसा ईमान जो शक से महफूज हो, निफाक से पाक हो, फितनों में न डगमगाए। तो ईमान की सेहत ये काफ़ी एक अहम पॉइंट है। इसके बाद है ईमान फी हुस्न खुलुक, यानी अखलाक, हुस्न अखलाक में भी ईमान का सवाल है, यानी ईमान सिर्फ दिल में नहीं, ईमान ये झलकता है अखलाक बढ़ता और नरम दिल और अदल में भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हों। फिर दुआ की अगली लाइन है, नजाहुन यत्बाहु फलाह, यानी रिज़्क़ शोहरत तरक्की सब मिले मगर वो हमें अल्लाह से करीब करे, दूर ना कर दे। तो यहाँ इस दुआ में भी आप देखेंगे कि चारों अल्फाज में अल्लाह की नेमतों का तज़किरा है, रहमत का तज़किरा है, आफियत, मगफरत, रिज़वान। तो दुआ में भी एक ख़ास पैटर्न का लिहाज आप देख रहे हैं रखा गया है, जिस तरह दुआ में भी बंदा बड़ी दिलचस्पी लेता है दुआ करते हुए भी, और जब इस तरह जो है ना कवाफी सब

0: Okay, place.
1: Uganda.
0: Uganda. Okay.
1: Thing, umbrella.
0: Okay.
1: Animal, umbrella bird.
0: Okay.
1: Name.
0: And 45 seconds are gone. नेम तो सोचती ना. अरे नेम हो जाता उसामा.
1: उसामा
0: या अब तो टाइम खत्म हो गया. बट नाइस एफर्ट. गुड क्लैपिंग. नॉट बैड. इट्स ओके. अभी तक सबने ही यही किया है कि सबने मुझे सिर्फ किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो मिसिंग है ही. सो सबने मुझे तीन चीजें दी हैं अभी तक. Now let's see what Rohan has to do about. Okay. Hello.
2: Okay, Rohan.
0: चलें.
2: जी.
0: Rohan, 45 seconds and just मुझे ये बता जो आता जा रहा है ना वो जल्दी बताता जाना है. आपने बताते जाना है. ठीक है.
2: जी.
0: Name आ रहा है name बोल दें. Place आ रहा है place बोल दें. Thing आ रही thing बोल दें. Okay.
2: जी.
0: Your alphabet is O and your time starts now.
2: Usman and place Oman and animal owl and thing
0: no. Jilly.
2: Ting.
0: Orange.
2: Yes.
0: चलें जी. ओ वाओ बच्चा पार्टी. 22 seconds भाई. 22 seconds. अरे भाई आज का टॉप स्कोरर बच्चा. वेरी गुड. अभी तक का टॉप स्कोरर बच्चा. 22 seconds. नाइस. गुड हो गया. आई लाइक इट. माशाल्लाह. गुड. चलें भाई जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे.
2: अनम बोलेंगी.
0: हाँ जी अनम. यस.
2: Good luck for half yearly exams to everyone who's gonna have exams in June.
0: Yes. Okay, bhai, sabko good luck. Jiske exam hone wale.
2: And happy Eid in advance.
0: Happy what? Happy Eid in advance. Okay, bhai. Okay. Happy Eid in advance, bhai. Sabko. Aapko bhi Eid Mubarak ho. To bhai, hamare saath Rohan. Rohan, aap kya message dena chahengi?
2: Be happy and hear your feelings. To your parents.
0: Yes, always share your feelings with your parents. और कभी कभी जब आपको confused feelings होती है ना तो उसके बारे में भी अम्मा अब्बा को बताया करें that I don't know what am I feeling. I'm just confused. Okay?
2: Yes.
0: चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
2: अल्लाह हाफिज.
0: तो भाई बच्चा पार्टी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जिस जिसकी कॉल आ रही है कॉल लूँ या ये लूँ कॉल लूँ ब्रेक लूँ. यार आप लोगों की कॉल जो ना मुझे ब्रेक नहीं लेने देती. फिर सब कहते हैं कि ब्रेक नहीं लेती. चलो भाई कॉल ले लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ?
3: अमायरा
0: मैडम कैसी हैं?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं तो बिल्कुल वैसी हूँ जैसा आप मुझे थर्सडे को छोड़कर गई थी. लॉस्ट हंस रही है भाई. देखिए मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला आज संडे आ गया. ऐसे कैसे आपको पता चला? पता चला आपको? मुझे तो पता नहीं चला मायरा. मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे आई एम स्लीपिंग और आई एम हैविंग अ ड्रीम. ऐसा क्यों?
3: नहीं पता.
0: ऐसे कैसे नहीं पता भाई? अमायरा को तो पता होता है. अमायरा बताओ ना, ढूंढो ना प्लीज ना.
3: क्या ढूंढना
0: है? स्टेशनरी ढूंढना. नहीं टाइम ढूंढना है अमायरा. मेरा टाइम गुम हो गया है.
3: होगा ना?
0: अरे भाई कबर्ड में नहीं है. देखो मेरा जो फ्राइडे और सैटरडे ना वो गुम हो गया. अब मैं कहाँ से ढूंढ के लेकर आऊँ उसे?
3: फ्रिज में.
0: लो चिल कर रहा होगा. चिल है ना? फ्राइडे सैटरडे चिल कर रहा होगा. चलो मैं देखती हूँ अभी घर जाकर फ्रिज में.

0: देखूंगी, ठीक है? फ्रिज में साथ लेकर नहीं घूमती ना, मुझे घर जाकर देखना पड़े। हाँ, गरम गरम थर्सडे, गरम गरम फ्राइडे और सैटरडे, है ना, गरम गरम वीकेंड।
1: फ्राइडे तो फ्रिज में रहेगा, सैटरडे तो गरम गरम रहेगा।
0: ठीक है, बस ठीक है, शुक्र है चूल्हे पे नहीं चले गए दोनों के दोनों। पॉपकॉर्न बन जाते नहीं तो। बस ठीक है, अगर मुझे माइक्रोवेव मिला ना तो मैं माइक्रोवेव ऑन कर दूंगी, फिर वो दोनों पॉपकॉर्न बन जाएंगे, फिर मैं खा लूंगी। ओके, नहीं पॉपकॉर्न नहीं बचाती भाई, मैं ये नहीं हो रहा भाई। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा कौन से वाले पॉपकॉर्न बनाऊं, वो कैरमल वाले या सॉल्ट वाले?
1: चीज वाले,
0: चीज। अरे भाई चीज वाले आपको अच्छे लगते हैं?
1: हाँ।
0: मुझे भी अच्छे लगते हैं। अच्छा वो मिक्स वाले बना लूं, मिक्स वाले?
1: कोई भी,
0: कोई भी, बस पॉपकॉर्न होने चाहिए। पॉपकॉर्न होने चाहिए, चलो ठीक है, मिक्स वाले कर लेंगे। मैं भी खुश, आप भी खुश। हाँ,
1: हाँ।
0: चलो भाई ठीक है, ओके ओके, अभी तो घर जाना है, अभी घर जाने में बहुत टाइम है। अच्छा एक बात बताएं, कि आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है? हाउ इज योर डे गोइंग?
1: नाइस,
0: नाइस, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह से क्या क्या किया हमारा ने?
1: सुबह मैंने तो ठीक, तो क्या छुट्टी थी।
0: कितना खुश हो रही है, मेरी तो छुट्टी नहीं है आज।
1: उठी, फिर बाद में डोसा खाया, कल मम्मा मुझे रात में कह रही थी कि मैं कल भिंडी बनाऊंगी, तो मैंने कहा मम्मा मैं काट दूंगी।
0: ओह माशाल्लाह,
1: आज में मैं खाई, पहले मैं डोसा खाई, डोसा और चटनी, फिर मम्मा ने भिंडी दी तो मैंने कट कट कट कट की।
0: अरे भाई माशाल्लाह, तो भाई अपने हाथ की बनी हुई भिंडी मुझे कब खिला रही है? नहीं बनी हुई नहीं, कटी हुई भिंडी।
1: जब आप बुलाएंगे तब मैं बना के लाती
0: हूँ। हमारा कब मीटिंग होगी हमारी? चलें फिर हम टाइम, जब मैं छुट्टियां लूंगी ना नेक्स्ट वीक से, मैं जो ना वो छुट्टी पर जा रही हूँ, लीव पर, तो फिर नेक्स्ट वीक कुछ डिसाइड करेंगे, फिर मैं आपके हाथ की कटी हुई भिंडी खाऊंगी, ठीक है? चले
1: पकवा के
0: लाऊंगी। अच्छा पकवा के लाऊंगी, लेकिन काटी तो आपने ही होगी ना?
1: हाँ, वैसा ही रहेगा।
0: चले ठीक है भाई, वो कोई मसला नहीं है, पका तो मैं खुद भी लूंगी, कोई मसला नहीं है, मुझे पकाना आता है। आप काट के ले आना, ठीक है? अच्छा फिर एक काम करेंगे ना, आप काट के ले आना, फिर पका मैं लूंगी, ठीक है? फिर हम दोनों मिलकर खा लेंगे। अच्छा मम्मा पापा को बुलाएंगे पार्टी में, भिंडी पार्टी में कि नहीं? मम्मा पापा तो आएंगे ही आएंगे भाई, अच्छी बात है। चले मम्मा पापा के बगैर मजा भी तो नहीं आता ना। तो फिर मम्मा पापा के बगैर मजा भी नहीं आता ना, है ना? अच्छा चले हमारे साथ गेम खेलेंगी आज? टुडे वी आर हैविंग अ डिफरेंट गेम। आपने नेम प्लेस एनिमल थिंग खेली है कभी?
1: हाँ।
0: तो नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगे।
1: कंट्री वाला मेरा
0: बहुत फेवरेट गेम है। चलिए इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक, इस वीक तो सारा नेम प्लेस एनिमल थिंग चलेगा, नेक्स्ट वीक कंट्री वाला खेलेंगे, ठीक है? तो भाई माशाल्लाह, चलिए जब हम कंट्री वाला गेम खेलेंगे ना, ज्योग्राफी वाला, तो फिर हम आपके साथ खेलेंगे, ठीक है? आज के लिए फॉर दिस वीक वी हैव द गेम नेम प्लेस एनिमल थिंग, ओके? तो भाई आपको दिए जाएंगे 45 seconds, विद इन दोज 45 seconds यू हैव टू गिव मी नेम प्लेस एनिमल थिंग ऑफ द गिवन अल्फाबेट विच आई गिव यू, ओके? ओके, तो भाई 45 seconds से पहले मैं आपको बता देती हूँ, टाइम स्टार्ट करने से पहले, योर अल्फाबेट इज बी, बी एज इन हम लोग कहते हैं ना बीटा, बी, बी बाबा, ठीक है? 1 2 3 गो।
1: बी से कंट्री का नाम बता दूं?
0: हाँ कंट्री का नाम बता दें प्लेस।
1: बी से
0: किसी का नेम बता दें, नेम बता दें, नेम नेम नेम नेम
1: बी से जल्दी
0: जल्दी जल्दी जल्दी सोचे सोचे, टाइम नहीं है, टाइम जा रहा है। अच्छा थिंग बता दें बी से।
1: बॉम्बे। बॉम्बे
0: क्या चीज?
1: बॉम्बे।
0: बैंडेज
1: नहीं, बॉम्बे।
0: बॉम्बे ओके, प्लेस हो गई बॉम्बे। एंड एनिमल?
1: एनिमल
0: एनिमल एनिमल एनिमल
1: कौन सा है वो?
0: जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। वन टू थ्री। ओ टाइम खत्म। अरे भाई टाइम खत्म हो गया मायरा, बट नाइस एफर्ट, इट्स ओके। होता है ना, बताऊं? बैट, इजी बैट। अरे भाई वो वाला, वो तो वो वाला बैट तो थिंग में आ जाता। ही चले अब कल फिर से कॉल करना, और कल ज्यादा तैयारी के साथ कॉल करना, ठीक है? ओके चले, जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी?
1: Impossible, I am possible.
0: Wow, super duper भाई, impossible itself is I am
1: possible.
0: Yes, there is nothing like impossible. Impossible itself is I am possible. Very very good. It's just के जिस तरीके से हम चीजों को life में देखते हैं वो matter करता है.
1: And I love my family.
0: माशाल्लाह, you should always love your family. अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गई। आपको क्या लगता है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना अच्छा होता है कि बुरा होता है?
1: अच्छा
0: होता है। अगर आप को मैं कहूँ कि, वैसे तो मुझे इसका जवाब पता है हमारा क्या बोलेंगी, लेकिन हु इज योर मोस्ट फेवरेट पर्सन जिसके आप सामने ओपनली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हैं? यू नो दैट दे विल नॉट जज यू, दे अंडरस्टैंड यू।
1: मामा,
0: इट्स सो क्यूट, मुझे पता था इसका जवाब क्या होगा, मामा। सो अमायराज सुपर हीरो इज
1: मामा।
0: हाँ, मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन फॉर अमायरा इज
1: मामा,
0: एंड अमायरा फील्स सेफ एंड सिक्योर एंड शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स विद
1: मामा।
0: चले भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी मामा का भी ढेर सारा ख्याल रखें, एंड यस वी शुड बी एक्सप्रेसिव। If you feel sad, you should tell the reason to your mama. If you feel happy, you should share your happiness with your mama, your family. And if you're feeling angry about something, scared about something, you should always talk about it to your mama. Okay?
1: Okay.
0: Chalein ji, apna dher sara khayal rakhiye. Allah Hafiz.
1: Allah Hafiz.
0: तो बच्चा पार्टी, फीलिंग्स के बारे में बात करते करते मेरी फीलिंग अभी एक ये हो रही है कि मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आकर इंशाल्लाह आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। 4434377 इज द नंबर टू कॉल। आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स शो विद सुपर सफा।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर. दिल से देसी.
2: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है. यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है. बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए. इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें. तो सुनिए कुरान फॉर किड्स हर बुध शाम 3 बजे से RJ तलहा के साथ.
3: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से.
4: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
3: ये जानना बहुत जरूरी है. इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी. हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन. जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107. पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन.
5: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है. इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो. यह रस्सी, ये हबले मतीन है, कुरान करीम. आइए तलहा अशरफुल समान के साथ और आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें. रोजाना 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर.

भाई बच्चा पार्टी असी की चाहते हैं, असी ये चाहते हैं, मतलब ये कि हम ये चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, अपने मोस्ट, आप कहते हैं ना मोस्ट मोस्ट मोस्ट, सबसे ज़्यादा जिस जो आपको अंडरस्टैंड करता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि ये आपको जज नहीं करते, उनसे एक्सप्रेस करें, यानी कि अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली। तो बच्चा पार्टी आप सुन रहे हैं द शो जिसका नाम है द सुपर किड्स शो विद सुपर सफा। और भाई आज हम बात कर रहे हैं हमारे शो में फीलिंग्स के बारे में और खेल रहे हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग। अगर आपने भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनना है तो जरूर बने, आपको किसने रोका है, मैं कह रही हूँ मैं आपको पार्टिसिपेंट बनाऊंगी भाई। आपने सिर्फ करना ये कि आपने हमें कॉल करना है 443-443-77 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल। और अगर आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं 666-22-107 पर। और मैं आप आज का स्कोर आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हमें जो है वो हाईएस्ट स्कोरर कौन है, हाँ रोहान अभी तक की हमारी हाईएस्ट स्कोरर हैं। वैसे तो हम सबको 45 सेकंड्स दे रहे हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग में, लेकिन रोहान ने 22 सेकंड्स में हमें सारा कुछ बता दिया नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो आपको क्या लगता है रोहान का ये जो रिकॉर्ड है ये कौन ब्रेक कर सकता है? आप कर सकते हैं 22 सेकंड्स में नेम प्लेस एनिमल थिंग बताना, हम आपको एक अल्फाबेट देंगे, आपने हमें बताना है कि भाई आपके दिमाग में कौन सा नेम प्लेस एनिमल थिंग आ रहा है उसको लेकर, जो हम अल्फाबेट आपको बताएंगे उसको लेकर। तो बच्चा पार्टी आप हमें कॉल करें 443-443-77 पर और बताएं भाई आज का स्कूल का दिन कैसा गुजरा। अरे रिपोर्ट तो मैं लेना भूल ही गई पार्टी, मुझे ज़रा बताओ कौन कौन वीकेंड पे कहाँ कहाँ गया था। वैसे इस दफ़ा का वीकेंड मैंने बड़े सुकून से घर में गुजारा है, तो मुझसे कोई ना पूछे कि मैं कहाँ गई थी, क्योंकि मैं जवाब दूंगी कि मैं तो घर पर ही थी। तो भाई बच्चा पार्टी आज हम बात कर रहे हैं साथ ही साथ फीलिंग्स के बारे में। देखिए फीलिंग्स के बारे में अगर कुछ बातें मैं आपको बताऊं तो एवरीबडी हैज़ फीलिंग्स, हैप्पी, सैड, एंग्री, एक्साइटेड, स्केयर, टू मैनी फीलिंग्स होती हैं और ये सबके पास होती हैं, हत्ता कि सिर्फ इंसानों के पास नहीं, मतलब ये कि एनिमल्स ऑल्सो फील, ये फीलिंग्स एनिमल्स के पास भी होती हैं। तो भाई यूँ समझ लें अगर फीलिंग्स के बारे में कुछ कहा जाए ना, तो फीलिंग्स जैसे आप आसमान के ऊपर वेदर देखते हैं ना, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी हवाएं, कभी सैंडस्टॉर्म, तो भाई ये आसमान की फीलिंग्स होती हैं, मतलब एनवायरनमेंट की फीलिंग्स होती हैं। लेकिन अगर ह्यूमन रिलेटेड बात की जाए, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड बात की जाए, तो यूँ समझ लें जैसे कि हमारे अंदर का वेदर होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और डेज, यानी कि हमारी फीलिंग्स। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भाई गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, मैं कहती हूँ गुस्सा करना, हमेशा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, हाँ लेकिन कभी कभी जो हमारे पास फीलिंग्स आती हैं सैड होने की और एंग्री होने की, समटाइम्स ऑल द फीलिंग्स आर नॉर्मल और इनको फील, भाई इंसान है करेंगे, ये होता है। हाँ ये और बात है कि इन फीलिंग्स के होते हुए हम एक्ट कैसे करते हैं या रिएक्ट कैसे करते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू एक्ट एंड रिएक्ट, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, यस वी ऑल फील एंग्री एंड समटाइम्स वी ऑल फील सैड टू। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, फीलिंग्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इन्हें अपने अंदर पाइल अप करते रहेंगे, मतलब ये कि आप अगर गुस्सा फील कर रहे हैं यू जस्ट कीप इट इनसाइड यू, अगर आप सैड फील कर रहे हैं यू जस्ट कीप इट इनसाइड यू, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं यू जस्ट कीप इट इनसाइड यू, अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं यू जस्ट कीप इट इनसाइड यू, तो पता है क्या होता है, दे जस्ट पाइल अप और फिर होता है कन्फ्यूजन का एक फेज शुरू। तभी हम कहते हैं टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स एक्चुअली हेल्प यू फील लाइटर एंड ईजियर। अगर आपको किसी चीज़ से तंगी हो रही है तो उसको किसी अंडरस्टैंडिंग बंदे के साथ शेयर करना, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे बहुत वी आई पी क्लोज फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ हमारी फीलिंग्स शेयर करना, ये क्या करता है हमें एकदम से प्रेशर रिलीज हो जाता है हमारे हार्ट का, हमारे माइंड का। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप अपना डेस्कटॉप ले लें, लैपटॉप ले लें, या आप अगर कोई मोबाइल भी यूज़ करते हैं उसके अंदर आप बहुत सारी ऐप्स और टैब्स अगर एक साथ खोल लें ना तो क्या होता है, सिस्टम हैंग हो जाता है ना। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे साथ भी होता है, हम ह्यूमंस हैं, होता ये कि जब बहुत सारे टैब्स या ऐप्स हमारे दिमाग में खुली रह जाती हैं ना
मतलब मल्टीपल फीलिंग्स के टैब्स हमारे पास खुले रह जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर बिल्टअप होता है कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से हमारा सीपीयू यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो स्लो प्रोसेसिंग पे चला जाता है। तो उसको उसका जो पाइल है सारा टैब्स का वो हमें क्लोज करना ज़रूरी होता है, और वो क्लोज ऐसे होता है कि वेन वी टॉक अबाउट इट टू समबडी। दैट्स वाई वी हैव बेस्ट फ्रेंड्स, दैट्स वाई वी आर ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स विद अस, दैट्स वाई वी आर ब्लेस्ड टू हैव सिबलिंग्स। और भाई इन फीलिंग्स को समझना साथियों कुछ ऐसा है कि हमारा दिल और दिमाग मतलब हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट दे अंडरस्टैंड द मोर दे अंडरस्टैंड ईच अदर दे वर्क टुगेदर एंड दिस फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली कीप्स अवर हार्ट एंड अवर ब्रेन हेल्दी। तो भाई फीलिंग्स सबके पास होती हैं, चाहे वो गुस्से की हों, चाहे वो सैडनेस की हों, चाहे वो ऐसा इमोशन हो जो हमें समझ में ना आ रहा हो, कन्फ्यूजन इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ फीलिंग एज वेल। तो इनको हमें किसी एक मैं कहूँगी कि रिलायबल पर्सन के साथ शेयर करना ज़रूरी होता है। आपका क्या, आप क्या फील करते हैं फीलिंग्स के बारे में, मुझे ज़रूर कॉल करें। बच्चा पार्टी 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल, 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल। और चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 6662107 पर, और मुझे बताएं कि वॉट आर यू फीलिंग टूडे एंड विच इज़ दैट फीलिंग विच एक्चुअली इरीटेट्स यू अलॉट। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं हूँ ना, मुझे जब गुस्सा आता है ना तो आई फील अनकम्फर्टेबल, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर मुझे देनी पड़ जाए ना, तो दैट फीलिंग ऑल्सो मेक्स मी वेरी अनकम्फर्टेबल। आई डोंट नो वॉट इज़ दैट फीलिंग कॉल्ड, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़े दूसरों को, बट आई डू नॉट लाइक दैट फीलिंग। ऐसी कोई फीलिंग है जो आपको अच्छी नहीं लगती? अगर है तो ज़रूर मुझे बताएं, चाहें तो मैसेज कर सकते हैं 6662107 पर, और चाहें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर। तो बच्चा पार्टी सवाल सिंपल सा है, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी फीलिंग है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, जरा सोचें सोचें। और भाई आज हम नेम प्लेस एनिमल थिंग भी खेल रहे हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। फिलहाल के लिए एक काम करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक के बाद वापस आके आपकी फीलिंग्स डिस्कस करेंगे। आपको कौन सी फीलिंग ऐसी लगती है कि जो आपको नहीं अच्छी लगती? जैसे मैंने बताया ना, मुझे टू मच जो है ना अपने आप को एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता, मुझे टू मच एक्सप्लेनेशन देना अच्छा नहीं लगता, इट गिव्स मी अ वेरी अनकम्फर्टेबल फीलिंग। आपको ऐसी कौन सी फीलिंग है जो अच्छी नहीं लगती, बताएं बताएं 4434377 पर कॉल करके। फिलहाल के लिए एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर बातें शेयर करेंगे आपसे फीलिंग्स के बारे में। सुनते रहें FM 107 पर सुपर सफा के साथ द सुपर किड्स शो।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं
1: द सुपर किड शो।

0: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं।
0: इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: दोस्तों, अपने पर्सनल डेटा को फिशिंग से बचाने के लिए इन टिप्स पर अमल कीजिए। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देने को अवॉइड कीजिए। कभी भी जाती मालूमात या डेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें और सिर्फ उन लोगों से बातचीत करें जिन्हें आप जानते हैं। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपकी फैमिलीज के नौजवान यूजर्स के लिए कंटेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: तो भाई बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू द सुपर किड्स शो विद द सुपर सफा
1: रेडियो पे मस्त दी नंबर 1 द सुपर किड्स शो ऑन एफएम 107
0: बच्चा पार्टी आज हम बात कर रहे हैं फीलिंग्स के बारे में देखिए फीलिंग्स के बारे में मैंने भी आपसे जानने से पहले ही पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले कि आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं चाहे तो 4434377 पे कॉल कर सकते हैं सवाल बड़ा सिंपल सा था देखें सवाल ये था कि भाई ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देती है कि जैसे मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल मेरी एक फीलिंग है कि भाई मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना ना लोगों को मुझे कंफ्यूज कर देता है दैट व्हाई डू आई हैव टू एक्सप्लेन माय सेल्फ टू एवरीबॉडी और मैंने आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आपको कन्फ्यूज़ कर देती है उसके ऊपर मुझे कुछ बच्चों ने मैसेजेस भेजे हैं अरीबा हैं अरीबा ने मैसेज भेजा है मुझे तब अनकम्फर्टेबल लगता है जब मैं गुस्सा होती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों गुस्सा हूँ फिर मैं चुप हो जाती हूँ और कंफ्यूज फील करती हूँ अच्छा हमज़ा का मैसेज भी मुझे बहुत अच्छा लगा है हमज़ा ने मुझे मैसेज किया है कि मुझे जेलसी वाली फीलिंग बहुत कंफ्यूज करती है कि व्हाई डू आई गेट जेलस व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स रिसीव्स मोर मार्क्स देन मी आई एम नॉट सपोज टू बी अपसेट बट इट मेक्स मी अपसेट अच्छा ये भी एक कन्फ्यूजन वाली फीलिंग होती है कि हमें जो ना कंपटीशन आ जाता है राइवरी आ जाती है कि भाई मुझे क्यों नहीं अच्छे मार्क्स मिले मेरे दोस्त को क्यों मिले ऐसा भी होता है और इस फीलिंग को आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स से बात करें और वो आपको समझाएंगे कि भाई देखिए ये होता है लाइफ में ऐसा होता है व्हेन वी वर्क रियली हार्ड ऑन समथिंग एंड कभी कभी हमारा दिमाग हमें कन्फ्यूज़ करता है कि नहीं मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे तो इस चीज़ का भी एक एक्सेप्टेंस लेवल होता है कि नहीं आई हैव टू वर्क मोर हार्ड to achieve something more it's not that they got it out of luck they worked even more better ye bhi ek acceptance ka ek level hota hai ki ha bhai unhone shayad mujhse zyada padha tabhi unko usse zyada marks mile i will do better next time maryam hai hamare sath maryam keh rahi hai jab main nervous hoti hu jaise main class mein presentation karti hu to mujhe lagta hai ki sab mujhe dekh rahe hain main confused ho jati hu aur main डर रही होती हूँ या एक्साइटेड फील करती हूँ अच्छा ये मेरे साथ भी होता था ये मैंने कई दफ़ा इसकी एक एग्जांपल दी है हमारे स्कूल टाइम पर ना जब हमें असेंबली में खड़े होकर स्पीचेस देनी पड़ती थी डिबेट्स करनी पड़ती थी ऑडिटोरियम में तो उसके अंदर मुझे दिल भी करता था कि मैं डिबेट में हिस्सा लूँ लेकिन आई यूज़ टू बी सो नर्वस कभी कभी तो आई यूज़ टू फंबल एंड कभी कभी तो मैं भूल जाती थी कि मेरा टॉपिक क्या है एंड व्हाट डू आई हैव टू एक्चुअली टॉक अबाउट तो दिस फीलिंग इज़ वेरी नॉर्मल और ये फीलिंग नर्वसनेस की जो फीलिंग है ना मरियम आई वुड से दैट दिस गोज अवे बाय योर माइंडसेट एंड बाय योर प्रैक्टिस जितना आप एक दफ़ा गलती करो रुको नहीं इट्स ओके ट्राई अगेन एंड द मोर यू परफॉर्म द मोर आपको वो फोबिया जो है ना दूसरों के सामने परफॉर्मेंस का फोबिया वो कम होता चला जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता चला जाएगा नर्वसनेस हमेशा होती है लेकिन वो नर्वसनेस आहिस्ता आहिस्ता करके कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाती है चेंज हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए और कौन है हमारे साथ अली हैं मुझे जब अजीब लगता है जब मैं सैड होता हूँ लेकिन वजह क्लियर नहीं होती बस दिल हैवी होता है अक्सर औकात ऐसा होता है ये बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि वी जस्ट आउट ऑफ मतलब हर महीने में ना एक से दो दिन तो ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि वाई आर वी फीलिंग सो मच सैड कभी कभी ये होता है कि हम ओवरलोड हो जाते हैं कभी कभी ये हो जाता है कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे होते हैं तभी एक सैडनेस की फीलिंग हमारे ऊपर छा जाती है तो कभी भी जब आप एंग्री फील करें सैड फील करें तो एट फर्स्ट सिट डाउन एंड टॉक टू योर सेल्फ दैट वॉट आर यू एग्जैक्टली फीलिंग और अगर आप उसके अंदर भी कन्फ्यूज हो रहे हैं तो टॉक टू योर पेरेंट्स और टॉक टू योर सिबलिंग्स के भाई मुझे जो ना अंदर से बहुत अजीब सा फील हो रहा है आई डोंट नो वाई जस्ट टॉक अबाउट समथिंग इट विल कम आउट द टॉपिक विल सम हाउ कम आउट अच्छा भाई और कौन है उस्मान का आखिरी मैसेज हमारे पास है मुझे एंगर और फ्रस्ट्रेशन मिक्स हो जाती है जब होमवर्क समझ नहीं आता मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं रोऊं या गुस्सा हूँ बेटा ये तो मेरे साथ भी होता है उस्मान ये मेरे साथ भी बिल्कुल होता है कि भाई हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं देखिए जब आप होमवर्क करते हैं ना तो अपना माइंड सेट ये रखकर मत करें कि दैट यू आर इन अ रेस अपना माइंड सेट ये रखकर करें दैट आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम और अगर नहीं हो रहा तो आई विल गेट हेल्प आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन आई विल रीडू इट जब आप अपना माइंड सेट करते हैं ना चेंज कि इट्स नॉट अ हसल इट्स नॉट अ थिंग विच आई हैव टू टैकल इट्स समथिंग विच आई नीड टू अंडरस्टैंड तो शायद इट माइट हेल्प. और कोशिश ये किया करें कि रोज़ का रोज़ कर लें, तो वो जो एक साथ पाइल अप होता है ना, होमवर्क या असाइनमेंट्स या टेस्ट या एग्ज़ाम्स, वो नहीं होगा. उससे फिर ये होता है कि परेशानी ज़्यादा होती है और होमवर्क या बाकी चीज़ें कम होती हैं. यू कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम. और जब आप अपना माइंड सेट थोड़ा चेंज करेंगे ना, कि सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देंगे, ना कि ये कि सॉल्व नहीं हो रहा इस पर, तो थिंग्स विल चेंज. तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ अब हमारे जाने का टाइम आ गया. याद रखें प्यारे बच्चों कि हर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं. कभी गुस्सा होता है, कभी कन्फ्यूजन होती है, कभी एक्साइटमेंट होती है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी फीलिंग्स को वैलिड करें, इग्नोर मत करें, उन्हें छुपाएं नहीं, उनके बारे में बात करें, वरना दे विल पाइल अप. फीलिंग्स एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं होती, बल्कि स्ट्रेंथ होती है. इट मेक्स यू, जैसे आपका रूम आप क्लीन अप करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही. तो भाई, सफा को आज के शो से इजाजत दीजिए, और अपना रूम और अपना दिमाग और अपना दिल, फीलिंग्स बिल्कुल यूं क्लियर रखें, सफाई रखें, ठीक है? अपना ढेर सारा ख्याल रखें. इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी. सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.

लगूं, पर स्विंग को अगर आप पुश करेंगे वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, राइट? दैट इज अ पार्ट ऑफ इनर्शिया. अब जरा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यहां पे ले आते हैं. यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अंग्रेजी में, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स. सिंपल भाषा, चीजें अपनी हालत चेंज करना पसंद नहीं करते जब तक कोई बाहर से उन्हें डिस्टर्ब ना करे. मतलब हम सब जो है टेक्निकली इनर्शिया में ही है. मैं भी नहीं चाहता मुझे कोई बाहर की फोर्स डिस्टर्ब करे. मैं ऐसे ही ठीक हूँ. मैं अभी अपने ही सिचुएशन में, अपने ही पोस्चर में, अपनी सिचुएशन में रहना चाहता हूँ. तो क्या हुआ, दिस इज इनर्शिया, राइट? तो अब फाइनली वक्त आ गया एक्सपेरिमेंट का. कार्ड को टेबल पर रखिए, फ्लैट सरफेस एज आई मेंशन, और कार्ड को सॉरी कॉइन को कार्ड के ऊपर बैलेंस करिए. अब एक शार्प और फास्ट फ्लिक दीजिएगा, उसे खींच लो उसको. क्या हुआ, कार्ड साइड में निकल गया लेकिन कॉइन हॉरिजॉन्टली मूव नहीं हुआ, कॉइन सीधा नीचे गिर गया. रिजल्ट आया ना, ये है इनर्शिया. कॉइन रेस्ट में था, कार्ड को आपने फोर्स दे दी बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स, कार्ड मूव कर गया लेकिन कॉइन ने मोशन रेजिस्ट की. वो रेस्ट में रहना चाहता था, फिर ग्रेविटी ने उसे नीचे पुल कर दिया. ये ग्रेविटी भी ना, तो इस वजह से ऐसा हो गया. आप स्लो मोशन में इमेजिनेशन को अपने ऑन कीजिए, ठीक है? इमेजिन करिए स्लो मोशन में फिंगर फ्लिक करती है, राइट? कार्ड तेजी से निकलता है, कॉइन एक सेकंड के लिए ऑलमोस्ट सेम जगह रहता है और ग्रेविटी कहती है, अरे तुम भी आओ. दिस इज अमेजिंग. अगर आप नॉर्मली से देखेंगे तो इट इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, पर अगर आप देखें साइंस के नजर से, इट इज एक्चुअली रियली अमेजिंग. और उस नजर से देखने पर ही साइंटिस्ट दुनिया में पैदा हुए हैं, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करने का मकसद भी. लेट्स गो डीप डाइव इन दिस एक्सपेरिमेंट. अगर आप कार्ड को स्लोली खींचेंगे तो फ्रिक्शन कॉइन को भी साथ ले जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम स्लोली नहीं खींचते, वरना साथ साथ आ जाएगा. लेकिन अगर आप फ्लिक कर देंगे, मतलब झटका देके खींच दिया आपने, तो कॉइन को मूव होने का टाइम ही नहीं मिलता. तो डिस्कशन इस पे कहां के रुकता है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां एक और फोर्स काम कर रही है, वो है फ्रिक्शन, जिसके बारे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा भी था. फ्रिक्शन कॉइन और कार्ड के दरमियान होती है. फास्ट फ्लिक आपने झटका दिया, कम टाइम फ्रिक्शन के पास था, स्लो पुल किया, ज्यादा टाइम फ्रिक्शन को दे दिया आपने. फ्रिक्शन को भाव नहीं देने का, नहीं तो एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है? तो आप इनको एज कैरेक्टर्स इन अ साइंस समझिए. और मैं हमेशा से कहता हूं, जब भी आपको कोई साइंस का टर्म समझ में ना आए तो ऑलवेज कंसिडर दैट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू अ पर्सन. वो एनालॉजी अगर आप देंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसानी रहेगी. आप इसको बंदा समझ लें या बंदी समझ लें कि जी ये फ्रिक्शन है, तो वैसे करके समझेंगे ना तो आपको जल्दी जल्दी याद होगा. अब अगर आप इनर्शिया को भी कोई बंदा बंदी समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इनर्शिया का डेफिनेशन को, इनर्शिया की डेफिनेशन को समझने में. कुछ वर्ड साइंस कैसे होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हम जानते हैं इन द बैक ऑफ आर माइंड, लेकिन वो सही टाइम पे बाहर नहीं आती डेफिनेशन. वो इसलिए कि हमने उन्हें समझा नहीं, याद किया है. दोनों में बहुत फर्क होता है, समझना और याद करना. These are two different things. अब एनालॉजी भी हो जाते हैं. तो इमेजिन किसी ने आपके नीचे से जो चेयर है खींच ली. स्कूल में करते हैं ना लोग, कॉलेज में करते हो, करना नहीं है, अच्छी बात नहीं है, पर मैं इसे पास्ट टेंस बना देता हूं. अच्छा ठीक है, करते थे एक टाइम पे, करते थे. तो चेयर जो है वो अचानक से खींच ली, बंदा बैठा है, बंदी बैठी हुई, आप नीचे गिर जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी इनर्शिया की वजह से सेम प्लेस पर रहना चाहती है. वो इनर्शिया में है ना, सेम प्लेस पर रहना चाहती है. अब खींची चेयर तो आप थोड़ी उड़ के पीछे चले गए, आप वहीं के वहीं रहे पर गिर गए. अब एक फन इसमें एक वेरिएशन लाते हैं, थोड़ा फर्क पड़ेगा, बी रेडी फॉर. अब जो कॉइन आपने लिया था उसकी जगह कोई हैवी कॉइन ले लीजिए. इंडियन ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, भाई वो जो भारी वाला 5 वाला कॉइन होता है, समझ गए ना, वो समझा देना. कोई भारी कॉइन ले लीजिए. अब ऑब्जर्व कीजिए, क्या आप डिफरेंस पाएंगे, कुछ डिफरेंस आएगा क्या, क्या इनर्शिया स्ट्रॉन्गर फील होती है, क्या हो जाएगा? अब अगर एक और वेरिएशन दें, चलिए कॉइन को हटाइए, आप कार्ड को ही थिक कर दीजिए. पता नहीं थिक कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर है आपके पास कार्ड तो आप ये भी एक वेरिएशन दे सकते हैं, एक थिक कार्ड को इस्तेमाल करें. प्लास्टिक का ट्राई कर लीजिए, प्लेइंग का ट्राई करिए, और फिर नोटबुक का जो कवर है उसे ट्राई कीजिए. एक और वेरिएशन दो मजेदार वाली, मल्टीपल कॉइन्स, 2 या 3 कॉइन्स स्टैक करिए एक के ऊपर एक. क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, क्या होगा?
सोची सोची सोची बताइए जल्दी से बताइए. और ये इस दौरान एक्सपेरिमेंट करते करते आप मुझे टैग भी कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर FM107 Qatar FM107 Qatar, साथ ही में व्हाट्सएप भी करते रहा करें. कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका फेवरेट है ये भी जरूर बताइएगा. 666-221

0: 7 पर. Now the challenge time. जैसे मैंने कहा साइंस में prediction, assumptions, theory, it's all fine. करना पड़ता है. तो prediction challenge क्या है? अगर coin A के ऊपर एक छोटा इरेजर रख दें आप, है? Coin के ऊपर एक छोटा सा इरेजर रख दें, क्या होगा? बताइए. You take your time. जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं इन सब सवालों के आंसर दूंगा. अब इनर्शिया को ही हम असल जिंदगी में देख लेते हैं. सीट बेल्ट जो है, जो आपकी गाड़ी में आपको लगानी चाहिए, जान की फिक्र नहीं तो चलान देने से डरते ही होंगे, तो सीट बेल्ट इनर्शिया की वजह से जरूरी है. कार रुकती है, बॉडी मूव करती रहती है ना, है ना? तो सीट बेल्ट आपको क्या करती है? रोक देती है आपको. भाई अब तीन वजह है सीट बेल्ट लगाने की आपके पास, ठीक है? एक तो आपकी जान का खतरा है, उससे बचिए. फिर आपको चलान का खतरा है, चलान से बचिए. और तीसरा, सीट बेल्ट आपको रोक रही है. इनर्शिया की इज्जत कीजिए, ये भी इज्जत मांगती है. अब अगर मैं ये एग्जांपल बिल्कुल आसमानी बना दूं, स्पेस में ले जाऊं, स्पेस में फ्रिक्शन बहुत कम होती है. याद है हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में शेयर किया था, स्मॉल रिवीजन भी हो जाएगा. इसलिए प्लैनेट्स जो होते हैं, जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं. फ्रिक्शन ही बहुत कम है. अब जरा धरती पर आ जाए तो आइस स्केटिंग एग्जांपल ले लीजिए. आइस पर लोग स्मूथली ग्लाइड करते चले जाते हैं मक्खन की तरह, बिकॉज अगेन स्पेस वाला मामला है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम. दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग. अब टेबल क्लॉथ एक ट्रिक है जो आपने अक्सर वीडियोस में और बहुत सारे सो कॉल्ड मैजिशियंस को करती हुई देखी होगी. मैं भी इसी मामले में एक सस्ता मैजिशियन हूँ, मैं भी ये ट्रिक कर लेता हूँ. मैजिशियंस टेबल क्लॉथ खींच देते हैं ना, और टेबल पे प्लेट्स मोस्टली प्लेस रहती हैं, पर प्लेट्स नहीं गिरती, नीचे कपड़ा हट जाता है. बोलते हैं हाँ ये कैसे किया? ये साइंस है, साइंस की ये तो ब्यूटी है. ये है इनर्शिया, ये है इनर्शिया. अब बिल्कुल देसी लोगों के लिए एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, बस का. बस सडनली मूव करना चालू करे, आप क्या होते हैं? आप पीछे गिर जाते हैं, पीछे आपको एक पुश आता है, किसने धक्का थोड़ी दिया, ये क्या है? ये इनर्शिया है. एयरप्लेन का एग्जांपल ले लीजिए, जो अब हम लोग यहां पे आए गए तो एयरप्लेन इज द बेस्ट एग्जांपल. टेक ऑफ के वक्त बॉडी सीट पर प्रेस होती है ना, पीछे आपको लगता है कि मैं अभी पीछे हो गया, तो ये भी एक पार्ट ऑफ इनर्शिया है. अब जरा एक छोटे से क्विज की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो बहुत सारी चीजें, बट बिफोर आई कंटिन्यू जस्ट अ रिमाइंडर, आप प्लीज प्लीज प्लीज एक तो हमें टैग किया करें. इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ये नहीं कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, शो है तो जी बोल दिया, कर दिया, चले गए. नहीं नहीं नहीं, ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई एक बच्चा, 10 में से एक बच्चा भी अगर इसे सीरियसली लेगा तो हो सकता है कि उसे साइंस से मोहब्बत हो जाए. साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्कूल्स में काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है. कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं, बट क्योंकि आजकल सोर्स इतना ज्यादा है, आप अलग अलग जगह से साइंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग तरीके से आसान तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, तो वाई नॉट. ये रेडियो भी एक वही तरीका है जो आपको साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझा सकता है, रिगार्डलेस ऑफ योर एज. हो सकता है कि आपके स्कूल में अभी जिस क्लास में हैं आप, आपकी क्लास में ये कॉन्सेप्ट अभी आया ना हो, पर अगर आप बच्चों को पहले से बता के रखेंगे बेटा इसे इनर्शिया कहते हैं, या कोई जूनियर साइंटिस्ट मुझे सुन रहा है और उसे समझ लिया इनर्शिया क्या है, तो जब ये इनर्शिया का सब्जेक्ट उसके पास आएगा तो वो पहले से रेडी रहेगा ना. कितनी अच्छी बात है, ये खुशनसीबी है आज के ये जेन जीज के आगे वालों की भी. क्या कहते हैं उनको पता नहीं, अल्फा कहते हैं? नहीं, जेन एक्स कहते हैं, कुछ तो कहते हैं. I'm not really aware of all the terminology, but I'm not that old enough to. पर ठीक है, मैं कहीं बीच में अटक गया हूँ. हम मिलेनियल्स की ही प्रॉब्लम है. Anyway, आप समझ गए ना? तो ये प्रमोट कीजिए, उन तक पहुंचाइए, तब जाके मजा है इस बात का. इस शो का तभी मकसद पूरा होगा, ये करने भर के लिए नहीं है. Okay, let's gather ourselves for a mini quiz. Ready? एक quiz खेलें? Okay. तो कार जब ब्रेक लगाती है तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाती है? बताइए, मैसेज कीजिए 666-22107 पर. दूसरा सवाल आपके स्टीरियो सेट पर. कॉइन क्यों नहीं मूव हुआ जब आपने खींचा नीचे से कार्ड को, क्यों नहीं मूव हुआ बताइए. तीसरा, फास्ट फ्लिक बेटर है या फिर स्लो, मतलब कार्ड जिस पे आपने कॉइन रखा है उसे आप बहुत मोहब्बत से खींच रहे हो बिल्कुल छलका के, तो वो ज्यादा सही है या फिर फास्ट खींचेंगे तब हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होगा, ये बताइए. और इनर्शिया किस चीज की रेजिस्टेंस है, आंसर डिस्कशन पे आप पहुंचेंगे. साइंस सिर्फ फॉर्मूला के अराउंड थोड़ी घूमती है, साइंस ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं बच्चों से ही बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, क्या लगता है बच्चों ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बने जिनको आप किताबों में पढ़ते हैं, गुस्सा भी आता है कि क्यों किया है न्यूटन भाई, हमें नहीं जानना था आपका ये लॉ बोला। तो ये लॉज जो आ रहे थे ये कोई ऐसे थोड़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डेलिबरेटली, तो इनको लगा कि हाँ ऐसा भी तो रूल हो सकता है। नहीं नहीं, दीज पीपल वर ग्रेट ऑब्जर्वर्स। आपके अराउंड हर चीज में साइंस है, और ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट दुनिया में आ चुके हैं, अभी भी कॉन्सेप्ट हैं जो आएंगे, बट आपकी वो आंखें होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि उन कॉन्सेप्ट्स को ढूंढे, तलाशे और तराशे। तराशेगा कैसे, जब आपका माइंड इन चीजों के लिए ओपन रहेगा, है ना। जब इनर्शिया, ये बड़ों के लिए, जब इनर्शिया आपसे कोई छोटा बच्चा पूछेगा तो क्या आप बता पाएंगे, आप बोलेंगे बेटा स्कूल में पढ़ा था भूल गया, अब याद नहीं आ रहा इनर्शिया क्या, कुछ तो होता था, तो अभी आपका भी रिविजन है। तो ये शो में नाम इसका जूनियर साइंटिस्ट है, बट हमारा मकसद है कि हर किसी तक ये शो वैसे ही पहुंचे कि एक जनरल ऑडियंस के किस्म का लगे, कि आपको ये ना लगे हाँ सर बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी कोई साइंस के स्टूडेंट थोड़ी हूँ, बट देन इनर्शिया एज अ कॉन्सेप्ट मैंने कुछ दिनों पहले देखा था जब ये एपिसोड तैयार हो रहे थे, एंड आई फिगर्ड आउट कि भाई पढ़ना पड़ेगा। सो देन आई फिगर्ड आउट फ्यू थिंग्स, और ये सारे एग्जाम्पल्स उसी की उपज है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, और आसान भाषा में तो फैक्ट नंबर वन क्या है, अर्थ भी, हमारा जो अर्थ है इनर्शिया की वजह से ही लगातार मूव कर रहा है। दिस इज इनर्शिया व्हिच इज मेकिंग द अर्थ मूव। ओके, फैक्ट नंबर टू क्या है, एस्ट्रोनॉट्स जो फ्लोटिंग फील आती है उन्हें, दैट इज बिकॉज मोशन और ग्रेविटी अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग फ्लोट कर रहे हैं, है ना। अब फैक्ट नंबर तीन, देसी फैक्ट के क्या थे, ट्रेन जो है जब सडनली रुक जाती है तो पैसेंजर्स को झटका फील होता है, ये भी इनर्शिया का हिस्सा है। नाउ फैक्ट फोर, रोलर कोस्टर्स में कभी आप बैठे, बाय द वे बैठिए, क्योंकि पता नहीं बच्चे आजकल जाते हैं राइड्स वगैरह में, जो लोग माँ बाप ले जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो रोलर कोस्टर राइड जो होती है वो इनर्शिया की वजह से ही एक्साइटिंग लगती है। अगर वो सिंपल रहती, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रोलर कोस्टर में बैठ गया, अगर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, इनर्शिया एग्जिस्ट नहीं करती, अल्लाह ताला कहते कि नहीं जी सिर्फ ग्रेविटी है इसी से काम चलाओ, तो आपको मजा भी नहीं आता उसमें। उसका जो मजा है ना, जो एक्साइटमेंट है रोलर कोस्टर की, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इनर्शिया की वजह से ही है। जब रोलर कोस्टर घूमता है कभी आप अपनी जिस जगह बैठे हैं उससे चिपक जाते हैं ना, पीछे की तरफ आ जाते हैं, एक अजीब सा पुश मिलता है छाती को, आगे जाते हैं अब अगेन एक पुश मिलता है, पुल मिलता है, तो ये इनर्शिया की ही वजह है और क्या है। तो अभी आज हमने इस इन एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या सीखा उन पे जरा नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि भैया इनर्शिया क्या होता है, आई होप इनर्शिया क्लियर हो गया होगा। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत सिंपल है, क्या है इनर्शिया बताइए, याद है ना, कहा था ना रिविजन करना बहुत जरूरी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी करंट स्टेट को मेंटेन रखना, सिंपल है। अब हम जैसे मैंने कहा किसी आदमी को नाम, आपको कोई दोस्त कह देते हैं ठीक है, जो बिल्कुल ढीठ है, आपको कोई फ्रेंड है स्कूल का तो वो बहुत ज्यादा स्टबन है, तो उसको आप इनर्शिया नाम दे दीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो इनर्शिया कैसा हुआ कि भाई मेरा दोस्त है इनर्शिया, अपनी करंट स्टेट को मेंटेन रखता है भाई वो, इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट का अपनी करंट स्टेट को मेंटेन रखना इन वेरी सिंपल टर्म्स इज इनर्शिया। ये है रिवीजन आज के एक्सपेरिमेंट का, आई होप कि ये क्लियर हो गया, और बच्चों को भी ये जरूर सिखाएं, पढ़ाएं उन्हें, बार बार बार बार इस बारे में बताएं। तो इनर्शिया क्या होता है आज हमने जाना। दूसरा, कॉइन और कार्ड का एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में कोई भारी भारी चीज का हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, बिकॉज नॉट रियली रिक्वायर्ड। सिर्फ सिंपल आपको एक कार्ड चाहिए, पर एक स्मूथ सर्फेस इस्तेमाल कीजिएगा। कार्ड आप वेरिएशन कर सकते हैं, कभी कभार कार्ड के ऊपर जब आप कॉइन जो प्लेस कर रहे हैं उस कार्ड को आप जब फ्लिक करके खींच के निकालेंगे तो कॉइन वहीं रह जाएगा, गिर सकता है, बट इट विल स्टे इन इट्स पोजिशन। ये इनर्शिया है। आप कॉइन को आप हैवी कर सकते हैं, कार्ड को थोड़ा थिक ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हैं, आप डिफरेंट वेरिएशन के साथ बच्चों को समझा सकते हैं, और बच्चे घर में खुद भी कर सकते हैं। और हमने जाना न्यूटन पाजी दी पहली लॉ। न्यूटन भाई साहब का जो पहला लॉ है वो भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जो पहला लॉ है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने काफी ज्यादा एग्जांपल दिए हैं आपको, पर मैं अंग्रेजी में और फिर उसको सिंपल भाषा में फिर से बता देता हूं, जस्ट बिकॉज रिवीजन है, बच्चों के लिए आसान करना है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, K किताबी डेफिनेशन क्या कहती है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. क्या मतलब हुआ, चीजें अपने हाल पर रहती हैं, पसंद करती हैं, या चीजें अपनी हालत चेंज करना पसंद नहीं करती हैं. ये है पहली लॉ ऑफ न्यूटन. जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उन्हें पुश ना करे तब तक मामला सेम टू सेम रहता है. एज सिंपल एज दैट. कितना आसान है ना. अब फ्रिक्शन का रोल हमने सीखा, फ्रिक्शन का रोल हमने कहा स्पेस में भी होता है, फ्रिक्शन के बारे में कितना कुछ जाना हमने. फ्रिक्शन सब चीजें बदल सकती है. कल हमने पिछले एक्सपेरिमेंट हमने जाना, जो ये आप ग्रोसरी स्टोर में जो ट्रॉली से खेलते हैं ग्रोसरी वाली, तो वो जब जाती रहती है फ्रिक्शन है, उसे आगे तक ले जा रही है ना खींच के. रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने कितने सारे लिए, गाड़ी का ब्रेक लगना, बस का ब्रेक लगना, प्लेन का टेक ऑफ होना, आपका रोलर कोस्टर में बैठना, ये सारे असल जिंदगी के एग्जांपल्स हैं और वेरिएशन और चैलेंजेस तो हमने कर लिए. तो ऐसा नहीं कि इनर्शिया सिर्फ एक ऐसी चीज है जो ऑब्जर्व करने पे दिख रही है या फिर ये सिर्फ कॉन्सेप्ट भर है, मगर इनर्शिया का ना होना कैन ऑल्सो बी अ फॉल्ट. जैसे मैंने कहा ना, रोलर कोस्टर का मजा ही नहीं आएगा आपको अगर इनर्शिया नहीं होगी. तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको बनाया ऐसे कि इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना जबरदस्त है कि आपको झूले से लेकर हर जगह ये मिलेगा, और जहां ये नहीं है वहां आपको चीजें खलेंगी. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा हमने कि साइंस हर जगह पर है, हर जगह पर है ना. तो अगर आप भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें बताएं. और बताएं भी ऐसे कि आपको ये ना लगे कि यार ये हो सकता है पहले बात कर चुके होंगे. कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है, हो सकता है कि पहले बात की होगी लेकिन आपकी बात अलग है. भाई आप बताएंगे तो मजा आएगा ना. जैसे अब हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं कि भाई इनर्शिया जो कार में होता है, रॉकेट्स में होता है, फुटबॉल में नजर आता है जब आप किक मारते हैं, प्लैनेट्स में होता है ना, और हमारी बॉडी में ये फोर्स है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं. दैट इज हाउ इट इज. अगर चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट इन केस वाला एग्जाम्पल. अगर आप रनिंग कर रहे हैं और अचानक से रुकने की कोशिश करेंगे तो आपने क्या किया, आपने पावर ब्रेक लगाए अपने, तो क्या होगा, आपकी बॉडी आगे झटका लेती है ना, आगे की तरफ जाते ना एकदम से. अगर आप भागते भागते एकदम से ब्रेक लगाए, सॉरी फॉर द बैड साउंड इफेक्ट्स बाय द वे, तो अगर आप एकदम से रुकेंगे तो आगे की तरफ झटका लगता है. क्यों लगता है ऐसा? अगर बस सडनली ब्रेक लगाती है सब पैसेंजर्स पीछे क्यों गिर जाते हैं? ये सब कुछ इनर्शिया ही तो है, ये सब कुछ इनर्शिया है. तो किसी भी चीज का अपने करंट मोशन को मेंटेन करना इज इनर्शिया. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मूव करना चाहता है. न्यूटन की फर्स्ट लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, वेरी सिंपल. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. अब एक और एग्जांपल है, एंड आई हैव रिटन दिस क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी फिट होता है. भाई जो ज्यादा साइंस वाले हैं, अगर ये मजाक भी लगे तो चलेगा, क्रिटिसाइज मत करना ठीक. कबीर अंकल का दिल बहुत कमजोर है. तो इमेजिन करिए आप फ्राइडे के दिन जो है सुबह सुबह उठे, लेटे हुए हैं बेड पर, अम्मी ने आवाज दी, उठो बेटी उठो बेटा, लेकिन आप उठना नहीं चाहते, मन नहीं कर रहा है. ये भी इनर्शिया है, मन नहीं कर रहा है. ये ऑब्जेक्ट सोचने समझने की ताकत खो चुका, आनंद भाई हो गए आप, आपका मन ही नहीं कर रहा है उठने का. दिस इज ऑल्सो इनर्शिया. बॉडी रेस्ट में और रेस्ट में रहना चाहती है. तो मम्मी बोले उठो उठो उठो उठो सारे उठो, तो आपको क्या बोलना है, मम्मी आई एम सो सॉरी मैं अभी इनर्शिया में हूं, मन नहीं कर रहा है मेरा. हमें बोलेंगे क्या, कहां पर है इनर्शिया में, है साइंस कैसे आई इसमें. आप बोल देना मैं वो रेडियो सुन रहा था तो कबीर अंकल ने मुझे बताया इनर्शिया ऐसा होता है. तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, मैं आलस नहीं दिखा रहा हूँ, ये दिखा रही हूँ आलस नहीं है मम्मी, ये इनर्शिया है. हाँ आप जरा हिस्ट्री ऑफ इनर्शिया में चले जाइएगा, मम्मी और भी सवाल पूछ सकती है ना. तो बताइएगा, सबसे पहले गैलीलियो ने, जो गैलीलियो थे, उन्होंने मोशन को डीपली स्टडी किया था. गैलीलियो भाई साहब ने ऑब्जर्व किया कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकेंगे नहीं भाई, वो तो फ्रिक्शन है ले जा रही है आगे तक खींच के. आइजैक न्यूटन भाई साहब जो थे, उन्होंने इनर्शिया को ऑफिशियली एक लॉ बना दिया. ये सारे साइंटिस्ट की मिलीभगत रही है, एक ने देखा, एक ने समझा, एक ने उसे लॉ ही बना दिया. एंड न्यूटन से पहले जो पुराने लोग थे वो सोचते थे कि ऑब्जेक्ट्स नेचुरली रुक जाते हैं, लेकिन एक्चुअली फ्रिक्शन उन्हें रोकती है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। कई मरतबा क्या होता है, आपके सामने कोई चीज हो रही है, आपको पता है हो रही है, आप देख सकते हैं, आंखों देखी चीज है, बट आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये हो कैसे रही है। एंड यू गेट कंफ्यूज, कोई पूछेगा अच्छा क्या देखा भाई, मैंने गाड़ी रुकते हुए देखी, कैसे रुकी, ब्रेक से, ब्रेक से रुकी, कैसे रुकी ब्रेक से, आप बोलेंगे ब्रेक से रुकी और क्या। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने का जो जो जो कला है वो तब आती है जब आप ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और सिमिलर चीजें अपने अराउंड ढूंढते हैं। इसलिए मैंने पहले कहते थे साइंस इज ऑल अराउंड अस। जब आप अपने आसपास चीजों को देखने लगते हैं तो आपको समझ में आता है यार ये तो हर जगह साइंस लग रही है, क्या कमाल की बात है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी एक चीज होती है, पता है क्या लगा आपको इनर्शिया के टाइप की होती है भाई साहब, इनर्शिया भी अलग अलग टाइप की है, पर आपको इनर्शिया पहले पता होना चाहिए, वो आपको क्लियर कर दिया मैंने। सारे एग्जांपल देखे, इनर्शिया के एग्जांपल्स आप और सुनिए, टाइप क्या क्या है। एक होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, जैसे कि आप फ्राइडे के दिन बिरयानी खाई पड़ गए, मन नहीं कर रहा, तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। टेबल पर रखी किताब, कॉइन कार्ड पे, सोफा पर पड़ा कुशन, आप बेड पे पड़े हुए, दिस इज ऑल इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करते रहना चाहता है। एक रोलिंग फुटबॉल, आपने लात मारी फुटबॉल रोल कर रही है, एक मूविंग कार, रनिंग फैन, आप ऑफिस जाते हुए, दिस इज ऑल इनर्शिया ऑफ मोशन। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। फिर आता है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मेंटेन करना चाहता है, सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या है, कार आपने ली, आप जो है जब कार का ब्रेक लगाते हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना पीछे, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखनी है, एंड एवरी टाइम यू सी समथिंग लाइक दिस ऑब्जर्व। एंड बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज पूछो बड़ों से सारे सवाल, आपकी वजह से ना सुनो ये बड़े भी भूल चुके हैं, इनको याद आएगा, है ना, तो इनका भी टेस्ट ले लेना। आपका मैं टेस्ट ले नहीं सकता, आप तो माशाल्लाह मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इन बड़ों का टेस्ट लिया करो, इनसे पूछ लिया करो, है ना। अर्थ का मोशन पूछो, इनसे पूछना ये बताओ अंकल अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है क्यों, ऐसे करके पूछ लेना, ठीक है, बताना नहीं मैंने कहा। और ये भी पूछ लेना कि ये भी बता दीजिए मम्मी ये अर्थ घूमते घूमते रुकता क्यों नहीं है, ये बताइए, जवाब बता दूं, जवाब आप पहले तैयार रखना, क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन ऑलमोस्ट होती नहीं है, इसलिए अर्थ कभी रुकता ही नहीं है, फ्रिक्शन ही तो रुकती है ना, अभी हमने क्या सीखा, तो जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो अर्थ कहां से रुकेगा। एक और काम करना, ये सवाल भी नोट कर लो, नोट कर लो, पेंसिल पेन है कुछ हाँ, नोट करो, एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट फील करते हैं क्यों करते हैं, ये भी पूछना। इसके बाद रॉकेट्स पर जाना सीधा, वहां बोलेंगे अरे कहां तक पहुंच गया ये, रॉकेट इंजन्स फोर्स प्रोवाइड करते हैं, कैसे जा रहे हैं ऊपर, क्या हो रहा है। सैटेलाइट्स की बात कर लेना, बहुत भारी बात लगेगी कि सैटेलाइट्स इनर्शिया और ग्रेविटी से, ग्रेविटी के बैलेंस और ऑर्बिट में रहते हैं, वरना वो कहां रहे ऑर्बिट में, बेचारे मजबूर है कहां जाए, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से तो बैलेंस्ड में है, वरना तो हो जाए काम इनका भी। तो बस ब्रेक लगे बॉडी फॉरवर्ड, कारपेट डस्टिंग फॉर एग्जाम्पल, कारपेट शेक करते हैं ना, एकदम हिला दिया, धड़ धड़ धड़ झाड़ दिया उसको, डस्ट इनर्शिया की वजह से अलग हो जाती है। क्लियर है ये वाला भी सीन है, ये ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पर वो ये धूल मिट्टी का दूसरे में आपको बता नहीं रहता, वरना बच्चे जो है वो सारे के सारे कारपेट आपके साफ कर देंगे। तो जो कारपेट अगर आप शेक करते हैं, थोड़ा झाड़ते हैं, तो डस्ट उस पर सटती है, ये इनर्शिया की वजह से सटती है। आस्क ये क्वेश्चन, पूछिए कि झाड़ने की वजह से डस्ट कैसे निकल गई, तो बड़े क्या बोलेंगे, झटक के निकल गई ना, पर पूछना नहीं नहीं नहीं झटक के निकल नहीं गई, कैसे निकली, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, तो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का। पेड़ लाते हैं, पेड़ के ऊपर से आम गिर गए नीचे, इनर्शिया। टेबल क्लॉथ ट्रिक वो मैजिशियन सस्ती वाली मैंने बताया आपको, बॉटल ट्रिक है ना, पेन फ्लिक है, ये सब कुछ है। अब आपके ब्रेन में भी मोशन है, सडन मोमेंट्स क्या होते हैं जब आप एकदम से मूव करते हैं, ज्यादा चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, ये ब्रेन का मोशन है। रोलर कोस्टर एक्साइटमेंट इनर्शिया और एक्सेलरेशन की वजह से है। जिम की एक्सरसाइज देख लीजिए, वेट लिफ्टिंग आपने करी है ना, वेट लिफ्टिंग में इनर्शिया फील होती है, तभी तो डोले शोले बन रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रूल क्या है इसका, मास और इनर्शिया आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, ज्यादा मास इक्वल्स ज्यादा इनर्शिया. क्लियर है, ये चीज आप ध्यान में रखिए. फोर्स F इज इक्वल टू एम ए. तो ये चीजें आप अगर आप याद रखेंगे देन एवरीथिंग इज क्लियर. तो आज हमने मेरे और बहुत सारे लोगों के पसंदीदा टॉपिक बात करी, विच वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया इन साइंस. एंड अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, आपके मन में कोई एक्सपेरिमेंट जो आप दे देना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज बताइएगा. FM 107 Qatar इस नाम से वैसे हम हर जगह मौजूद हैं. एंड आप मुझे भी शोज के दौरान, अलग अलग शोज के दौरान मैसेज जरूर कीजिएगा 666-22-107 पर. जूनियर साइंटिस्ट से दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा. क्या आप बेहद बेहद जरूरी है. मास्सलाम.
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.
0: हेल्थ फॉर ऑल. कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल. और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की. सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल
3: डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ
0: हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
4: Excuse me. अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
5: हाँ, उसके लिए तो
4: वैसे
5: तुम...
4: कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
5: वैसे वो तो देखो,
4: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है.
5: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे.
0: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107. दिल से देसी.

Assalamu alaikum and good evening. आप सुन रहे हैं FM 107 पे शो डियर फैमिली और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मावश खान. राइट, और वक्त हो गया है 4:00 तकरीबन 2 मिनट, क्योंकि कुछ सेकंड्स ही बाकी हैं और मेरा आपका साथ रहने वाला है 5 बजे तक यहाँ. रेडियो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे हमेशा की तरह. 2 दिन की ये जो छुट्टी गुजरी है, अगर आपकी थी तो भी अच्छी बात है, तो फिर तो बहुत अच्छी गुजरी होगी, और अगर नहीं थी तो फिर भी दिन तो आपका अच्छा ही गुजरा होगा इंशाल्लाह. एक और टॉपिक के साथ आज मैं आ गई हूँ, और आज हम बात किस टॉपिक पे करेंगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको नंबर्स बताती चलूँ आपको, ताकि कॉल मिलाने में आसानी हो, पता हो कि किन नंबर्स पे आपने कॉल करनी है और किस पे व्हाट्सएप करना है. तो आप हमें 4434377 पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो उसके लिए नंबर है हमारा 6662107. और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, मतलब ये है काफ़ी मज़ेदार, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी जो है ना ज़रूरी भी है. आपने देखा होगा कि हम लोग ज़िंदगी में ना ज़्यादातर मतलब ये गिले शिकवे कर रहे होते हैं, देखो भाई कितनी गर्मी है आज, मतलब कितना कोई मतलब बुरा हाल है, गर्मी ने तो हाल बेहाल किया हुआ है. या फिर उसके अलावा हमारी और इस किस्म की बातें होती हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई. अगर अपने मुल्कों की बातें करें तो कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कहीं पर गैस का प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ, और लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई कितनी मतलब कोई अजीब ज़िंदगी गुजर रही है, मतलब बता ही नहीं सकते ना, मतलब इतना कुछ अजीब अजीब चल रहा है, क्या ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी है. इस किस्म की बातें मतलब यूजुअली हमें सुनने को मिल रही होती हैं, लेकिन हमने इस पे बात नहीं करनी है. हमने बात करनी है इस बात पे कि आज हम मिलके ज़रा सोचेंगे अपनी ज़िंदगी की वो 3 ब्लेसिंग्स जो कि अगर आप काउंट करना चाहें तो फ़ौरन से आपके जहन में आ जाएं, क्योंकि गिले शिकवे तो हम बहुत करते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी मतलब वो चीज़ें, वो नेमतें भी जहन में ज़रूर लानी चाहिए और उसके ऊपर शुक्र भी अदा करना चाहिए जो एक फैमिली के तौर पर आप देखते हैं कि आपको मुयस्सर हैं अल्लाह ताला की तरफ से. अल्लाह ताला ने आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुयस्सर की हुई हैं, और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता इसके बारे में. जब आप सोचने बैठते हैं तो मतलब सेकंड्स लगते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है. और वैसे तो मतलब आप अगर सोचने सही तरह से बैठे ना तो मतलब सोच भी नहीं सकते इतनी नेमतें, लेकिन फिर भी मतलब जो 3 आपके जहन में आती हूँ, ठीक है, तो उस पर आज हमने बात करनी है. आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैंने जैसे बता दिया आपको नंबर, और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं. नंबर में फिर से रिपीट कर देती हूँ, 4434377 पे आप हमें कर सकते हैं कॉल, और 6662107 पे आप मैसेज कर सकते हैं. तो टॉपिक बड़ा ज़रूरी है, ज़रूर कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि अपनी ज़िंदगी की कोई सी भी 3 ब्लेसिंग्स, और उससे ज़्यादा बताना चाहें तो ज़बरदस्त, मतलब ज़रूर आपको हम वेलकम करेंगे कि आप बताइए, हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल के दौर में

0: मतलब मैं ये पर्सनली फील करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ख़ुद अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर इनक्रेज करें कि भाई बहुत कुछ है हमारे पास. मतलब वो कहते हैं ना ग्लास अभी आधा भरा हुआ है, तो जो अक्सर लोग आधा खाली देख रहे होते हैं, तो मतलब ये एक पर्सपेक्टिव को चेंज करना हमें बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहती आजकल आज के ज़माने में, क्योंकि मुझे नहीं पता आज से 50 साल पहले जो लोग थे वो किस तरह से सोचते थे, आज से 100 साल पहले लोग किस तरह से सोचते थे. मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से दुनिया है ना, जब से हर तरह की चीज़ चल रही है, अच्छाई भी चल रही है, बुराई भी चल रही है, और उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी हैं कि मतलब वे शिकायत भी हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़माना जिसमें हम पैदा हुए बहुत ही बुरा है. नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिस टाइम लाइन पर हमें पैदा किया हमारे लिए अच्छी है और हमें इसको अच्छा बनाना है, ये वाली सोच हमें रखनी चाहिए. आजकल का ज़माना ये चीज़ नहीं होती. असल बात यह है कि हमारे सोचने का अंदाज हर दौर में या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और हमें ये फैसला करना है कि हम कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं. तो देखते हैं पहले कॉलर क्या कहते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
0: जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आपका वीकेंड कैसा गुजरा?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा, काफी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र.
1: मतलब आप जिस तरीके से आपने जो टॉपिक छेड़ी है ना, तो मुझे लगा कि वीकेंड में कुछ हुआ है.
0: नहीं नहीं, वीकेंड की इसमें खास बात नहीं, मुझे तो वीकेंड मिल जाता है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है भाई. मतलब पहली ब्लेसिंग तो ये है जिंदगी की. वीकेंड इतना कोई जरूरी है भाई. हाँ, मतलब उसमें ना आप चाहे बाहर जाओ ना जाओ, मतलब मेरा वो वाला बिलीव नहीं है. क्योंकि एक तो हम उस जिस कैटेगरी के लोग हैं ना, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें ना मतलब बहुत शोर व गुल, बहुत कुछ, बहुत हैपनिंग नहीं चाहिए ज़िंदगी में. मेरा ताल्लुक उन लोगों में जिनको एक सुकून से एक जगह पे फरागत मिल जाए ना, तो वही बहुत काफ़ी है. मैं इसी पे बड़ी शुक्रगुजार हूँ.
1: सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने. तो वही बात होगी कि अकेला कर गया मुझे मुनफरिद रहने का शौक.
0: बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा है, याद रखूंगी मैं. अकेला कर गया मुझे मुनफरिद रहने का शौक, क्या बात है भाई, जबरदस्त.
1: अकेला कर गया मुझे मुनफरिद रहने का शौक, छोटा सा. अच्छा, वैसे आपने बताया नहीं कि कौन बोल रहे हैं?
0: समत.
1: अरे वाह, भूल गया.
0: नहीं नहीं, मैं
1: आज की टॉपिक आपकी क्या थी वैसे?
0: आज का टॉपिक हमारा ये है कि हमने जिंदगी में
1: रिप्लेसमेंट कुछ ऐसे,
0: नहीं, हमने जिंदगी में तीन जो हमारी कोई ब्लेसिंग्स जो हम एकदम से ना, मतलब अगर सोचने बैठे तो तीन तो हम फौरन ही जहन में आ जाए हमारे, इतनी प्रोमिनेंट हो.
1: तीन वाली, अच्छा, मतलब के ब्लेसिंग्स बोल रहे हो या फिर आप
0: ब्लेसिंग्स बोल रही हो?
1: हाँ जी, ब्लेसिंग्स तो तीन. सबसे पहली ये है कि फर्स्ट हम जो है सेहतमंद हैं. सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो होती है वो सेहतमंद है, वरना आप भी देखें कितने सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कितना कुछ सफर कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और दूसरी चीज, अल्लाह सुभान व तआला ने हमें जिस हाल में भी रखा, जैसे भी रखा है, अगर हम हमारे से किसी और की जिंदगी को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा बेहतर हैं. क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि आपकी अभी की छोड़ी हुई जिंदगी भी जीना पसंद करेंगे, ऐसे भी लोग हैं. तो बेहतर है कि हमें हर मरहले में जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा. और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमसे कोई जानी जो है आजमाइश नहीं ली है. मतलब अपनों को खोने का दर्द कुछ और ही होता है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक चीज है. बाकी सब तो खैर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहती हैं, तो उस हिसाब से जो भी होता है हमें जो है खुले दिल से एक्सेप्ट करना है और अल्लाह के जो है रज़ाए बर राजी रहना है, समझिए, बस वही कह सकते हैं.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो ये तीन चीजें आप कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं तो ऐसा कुछ सोचता हूँ कि भाई जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, कल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, कल का छोड़ो अभी का पता नहीं है, पर जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही. और कुछ इजाफा करना चाहेंगे समझ, या बस इतना ही?
1: अभी देखें, अब इजाफे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब कहने के लिए तो अब अपने तीन कहा है, लेकिन देखा जाए तो मतलब हमें हर चीज से जो है शुक्र अदा करना चाहिए. कि आपने कहा कि कुछ चीज ज्यादा हो जाती है या फिर कुछ चीज कम हो जाती है तो हम कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा क्यों ऐसे क्यों, तो कभी होता है कि भाई गरम गरम खाना मिल जाए घर में तो मजे से खाते हैं, जिस दिन ठंडा मिलेगा तो उस दिन मतलब चिल्ला उठेंगे. वैसे वजीफा तो
0: जाती
1: है, शुक्र है. सिचुएशन टू सिचुएशन और जो है सरकमस्टेंसेस टू सरकमस्टेंसेस इंसान जो है अपने हिसाब

0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: वो तो ये कहना है, बट जितना रिएक्ट हम जितना करेंगे तो वो अच्छा अच्छा रहेगा, और हमारे जहनी और दिली सुकून के लिए भी आसानी रहेगी।
0: exactly.
1: वरना एंजाइटी को और इजाफा मिलेगा बढ़ने के लिए, दिन भर वही सोचते रहेंगे।
0: जबरदस्त,
1: ये वाली चीज बताती है।
0: चले नहीं, ग्रेट, जबरदस्त।
1: मानना है ये सब चीज अच्छे से कर लो, और दिमाग में कोई चीज ज्यादा रखो मत और दिल में मत रखो। बस रात में सोने से पहले अपने दिल को और अपने दिमाग को साफ करके सो जाओ। इसमें जो भी किया वो अपना देखेगा। हमसे ये चाहिए कि हमने क्या किया है, बस ये हमारा जहन में होना चाहिए। बाकी हमको अल्लाह के हुजूर खड़े होना है। जैसे कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज का मतलब ये है कि हम जब खड़े होंगे तो ये नहीं कि सिर्फ और गए और सिर्फ नमाज पढ़ ली, नहीं। हमको ये चाहिए कि हम जब खड़े हो रहे हैं तो किस चीज के लिए खड़े हो, हमारे लिए और हमारी माफी के लिए और हमारी तरक्की के लिए और हमारे दुनिया और आखिरत दोनों के लिए। हमने जो जो भी चीजें अल्लाह से जो है तलब की हैं, वो इस चीजों के लिए खड़े हैं। तो उस हिसाब से आप जो अल्लाह की तरफ में जब रुजू कर रहे हैं, तो आपकी अपनी खुद की जिंदगी उस चीज पर जो है अमल पैरवी में आनी चाहिए कि मैंने किसी को सेम थिंग तकलीफ नहीं देनी है। मैं तकलीफ देकर अल्लाह के हुजूर खड़े रहूंगा तो क्या फायदा हुआ? अल्लाह बोलेंगे तुम किसी का दिल तोड़ के आए हो और मुझसे माफी मांग रहे हो, ये कैसे होगा? तो नमाज का मतलब ये है कि अल्लाह से जुड़ना है, बट किसी का दिल तोड़ के नहीं।
0: बिल्कुल,
1: ये वाली चीज है।
0: जबरदस्त जबरदस्त।
1: कोशिश करना सबका यही है कि जो है दुनिया में सबके साथ हंस बोल के रहे, खुश मिजाज रहे, उसके बाद में वही कहते हैं ना कि भाई लोग इंतजार करते हैं सहरे का, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि भाई जाना तो 4 खानों पे ही है।
0: सही,
1: हर किसी को ताज पसंद है ना मैडम, वही मसला।
0: सही बात है, बिल्कुल सही। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त समत, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी।
1: इंशाल्लाह फिर बात करते हैं।
0: थैंक यू जी, थैंक यू, लापस रही जी। तो हमारे साथ समत थे और बहुत ही अच्छे, इन्होंने 2-4 बातें बहुत ही जबरदस्त बोली हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं बात करती हूँ बाद में। अभी एक कॉलर पहले से होल्ड पर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम मैडम
0: जी, क्या हाल चाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप कैसी हैं?
0: अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, जबरदस्त। आप बताएं कैसा रहा, मतलब 2 दिन कैसे गुजरे?
2: आपने बहुत आराम किया वीकेंड पे, लग भी रहा है कि आपने बहुत आराम किया वीकेंड
0: पे। ये कैसे
2: लग रहा है?
0: अच्छा,
2: आप टॉपिक सोच के लाए हो।
0: नहीं नहीं, ये टॉपिक्स तो ना एक हफ्ते पहले के डिसाइडेड होते हैं, इसका वीकेंड पे कोई लेना देना नहीं है। ये पिछले हफ्ते, मेरा ख्याल है हफ्ते वाले दिन ही मैंने टॉपिक डिसाइड किए थे।
2: तो पिछले हफ्ते का आपने इस हफ्ते आराम किया मतलब?
0: हाँ। ये कह सकते हैं, तो बस वो यही है इस तरह, वो मतलब कोई पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है, बस टॉपिक लेकर आना है तो जो मिल जाता है भाई लेकर आ जाते हैं। ये वाला हाल है,
2: वो कहानी घर घर की मिस नवीद खान के साथ।
0: हाँ ये तो है, आप नाम रख के छोड़ेंगे, किसी ने सुन लिया हमारे यहाँ से तो फिर वो ये नाम रख ही देगा। जी क्या हाल चाल है भाई, आप बताएं।
2: हर कॉल पे आपको मैं बताऊंगा
0: यही वाली चीज। सही, अच्छा आप अपनी तो सुनाएं, आपका कैसे गुजरा वक्त और क्या कहना चाहेंगे आज?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैडम बस। अच्छा मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ 3 इम्पोर्टेंट चीजें जो है, मेरा बॉस आने वाला है।
0: अच्छा,
2: फिर मुझे चूचा करेगा बताऊँ। तो पहली चीज है, पहली नेमत है मेरी बीवी।
0: जबरदस्त।
2: अगर अल्लाह ने मुझे कयामत वाले दिन पूछा दुनिया में सबसे अच्छी नेमत तुम्हें कौन सी लगी मेरी बीवी, तो मैं अपनी बीवी का नाम।
0: या अल्लाह कितनी अच्छी, मतलब खुश नसीब बंदी है, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छी। अल्लाह ताला आप लोगों को ना इतना खुश रखे, जिंदगी भर बहुत खुश रखे, बहुत प्यारी बात। आगे बताए।
2: सेकेंड आपको पता है?
0: हाँ ठीक है।
2: और चौथी मेरे, तीसरी जो है, अल्लाह ने मुझे सब्र दी,
0: सब्र दिया,
2: सफर मैं बेसबर इंसान था अपनी जिंदगी में, मैंने हर चीज में जल्दबाजी रखी है, हर चीज में बेसबर रहा हूँ, लेकिन मेरी अम्मा बोलती थी मुझे तू बहुत बेसबर है।
0: अच्छा पता है अली, मैं भी,
2: अल्लाह ने मुझे सफर,
0: मुझे भी लगता है कि मैं भी ना बेसब्री रही हूँ, और अल्लाह ताला फिर वाकई आपको सब्र करना सिखाता है, और ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। वरना मेरे अंदर ना आज भी है, मुझे बहुत उजलत होती है, जो लोग मुझे बहुत अरसे से जानते हैं सुनते हैं उनको ये अंदाज़ा है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम ना वक्त से बहुत पहले करूँ, काम हो कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ की लग जाती है ना तो बस होती है बस ये हो जानी चाहिए, अभी हो जानी चाहिए। हाँ ये मेरे अंदर भी थोड़ा सा वो वाला मामला आया, अभी भी मैं मुकम्मल नहीं कह सकती, लेकिन ये कि हाँ मतलब ब्रेक लगाना थोड़ा बहुत सीखा है, थोड़ा बहुत।
2: Yes. Okay,
1: اللہ حافظ.
0: اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو جی.

0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रे जी, तो हमारे साथ थे अली रजा और हमारे साथ इससे पहले समत थे। हाँ, समत की बात पे मैं कह रही थी कि उन्होंने एक बात की, देखिए मेरे दिमाग से निकल रही एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने उस वक्त बोली ना, एक तो नमाज के हवाले से। वाकई देखिए, मतलब हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो हमें ये होता है बस फ़र्ज़ अदा करना है, लेकिन ये बड़ी कितनी अच्छी बात है। आज से मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, और जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए भी इसीलिए इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि हम सब लोगों को वाकई कोशिश करनी चाहिए कि जब हम नमाज के वक्त खड़े होते हैं तो नियत करते हैं ना यूजली हम, कि मतलब पहले तो वो वाली नियत होती थी जो हमने बचपन में वो की हुई थी कि नियत करती हूँ इतने रकात और ये वो, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। तो अब वो वाली पता चला कि नहीं भाई, दिल में काफ़ी होता है, लेकिन ये वाली नियत हमें करनी चाहिए। ये मुझे अच्छी लगी है बहुत बात कि हम ये सोचें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं नमाज, मतलब मकसद क्या है इसका। ये वाली नियत हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला उस नमाज को आई थिंक इंशाल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा दे देंगे। बाकी एक बात मुझे और बड़ी अच्छी लगी थी समत की, जो कि मैं मिस कर रही हूँ थोड़ी सी, चलें जहन में आती हूँ तो आती है तो बताती हूँ। खैर जी, इसके साथ हैं कौन कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: जी भाई, हवाएं ज़्यादा सुनाई दे रही हैं आपकी आवाज़ कम आ रही। कौन है हमारे साथ?
1: अच्छा, मैं रोड पर और गाड़ी में बैठा हूँ, इसलिए मैं पहले पूछूं कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है?
0: नहीं, बहुत क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज।
1: अच्छा,
0: ब्लूटूथ या कुछ ऐसा है तो वो निकाल दे।
1: नहीं, मैंने गाड़ी जो रोड से वो कनेक्ट किया ना, क्योंकि मैं ड्यूरिंग ड्राइविंग कॉल कर रहा हूँ इसलिए।
0: हाँ, अच्छा, तो भाई नाम क्या है आपका?
1: जी, मेरा नाम मुदस्सर है मैम।
0: मुदस्सर, मुदस्सर ऐसा हो सकता है कि कहीं भी थोड़ी देर पार्क करके फिर बात कर लें?
1: हाँ ठीक है, मुश्किल
0: है। हाँ, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, सुनने वालों को ना शोर सुनाई देगा ज्यादा, तो हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है?
1: 10-12 मिनट बाद में
0: जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, थैंक यू जी, थैंक यू। रही जी, तो इसके साथ ही हम चलते हैं सॉन्ग की तरफ, और किसी ने अगर नोट किया हो मैं कौन सी वाली बात पे, मैंने मुदस्सर की बोला, वो मुदस्सर कह रही हूँ सॉरी, समत के बोला था, तो ज़रूर मुझे याद दिलाइए, मैं भूल रही हूँ, लेकिन वो बात बड़ी अच्छी थी, मैं चाह रही हूँ उसको कि एक दफ़ा जो है ना, मतलब थोड़ी सी बात की जाए उसके ऊपर। चलिए जी, अली ज़फ़र, हाँ याद आ गई मुझे बात, इस पर बात की जाए। वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि हर जगह ना अपनी राय देना ज़रूरी नहीं होता। ये वाला मामला ना मेरे साथ ये था कि एक वक्त आता है नया नया जिसमें आप ना अपना ओपिनियन सेट करना शुरू करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और आप बड़ा, मतलब मैं इस चीज़ को बड़ा एक तरह समझें कि फैंटेसाइज करती थी, और मतलब काफ़ी हद तक ना मुझे वो वाला एक मामला हो गया था कि ओपिनियन है मेरा। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे, मैं अपने शो में भी बहुत बोलती थी कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ज़िंदगी में कोई ओपिनियन नहीं होता, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार रहे होते हैं, और उसमें आप अपना हर मामले पर, जब नया नया एक हर चीज़ का एक होता है ना खुमार सा, तो उसमें क्या होता है कि हम ये एक चीज़ कर लेते हैं कि हम हर चीज़ में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो, क्योंकि हम बड़ा फैंटेसाइज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो हम बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाय द टाइम मुझे ये चीज़ समझ में आई, जैसे समत ने कहा कि आपको हर जगह ज़रूरी नहीं है कि वो ओपिनियन आप रखते हैं, हाँ रखो, और ओपिनियन कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वो बदलता रहता है बाय द टाइम। मतलब अभी हो सकता है आपका कोई ओपिनियन हो, कल को आपका कोई और ओपिनियन हो उसी चीज़ को लेके, क्योंकि अगर वही कहते हैं ना कि अगर आप इंसान जो है ना बिल्कुल एक तरफ डट जाए तो फिर वो तो या तो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है या फिर मतलब जो है ना आप में तब्दीली नहीं आ रही, तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो हो सकता है आपका ओपिनियन आज कुछ है, कल कुछ और हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियन को बहुत जम के हर जगह इजहार करना वो भी ज़रूरी नहीं है। ये मुझे बाय द टाइम ये बात समझ में आई, और समत ने यही वाली बात की थी तो मैंने कहा कि चलें, मतलब ये बात भी करनी चाहिए। खैर जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू।
0: हम हैं आपके साथ एफएम मिक्स साथ, कैसे हैं? टॉपिक है तीन ब्लेसिंग्स, आपकी जिंदगी की कोई भी तीन नेमतें जिसे आप फौरन से, मतलब आपको याद आ जाती हूँ कि देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है,
2: तीन नेमतें। हाँ, सबसे बड़ी अहम नेमत कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ,
0: माशाल्लाह जबरदस्त,
2: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी के उम्मत में मैं, मेरा शुमार होता है,
0: माशाल्लाह
2: सबसे बड़ी नेमत। और फिर और एक नेक साहब औलाद, तो औलाद एक नियामत से बढ़कर है, नियामत है औलाद से, यानी मैं, मेरे बच्चे हैं, मैं किसी का बाप हूँ, तो वो एक बड़ी नेमत। और भरपूर जिंदगी में ना कभी रिक्स की भी तंगी नहीं, भरपूर रिजक मिला है, भरपूर, एक बंदा और बेहतरीन जिसका गुमान भी कभी नहीं किया था कि किसी फाइव स्टार होटल में इफ्तार पार्टी में मैं रहूंगा, तो हाँ, तो ये मुझे हमेशा मतलब है ना याद रहती है, क्योंकि और हम जो जैसे दुनिया भी तरह तरह के मजहब के लोग हैं सारे, कोई किस तरह है, कोई किस तरह है, कोई किस तरह है, सब अपनी अपनी इबादत का मतलब एक है, लेकिन जब उनको देखो और अपने को देखो तो वो भी है ना, वो भी वो हमारे यहाँ बॉम्बे में भी है ना अक्सर रमजान का चांद और ईद के चांद के लिए ना जब पब्लिक मतलब मोहल्ले से निकल के बाहर रास्ते पे आती है ना या कहीं एक झुंड जमा होता है ना, तो जो आने जाने वाले ना वो देखते थे, वो भी आसमान की तरफ वो भी देखते थे कि भाई क्या अगले वो रमजान का चांद में दिखेगा ना तो कल हमारा रोजा होगा ना। तो यानी ये एक कुदरत का बेशुमार करिश्मा है कि मुसलमान एक है ना करिश्मा ही यानी कुदरती एक चीज आसमान में देखने के बाद अपनी इबादत शुरू करता है। और एक वो अपने आप को मजबूर हो जाते क्या हम ही किस तरह की इबादत कर रहे जो हमसे हटके है। तो वो कहीं ना कहीं कई लोग तो ईमान लाए, अभी जैसा यहाँ पे जो फीफा हुआ था तो लोगों ने सूख वाकिफ वगैरह में जब गश्त कर रहे थे तो उन लोगों ने पहली दफा अजान सुनी और मैंने तो लाइव देखा, बाकायदा हाथ बांध के दीवार को टेका लगाए हुए बड़े सुकून से आया बंद करके एंजॉय कर रहे थे अजान। तो ये हाँ ये सब यानी हम मोमिनों के लिए बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की तरफ से, मेरे लिए भी और सबके लिए भी जो सब सारे खुश नसीब है। तो ये हाँ इसका मतलब कुछ मतलब यही नहीं कि मतलब कोई अल्फाज ही नहीं है ऐसे बच्चे के अल्लाह के इतना शुक्र अदा करे या इतनी तारीफ करे, जितनी भी करो सारी कुछ कम है, जितनी भी करो सारी कम है। बिल्कुल, क्योंकि और कल्चर जो है जो दूसरे है ना तो वो अपनी इबादतों पे उनको शक होता है खुद को उनको, और वो और बोले ये इनके तो कोई फोटो भी नहीं है, कोई तस्वीर भी नहीं है। हमारी तो फोटो वीटो नहीं रही इसके बारे में कहीं, जैसे कहीं जो गैर मुस्लिम से कहीं बात हुई मौला नहीं हमारी कोई फोटो नहीं होती कहीं किसी की नहीं, हमने देखा नहीं, बस ये हमारा दिल का हमारा यकीदा है और हम जो है ना टच करते हैं हमको जो एक जो हमारे पास किताब है वो भी है ना वो वहाँ आसमान से उतरी है, होती वहां से उतरी साइकिल है वो, तो बोले हाँ इसमें है, मैं बोला हाँ, तो हम उनको है ना फॉलो करते हैं वो ऐसा है। तो वो एकदम उनकी खुद की उस पे ना वो बोले हम किस कल्चर में पैदा हो गए, उनको अपने आप पे शक होने लगता है एक तरह से, तो एक तरह से अपने आप को एकदम वो महसूस महसूस कर रहे होते हैं। तो वाकई में बोले ये भी एक मतलब मजहब है, ये भी एक इंसान है, ये इनका भी किस तरह का त्योहार है। हाँ मैं साल में सिर्फ दो ईद और बकरा ईद और बस इतना है मतलब, और लुटाना बटाना और सबको मतलब खिलाना मतलब ऐसा ही है ज्यादातर, यही सब है अपने जैसे माशरे में जैसा हो रहा है अपने मुस्लिम कल्चर में ज्यादा यही है और हमेशा ही रहेगा ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हज का एक है कि एक ऐसी इबादत का कि सारे दुनिया के लोग वहाँ, सारे दुनिया के एक ही कल्चर एक ही मजहब के लोग जमा होते हैं, वो भी एक मतलब बहुत मतलब दूसरे लोगों के लिए ना एक मतलब सरप्राइज और उनको एक सोचने पर मजबूर करता है कि सऊदी गवर्नमेंट इनको कैसा मैनेज करती है इतने वर्ल्ड से दुनिया से फ्लाइट लैंड और अराइव हो रही है और उनको पार्किंग देना, फिर उनको ट्रांसपोर्ट देना, फिर उनको पानी खाना जैसा जो भी है, तो ये किस तरह वो भी मतलब इस पर है ना वो भी
0: देखिए ना उसमें भी कितनी ग्रेस भी है, एक डिसिप्लिन भी है हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं होती है वो, है ना।
2: जी तो वो साल में एक इतना बड़ा इनका एक दिन है कि सारी दुनिया के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनको उस पर भी जो कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है जो वहां पर है जिनको जाना है तो उनके लिए उतना इंतजामिया उतना सिस्टम उतनी डिसिप्लिन और उतने उनके लिए हेल्पिंग हर चीज से मेडिकल से लेके रोड के ट्रांसपोर्ट से लेके और टॉयलेट से लेके हर चीज, यानी वो यूरोप वाले तो एकदम से मतलब सर ऐसा पकड़ लेते हैं कि यार वाकई में यार एप्रिशिएट है
0: बिल्कुल।
2: तो ये सारी चीज है ना बिल्कुल नियामत है और सबके लिए ये मेरा ख्याल है। तो बस मैं तो यही
0: नहीं, जबरदस्त जबरदस्त, मतलब वही चीज है कि आप किस चीज को नेमत गर्दानते हो, ये बड़ा एक ना मतलब ये बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है ना बहुत ही मतलब अजर भी दे इस चीज का, इंशाल्लाह ताला आपके ईमान को बहुत पक्का रखे।
2: खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इस तरह से ना, मतलब हम लोग को मतलब इस तरह से मतलब है ना, एक एक चीज पे गौर करो ना। अभी जो आपके भी प्रोग्राम चलता है ना, क्या नाम है उसका, कुरान, कौन सा
0: पल्स ऑफ कुरान,
2: हाँ हाँ, उसमें भी एक एक आप तहरीर जो बताते हैं ना उनकी, एक एक आयतों की।

0: यानी यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, यानी कितना शुक्र है अल्लाह का, कहाँ तक शुक्र हम अदा करने, अल्फाज खत्म हो जाते हैं कि या अल्लाह तेरी एक एक सांस एक एक स्पू इतना एहसान, तूने इतनी बड़ी नियामत इतना मतलब परफेक्ट हम तो है ना दुनिया में भेजा है, तो क्या कहने मतलब, बस यही मैं कहूंगा, बाकी देखते हैं आगे। और
1: बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त कॉल शहजादा सलीम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ अभी तक की जो तीनों कॉल आई हैं बड़ी जबरदस्त, और इसके साथ ही एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ चलते हैं, फिर आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। पहले सुनते हैं ये वाला सॉन्ग।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ, और हमारे साथ हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
2: जी, क्या हाल चाल है आपके?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है।
2: जबरदस्त, ग्रेट। थोड़ा सा लेट मैंने आपका मैसेज देखा, लेकिन ये कि अभी बस देखा जैसे ही तो आपको कॉल मिला ली। क्या कहना चाहेंगे भाई?
3: मैं अपना अगर तीन चीज से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो इस्लाम के बारे में मैं अपना जो नजरिया है वो शायद एक हदीस है या कुरानी वर्ड है, मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि उसमें ये है, मुसलमान या इस्लाम वो होता है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे लोग, दूसरे जो पूरे आलम महफूज रहता है, तो वो सोच के हमारा जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें। एक छोटे से चीज करो या बड़े चीज करो, ताकि उनको ये मालूम होना चाहिए हाँ, एक उधर ऑपोजिट में एक मुसलमान है तो हम महफूज हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: वही आज का आपका टॉपिक तो मुझे वही याद में आया था, तो ये बोलना बहुत जरूरी।
2: चलें, गुड, जबरदस्त। फैजल, आप कहाँ से हैं? फैजल ही नाम है ना आपका?
3: हाँ, फैजल ही नाम हूँ, मैं केरला से हूँ।
2: केरला से हैं, जबरदस्त, ग्रेट। और कुछ कहना चाहेंगे फैजल?
3: यस, बहुत नियमतें के बारे में बोलता है तो बहुत सारे नियमतें हैं।

0: जो एटलीस्ट तीन नियमतें मैं पहले बोल सकता है तो
1: जी जी बिल्कुल
0: इम्पोर्टेंट है जो अपना हर आदमी का अपना माँ बाप जो है और सबसे बहुत बड़ा नियमत है क्योंकि उनके वजह से हम हैं और उन्हीं के दिए हुए तालीम और उन्हीं के दिए हुए रास्ते पे हम जी रहे हैं इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है दूसरा जो अपने बीवी होता है जो हमको साथ में लेके चलता है और पूरे एक अपने लिए भी एक परिवार बन जाता है
1: बिल्कुल
0: और तीसरा जो है अपने बच्चे लोग जो भी है उनको हम वही तरीका सिखाता है और उनको ये बोलता है ना कुरतुल लाइन बोलते हैं तो वो हालत में हम उनको लेके आता है
1: जबरदस्त ग्रेट बहुत जबरदस्त फैजल बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके थैंक यू सो मच थैंक यू डी
0: थैंक यू
1: ख्याल रखिएगा अपना थैंक यू डी अल्लाह जी तो हमारे साथ फैजल थे और इसके साथ हमारे साथ एक और कॉलर हैं फैजल ने भी बड़ी जबरदस्त बात की अब देखते हैं कि हमारे ये कॉलर क्या कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम सबको सलाम और दुआ और जबरदस्त आपका सवाल और उस पे एक माँ का बड़ा जबरदस्त उसने अहवाल भी बयान किया और ये रिश्ते ही तो नेमत हैं और मेरे हिसाब से या जैसे आप देखें सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत जो हमारे इस्लाम ने या हमें कहा कि इंसान आज़ाद हुआ है गुलामी नहीं है आज़ादी आप गुलामी में हों तो कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हम जैसे मैं समझता हूँ फुल आज़ाद नहीं लेकिन पार्शली नहीं फिर भी हम आज़ाद हैं हज़रत बिलाल हबशी की या उनकी आप देखें तो आपको पता चलता है कि आज़ादी कितनी नेमत है वरना तो आपकी मर्ज़ी आपकी ख्वाहिशात सब कुछ ख़त्म हो जाता है आप दूसरों के ताबे हो जाते हैं सिर्फ अल्लाह ने कहा मेरे ताबे रहना और उसके बाद अल्लाह का एहसास ये जो आपको एहसास है ना उम्मीद होने नहीं देता
1: बेशक
2: उसके बाद ये कुरान हकीम वाकई कि आप इसको पढ़ें समझें ना भी इसको पढ़ें लेकिन आपको ना एक फीलिंग का एक रिलैक्सेशन का मिलता है एहसास मिलता है और वो चीज़ जब आपको पता चलता है कि मैं अब अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ और उसमें खैर है और यकीनन अल्लाह ताला ने भी फरमाया है अच्छा अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक ये भी मैं समझता हूँ कि मुझे कोई चीज़ जैसे वो आपने देखा होगा ना इनाम बॉन्ड्स फलाने धमकाने शुरू में हम लेते रहे हैं लेकिन नहीं मिली ना ये बहुत अच्छा हुआ है उससे मेरी एक मेहनत करने की जुस्तजू बरकरार रही और मुझे अल्लाह ने दर्जा ब दर्जा मुझे नवाजते गए इस तरह यानी उससे ना वो हिस्सा मांदनी पड़ा जैसे बैठे बैठे आपका लाखों का करोड़ों का बॉन्ड निकल आया तो आप रिलैक्सेशन मोड में और जो रिश्तेदार और जानने वाले हैं वो लूटने के मोड में आ जाते हैं कि अब इससे कैसे लिया जाए ऐसी बड़ी मिसालें हैं कि लोग ये बड़ी बड़ी निकले हैं तो लोग तो अल्लाह ने ये एक बड़ा ही रहमत रखी है कि उससे आप एक डायरेक्शन में रहे हैं आप मकसद में रहे हैं और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है रब्बुल इज्जत का कि मुख्तलिफ मौके पर मुसीबतों में मुश्किलात में जब आप मायूस होते हैं या ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आपको एहसास होता है कि आपकी कोई दुआ सुनने वाला है ये जो होना है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है
1: वाकई
2: और वैसे भी अब आपका ना क्लोजिंग का टाइम है मेरे हाल में मेरे वर्ड्स काफी हैं
1: नहीं जबरदस्त बहुत आला बहुत आला बहुत शुक्रिया थैंक यू जी ज़ुल्करनैन साहब थैंक यू जी रही जी तो हमारे साथ थे ज़ुल्करनैन साहब और आज सारी ही कॉल्स बहुत अच्छी थी कुछ मैसेजेस रह गए हैं फयाज सैयद आपका मैसेज है और अस्सलाम वालेकुम प्लीज टेल मिसेस अफजल दैट आई ट्रस्ट अल्लाह एंड हैव पेशेंस इंशाल्लाह यू विल गेट ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन और इसके साथ ही जी एक और हैं हमारे भाई और ये कहते हैं कि अल्लाह इनकी दुआ कबूल करें इट मेड मी क्राई व्हेन सेट उनसे उसने कभी मुझे मम्मा नहीं बोला ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है और मुझे इसका अंदाज़ा है क्योंकि मतलब हमारे बिल्कुल मतलब जो ना मेरा भांजे के साथ भी ये वाला इशू है हेड्स ऑफ टू मिसेस अफजल और ये थे कौन ये हैं एफ जे थैंक यू आपकी मैसेज के लिए और इसके साथ ही अस्मत आफरीदी हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर एंड वेलकम बैक वेरी नाइस टॉपिक माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हसन के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए पता है अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग या नियमत क्या है दुनिया की वो तकलीफ या आजमाइश जिसके आने पे अल्लाह सब्र दे और दिल और ज़बान से कुछ शिकवा ना निकले अल्लाह से बिकॉज तकलीफ़ें और आजमाइशें और उन पर सब्र अम्बिया की सुन्नत है और सेकेंडली बहुत बड़ी नियमत ये भी है कि हम रात को सोते हैं और हमारी रूहें अल्लाह के पास चली जाती हैं एक तनहा से हम मर जाते हैं बट सुभान अल्लाह हमारी रूहें वापस भेज देते हैं तो अल्लाह चाहे तो हमें अपने पास रख सकते हैं बट अल्लाह ताला बार बार हमारी रूहें वापस भेज देते हैं और वो इसके लिए अल्लाह ताला हमें موقع دینا چاہتے ہیں توبہ کے لیے. باقی اللہ کی نعمتیں نہ ہم گن سکتے ہیں اور نہ ہی کیا کر سکتے ہیں, یہ مجھے لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, تاؤل مجھے لگ رہا ہے, سکتے ہیں یا ٹال سکتے ہیں, ایسے کچھ لکھا ہے. چلیں جی, تھینک یو, بہت بہت شکریہ عصمت آفریدی آپ کے میسج کا بھی. اور اچھا یہ والا جو ویک ہے نا, یہ تقریباً کیونکہ ایک تھیم ہوتی ہے ہر دفعہ, تو اس دفعہ جو ہے وہ اسی طرح کا کچھ چلے گا. کل ہم بات کریں گے پرسنل گروتھ کے اوپر, جو کہ آپ محسوس کرتے ہوں اپنی زندگی میں, آپ کو کیسے لگتا ہے. اچھا یہ پرسنل گروتھ جو ہے وہ فائنینشلی نہیں, آپ اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, فائنینشلی بھی ذکر کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے اندر اپنے آپ کو کتنا بہتر فیل کرتے ہیں بائی دا ٹائم, تو اس کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم ان شاء اللہ اس پہ بات کریں گے. اور اب میرے جانے کا وقت ہو گیا, فضیل آپ کو جوائن کر لے گا تھوڑی دیر میں. تو میری طرف سے اللہ حافظ, بائے.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी हबीबी, टाइम फॉर द टाइम चेक। FM 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल हो रहे हैं 5:02। और सुनाइए क्या है हालचाल। देखो मेरी दफ्तरी तो खुल गई है, ये खास शो आपके लिए जिसका नाम है ड्राइव थ्रू।
1: यू

0: वैसे आज ये कह सकते हैं कि फजील के साथ नहीं, फजील और अमीता के साथ, क्योंकि इसकी एक वजह ये है कि बुक फेस्टिवल चल रहा है, बुक फेयर चल रहा है कतर में, DECC में आप जा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, और यही वजह है कि अमीता पहुंची हुई हैं डायरेक्टली DECC। अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा मौका है। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमिता होता है, इसलिए उनका वहाँ जाना ज़रूरी है। क्यों, अब मालूम है हमारे ऑफिस में सबसे पहले नाम ए फॉर अमिता आ गया, तो फिर ये हुआ कि चलो अमिता को ही भेज देते हैं बुक फेयर। तो बुक फेयर में अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं अमिता से, तो आप मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वो जगह है, काफ़ी किताबें वहाँ पर हैं, इंडिया का भी ये स्टॉल जो है एक लगा हुआ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग किताबें जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और पढ़ने का जो शौक रखते हैं, अब कुछ को कहानी का शौक है, कुछ को साइंस का, कुछ को इमेजिनेटिव कोई स्टोरी हो, कोई बात हो, तो उसका भी शौक होता है लोगों को। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में मज़ा आता है तो भाई आज आपको जाना चाहिए बुक फेयर। ये है 35वां बुक फेयर, कतर में हो रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा हम जब इनसे बात करेंगे, यानी कि अमिता से, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अभी इन्होंने देखने को मिला इनको, ये भी हम बात करेंगे कतर में, और वेदर वगैरह की अपडेट है, सारी जानकारी आपको यहाँ FM 107 पे मिलेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम उनको कॉल लगाएंगे और पूछेंगे क्या कुछ हिसाब चल लिया भाई साहब। सुंदर FM 107, दिल से देसी।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है, तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: 107 पे वाइट ब्लू हाल है हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या है हालचाल, इस्तकबाल आप सभी का ये शो ड्राइव थ्रू। और वक्त आ गया है कि डायरेक्टली आपको लेकर चलें DECC में क्या कुछ हो रहा है। अमिता से जुड़ चुके हैं जी। हेलो अमिता, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम फजील, क्या हालचाल है?
0: मैं एकदम बड़ा, कैसा रहा तुम्हारा वीकेंड?
1: वीकेंड तो बड़ा कमाल का रहा, किताबों के बीच, किताबों की खुशबुओं के बीच ही जा रहा है।
0: और क्या लाइन बोल दी,
1: अरे क्या कहना, अभी DECC में मैं मौजूद हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं 35th दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर ऑन है और 23rd मई तक चलने वाला है। अभी मैंने गर्मा गर्म जो कहते हैं ना अरबी कॉफी अपनी कावा, वो इंजॉय किया।
0: क्या बात,
1: एंड देन आई एम जस्ट डिसाइडिंग कहाँ जाऊँ। तो मैं अभी हर एक आउटलेट पर एक झलक मार रही हूँ।
0: अच्छा? You
1: know, इतनी खूबसूरत बुक्स है और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक है। दो आई एम ऑल्सो सर्चिंग फॉर हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश बुक्स। तो अभी तक मैं सारे अरबिक साइड में टर्न होके घूम रही हूँ एंड जस्ट फिगरिंग आउट कि आज पहले दिन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा भीड़ है।
0: अच्छा?
1: और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स और अलग अलग लोग, स्पेशली जो बुक लवर्स हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंड हाल ही में बच्चों की एक अरबिक बुक लॉन्च हुई है जहाँ पर सारे बच्चे, परहैप्स दिस इज स्टोरी बुक, तो इस पर बातें चल रही है। और लॉन्च से रिलेटेड मतलब यहाँ पे 100 से भी ज्यादा वैसे बुक लॉन्च होने वाली है, न्यू बुक्स। तो इट्स गोना बी जस्ट अमेजिंग। तो अभी मैं देखती हूँ कि आज का माहौल क्या है, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि हमारा जो इंडियन पवेलियन है वहां पर मैं विजिट करूंगी एंड जस्ट चेक ऑन कि हमारे इंडिया से कौन कौन सी बुक्स आई हैं, कौन सी बुक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं या ट्रेंड में हैं। एंड देन आज हमने सोचा है कि ये जो बच्चों का सेक्शन है, द एंटायर चिल्ड्रन जोन, मतलब पूरा जोन बना है, उसकी क्या खासियत है।
0: Okay.
1: तो ये सारा कुछ आज आपके ड्राइव थ्रू शो पर पता चलने वाला है।
0: कूल, बहुत ही उम्दा। अच्छा, मैं ये भी चाह रहा था आपसे पूछना कि यू नो, जैसे कि हमने उस दिन भी करा था और आपको आज भी करना है कोट ऑफ द डे। हम जब तक आप बुक फेयर से जुड़ी हैं तो कितनी ही किताबें हैं ना, उन किताबों में बस आपको एक कोट जो है वो ढूंढना है, जो कि सच में यू नो, इंसान जब उसे सुने तो एकदम मुतासिर हो जाए कि क्या लाइन है यार, कितनी बेहतरीन बात कह दी, क्या कह दिया, आ हा हा, लोगों की जबान से ये निकल जाए। ठीक है, एक या दो लाइन का कोट आपको ढूंढना है और किताब से पढ़ के हमें बताना है कि वो कैसा है। उसके अलावा एक और चीज वो ये कि उस बुक फेयर का लेआउट क्या है, कैसा है, जगह किस तरह से बना है, यू नो, बीच में भी जगह या सिर्फ किनारों किनारों पे है, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें।
1: जगह तो बड़ी कमाल की है, मतलब जब हम बुक फेयर जैसे सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में आता होगा कि सब कुछ भरा भरा होगा, हर शेल्फ बुक से भरा होगा। बट डे वन में मैंने जिक्र किया था कि जब हम एंटर कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हम सिर्फ एक बुक फेयर में नहीं है, इट्स लाइक अ म्यूजियम। एंड बहुत सारे कोनों में छोटे छोटे मिनी म्यूजियम बने हुए हैं, मिनी लाइब्रेरीज हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट लाइक जो बुक स्टोर का लेआउट होता है उसके अलावा। प्लस एक बड़ी प्यारी चीज है जहाँ पर कतर के कल्चर के बारे में काफी डिटेल में चीजें बताई गई हैं। तो वहां पर एक छोटा सा म्यूजियम जैसा, आप अंदर जाओ, इट्स एक्चुअली नॉट जैसा, इट्स अ म्यूजियम ओनली। एंड जब आप कहते हो ना कि आप बुक्स, क्योंकि बहुत दूर दूर चीजें रखी हैं, बहुत दूर दूर मतलब काफी डिटेल में फैला हुआ है ये बुक फेयर, तो ऑब्वियसली चलने में थोड़ा सा थकान हो सकती है। तो बीच बीच में कैफेज हैं, ठीक है, पानी की चीजें हैं और बैठने की खूबसूरत जगहें हैं। एंड प्लस जिस म्यूजियम की मैं बात कर रही हूँ, जब आप अंदर जाते हो तो जो मड के बेल्स, ओके, तो हम मिट्टी के जो बेल्स होते हैं उस शेप में वो रखे हुए हैं और उनमें बहुत खूबसूरत परफ्यूम, लाइक रॉ परफ्यूम।
0: देखो, परफ्यूम के बगैर कोई भी इवेंट यहाँ पर यू नो मुकम्मल नहीं होता है, बगैर परफ्यूम के कैसे चलेगा। बिल्कुल, और बड़ा मजा आता है जब आप उन जगहों के बगल से गुजरे तो।
1: हाँ, तो मेरा जो भी फेवरेट अब तक का जो मुझे परफ्यूम लगा, दैट वाज लाइक अ वुड फ्लेवर एंड वुड की जो फ्रेग्रेंस थी, ओ माय गॉड, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए खो ही गई, मतलब आपका स्ट्रेस पूरा खत्म हो जाता है फजी व्हेन यू जस्ट पास फ्रॉम दैट साइड। तो मेरे ख्याल से कोई भी इस बुक फेयर में आएगा वो थकेगा नहीं, दे विल एंजॉय टू देयर कोर। और मतलब बुक ऐसी चीजें है ना कि न जाने कितनी वैरायटी है इसकी।
0: हाँ।
1: अगर आप बुक लवर नहीं भी है ना तो भी आपको प्यार हो जाने वाला है इस जगह से।
0: हाँ। और मैंने ये ना हाल ही में एक चीज एक्सपीरियंस करी है, जब आप किताब पढ़ते हैं और कोई स्टोरी सही में आपको क्योंकि हर स्टेप पे एक सस्पेंस अगर है या हर स्टेप पे कोई इंटरेस्टिंग बात आ रही है तो आपको किताब पढ़ने में मजा आता है, और उसी पढ़ाई में आपकी लिंग्विस्टिक, आपकी कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव स्किल, ये सब चीजें बढ़ जाती है। इवन हम किड स्टोरी में भी इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इंटरेस्टिंगली जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको एक तो वैसे भी बचपन में जो किताब पढ़ते थे उससे नींद आती थी, ये वो वाली किताब नहीं है।
1: नहीं,
0: ये किताब पढ़ने आपकी आंखें खुल जाएंगी।
1: एग्जैक्टली और यहाँ पर आओगे ना वो जो नहीं कहते हैं जो हम लोग पहली बार स्कूल खुलते थे तो नई नई किताबें जब आती थी जब उनकी खुशबू नए नए उसके जो कवर पेजेस होते थे तो वो सारी चीजें ना यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी. सो इट्स लाइक वेरी नॉस्टैल्जिक एट द सेम टाइम कि आपको पूरा जो कहते हैं ना वर्ल्ड में क्या चल रहा है यू विल कम टू नो. एंड एज आई सेड इन द डे वन कि ये अपने रीजन का लाइक इट्स एन हिस्टोरिक इवेंट, ये बहुत मैसिव है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इवेंट्स है जो कि चले आ रहा है, मतलब सदियों से चले आ रहा है. मतलब यू नो 1972 से बुक फेयर हो रहा है जब मैं खुद पैदा भी नहीं हुई थी. आप इमेजिन कर लो कि इट्स लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग
0: सक्सेसफुल इवेंट है, इस वजह से ये यू नो हर साल आता है. अच्छा जाने से पहले एक और आखिरी सवाल कर लेते हैं. सवाल ये कि वहां पर कैसे पहुंचे, दो मुझे रूट बताओ जो आसान हो, जैसे मेट्रो है या फिर यू नो पार्किंग वगैरह के लिए कार से कैसे पहुंचा जाए.
1: देखो मैं तो सिंपल बोलूंगी कि मेट्रो से आओ, अपनी रेड लाइन पकड़ो, डीएसी से आ जाओ, मतलब एकदम ही ट्रेन से आप उतरोगे, मेट्रो से उतरोगे और ऊपर आए एंड देन यू नो यू आर एट द डीएसी. या फिर जैसे कि मैं हमारे ऑफिस से सीधा कैब से आई हूँ, दैट इज ऑल्सो द इजिएस्ट वे. बट मुझे लग रहा है कि मेट्रो

0: विल बी द बेस्ट वन. द रीजन इज कि अब क्योंकि हाइप और ज्यादा बढ़ रही है, भीड़ बढ़ते जा रही है, एंड टिल द टाइम यू गेट अ कैब और समथिंग इवनिंग में आने का सोच रहे हो तो थोड़ा रश बढ़ जाएगा. सो इफ यू जस्ट वांट टू सेव टाइम तो आप मेट्रो को चूज करो, जहां कहीं भी हो, इजीएस्ट वे आउट.
1: ओके सो दोस्तों देखिए, आपको पूरी डिटेल मिल गई है कि पहुंचना कैसे है और क्या करना है. और अगर आप वहां पर पहुंच रहे हैं और अमिता से मिल रहे हैं तो मैं एक चीज आपको भी एक टारगेट या टास्क देना चाहता हूं, और वो टास्क ये है कि अमिता जैसे एक कोड ढूंढेंगी ना, वैसे आपको भी एक बढ़िया सा कोड ढूंढना है किताब पढ़ने के बाद, और फिर आप वो कोड यहां पर FM 107 पे बता सकते हैं जहां पर आपको लाखों लोग सुन रहे होंगे. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिता, और आपका टास्क आपका दे दिया गया है. और इंटरेस्टिंगली जो भी आपको मजे की चीज दिखे बिल्कुल आप हमसे बात करिए और हमें बताइए. ठीक है,
0: बिल्कुल बिल्कुल फजील, टेक केयर एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं.
1: ओके बिल्कुल. दोस्तों देखो क्या है कि बहुत कम मौका मिलता है जब आपसे अमिता मिल सकती है. ये आपके पास कम मौकों में से एक मौका है कि आप अमिता से मिल सकते हैं. ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, डीसी से आना, घूमते टहलते हुए कार पार करिए, ऊपर चले जाइए आपको टहलती हुई लोगों से बात करती हुई, किताबें पढ़ती हुई, किनारे कहीं अमिता मिल जाएंगी. और इंटरेस्टिंग बात ये भी रहेगी कि आप उनसे मुलाकात करके उनसे कोट पूछ सकते हैं, उनका कोट चुरा सकते हैं. फिलहाल 5:23 जरा हम बात कर लेते माहौल के बारे में कि कतर का क्या माहौल है. वह देखो गर्मी तो है, ठीक है, गर्मी में है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन गर्मी किताबों की भी है एक तरफ, और एक तरफ माहौल में गर्मी है जो अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको गर्मी का एहसास हो रहा है. तुम कार में बैठे सुबह से, हाँ तो तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें लग रहा होगा मौसम बहुत अच्छा क्योंकि कार में तो एसी चल रही है बाबू. जिनके कार में एसी चल रही है उनको लगता है बाहर का मौसम कितना अच्छा. मेरी बेगम एक दिन कहने लगी, कहने कि यार घूमने का मन कर रहा है, घुमाते क्यों नहीं. और ये बात थी 2025 के जुलाई की, भाई 49°C जा रहा, उनको लग रहा है कि एसी चल रही है, माहौल बहुत अच्छा है, यार आज तो घूमने का मन है, मौसम इतना अच्छा, चलो ना. मैंने कहा अरे किस कहाँ कैसे, ये कहाँ से दिमाग में आ रहा है तुम्हें, मौसम अच्छा, चलो आओ नीचे तुम्हें लेकर चलते हैं तो पता चलेगा. फिर उसके बाद एक दिन उनको लेकर गए रात में, उल्टा हमने और कहते ना कि इंसान के ऊपर जुल्म, तो मैंने वो जुल्म कर दिया, चाय पिला दी गर्मी में. एक तो रात की गर्मी ज्यादा उमस वाली होती है कि एक तो धूप है इंसान सहन कर लेता है, एक है कि धूप है और रात में जो जमीन ने जब्त कर ली है धूप, अब रात को छोड़ रही है ह्यूमिडिटी के साथ, चिपचिपी जो उन्होंने चाय पी है. उसके बाद से उन्होंने आज तक मेरे को एक साल हो गया नहीं बोला कि मौसम अच्छा लग रहा है, चले क्या. तो ऐसे में ऐसी गर्मी से अगर आपको बचना है तो पानी पीते रहें, और ठंडा पानी अगर आपके कार में है तो उसे पीते रहें. अगर आपने कार में बॉटल रखी है वाटर की तो उसे मत पिए, क्योंकि वो पानी की बॉटल जो है वो प्लास्टिक की है, वो गर्म हो चुकी है, वो पीना सही नहीं है सेहत के लिए. तो ऐसे में कोशिश करें कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, वक्त वक्त पे पानी पीते रहें. कई बार आपको एहसास नहीं होता जब आप एसी के सामने रेगुलर बेसिस पे बैठे रहते हैं. मुझे लगता है कि मैं इंडिया में ज़्यादा पानी पीता हूँ बजाय कतर में, क्योंकि यहाँ हर जगह एसी चल रही है, मुझे एहसास ही नहीं होता कि पानी पीना है. तो इसलिए पानी जो है वो पी लीजिए, कई बार एहसास नहीं भी होता फिर भी पी लें, क्योंकि आज का टेम्परेचर अच्छा खासा ऊपर पहुंच चुका है. अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 31°C पे है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है. 26% पे ह्यूमिडिटी है, और QMD ने वॉर्न किया है स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्ट की हवा जो है वो चलेगी. उसके अलावा जो डस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी. सनी बिल्कुल मौसम रहा है, रात को 30°C का माहौल आपको मिल जाएगा, लेकिन दिन का माहौल 36 से 37°C चल रहा है, 36 से 37°C, जो कि अच्छा खासा है भाई. उसके अलावा आने वाले दिनों में 19, 20, 21 ये 42-43 पहुंच जाएगा, एकदम से उछाल आएगा. और इस उछाल में इंसान जो है अगर किसी कार के अंदर बैठेगा, गद्दी में बैठेगा, तो वहां से भी उछाल आएगा. और बाइक को तो धूप में खड़े करने के बाद छू ना लेना भाई, है ना, ऐसा लगेगा किसी ने हाथ जला दिया, फिर लोग कहेंगे कि अरे तुम्हारे साथ तो अत्याचार होता है, किचन में हाथ जला दिया तुम्हारा. तो ऐसे में बाइक को ना छुए और कार की स्टीयरिंग से भी दूर रहें, वरना सिर्फ हाथ हाथ जलेगा और आप भी उछल जाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो भी उछलने वाला है. उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है कतर के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए. जैसे एक तो ट्रैफिक का ये है कि ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट था वो ऑफिशियली फुल्ली रिलोकेटेड हो गया है अब, और ये अब डायरेक्टली नए स्टेशन से ऑपरेट होगा जो कि लुसेल में मौजूद है. ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन का रिलोकेशन हो गया है ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का, ठीक है. सो ऑफिशियली अब आपको जो भी काम ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक

करवाना है या करवाना ही होगा, करना तो नहीं होगा, तो वो आपको लुसेल उसके लिए जाना होगा। और उसके अलावा देखो यार, जरूरी है कि अपना हेल्थ जो है बढ़िया रहे। तो आज है 17 तारीख, 18 और 19 मई को यानी कि कल के दिन आप अपनी हेल्थ को चेकअप करा सकते हैं, मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ कंसल्टेशंस ले सकते हैं, फ्री मेडिकल बिल्कुल, और वो भी अलसद मेट्रो स्टेशन गोल्ड लाइन में जाकर। सो 18 और 19 तारीख को कतर रेल और प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन यानी कि PHCC ने फ्री पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लिया है 18 मई और 19 मई को। रेसिडेंट्स के लिए है अलसद मेट्रो स्टेशन के गोल्ड लाइन में। देखो यार, हमें पहले ऐसा एहसास होता था कि फ्री की जो चीज़ मिलती है वो ले लेते, तो ये फ्री की भी चीज़ है भाई। अपनी हेल्थ से बढ़कर, अपनी मेंटल हेल्थ से बढ़कर कुछ मत रखिए, इसलिए अलसद मेट्रो स्टेशन जाके, गोल्ड लाइन जाके आप अपनी हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, पूरी तरह से फ्री है 18 और 19 मई को। उसके अलावा अगर सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा तो देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं बता दूं, तोरबा मार्केट लगा हुआ है, ज़बरदस्त लाजवाब यार, 16 मई से ये आ गया है और बड़ा ही इंजॉयबल है, मज़ेदार है, कनत क्वार्टर में, और ये इतना खूबसूरत है कि दिल जो है वो खुश हो जाता है। ऐसी जगह पे जाओ तो ऐसा लगता है कि यार कितनी लग्जरी जगह आ गया, अपनी लाइफ लग्जरी है, तो चार फोटो खींच लो और भौकाल टाइट। तो ऐसी जगह पे जाना ज़रूर है तोरबा मार्केट, और उससे पहले जो बुक फेयर चल रहा है वहाँ पर भी जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल 5:28 आते हैं हल्के हाथ से आज के सवाल पे।

107 पे वाइट ब्लू 5:29 और सवाल आज का ये कि यू नो हर शख्स की जिंदगी में उसकी जो आंख खुलती है, एक तो आंख तब खुलती है जब इंसान पैदा होता है, एक आंख तब खुलती है जब धोखा मिलता है। ये तो सबके साथ होता है, मेरी भी आंख थोड़ी लेट खुली थी, और एक आंख वो तब भी खुलती है ना जब आपको एहसास होता है कि आपके अम्मी अब्बू सही कह रहे थे यार किसी चीज के बारे में, कुछ भी हो सकता है वो। तो एक छोटा सा किस्सा, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी पर यकीन, यू नो किसी स्ट्रेंजर पर यकीन ना करने की बात हो, या फिर जनरल किसी भी सिचुएशन में जहां पर अम्मी अब्बू ने मना किया हो और आप उस सिचुएशन में यू नो चले गए हो, ठुस गए हो जबरदस्ती अपनी मर्जी से, तो ऐसे में आपको बहुत देर में रियलाइज हुआ हो किसी बात के बारे में कि अम्मी या अब्बू सही कहते थे, कोई स्मॉल इंस्टेंस या कोई स्मॉल ऐसी कहानी या छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, और ये फनी हो सकती है बिल्कुल, जब आपको एहसास हुआ कि अम्मी अब्बू बिल्कुल सही कहते थे, ये आपको बताना है 666-22-107 पे आपको बताना है। बाकी हल्के फुल्के जो मैसेज पहले के हैं उन पे बढ़ते हैं कि आज के लोगों के मैसेज क्या है। इस भाई का मैसेज, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हालचाल, हैप्पी संडे इवनिंग आपको भी, कैसा रहा आपका वीकेंड? एकदम जबरदस्त, जितना स्लो हो सकता था उतना ही स्लो हमारा वीकेंड हुआ। उसके अलावा एक और, ये सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, उस्मान साहब का ये मैसेज है, उस्मान भाई आपकी दुआ है। फिर ये है, सलाम भाई, अमिता जी कब पहुंची हैं आप, कौन सा मतलब पेरेंट लगे हैं अमिता के, कब पहुंची, कब आई, कहां गई, कैसे? अच्छा आप वहां से होकर आ रहे हो तो ये हो सकता है कि अरे वो यार कैसे हो गया, मैं तो वहां पर था मुझे दिखी नहीं, वो थोड़ा सा लेट पहुंची। अगर ये सवाल है तो बाकी सलाम वालेकुम अस्सलाम, नाम है अफजल भाई, सलाम वालेकुम, कैसे हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको सवाल का जवाब देना, आज का सवाल बड़ा सिंपल सा है, कोई ऐसा किस्सा, कोई स्मॉल इंस्टेंस ऐसा जहां पर आपको रियलाइज हुआ हो कि आपके अम्मी और अब्बू बिल्कुल सही थे फला के बारे में या उस बारे में जहां पर आपने गलती कर ली हो, 666-22-107 पे आपको बताना है, 666-22-107। मेरे साथ भी एक किस्सा वैसे ऐसा हुआ था, और ये किस्सा था कि किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा ना करने का। मेरा एक दोस्त बना था, और पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, मेरा ना मोहल्ला था, तो मोहल्ले में अलग अलग जगहों से लोग आ जाते थे। तो मैंने एक बार, मुझे पतंग का बहुत शौक था, जिनको पता है तो उनको पता है कि मैं फजील को पतंग का तो बहुत शौक है और है अभी भी, तो कई लोगों को मैं जो आता था मैं उनको दोस्त बना लिया करता था। तो एक जो है दो मोहल्ला छोड़ के बहुत कोई

0: दूर दराज वो स्टेशन स्टेशन नहीं रेलवे ट्रैक के करीब में एक बंदा रहता था, वो उसको भी पतंग का शौक था, वो दौड़ भाग के जो है मेरे मोहल्ले में आता था, हम लोग वहाँ साथ में पतंग उड़ाते थे, पतंग लूटा करते थे, मजा आता था। तो भाई ने मुझसे कहा कि दोस्ती करनी, तो उन्होंने दोस्ती कर ली, हम लोग साथ में पतंग उड़ाते थे। एक दिन मुझे ना 5 रुपए की डोर मंगवानी थी, तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि अब्बा का बड़ा सख्त निर्देश था, वो ये कि रोड पार करके आपको उधर नहीं जाना है। मैं कहा ठीक है, मेरे दोस्त तो बना ही लिया मैंने, मैंने उसको दोस्त को 5 रुपए दिए कि भाई जो है एक काम करो तुम डोर लेकर चले आओ। और 5 रुपए उस वक्त बड़ी बात थी भाई, एक एक करके अब्बू से, एक तो अठन्नी मिलती थी यार अब्बू से इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी जल्दी इकट्ठा तब हो जाता जब आप चोरी करें, तो मतलब आई मीन अठन्नी करके मैंने इकट्ठा करा। फिर जब 5 रुपए वो मैंने अपने दोस्त को दिया, मैंने कहा जाओ भाई लेकर आओ, अब वो गए और गायब हो गए भाई साहब। रोड पार करने के बाद मुझे ही पार लगा दिया उन्होंने, मेरी पतंग भाई मंजे के आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि मुझे सद्दी मंगानी थी, व्हाइट कलर की जो डोर होती है, उनने मुझे चूना लगा दिया। मुझे पता चला लाइफ में ये था पहला ऑफलाइन स्कैम। मुझे पहली बार रियलाइज हुआ था तब कि ऑफलाइन स्कैम भी होते हैं, चेहरा आप सामने देख रहे हो। और फिर जब वो आदमी मुझे मिला तो मैंने उसको 2-4 बातें सुनाई, दूर दूर से जब मुझे मिलता था फिर वो भाग जाता था, एक दिन मेरे सामने पड़ा मैंने सामने सुनाई। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो बंदा तगड़ा हुआ आपसे ना, ताकतवर आदमी, उसको वो स्कैम कर भी ले तो भी उसको कुछ कहना नहीं होता है। फिर मुझे पता चला कि मुक्का पड़ सकता है क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि अधे लोग उठा लेते हैं और इससे बहुत भयंकर चोट लगती है, तो मैंने उसको उल्टा सीधा करा जब मेरे सामने पड़ा और उनने अधा उठा लिया, वो तो कौन गनीमत, भाई ने मारा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप 5 के, आप एक और काम करिए, 5 और लेकर जाइए। तो वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ अब्बा सही कहते थे, स्ट्रेंजर्स पे भरोसा मत करो, जो दूर से लोग आए हैं जिनका घर नहीं जानते, जिनको जिनके माँ बाप को नहीं जानते, एकदम से उन पर भरोसा ना करो। और फिर वो सही में काफ़ी दूर से आता था, हमारे घर के पास में रेलवे ट्रैक था जो शहर के बीच से होकर गुजरती थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसकी भी, खैर कभी बताएंगे। तो वो उसके आसपास कहीं रहता था, मेरी मम्मी पढ़ाने जाती थी उसी स्कूल के आसपास कहीं, तो भाई मुझे पता चला कि अद्धे उठा लेकर कोई उससे भी चोट लग सकती है, तो वहीं से मैंने अद्धा उठाना सीखा था तो ये था मेरी कहानी जहां पर मुझे पता चला कि किसी पर भी यकीन नहीं कर लेना चाहिए। बाकी आप भी बता सकते हैं कि आपको कब एहसास हुआ के अम्मी अब्बू फला या किसी बात पर सही थे। फिलहाल 5:34 मिस अली का मैसेज है, फजील भाई कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही कहा और खैर, दो बार आंखें दो बार खुलती हैं लेकिन जिंदगी खत्म होने पर बंद हो जाती हैं। मिस अली ओ हो हो हो, ऐसी लाइन के बाद मैं कसम से घायल हो गया हूं मैं, ये लाइन डेंजरस, नॉट गुड। मरने मारने की बात तो मैंने कर ली थी, आपको जरूरत नहीं थी वैसे तो। ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। शेख अजहर, लव फ्रॉम हैदराबाद, आपको भी खुश रखे अल्लाह, लव फ्रॉम FM 107 का स्टूडियो। खान साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ तो हर रोज़ होता है और मुझे अपने ही करता हूँ, अगर वो मुझे अच्छी बात भी क्या है सर, तो अगर गलत बात मुझे अच्छी लगी मैं फिर भी वही करता हूँ, मैं नहीं कर सकता सर, पता नहीं कि और मेरे साथ हर रोज। भाई आपने ना कुछ एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सब कुछ देखा नहीं है भाई मेरा थोड़ा तो मतलब एक दो ऐसे लफ्ज डाल दो बीच में भाई, सही लिखा सब कि मुझे अच्छी बात नहीं है क्या है वो सर, अगर गलत बात मुझे अच्छी लगी मैं फिर भी वही करता, ये सब ठीक है, बढ़िया लिखा है, बीच बीच में थोड़ा तो कॉन्टेक्स्ट डाल दें आप, थोड़ा मेरे लिए समझने में आसान हो जाएगा, मैं दूसरों को समझा पाऊंगा भाई, अधूरी अधूरी सी रहेगी बातें आपकी, बाकी आप पूरी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मेरा घूम गया है, सर सर खान साहब थोड़ा थोड़ा और क्लीन करके, क्योंकि इसमें कुछ बातें रह गई हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन रह गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद हम बात करेंगे FM 107 पे। सवाल सुनते जाइए, सवाल ये है कि आपके साथ कभी कोई इंस्टेंस हुआ होगा जब आपको एहसास हुआ होगा कि आपके अम्मी अब्बू सही थे किसी बात के बारे में, तो एक छोटा सा इंस्टेंस जब आपको रियलाइज हुआ हो कि अम्मी या अब्बू सही थे, आपके माँ बाप सही थे किसी बात को लेकर, वो बात आपने क्या सीखी, नंबर 6662210107। एक छोटा सा ब्रेक दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: वेलकम टू पिच इफेक्ट शो।
4: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
3: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पर।
4: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
3: ऑन पिच परफेक्ट,
4: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
3: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे, जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
4: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: आपने सुना हमें एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
6: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
7: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक। साथ होंगे आपके आरजे तला अशरफ जमान हर वेंसडे सुबह 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। तो बस FM 107 ऑन कीजिए और अरबी जुबान को सीखिए। जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

107 पे वाइब टू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 5:40 स्टूडियो की घड़ी में, और सवाल आज का कर लिया है। लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अली का मैसेज, आवर पेरेंट्स ऑलवेज राइट। वो तो जानते हैं हमको, उस वक्त पता नहीं होता, लेकिन वो एक्सपीरियंस रखते हैं व्हाट इज गुड और बैड फॉर अस, मिस अली का कहना है। ओके, बहुत शुक्रिया। फरखान साहब ने अगेन एक्सप्लेन करके लिखा है, सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ हर रोज़ होता है ऐसे, और मुझे अगर अपने मन माँ बाप सही भी कहना तो मैं फिर भी वो करता हूँ जो मुझे सही लगे। ओके, और मुझे हमेशा गलत था और मुझे हमेशा गलत काम सही लगता है। अरे ये कैसे हो सकता है, और फिर मेरे साथ हो जाता है, लेकिन वो चाहिए सर कि मैं नहीं सुन सकता। वो चाहिए, ओके, किसी के घर कोई मुझे सही बात कहे तो मैं फिर भी अपनी करता हूँ। अच्छा, ये सारा मतलब जो कहना है या फिर निचोड़ इस बात की है कि लोग मुझे समझाते हैं, मैं करता वही हूँ जो मेरा मन करता है। नहीं, देखिए, आपके लिए ही वो लाइन बनी है कि सुनो सबकी करो अपनी। फिर उसके बाद जब हो जाए तो फिर सहो भी अपनी, तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई साहब। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है अपनी मर्जी का काम करें, किसी की सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें एक वो वाली बात है कि जब सुनो सबकी करो अपनी में, कि सुनो सबकी लेकिन करो वो वाली जिसमें एक्चुअली में आपको लगे कि यार फला ने कहा था फला बात, इस तरह से मैं अपनी वाली कर लेता हूँ इसमें थोड़ी बात अपनी करके।

0: ये थोड़ा सा वैसा वाला हो गया कि काम आपने किया, क्रेडिट कोई और ले गया, है ना? या फिर अगर आप बॉस बन गए हैं तो काम किसी और ने करा, अपनी दो चार लाइन लगा के क्रेडिट खुद ले लो कि आपने तो किया है, काम तो मैंने किया भाई साहब। फिलहाल बुक फेयर की तरफ चलते हैं एक कॉल पर, और अमिता हमसे जुड़ रही हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। एंड फजील, इस वक्त मैं आई हुई हूँ बच्चों के एक आउटलेट में। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत बच्चों की बुक्स हैं, एंड आई एम स्टैंडिंग विद वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। हर नेम इज शिफाली एंड शी इज फ्रॉम श्रीलंका। एंड सो लेट्स टॉक टू हर एंड लेट्स फिगर आउट कि इस बेसिकली इस आउटलेट में बच्चों के लिए क्या खास है। ओके, सो हाई शिफाली, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एफएम 107 एंड वुड लाइक टू नो अबाउट योर आउटलेट, वॉट ऑल kind of books you have.
2: Okay, so we're Samarkand and we're in the Doha International Book Fair. So we have all the books, anything you can think of. Actually, we do teen books, fiction, non-fiction, adult books, kids books, everything. So yeah,
1: what would you say, like, for the small kids age 5 to 12, what's the popular and trending books that people are actually loving and children just demand for it?
2: Yeah, I see kids always run to the Diary of a Wimpy Kid selection. They also like Dogman, and they like the books that you can touch and feel textures. That's their favorite thing right now. Yeah.
1: Today is the fourth day of Doha International Book Fair. So how's it feel?
2: It feels amazing because so many people are excited about having a book fair after a while, after an year. So it feels really good. The energy is really high. Yeah.
1: Any message that would you like to give to the audience who and the listeners who are listening to us?
2: Yeah, come check out the book fair, because even though you're not into books, you might find something that will surprise you and you'll take it back home with you.
1: So, yeah. Thank you so much for being with us. So Fazil, ये थी शिफाली हमारे साथ, जिन्होंने ये बताया कि मतलब 5 से 12 साल तक की उम्र की एक डायरी ऑफ अ विम्पी किड है, द अगली ट्रुथ। एंड इस किताब में ना लाइक ये है कि जब आप पढ़ोगे ना छोटी छोटी चीजें, तो इस पर लिख के आता है कि बच्चों को हंसी जरूर आने वाली है।
0: अच्छा।
1: तो जो भी बच्चे रोते गाते हैं ना, दे कैन रिलेट टू द स्टोरीज, एंड वही सब चीजें नहीं होती है जो हमें स्कूल में देती थी, जिनको देख के आपको लगता था कि अरे तो बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। तो इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। And we also have one more listener, that is Raja with us.
0: Okay.
1: And he is here. वो अपने कुछ बच्चों की किताबें वगैरह लेने आए हुए।
0: वाह भाई, राजा भाई ने पकड़ लिया।
1: Yeah. So let's speak to him कि वो क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे।
0: Okay.
1: So hi Raja, welcome to FM 107. And Fazil हमारे साथ हैं। We just want to know कि आप इस outlet में क्या ढूंढ रहे हैं।
3: हाय फजील,
0: हेलो, कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ राजा भाई, आप कैसे हैं? आप?
3: मैं भी बिल्कुल ठीक।
0: तो कोई किताब मिली या फिर अभी भी सर्चिंग मोड में
3: है? अभी भी सर्चिंग मोड में है, क्योंकि बहुत बड़ा बुक फेयर है। मुझे एक कोने से दूसरे कोने में आने में ऑलमोस्ट 10 मिनट से ज्यादा लग गए थे।
0: ओहो, चलो अच्छा यार, इसी बहाने थोड़ी सी वॉकिंग हो जाएगी, 10,000 स्टेप पूरे करने होते हैं ना।
3: हाँ, वही मैं फिर एक्चुअली थोड़ा सा पानी और कॉफी ढूंढ रहा था कि अभी इतनी वॉकिंग कर ली, थोड़ा सा ताजा हो जाए क्योंकि और दोबारा से वॉकिंग करनी पड़ेगी।
0: सही। हाँ।
3: तो बेसिकली मैं आया था इस पर्टिकुलर बुक स्टॉल पे कुछ सेंसरी बुक्स लेने के लिए, और मुझे रिसेंटली किसी ने बताया कि बच्चों के लिए बोर्ड बुक्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो आया हूँ, तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी एक सेंसरी टच वाली एक किताब मिली है, जहाँ पे आप फील भी कर सकते हो कि जैसे बटरफ्लाई है तो आप बटरफ्लाई के विंग्स फील कर सकते हो, अगर कोई सॉक्स है तो सॉक्स पर टच कर सकते हो।
0: ओके।
3: एंड प्लस देयर आर आल्सो साउंड बुक्स, जिसमें कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई फायर इंजन है तो उसका साउंड आप सुन सकते हो।
0: Oh,
3: अगर कोई एनिमल है तो उनके साउंड सुन सकते हो। तो इट्स एक्चुअली
0: क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली।
3: बहुत ज्यादा मतलब हमारे टाइम पे, मैंने तो अपने टाइम पे ऐसी किताबें सुनी भी नहीं थी।
0: हाँ।
3: की होती हैं।
0: ये थोड़ा सा वो वाला फील आ रहा है ना, हैरी पॉटर टाइप।
3: एग्जैक्टली।
0: किताब है। ओके, तो राजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सो आप अपने लिए कोई इंटरेस्टिंग किताब ढूंढ रहे हैं या बच्चों के लिए? आपका मेन मकसद क्या है? या फिर अपने लिए भी कोई किताब अगर दिख गई, या फैमिली मेंबर्स के लिए कोई किताब दिख गई, आप लोगों को किताब का शौक है आपकी फैमिली को या आपको?
3: मुझे किताबों का इतना ज्यादा शौक तो नहीं है, पर हो सकता है मैं अपने लिए कोई अच्छी सी एक मोटिवेशनल किताब ढूंढ लूं, बट प्राइमरीली तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए आया था।
0: अच्छा सिर्फ बच्चों के लिए आए थे मेन. अच्छा आपको सिर्फ मोटिवेशन वाली चाहिए या फिर, क्योंकि किताबों का भी अलग अलग काम होता है, किसी का काम होता है मोटिवेशन, किसी का काम होता है फाइनेंशियल हेल्प लेना, किसी किताब का यू नो फाइनेंशियल एडवाइस देना, किसी का काम कुछ और होता है. सो आप मेनली मोटिवेशन की किताब ढूंढ रहे हैं?
3: मेनली मोटिवेशन की किताब ढूंढ रहा हूँ. तो मैंने कुछ बुक स्टॉल से पूछा भी था कि मुझे कोई इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में अदर देन अरबिक अगर कोई किताब मिलती है तो. तो वो उन्होंने वही कहा कि बहुत बड़ा बुक फेयर है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मौजूद होगी. मुझे बस सर्च करना है. सो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेजर हंट.
0: ओके. सो क्योंकि एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आप वहां पर हैं और यू नो इंटरेस्टिंगली आप वैसे तो बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं, बट अगर आपको एक किताब लेनी हो तो सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करते हैं? कवर नोटिस करते हैं या फिर किताब खोल के कोई लाइन पढ़ते हैं? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं. जैसे मैं तो किताब ऊपर से भी देखूंगा तो वो अच्छी है तो बाकायदा फिर खोल कर देखता हूँ कि कोई ऐसा अच्छा कोट लिखा हो, कोई अच्छी बात लिखी हो रैंडम किसी पेज पे, तो ही मैं वो किताब खरीदता हूँ. आपका क्या काम होता है कि अगर ऊपर से यू नो कवर अच्छा दिख गया तो ले लूंगा, ऐसा होता है?
3: आई थिंक इनिशियली तो वही होता है, बट मैं ऑथर का प्रीफेस जरूर पढ़ता हूँ.
0: ओके.
3: तो और जो उसका बैक कवर होता है उससे ऑथर के बारे में थोड़ा सा समझ में आता है कि ऑथर की क्या मानसिकता है.
0: अच्छा.
3: ऑथर का क्या माइंडसेट रहा होगा उस पर्टिकुलर बुक को लिखने के. तो ये दो चीजें हैं, बट ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग आई सी इज द कवर पेज.
0: ओके इंटरेस्टिंग. बहुत ही उम्दा बात बताई. मैं भी अगली बार से ये ऑथर वाली बात यू नो देखूंगा कि ऑथर का माइंडसेट कैसा है. ओके बहुत बहुत शुक्रिया भाई राजा, अच्छा लगा यार बात करके आपसे. थैंक यू सो मच.
3: ओके
0: थैंक यू. सो यार ये तो मजा आ गया मुझे सुनकर कि यू नो वो ऑथर को देखते हैं. मैं तो आमतौर पे किताब के यू नो जब भी कोई किताब देखता हूँ पहले कवर देखता हूँ, फिर उसके बाद अंदर कोई अच्छी सी लाइन या कोई अच्छी बात लिखी हो उसके बाद वो लेता हूँ. लेकिन इन्होंने बताया आखिरी पेज पे ऑथर का नाम भी ये देखते हैं. तो नेक्स्ट टाइम
1: करते हैं, बट तुम्हारे और मेरा ख्याल कुछ ऐसा ही है.
0: अच्छा.
1: बुक लवर मैं भी हूँ लेकिन मुझे भी कवर बहुत अट्रैक्ट करते हैं. तो फजील यहाँ पर बेहद खूबसूरत कवर्स हैं क्योंकि ये जो मैं जिस आउटलेट पर हूँ दैट इज समरकांड करके है एंड इट्स अमेजिंग. मतलब यहाँ पर ना बच्चों का ऐसा जमघट सा लगा हुआ है बिकॉज मुझे लगता है कि जो किताबें हैं ना वो बड़ी अट्रैक्टिव है. मतलब जू की है, किसी में कुछ कार्टून कैरेक्टर्स बने हैं, किसी में बच्चे मतलब कुछ खा पी रहे हैं, किसी में जो ये जू के कैरेक्टर्स हैं वो भी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा हो गए हो. सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस एंड वी आर जस्ट लविंग इट. पर अभी टास्क ऑन है सो आई एम जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स अदर प्लेसेस और जाके देखते हैं कि वहां पर क्या खास है जिसके बारे में हमारे कतर को जानना जरूरी है.
0: बिल्कुल. ओके इंटरेस्टिंग. और फिर हम जुड़ेंगे FM 107 पे. और अच्छा तुम्हारा एक तो टास्क वो कोट वाला है, ठीक है. वो तो ढूंढती रहो. उसके अलावा एक और टास्क मैं दे रहा हूँ. जो तुम्हें किताब सबसे अच्छी लगे सिर्फ कवर पेज देख के, और उस कवर पेज पे क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम अट्रैक्ट हुई उस किताब को लेने के लिए या देखने के लिए, वो भी बताना अगली कॉल में, ठीक है?
1: बिल्कुल बिल्कुल. चलें फिर.
0: तो ये दो बात पक्का 6 बजे के बाद. अभी फिलहाल 11 मिनट है, 6 बजे के बाद हम आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके बहुत बहुत शुक्रिया. मजेदार. ओके हाल हबीबी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा मैं भूल ही गया, तो आप लोगों से तो बात ही करनी थी ना. वो वाला तो फेस निकल गया. मैं एक सवाल कर चुका हूँ. अगर आप अभी अभी आएँ तो आपको बता दें सवाल आज का ये है कि आपको काफ़ी देर बाद आपको कभी बार रियलाइज़ होता है कोई ऐसा किस्सा आपके साथ होता है, कोई ऐसी स्टोरी होती है या कोई ऐसा यू नो सिचुएशन है आपके सामने ऐसी आती है जहाँ पर आपको एहसास होता है कि आपके माँ बाप सही थे किसी भी बात को लेकर. तो वो क्या बात है वो बताइए. जैसे एक भाई ने तो मतलब एकदम धागे खोल दिए ये बात कह के, मैं बचपन के दिन ऐसे ऐसे सामने आ गए हूँ. जैसे मेरी अम्मा ने एक बार ना हमने वो देखा था, बॉक्स देखा था जिसमें बिस्किट की फोटोज़ वगैरह बनी हुई थी. तो आतिफ भाई यहाँ पर कह रहे हैं, भाई मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ क्योंकि माँ मेरी इतनी झूठ बोलती थी मुझे किसी यू नो चीज़ों से बचाने के लिए. तो काफ़ी लंबे वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि माँ कभी कभार झूठ नहीं बोलती. बस वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है. तो इन्होंने बात लिखी है कि एक बार मम्मी ने मना किया कि बेटा वो बॉक्स जो है उसमें बिस्किट नहीं रखा. मुझे लगा था नहीं वो बिस्किट ही होगा. अम्मी ने कहा रहे बिस्किट नहीं है. तो इन्होंने कहा वो रीच से ऊपर रखा था, यानी कि इनकी रीच में नहीं था, ये छोटे से थे. तो ये कुर्सी उर्सी लगा के स्टूल नहीं लगा के ऊपर तक पहुँच गया. उन्होंने उस बॉक्स को खोला, उस बॉक्स में बिस्किट नहीं रखा था, बिस्किट की फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो बनी हुई थी. और भाई उस बॉक्स में क्या निकला? हाँ वही जो सबके घर में निकला, सुई और धागा निकलता है यार उस बॉक्स में से. अरे मेरा भाई. ये जुल्म हर मर्द के साथ हुआ है और खास तौर पे छोटे लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कियां मान जाती हैं जो अम्मा कहती हैं. तो भाई का कहना है इस किस्से से मुझे पहली बार रियलाइज हुआ है कि माँ कभी कभी सच बोलती है, बस डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी है। वाह भाई वाह। उसके अलावा ये कौन भाई है, सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, काकी रानू मंडल कब आएंगी कतर की पब्लिक उनका बेसब्री से इंतजार है। काकी का शुभ चिंतक अहमद यूपी 54 से। कभी कभार ना आपके पास जवाब जो है नहीं होता है, सो वही वाली सिचुएशन है मेरी, मेरे पास जवाब ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ आपको। तो अभी तो देखो आपको और ज़्यादा इंतज़ार इस बात पे करना पड़ेगा। बाकी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप जो है सिचुएशन और भी हैं मैसेज, हम उन मैसेज पर आएंगे, बट एक छोटा से ब्रेक के बाद सवाल एक बार दोहरा देते हैं जल्दी से। अगर आतिफ भाई के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसा धोखाधड़ी वाला हिसाब हुआ होगा। कब आपको ऐसा एहसास हुआ कि अम्मी अब्बू बिल्कुल सही थे, एक छोटे से किस्से के बाद? कई बार होता है ना, उन्होंने कहा स्ट्रेंजर पे भरोसा ना करना, फला पे भरोसा ना करना, आपने तो कर लिया, फिर बाद में एहसास है यार अम्मी अब्बू सही कह रहे थे यार। तो कब आपको लगा कि अम्मा और अब्बा सही हैं, छोटे से इंस्टेंस के बाद जब आपको रियलाइज हुआ, बताइए 666-22107 पे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस दिल से देसी।
4: दोस्तों घर की हिफाजत आपके हाथों में है, एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें, एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए, अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें, हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
5: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہر نعمت پر حمد، ہر آسانی پر حمد، ہر آزمائش میں بھی حمد۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے۔ أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نور ہے۔ سامعین کرام، اللہ نور ہے یعنی ہدایت دینے والا، دلوں کو روشن کرنے والا، حق دکھانے والا، اندھیروں سے نکالنے والا۔ اگر اللہ دل میں نور ڈال دے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ انسان روشنی میں بھی بھٹک سکتا ہے۔ انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، یعنی تو آسمان و زمین اور سب مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.com।

0: FM 107.
1: Time check.
2: जी टाइम बता टाइम चेक FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:02 और आज का सवाल किया था कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ हो जहां पर आपको एहसास हुआ हो कि यार आपके माँ बाप तो सही थे, यार उनकी बात को मान ले रहे थे तो बेहतर होता, लेकिन तब तक एक किस्सा जो है वो आपके साथ हो चुका है। वैसे ही एक भाई हैं, राशिद इनका नाम है, राशिद ने कहा है मुझे बहुत देर में एहसास हुआ कि जो पुराने कपड़े हो जाते थे तो वो मैं फेंक देता था। अम्मी हमेशा कहती थी काम आएगा काम आएगा काम आएगा, लेकिन आज वो काम आ रहा है पोछा लगाने के लिए। ए मेरा भाई, सूती कपड़ा होना चाहिए, मतलब कॉटन का होना चाहिए, तब पोछे के काम आता है। क्या बात कही है। मतलब ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इससे पता चल जाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो है अम्मी का और अब्बू का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। राशिद भाई, हमारे ज़िंदगी में भी ये रहा है, हमारे घर भी पोछे लगते हैं और वो पैरों से ही हम लगा देते हैं, बस सूती कपड़ा होना चाहिए कॉटन का। तो अब वो जो जिस कपड़े में छेद हो जाता है ना, तो हाँ क्या कहते हैं ऐसे शर्ट वगैरह में जिन कपड़ों में छेद हो जाता है, तो उन कपड़ों को फिर जो है और कायदे से फाड़ के, जैसे कभी अलमारी साफ़ कर ली है, कभी आपने अपने दस्तरखान साफ़ कर लिए, कभी दरवाज़े साफ़ कर लिए, कभी पोछा बना लिया, तो अगर ऐसे 10 कपड़े हैं सूती मतलब ऐसा कॉटन वाले, तो आपका काम हो जाना है। क्या बात है मेरा भाई। उसके अलावा एक और ये मैसेज था, मैं समझ नहीं पाया, मतलब रिमोट और अम्मी और ये बैटरी ये करके लिख रहे, तो मुझे समझ में आ गया हल्का हल्का कि शायद क्या लिखना चाह रहा, मैं पढ़ तो नहीं सकता एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, बस भाई का नाम देख लेता हूँ मैं, इकबाल मेरा भाई। अच्छा, इकबाल ने कहा है, इकबाल नेपाली नहीं, इकबाल है, ओके ये और नॉर्मल वाले इकबाल है। तो इकबाल ने ये लिखा था कि कई बार ऐसा होता ना कि आपको लगता है कि रिमोट में सेल ख़त्म हो गया है, तो अम्मी ने कहा अरे सेल नहीं ख़त्म हुआ, पीट के चलाओ, तब पता चलता है कि अम्मी सही कह रही थी, पीट कर चलाओ और अभी तक ये कर रहे हैं। और मेरे घर में सही में यार, अभी मैंने 2 दिन पहले यही किया, रिमोट था ख़राब, मुझे लगा चल नहीं रहा है, 2 बार पीटा है भाई, एकदम सही चलने लग गया यार। और ये सेल का भी अलग अलग है, अगर जैसे जो बड़े वाले सेल होते हैं या रिमोट है आप तो पीट कर चला सकते हैं, लेकिन अगर ये जो घड़ियों के सेल होते हैं ना जो एकदम छोटे होते हैं गोल वाले, उनको ज़मीन में रगड़ो उनको गर्म करो फिर वो भी चलने लगता है, आपने ये किया? अरे मेरा भाई, मैंने तो ये भी किया यार, मैं यहाँ तक उतर आया हूँ भाई। नया नहीं लाऊंगा, घर में बैठे बैठे रगड़ दो पटक दो। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं, अब तो नया लाना ही पड़ेगा। तो काफी देर में रियलाइज हुआ कि अम्मी सही कह रही थी, बेटा पटक पटुक कर चलाओ तब चलेगा सामान, कई तो औलादे भी ऐसी चल रही हैं, कूट के चलाओ तो चलती हैं फिर सही से। खादिम भाई का मैसेज है बाकी, सलाम वालेकुम फजील भाई, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम खादिम साहब, कैसे हैं, उम्मीद अच्छे होंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक पर जाने के लिए गाना होना चाहिए जावेद अली का, श्रेया घोषाल का और पृथ्वी का, ये बेहतरीन सा गाना सुनिए आप। FM 107 पे फजील के साथ दिल से देसी।

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक सुना आपने FM 107 पे, और फिलहाल हमारे साथ कोई है लाइन पर। जी हेलो हबीबी, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम फजील, मैं मतलब अभी बच्चों से घिरी हुई हूँ।
0: अरे वाह,
1: एंड बड़ा मजा आया। मतलब अभी मतलब सिर्फ कुछ सेकंड्स में उन्होंने मुझे छोड़ा, ठीक है। एंड दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट बुक्स एंड एवरीथिंग।
0: तो क्या कुछ पता चला बच्चों के साथ कि बच्चे भी इंटरेस्टिंग मतलब किताबों में इंटरेस्ट लेते हैं?
1: मैंने बच्चों को पूछा, एग्जैक्टली तो ये सारे हमारे लोकल बच्चे थे, अरबी बच्चे थे, एंड इन्होंने अंग्रेजी में थोड़ी बहुत मुझसे बात की। एंड क्योंकि हम यहाँ पर कैमरा और माइक लेकर घूम रहे हैं, तो दे ऑल रैन टू अस और हमसे पूछते थे कि हमारी फेवरेट बुक्स कौन सी है। एनीवे आई ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम और मैंने पूछा कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। तो ये सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, I think they are approx

0: या फिर अभी भी सर्चिंग मोड में?
1: क्योंकि मैं अभी बच्चों की बात कर रही हूँ तो लेट मी टेल यू, आई वाज अभी थोड़ी देर पहले हमने जब बात की थी, आई वाज एट वन ऑफ द किड डिस्ट्रीब्यूटर्स आउटलेट, तो वहाँ पर ना एक मैंने किताब देखी पिप एंड पोजी. ओके,
0: क्या क्या नाम था उसका?
1: पिप एंड पोजी. एंड
0: कैन यू स्पेल इट, हमें आवाज क्लियर नहीं आ रही है.
1: ओके, पिप पी आई पी
0: सी आई पी
1: एंड पोजी पी ओ एच वाई.
0: ओके, पोसी. ओके,
1: पिप एंड पोजी बड़ी प्यारी बुक है जिसमें दो रैबिट्स हैं. ओके, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स और उनका कवर पेज इतना क्यूट है कि उसमें एक रैबिट ने येलो रंग की जैकेट पहनी है, इट्स एन ओवरकोट, एंड दूसरे रैबिट ने कुछ स्टील कलर की जैकेट पहनी है, एंड दे आर जस्ट रनिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बादलों के बीच जा रहे हैं, एंड दे आर सो हैप्पी. सो दिस बुक इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप. ये जो पिप एंड पोजी होते हैं ना, इनकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट, दे नेवर एवर लीव ईच अदर साइड. तो और जब भी ये बुक खोलोगे ना फजील, यू विल फील लाइक ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप सीन.
0: ओके, इंटरेस्टिंग है ये बढ़िया है. वेल अमिता, फिलहाल अजान का वक्त हो रहा है तो हम तुमसे दोबारा कनेक्ट करेंगे जल्दी. और ये किताब की डिटेल्स है ना, इसी तरह की डिटेल्स हमें चाहिए ताकि यू नो लोग जा सके वहाँ पर, एंजॉय कर सके. बहुत बहुत शुक्रिया.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अल्लाह हाफिज. ओके, तो दोस्तों थोड़ी बहुत देखिए आपको पता चलता रहता है यहाँ पर, हम जब बात कर रहे हैं अमिता से, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जो है वो आपको पता चलती रहती है. आप जाए बुक फेयर और एंजॉय करें. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, अजान का वक्त, दिल से देसी.
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है. अल्लाहु अकबर.

0: FM 107 पर पैगाम।
1: अजीज वकार, दोस्तों अहबाब और कुलीग्स के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब इंसान हैं, हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, जिनके नतीजे में आपस में नाराजगी भी हो जाती है। कुछ लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं और रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, मुआफ़ी और माजरत में पहल और बात का आगाज वही करता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जिसका दिल साफ होता है और जो अच्छे ज़र्फ का मालिक होता है। दूसरों को माफ़ करने की आदत डालिए। याद रखिए, शीशा और रिश्ता दोनों नाज होते हैं, ताम इनमें फ़र्क यह है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से टूट जाता है। हमेशा रिश्तों जोड़ने की कोशिश कीजिए।
0: पैगाम ऑन FM 107
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
3: Say what?

25 मिनट स्टूडियो की घड़ी में और एक भाई का मैसेज है कि आई वेंट टू द बुक फेयर फॉर फर्स्ट ट्रिप लास्ट थर्सडे, यानी कि नरसो गए थे सर. वहां कहते हैं कि थोड़ा इंस्पेक्शन हुआ है, नाउ आई वांट टू गो फॉर ट्रिप टू टू बाय सम, बट उर्दू बुक्स नहीं दिखते हैं. अगर आपको कोई क्लू हो तो प्लीज शेयर. बाद में लिखा फजील भाई, सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. देखिए वैसे तो हमें कोई ऐसी डिटेल नहीं पता है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन हाँ है भी बहुत बड़ा ना वहाँ पर. अमिता ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया था कि बहुत बड़ा, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में टाइम लगता है. और अभी राजा भाई ने भी बताया कि भाई 10 मिनट लगते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में. सो जब इतना टाइम लगता है तो थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा देखना, लोगों से पूछना, ये बड़ा ज़रूरी है. तो आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा. वैसे ये भी है कि ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो आपको गल्फ से कनेक्टेड मिल जाएंगी. अरबी बुक्स जो हैं वो वहाँ पर रखी हुई हैं, उसके अलावा इंडियन स्टॉल्स भी लगे हुए हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे. फिर उर्दू के लिए थोड़ा सा देखिए देखना पड़ेगा. बाकी हमारा एक वॉरियर जो है वो वहाँ पर है, यानी कि हमारा एक वॉरियर अमिता बुक फेयर में है. आज नहीं तो कल आपको पक्का पता चल जाएगा. लेकिन ये सवाल भी हम ज़रूर करेंगे कि उर्दू के कहीं पर अगर किताबें मिल जाएँ तो बताएँ. क्योंकि अच्छा ये भी एक बड़ी गहरी बात है के अरबी में लिखने वाले हैं जो ज़बान बोलते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में लिखने वाले हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा किताबें लिखी जाती हैं, अलग अलग लफ्ज़ों में लिखी जाती हैं, बट उर्दू में क्या किताबें. देखिए ज़्यादातर मैंने जो देखी हैं, शायर लोग उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उर्दू में लिखावट भी वो ज़्यादा करते हैं. उर्दू किताबें कहाँ पर मौजूद हैं वो शायद कम होंगी. बिल्कुल ये जायज़ बात है कि उर्दू लिखने वाले, किताब लिखने वाले बहुत कम होंगे. बाकी ट्रांसलेशन कर दें तो वो अलग चीज़ है ना. कोई भी ऐसी बुक है जिसका ट्रांसलेशन कर दिया हो और फिर वो उर्दू में मौजूद हो, लेकिन सिर्फ बाकायदा उर्दू में थाट लिखना, उर्दू में सोच किसी ने लिखना, ये मुझे लगता है पाकिस्तान के भाई लोग ज़्यादा तौर पर या फिर जो सही में उर्दू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो लोग लिखने वाले होंगे. ऑल दो बुक तो ज़रूर होगी आई एम श्योर.

0: लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा अपने को। बाकी वाकई बहुत बड़ा है, इन्होंने लिखा है आई फाउंड मलयालम बुक स्टॉल। अरे गलत जगह चलेगा आप तो क्योंकि वो तो फिर समझ में भी नहीं आएगी ना। बाकी जिनको ये लफ्ज आते हैं, ये मलयालम पढ़ना आता है, उनके लिए ठीक है। हम अगली बार जब एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कॉल करेंगे जब अमिता को, तो पूछेंगे अमिता से कि भाई ये क्या माजरा है, हैं उर्दू का किधर है स्टॉल, ये तो बताओ। ये तो पता कि इंडिया का स्टॉल किधर है, पाकिस्तान का भी होगा, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा है। वेल आज हम बात करेंगे व्हाट इफ में, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो भी भाई ने अभी लिखा है कि कहाँ पर उर्दू की किताबें मिलेंगी, ये अमिता से पूछना पड़ेगा। आज व्हाट इफ में क्या बात होगी, व्हाट इफ में आज हम बात करने वाले हैं सूरज के बारे में। सोचिए ऐसा कि सूरज अगर ना हो तो क्या कुछ होगा। अरे भाई साहब, हर चीज को एनर्जी देने वाला सूरज, सन अगर 2 साल के लिए चला जाए तो ह्यूमन लाइफ को क्या नुकसान होगा। एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान, और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इंसान जो है वो ख़त्म होने लगेंगे और सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी डेंजरस सिचुएशन आ जाएगी कि ह्यूमंस सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शुरुआत के 24 घंटे लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, है ना, जैसे घर में लाइट नहीं आती है, आप एडजस्ट कर लेते हैं, चलेगा। लेकिन जब ये 24 घंटे से 48 घंटे होगा, एक हफ्ता होगा, तब क्या होगा? और फिर जब एक हफ्ते से बढ़ते बढ़ते ये साल भर हो जाए तो कितने डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर होगा? अगर आपको ये लग रहा है कि यू नो हमारे घरों में आग जलाकर हम काम कर लेंगे, या फिर अपने घर को गर्म रखने के जो अलग अलग तरीके हैं उनको अपना कर काम कर लेंगे, तो एक्चुअली में ये नामुमकिन हो जाएगा। हमारी जितनी भी स्पेशीज़ है, मतलब हम जो इंसान हैं, जो बंदर हैं, जो जानवर हैं, अलग अलग यू नो जानवर, ये एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहुत से कम लोग होंगे जो इसे एक्चुअली में सरवाइव कर भी लेंगे, लेकिन उनकी उनका हाल क्या होगा एक साल बाद, डेढ़ साल बाद, वो भी ज़रा हम डिस्कस करेंगे। फिर फूड चेन का क्या होगा, जो बच्चे पैदा होंगे इस दौरान जब 2 साल के लिए सूरज नहीं रहेगा, तब क्या कुछ होगा। वेल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का व्हाट इफ है, सुनेंगे इसको लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

हूँ वाला हबीबी, 6:33 स्टूडियो की घड़ी में। और अब बात कर लेते हैं जरा कि क्या होगा अगर ये सूरज गायब हो जाए 2 साल के लिए। तो देखो, सूरज इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट स्टार है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा यही है। अगर ये नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। वेल, कई ऐसे देश भी हैं जो पूरी तरह से रिलाई करते हैं सोलर पैनल पे, यू नो 80% एनर्जी वो ले रहे हैं या 70% या 50%। कुछ घर ऐसे हैं जो 70-80% पूरी तरह से रिलाई करते हैं सोलर पैनल पे, तो वो घर में तो अंधेरा छा जाएगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये सन, ये सूरज रहे। लेकिन अगर फिर भी ऐसा एक कोई सिचुएशन आई कि 2 साल के लिए ये गायब हो गए, तो ह्यूमन लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कुछ ही दिनों के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। मोस्टली ह्यूमंस तो सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन बड़े स्मॉल नंबर में ये जो ह्यूमंस हैं, ये जो लोग हैं, वो ज़िंदा रह सकते हैं। ख़ास तौर पे बात करें अमीरों की, और वो भी अंडरग्राउंड यूजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। वेल, सबसे पहले 24 घंटे में क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरेगा और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। शहरों में थोड़ा बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, ट्रैफिक जैम होगा, लूटना लटाना ये सब चीज़ें होंगी, इंटरनेट ओवरलोड हो जाएगा, लोग ज़्यादा न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ चैनल नॉनस्टॉप इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करेंगे। मस्जिद हैं, चर्चेज हैं, टेंपल्स हैं, ये सब जगह पर लोग दुआ जो है बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। साइंटिस्ट टीवी पर बोलते हैं, फिर अलग अलग वहाँ पर भी बातें लोग करने लगेंगे। दुनिया भर की जब ये बातें चल रही होंगी, न्यूज़ चल रही होगी, तो फिर लोग ना धीरे धीरे डरने लगेंगे, और यहाँ पर लाइफ जो है वो थोड़ी सी चेंज होने लगेगी। क्योंकि लाइट तो है नहीं, रात में लाइट नहीं जल रही है, कुछ दिन की जो कैपेसिटी है, जो लाइट है वो बची होगी, कुछ दिन तक जलेगी, लेकिन फिर ह्यूमन लाइफ शॉक में जाएगी धीरे धीरे। जब सन गायब होगा, दिन जो है वो इंस्टेंटली रात बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब सोना है, कब उठना है, टाइमिंग समझ नहीं आएगी, अंधेरा हो नहीं रहा है, अंधेरा हर वक्त है, उजाला हो नहीं रहा है, नेचुरल लाइट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मून भी नहीं दिखेगा। क्योंकि मून जो दिखता है, जो चांद हमें दिखता है, वो सूरज की रोशनी से दिखता है। सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है, चांद से रिफ्लेक्ट होती है और वो हमें दिखाई देती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, लोग डर जाएंगे, पैनिक बाइंग करेंगे। आप देखते हैं जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो थोड़ी सी डरावनी होती है, लोग ख़रीदारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से करना शुरू कर देते हैं, और पैनिक बाई जब करेंगे तो मार्केट में सामान जो है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। कई लोग सामान नहीं ले पाएंगे, कई लोग खाने का सामान नहीं ले पाएंगे, कई लोग अंडा दूध ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और फिर परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी धीरे धीरे। लोग रोएंगे, लोग मदद मांगेंगे, फैमिलीज़ एक साथ रहने लगेंगे, बच्चे पूछने लगेंगे कि ये सन कब आएगा, क्या हो रहा है ये, वो डर जाएंगे। उनके साथ तो आप तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन उनके साथ और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी। टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी को किल करने लगेगा, यानी कि रात का वक्त धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे हफ्ते बीतेंगे ये -40°C पे चला जाएगा कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर, -40°C। तो इस बार जो है ठंडक बहुत ज़्यादा कई लोगों को लगी होगी, तो उनको बता दें ज़्यादा से ज़्यादा 18-15°C था तापमान, लेकिन जब ये 1 डिग्री पे पहुँचेगा, 0 पे पहुँचेगा, तो बर्फ़ जमेगी उससे पहले, यानी माइनस अगर चलने शुरू हो जाए तो आपकी जो आँखों की पलकें हैं वो भी जमने लग जाएंगी। आप कोई गीला कपड़ा बाहर डालेंगे ना तो वो बर्फ़ बन जाएगा, वो सूखेगा ही नहीं। उसके अलावा स्किन जो है वो फ्रीज हो सकती है, हाइपोथर्मिया मिनट्स में हो सकता है। हाइपोथर्मिया जैसे गर्मी में लू लगती है ना, हवा वगैरह चलती है, ये इसी तरह से समझिए कि हाइपोथर्मिया सर्दी की एक बीमारी है। अगर आप पानी में उतर जाएं तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाएंगे। आप जब पानी में कहीं उतरेंगे या नहाएंगे या कुछ भी करेंगे तो दर्द स्किन में होगा, आपकी बॉडी में दर्द होने लगेगा, ठंडक से दर्द होने लगेगा। फिर जो बाहर का सर्वाइवल जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, इंसान कॉन्स्टेंटली हीट के बिना नहीं बच सकेंगे, अंडरग्राउंड जाएंगे, न्यूक्लियर पावर शेल्टर्स जो है उनका इस्तेमाल करेंगे, जियोथर्मल एरियाज में वो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन 1 साल बाद क्या, यानी कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर कर लें, अपने आप को गर्म रखने का तरीका है ना, लकड़ी जला कर जिंदा रहने का तरीका अगर ये कर लें, तो फिर तो आसान हो जाएगा। आग जलाना तो हमें आता ही है, उसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब के बाद तो हम शायद ज़िंदा रह पाएंगे, नहीं, क्योंकि 1 साल बाद सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लगेगी। अब -75°C पर चला जाएगा टेम्परेचर, अब तो फॉरेस्ट भी फ्रोजन हो जाएंगे, जम जाएंगे, जो जंगल की लकड़ियाँ हैं वो जम जाएंगी, वो इतनी गीली हो जाएंगी कि वो जलेंगी भी नहीं।
और फिर ऑक्सीजन की भी तो जरूरत होती है, ऑक्सीजन भी धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेगा, फॉरेस्ट जो है यानी कि जंगल जो है वो पूरी तरह से स्टैचू जैसा बन जाएगा, एनिमल्स जो हैं वो मोस्टली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो खाने का सामान आ रहा था उसमें बड़ा ज़रूरी था कि यू नो हमारे पास आज भी जो खाने का सामान आता है उसमें 50% तो हम मान के चल सकते हैं कि बगैर सूरज के वो हमें नहीं मिलेगा, और जब सूरज नहीं होगा तो नॉन वेज खाने वाले हैं उनको वेज पे आना पड़ेगा, वेज सब लोग खाना शुरू कर देंगे और फिर खाने की कमी हो जाएगी, ये डेंजरस लेवल शुरू हो जाएगा, जो समंदर हैं रिवर्स जो हैं वो सॉलिड आइस बन जाएंगी, नदियां आइस यानी कि बर्फ बन जाएंगी, कुछ लाइफ फॉर्म्स ही बचेंगी, डीप ओशन बैक्टीरियाज है जैसे अंडरग्राउंड माइक्रोब्स होंगे, कुछ ह्यूमन बंकर्स में होंगे वो बचे रहेंगे, जो बच्चे हैं वो अगर इस दौरान पैदा होंगे तो उनके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, वो मजबूत नहीं बन पाएंगे, फिर फूड चेन का एंड धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, प्लांट्स सनलाइट के बिना फूड नहीं बना सकते, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जैसे प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे, ग्रास जो हैं वो डेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फ्रूट्स जो हैं वो नहीं होंगे, अगर फ्रूट्स नहीं होंगे इम्यून सिस्टम गिरेगा, फिर इम्यून सिस्टम जब गिरेगा तो आपको सर्दी ज़रूरत से ज़्यादा लगेगी, घास नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे, फार्मिंग जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब यू नो ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं होगी तो फिर कैसे करेंगे, धूप नहीं होगी तो फिर वो प्लांट्स कैसे बचेंगे, उसके बाद फ़िशिंग भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि रिवर तो अब जम चुकी है, फिर गोट्स काउज यानी कि बकरी गाय डियर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लायंस वुल्व्स प्रेडेटर्स भूख से मरने लगेंगे, अगर कोशिश ये भी करेंगे कि अगर इनको ज़िंदा रहना है तो ये खाना शुरू करेंगे ह्यूमंस को, नेचर जो है वो तू पूरी तरह से कोलैप्स करने लगेगा, बच्चे जो है जब इस दौरान पैदा होंगे, इमेजिन एक चाइल्ड एक बच्चा जो ऐसे वक्त में पैदा हो रहा है जब सन यानी कि सूरज है ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं, ब्लू स्काई नहीं देखा, अगर उसने रियल सनलाइट नहीं देखी, ग्रीन ट्रीज नहीं देखे, उसके लिए दुनिया का मतलब हो जाएगा आर्टिफिशियल लाइट्स, अंडरग्राउंड टनल्स, फ्रोजन अर्थ, सो सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाएगी, अगर सूरज वापस आया 2 साल के बाद सडनली एक दिन, तो सर्वाइवर्स जो है वो बाहर निकलेंगे, आइस मेल्ट होना शुरू होगी, लेकिन अगर आइस मेल्ट होना शुरू भी हुई तो 1 साल तक जीवन यानी कि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टफ होगी, नेचर स्लोली स्लोली रिकवर करेगा लेकिन ह्यूमैनिटी परमानेंटली ट्रॉमाटाइज्ड हो जाएगी, तब तक लोग सूरज को सिर्फ एक स्टार नहीं लाइफ का रियल सोर्स तब समझेंगे। तो दोस्तों ये था आज का व्हाट इफ, खैर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कभी नहीं होगा, सूरज का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम ना आसपास की चीज़ों को इतना ज़्यादा तवज्जो से ना देखते हैं ना इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जब तक वो चीज़ हमारे सामने से चली ना जाए, जब तक वो जो हमारे बहुत करीब है जिसकी हमने रिस्पेक्ट नहीं करी, जब तक वो चला नहीं जाता ना तब तक हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हमें ज़िंदगी मिल रही है या जिसको हमारी वजह से ज़िंदगी मिल रही है, प्लांट्स, ये मिट्टी है ना, ये खुशबू, हर एक छोटी चीज़, इवन जो जानवर हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, इन सब की रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों हमने व्हाट इफ़ यानी कि 2 से 3 महीनों में व्हाट इफ़ में हमने बात करी हर एक छोटे जानवर के बारे में, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो मधुमक्खी हो, हर एक की वजह से हमारी एक्चुअली ज़िंदगी जुड़ी हुई है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। उम्मीद है कि आज का ये व्हाट इफ सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे अमिता से बात और पूछेंगे कि भाई ये उर्दू की ये किताबें जो हैं वो कहां पर मिलेंगी। सुनते रहें FM 107, एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: स्टूडियो की घड़ी में और अमिता है बुक फेयर से लाइव जुड़ी हुई। जी हेलो अमिता, क्या हाल चाल, क्या है माहौल वहाँ?
1: अरे बहुत ही धमाल हाल चल रहे हैं फजील, और इस जो टास्क दिया था उसको पूरा करने का टाइम आ चुका है। तो मैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स में आई फील कि अलग अलग जो जॉनराज है ना, वहाँ पर इंडियन बुक्स भी आपको मिलेंगी, इंडियन राइटर्स की बुक भी मिलेंगी, बट क्योंकि हमने आज कुछ बच्चों के सेक्शंस को कवर किया तो मैं आई हुई हूँ IPH बुक्स के पब्लिशर्स जो है, एंड दे हैव लॉट ऑफ बुक्स एंड दे आर फ्रॉम इंडिया, केरला। ठीक है, तो मेरे हाथ एक बुक लगी है, समीहा जुनैद राइटर है, और ये बुक लाइन है ना, इन्होंने इसने मुझे एक्चुअली अट्रैक्ट किया, एंड द लाइन इज वन वर्ल्ड वन लाइफ वन यू सो बी यू। तो एक सिंपल सी चीज है ना, वो कहते हैं कि
0: क्या लाइन है, एक बार फिर से हो जाए, फिर से हो जाए, मैं कहता हूँ शायरी की तरह पढ़ दिया करो तुम दो बार।
1: ओके, सो इट्स वन वर्ल्ड वन लाइफ वन यू सो बी यू।
0: हाय हाय, क्या बात है। तो देखो मैं इसका इसका हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद कर देते हैं ऐसी कुछ करके। देखो यार, जरूरी ये है कि एक छोटी सी जिंदगी है ना, तो क्यों इतना लोगों का गम लेना, क्यों लोगों की सुनना है, अपने मर्जी की। और अभी खान साहब ने भी एक बात लिखी थी कि मैं सुनता सब क्यों करता अपनी, और वही करना भी चाहिए कि भाई मुझे लोग आकर बता देते हैं लेकिन मैं अपनी मर्जी का ही करता हूँ। तो दुनियादारी ये सब छोड़ो कि अरे उसको बुरा लग जाएगा, ऐसा वैसा, इसकी ना सुनो उसकी, ऐसे भाई अपने मर्जी का करो, अपने लिए जियो। हाँ, ये भी जरूरी है कि किसी का नुकसान ना हो अपने मर्जी से जीने में, बाकी अपने दिल से कुछ भी करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एंड यू नो जब आप अपनी मर्जी से जिंदगी को जीने की कोशिश करते हो ना, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट में कभी कमी नहीं होती। दिस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, एंड अभी जो मैं आउटलेट्स, तीन चार आउटलेट्स हैं इंडिया से, एंड यहाँ पर बेसिकली क्योंकि बच्चों का सेक्शन था तो मैंने बहुत सारे एनिमेटेड बुक्स देखी। अक्सर हमने दादी और नानी के किस्से सुने थे, यहाँ पर हमने ग्रैंडपा स्टोरीज भी देखी। इट्स रियली अमेजिंग, एंड व्हेन आई केम टू दिस पब्लिशिंग आउटलेट, दिस इज IPH बुक्स का, तो यहाँ पर मेरे साथ हैं एक शख्सियत जो कि थोड़ा सा बताएंगी कि भाई उनके आउटलेट में किस तरह की बुक्स हैं। सो मैम, मैं चाहूंगी कि आप सबको अपना नाम बताएं एंड टेल अस मोर अबाउट the books that you have. Hello?
0: Hello, yes.
1: Yeah, sir. Good evening.
0: Amita ne aapse sawal poocha na?
1: Sir, can I speak in English? Hello?
0: Hello?
1: Hello? Yes, can I speak in English?
0: Yes, I just want to ask, like, how do you feel this book fair?
1: It's very excited and amazing moment. I was here 2 days completed also. I was here 3 days, so very nice and very amazing experience. This is fantastic book fair.
0: Any best book you discovered?
1: Yeah, anyway, I like one book also, One Life, One World, One View, So Be You.
0: Ah,
1: also,
0: okay.
1: Lots of books here, motivational, self-motivational also. I can see lots of children and the adults came to check the book, and so they are very excited, and also they started reading.
0: Uh-huh.
1: So that's why also very excited.
0: So do you like any specific author, or you are only interested in like a book which is good in from outside?
1: Yeah, I can see lots of variety authors and also books.
0: Any specific author you like? Any specific writer you like the most?
1: Yeah, yes, really. That one is Samiha Junaid, and also another one is Akhil P. Dharmajan, Mia CM, such types of book. I'm very psyched. Others also.
0: Uh-huh.
1: Yeah.
0: Do you know Durjoy Datta?
1: Sorry?
0: Do you know Durjoy Datta? Durjoy Datta, Indian author and screenwriter.
1: Yeah, yes, I heard, but till now I didn't read that book.
0: Okay, no issue.
1: If I get, I will read.
0: Okay. He's also an interesting writer. You can,
1: I'm so excited to read the book. And also, actually, the reading is to get me the knowledge. That's why.
0: Okay.
1: Yeah,
0: okay.
1: Here.
0: Thank you. Thank you so much. It was really
1: thank
0: nice
1: you
0: talking
1: for
0: to you.
1: Thank you for giving me such wonderful opportunity. Thank you. Really.
0: Thank
1: I highly appreciate it.
0: Thank you so much. Thank you.
1: So yes, Fazil, ये थी हमारे साथ, और इन्होंने बड़ी मजे की बात बताई कि इनके जो आउटलेट्स में ना मतलब बहुत तरह की बुक्स हैं जिसमें से सेल्फ हेल्प बुक्स की मतलब मैंने तादाद ज्यादा देखी एंड ये इसके साथ साथ मलयालम में भी इसके ट्रांसलेशन हैं तो जो हमारे मलयाली फ्रेंड्स हैं जो कतर में रहते हैं दे कैन डेफिनेटली कम टू दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर एंड वो जो कहते हैं ना कि अपनी मदर टंग की जब किताब मिलती है लिखी हुई चीजें मिलती है तो एक अलग फील आता है.
0: Exactly. अच्छा, एक लिसनर ने ये भी पूछा है कि वहाँ पर कोई उर्दू की किताब है क्या, मतलब अरबी में तो हर जगह अवेलेबल हमने देखी और अलग से स्टॉल से पाकिस्तान का कोई स्टॉल हो जहाँ पर उर्दू की किताबें मौजूद हो.
1: मैं एक्चुअली इस वक्त ढूंढ रही हूँ लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि DECC में बहुत वैरायटी है और ये बिल्कुल मतलब ना किताबों का समंदर है तो इस समुंदर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए
0: मैंने उनको कहा कि अभी तो हमारा पहला दूसरा दिन है भाई, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता, देखना पड़ता, घूमना पड़ता.
1: डेफिनेटली तो मैं इस पर काम कर रही हूँ एंड डेफिनेटली आई एम गोना जस्ट चेक क्योंकि इन्फॉर्मेशन में हमें ये भी था कि इंडिया से बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं तो लेट मी चेक कि कहाँ पर हमें वो किताबें मिलती हैं. बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जो कहते हैं ना अलग अलग कल्चर्स का एक्सचेंज हो रहा है जिसे देख के बड़ा मजा आ रहा है. आई स्वेयर तो ये एक फील है आज का जो मैं कहूँगी कि आज मैं अपने घर ये फील लेके जाऊंगी और जब हम कल मुलाकात करेंगे तो कुछ और नई बातें बुक फेयर से डायरेक्ट आप तक पहुँचाएंगे.
0: बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमिता. लेकिन अभी जो है हमारा यहाँ से रुख्सती लेने का वक्त आ गया है. तो हम इंशाल्लाह दोस्तों कल मुलाकात करेंगे अमिता से शाम 5 से 7 जहाँ पर बुक फेयर की तमाम जानकारियाँ आपको जो है वो मिल जाएंगी. बहुत बहुत शुक्रिया अमिता.
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी, गुड नाइट.
0: तो भैया हमारी भी रुख्सती हो रही है अब, ठीक है. कब तक यहाँ पर रहेंगे? तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे एक नए व्हाट इफ के साथ, उसके अलावा अमिता के साथ जहां पर वो डायरेक्टली बुक फेयर से हमारे साथ जुड़ेंगे एक बेहतरीन किताब के साथ और लोगों के साथ. तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी. फिलहाल ये गाना मन्नान भारद्वाज, गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ की आवाज में सूट पटियाला.

अब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लैंग्वेज बिकॉज यू हैव गॉट एआई विद यू एनी टाइम. एंड नॉट ओनली आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप एआई से सीधा बात करके सारी चीजें पूछ सकते हैं. वर्चुअल ट्रायल ऑफ होटल्स बिफोर बुकिंग. जी हाँ, फिर एआई का स्पोर्ट्स में भी काफी इस्तेमाल हुआ. रियल टाइम प्लेयर परफॉर्मेंस प्रेडिक्टर, इंजरी प्रिवेंशन एआई फॉर फुटबॉलर्स, स्टेडियम क्राउड मैनेजमेंट यूजिंग एआई स्वार्म सिस्टम्स, इतना कुछ एआई करते जा रहा है. कतर ने एआई बेस्ड रडार लगा दिए जो सीट बेल्ट और मोबाइल इस्तेमाल करते हुए ड्राइवर्स को कैच करते हैं. एआई एंड क्रिएटिव कोलैबोरेशन, मूवी सॉन्ग्स एड कैंपेन्स सब में एआई का इस्तेमाल होना शुरू हो गया. गाना बनाना तो अब एआई की मदद से बाएं हाथ का खेल है. और ऐसे ही कितने गाने हमने एआई की मदद से बनाए और आप तक लेकर आए, उनमें से एक गाना ये भी है. आपको सुनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. वापस आके दुनिया भर के एआई अपडेट्स आपको बताता हूँ.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं AI Unlocked, मेरा नाम है वेद।
1: You are listening to
2: AI Unlocked। सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में AI Unlocked with RJ Ved।
1: Only on FM 107, दिल से देसी।
0: और अब चलते हैं AI Around the World की तरफ।
3: AI Around the World।
0: Brookfield launches a huge AI cloud businesses to lease chips directly to AI developers. और आजकल दोस्तों AI सिर्फ आंसर नहीं दे रहा है, डिसीजन भी खुद ले रहा है। इसको बोलते हैं एजेंटिक AI, मतलब एक AI जो टास्क समझता है, प्लान बनाता है और काम कंप्लीट करता है। आप बोलते हैं मेरे मीटिंग्स अरेंज कर दे और AI कैलेंडर, ईमेल्स, रिमाइंडर सब हैंडल कर लेता है। मतलब ऑफिस लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है बॉस। दुनिया भर में AI का सबसे बड़ा फोकस अब कंप्यूटर पावर और क्लाउड इंफ्रा पर है। बिग कंपनीज बिलियंस इन्वेस्ट कर रही है AI डेटा सेंटर्स में, ताकि फ्यूचर के AI मॉडल्स ज्यादा फास्ट और पावरफुल बन सके। सिंपल वर्ड्स में AI का पेट्रोल क्या होता है? डेटा और पावर। कंट्रीज अब ये समझ रही हैं कि AI सिर्फ कुछ नेशंस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर AI गवर्नेंस, एथिक्स और शेयर्ड इनोवेशंस पर बात की जा रही है, ताकि AI रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल किया जा सके और सबको उसका फायदा हो। वर्ल्ड वाइड कोर्ट्स और गवर्नमेंट्स AI के इस्तेमाल पर क्लियर रूल्स बना रहे हैं, स्पेशली लीगल फिलिंग्स, डेटा एक्यूरेसी और एथिकल इस्तेमाल को लेकर। मतलब AI मदद करेगा, डिसीजन ह्यूमन का ही रहेगा।

जितनी भी ग्लोबल AI समिट्स हो रही हैं, उनका फोकस है AI फॉर गुड, AI इन हेल्थ केयर, AI इन गवर्नेंस, AI प्लस सस्टेनेबिलिटी। AI अब सिर्फ टेक नहीं, पॉलिसी और सोसाइटी का कोर पार्ट बन रहा है। कतर की जानिब से कुछ AI अपडेट्स। कतर अपनी AI इकोसिस्टम को एग्रेसिवली डेवलप कर रहा है। गोल है गल्फ रीजन की टॉप AI हब्स में शामिल हो। चीप एनर्जी प्लस स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है AI ग्रोथ का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन। कतर ने अपनी नेशनल AI कंपनी स्टार्ट की है, जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस्ड AI सॉल्यूशंस पर काम करेगी। सिर्फ कतर के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी ये अवेलेबल रहेगी। कतर में हाई परफॉर्मेंस AI डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, जो फ्यूचर के स्मार्ट सिटीज, AI गवर्नेंस और इंटरप्राइज सॉल्यूशंस को पावर देंगे। ये लॉन्ग टर्म डिजिटल बैकबोन क्रिएट करेगा। वर्ल्ड समिट AI जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कतर ने अपनी रियल वर्ल्ड AI प्रोजेक्ट शोकेस किए। स्मार्ट HR सिस्टम, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, लीगल टेक और गवर्नेंस AI सॉल्यूशंस। वहीं NVIDIA ने फिजिकल AI मॉडल्स और रोबोटिक्स फ्रेमवर्क्स लॉन्च किए हैं, जिससे रोबोट्स और मशीन्स इंडस्ट्री ज्यादा इंटेलिजेंट और कैपेबल होंगे। स्मार्ट फैक्ट्रीज, डिलीवरी बॉट्स, सर्विस रोबोट्स सब एक्सेलरेट होंगे। परफॉर्मेंस और एजिलिटी दोनों इंप्रूव हो रही है। जेन सुआन होंग, NVIDIA CEO ने CES 2026 में बताया कि AI कंप्यूटिंग पूरी तरह री आर्किटेक्ट हो रही है। GPUs डोमिनेंट रोल में, नए वेरा रूबिन चिप्स और फिजिकल AI इनोवेशंस पर फोकस है। यह हमारे कंप्यूट और AI फ्यूचर को रीडिफाइन करेगा। कॉर्नेल टेक रिसर्चर्स को माइक्रोसॉफ्ट बैग्ड एजेंटिक AI रिसर्च प्रोग्राम में सेलेक्ट किया गया है। इसका मतलब है AI जो टास्क खुद प्लान, डिसाइड और एक्ट करेगा, नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। ये लॉन्ग टर्म AI ऑटोनोमी के बिग स्टेप्स हैं। मेटा ने मानस AI स्टार्टअप को $2 बिलियन में एक्वायर किया है, ताकि AI एजेंट्स डेवलप कर सके। ये डायरेक्टली गूगल एंड OpenAI जैसी फर्म्स के साथ कंपटीशन को हीट अप करता है। AI स्टार्टअप लिंकर विजन ने $35 मिलियन सीरीज ए राउंड रेज किया है। फोकस है फिजिकल AI और रीजनिंग इंटेलिजेंस पर, जो फ्यूचर मशीन्स को ज्यादा ऑटोनोमस बनाएगा। अब चलते हैं AI मिथ बस्टिंग की तरफ। मिथ ये है कि AI सबकी जॉब ले लेगा। इस पे हर दिन कोई ना कोई बात होती है, लेकिन रियलिटी ये है AI रिपीटेटिव जॉब्स ले सकता है, क्रिएटिव और सोशल जॉब्स बढ़ा देता है। आपने कई सारे 2025 में नए रोल देखे होंगे, जैसे AI कंटेंट डायरेक्टर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डिजिटल ट्विन डिजाइनर, AI कंप्लायंस एक्सपर्ट। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि AI इमोशंस समझता है। रियलिटी ये है कि इट कैन सिमुलेट इमोशंस। समझना तो अभी दूर की बात है। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे AI टूल ऑफ द वीक की। सुन रही है AI अनलॉक्ड अवेद के साथ।

0: You are listening to
1: AI Unlocked.
2: AI Unlocked.
1: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
0: Only on FM 107, दिल से देसी.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं AI Unlocked, मेरे अनिवेद के साथ में।
1: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में। AI Unlocked with RJ Ved,
2: only on FM 107, दिल से देसी।
0: और आज का AI वर्ड ऑफ द वीक है अपस्किलिंग।
3: AI वर्ड ऑफ द वीक।
0: अपस्किलिंग का मतलब है अपने स्किल्स को नए जमाने के हिसाब से अपग्रेड करना। जैसे एक अकाउंटेंट अब सिर्फ टैली पे काम नहीं करेगा, वो AI बेस्ड फाइनेंस टूल्स सीखेगा। एक जर्नलिस्ट अब सिर्फ पेन पेपर पे नहीं बल्कि AI फैक्ट चेक टूल्स इस्तेमाल करेगा और अपनी स्क्रिप्ट को सही करेगा। आज के जमाने में आपकी स्किल्स आपके अस्त्र हैं, आपकी टूल्स हैं, और जितना ज्यादा आप अपने आप को अपस्किलिंग करते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अब चलते हैं हमारे शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है टूल ऑफ द वीक।
3: AI टूल ऑफ द वीक।
0: मैं AI टूल ऑफ द वीक में लेकर आया हूँ वो टूल्स जिसने पिछले साल को काफी हैपनिंग बना दिया, और ये टूल्स वो टूल्स हैं जिन्होंने क्रिएटर्स की काफी मदद की। इन टूल्स में सबसे पहले है रनवे जेन 3 अल्फा। भाई अगर आप मूवी बनाने के शौकीन हैं तो रनवे जेन 3 अल्फा आपके लिए बिल्कुल मददगार साबित हो सकता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है, अपनी इमेजिनेशन को लिख देना है और आपकी मूवी बन के तैयार। सुनो तो भाई काफी पॉपुलर हो गया, स्पेशली अगर सुनो की बात करें गाने बनाने के मामले में सुनो का कोई जवाब नहीं है। अभी उसने कई सारे वर्जन लॉन्च कर दिए हैं, ह्यूमन लेवल सिंगिंग, अरबिक, हिंदी सपोर्ट, जो भी लैंग्वेज में आप चाहें गाना बना सकते हैं। लिरिक्स लिखिए किसी चैटबॉट में और बस यहाँ डालिए किस तरह का गाना चाहते हैं वो लिखिए और बस सुनो का मैजिक देखिए, विद इन अ मिनट आपका गाना बनके तैयार। 11 लैब स्टूडियो। भाई अगर आप वॉइस के साथ खेलना चाहते हैं, आपके पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ लिखिए टेक्स्ट टू वॉइस करने में ये माहिर, आप बस अपनी कहानी लिख दीजिए, वॉइसिंग ये करके देगा। सो वॉइस एक्टिंग, इमोशनल टोन कंट्रोल, अभी 11 लैब्स में भी काफी सारे अपग्रेड्स आ चुके हैं। गामा AI, बॉस ने कहा प्रेजेंटेशन बनानी है, टाइम नहीं है, क्या करोगे, वन क्लिक प्रेजेंटेशंस के लिए गामा AI एकदम मददगार साबित हो रहा है। पूरे डिजाइनर्स का दर्द खत्म कर दिया इसने, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखिए गामा AI आपकी पूरी पीपीटी विद ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग बना के देगा आपको, और आप बोलेंगे OMG ये क्या हो गया भाई, मैं तो सपने में भी ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता था जैसे इसने बना के दे दी। ट्राई करके देखिए गामा AI, इसकी स्पेलिंग है GAMMA गामा, आप लिखेंगे मिल जाएगा आपको। एंड एट द लास्ट परप्लेक्सिटी प्रो, ये एक तरह का चैटबॉट है, ये स्मार्ट रिसर्च असिस्टेंट है, ये आपके द्वारा पूछे गए सवालों का प्रूफ के साथ जवाब देता है। तो अगर आपको लंबी कोई रिसर्च करनी है, कुछ डेटा एनालाइज करना है, देन परप्लेक्सिटी प्रो कैन वर्क फॉर यू। इसके अलावा तो बहुत सारी AI एप्लीकेशंस अभी मौजूद हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। स्पेशली सोशल मीडिया में हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे डांस, नाउडेज देयर लॉट ऑफ स्टोरीज, कोई हल्क बना दे रहा है, हल्क को चला रहा है, हल्क बातें कर रहा है, कोई किसी कार्टून कैरेक्टर में कोई गाना डाल के उससे डांस करा रहा है। सो मच मोर इज हैपनिंग एंड इट्स बिकम वेरी वेरी इजी फॉर एवरीवन। वैसे AI के आने से मजा तो आने लगा है। तो दोस्तों ये था AI Unlocked का एक और एपिसोड, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस शो से काफी जानकारी मिली होगी। सुनते रहिए, हर एपिसोड में आपको मिलेगी नई नई जानकारी, सुनना मत भूलिएगा AI Unlocked वेद के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: 107 पर वेक अप वेक अप
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान की जिंदगी में उतार और चढ़ाव जरूर आते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी नरमी कभी सख्ती, हालात बदलते रहते हैं। एक दिन हमारे हक में होता है तो दूसरा दिन हमारे मुखालिफ। जो दिन आपके हक में हो उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और जो दिन आपके मुखालिफ हो उस दिन सबर का दामन हाथ से न जाने दीजिए, इसी में आफियत और भलाई है।
1: पैगाम ऑन FM 107
3: पर अपना

बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजरों से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत खासम खास है और वो कुछ इस तरह से कि व्हेन योर जॉब टाइटल चेंजेस बट यू डोंट हैंडलिंग करियर ट्रांजिशंस विद कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों आज के इस खासम खास प्रोग्राम में हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो करियर से जुड़ा है।

ये कम होता डर आपको एक्सपेरिमेंट करने पूछने और सीखने का हौसला देता है जो नई जिम्मेदारियों को संभालने में मदद करता है और ये अमल आपको मुस्तकबिल के लिए

0: और बेहतर इंसान बना रहा है। भाई जिंदगी के हर पहलू में जो लंबी मुद्दत में आपके लिए सुकून और इस्तकरार लाए वही ये वक्त होता है। दोस्तों करियर ट्रांजिशंस अक्सर इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। ये सोचना जरूरी होता है कि हम क्यों काम करते हैं। जब मकसद वाजे होता है तो रोल की सख्ती कम महसूस होती है। काम के अलावा अपनी जिंदगी के गोल्स को समझना डायरेक्शन देता है। इस डायरेक्शन के साथ इंसान अपनी एनर्जी बेहतर जगह लगा पाता है। धीरे धीरे नया रोल बोझ नहीं रहता और बल्कि सीखने का जरिया बन जाता है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है, जो प्रोफेशनल सफर में इस्तेकामत पैदा करती है और इंसान को लंबे अरसे तक मोटिवेटेड रखती है। करियर ट्रांजिशंस के दौरान जब इंसान अपनी पूरी पहचान को तस्लीम कर लेता है तो अंदर से सुकून महसूस होता है। काम के अलावा जिंदगी के दूसरे पहलू भी अहमियत रखते हैं। जब हम ये बात समझ जाते हैं या ये बात हमारे समझ आ जाती है तो जॉब टाइटल का डर कम हो जाता है। इंसान अपनी मेहनत पर यकीन करता है और यही वो यकीन है जो उसे नए चैलेंजेस की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे नया रोल अपना लगने लगता है और इस स्टेज पर इंसान सिर्फ कहना चाहिए कि सरवाइव ही नहीं कर रहा होता बल्कि कॉन्शियसली ग्रो करता है और अपनी जर्नी का लुत्फ लेना शुरू करता है बिना घबराहट के, बिना किसी डर के और वो भी बहुत सुकून के साथ। वहीं दोस्तों जिंदगी में जब इंसान को फोकस बैलेंस पर रखना पड़ता है तो करियर ट्रांजिशंस ज्यादा आसान हो जाते हैं। काम के साथ साथ अपनी सेहत, रिश्तों और जहनी हिफाजत पर काम करना बहुत जरूरी होता है। इससे इंसान इमोशनली स्ट्रांग रहता है। जब दिमाग सुकून में हो तो लर्निंग तेज हो जाती है। नया रोल फिर बोझ नहीं लगता। इंसान अपनी गलतियों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें सीखने का जरिया बनाता है। यही वो सोच है जो प्रोफेशन में लंबे अरसे तक इस्तेकामत बनाए रखती है, जो हर चैलेंज को संभालने की सलाहियत पैदा करती है और हौसले भी बढ़ाती है मुस्तकिल तौर पर। तो दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरवर मिर्जा आपके साथ, कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि अभी आगे हमें बहुत कुछ समझना बाकी है। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारते दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी।
3: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद RJ सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
4: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
0: तो दोस्तों करियर ट्रांजिशन के सफर में अक्सर इंसान अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को भूल भी जाता है। नया रोल इतना फोकस ले लेता है कि पुरानी कामयाबियां छोटी लगने लगती हैं, बल्कि कभी कभार धुंधली पड़ जाती हैं, याद भी नहीं रहती, क्योंकि नए रोल के हिसाब से ही आपको नापा तोला जाता है। ये एक जिंदगी का तरीका है, एक दुनियावी तरीका है, इसी तरीके से हमें ट्रीट भी

किया जाता है लेकिन अपनी जर्नी को याद रखना बहुत जरूरी होता है ये यादें आपको याद दिलाती हैं कि आप पहले भी सीख चुके हैं आप पहले बहुत कुछ कर चुके हैं आप पहले कर रहे थे और आप आगे भी कर सकते हैं इस एहसास से कॉन्फिडेंस वापस आता है और जब कॉन्फिडेंस मजबूत होता है तो नई जिम्मेदारियों का सामना आसानी से होता है इंसान अपनी ग्रोथ को सिर्फ टाइटल से नहीं बल्कि अपनी सोच से नापना शुरू करता है और जिंदगी के फैसले बेहतर तौर पर करता है मुस्तकबिल के लिए तो जनाब अभी तक के प्रोग्राम में खुलासा ये निकल कर आता है भाई जब हम बात करते हैं कि आपका जब जॉब टाइटल चेंज होता है और आप चेंज नहीं होते तो वो किस तरीके से आप करियर ट्रांजिशंस को हैंडल करते हैं वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के तौर पर तो काम इंसान की पूरी कहानी नहीं होती जब हम अपनी पहचान को सिर्फ जॉब तक मकसूर नहीं करते तो जिंदगी ज्यादा वाज़े लगती है करियर ट्रांजिशंस फिर डर का सबब नहीं रहते इंसान हर नए रोल को सीखने का मौका समझता है और इस सोच के साथ प्रोफेशनल सफर ज्यादा पुरसुकून होता है तो चलिए जी अब इस प्रोग्राम में दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसी सिलसिले से करियर ट्रांजिशंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कायम रखते हुए पर्पस और ग्रोथ पर किस तरीके से हमें रोशनी डालनी चाहिए जो हमारे समझने और बेहतर बनाने में रहनुमाई करते हैं और इंसान को डायरेक्शन देते हैं और मुस्तकबिल के लिए तैयार करते हैं हमेशा इजी जिंदगी गुजारने के लिए तो जनाब पर्पस इंसान को डायरेक्शन देता है जब जॉब टाइटल बदलता रहता है जब आप अपने काम का मकसद समझ लेते हैं तो रोल का नाम सेकेंडरी हो जाता है पर्पस आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ टास्क कंप्लीट करना ही नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करना जानते हैं करियर ट्रांजिशंस के वक्त ये सोच बहुत मददगार साबित होती है दोस्तों इससे इंसान प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है जब मकसद वाजे होता है तो मोटिवेशन अंदर से आता है और ऐसी मोटिवेशन लंबे अरसे तक कायम रहती है और आपको हर नई जिम्मेदारी के लिए मेंटली तैयार रखती है वहीं अगर ग्रोथ का मतलब सिर्फ प्रमोशन या सैलरी बढ़ाना होता दोस्तों तो दुनिया कुछ और ही शक्ल में होती असल ग्रोथ सोच के लेवल पर होती है जब आप नई जिम्मेदारियों से सीखते हैं तो आप अंदर से मजबूत होते हैं भाई करियर ट्रांजिशन से इस लर्निंग को तेज करता है इस दौरान गलतियां होती हैं जो फ्यूचर के लिए लेसन्स बन जाती हैं सबक बन जाती हैं जब इंसान सीखता है या लर्निंग माइंडसेट रखता है तो डर कम होता है और यही वो सोच है दोस्तों जो आपको चेंज से लड़ने के बजाय उसे कबूल करना सिखाती है और धीरे धीरे प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस बढ़ाती है जो इंसान को नई सिचुएशंस में पुरसुकून और फोकस्ड रहने में मदद देती है तो जनाब पर्पस और ग्रोथ एक दूसरे से जुड़े हुए कंसेप्ट्स हैं जब आप अपना मकसद समझते हैं तो ग्रोथ मीनिंगफुल हो जाती है करियर ट्रांजिशंस के वक्त ये कनेक्शन बहुत अहम होता है इससे आप सिर्फ बिजी नहीं रहते बल्कि प्रोडक्टिव बन जाते हैं पर्पस आपको ये याद दिलाता रहता है कि हर रोल टेम्परेरी है भाई लेकिन जो सीखना है जो लर्निंग है वो परमानेंट तौर पर काम आती है इसी सोच के साथ इंसान प्रेशर को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है और अपने काम से बेहतर रिजल्ट्स हासिल करता है जो लंबे अरसे में करियर सेटिस्फेक्शंस और खुद पर यकीन को मजबूत बनाता है हमेशा और इस्तेकामत देता है तो दोस्तों करियर ट्रांजिशन को अगर ग्रोथ के लेंस से देखा जाए तो डर कम हो जाता है हर नया रोल इंसान को कुछ नया सिखाता है वहीं पर्पस जो है मकसद जो है इस सीख को डायरेक्शन देता है जब आप अपनी ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं तो टेम्पररी डिस्कम्फर्ट से घबराते नहीं यही वो भरोसा है जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में तब्दील होता है इसी कॉन्फिडेंस के साथ इंसान नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है ये अमल आपको फ्यूचर के लिए रेडी करता है जहां चेंज एक नॉर्मल प्रोसेस बन जाता है और इंसान को हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल रहना और सीखते रहने की आदत डालता है करियर ग्रोथ जब मीनिंगफुल होती है दोस्तों तो इंसान अपनी लर्निंग को कॉन्शियसली ट्रैक करता है नया रोल आते ही सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं

नहीं होता। जब आप प्रोग्रेस को छोटे स्टेप्स में देखते हैं तो प्रेशर कम होता है। पर्पस या हमारा जो मकसद है वो हमें याद दिलाता है कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना काफी है। इस सोच के साथ इंसान कंपैरिजन से निकल जाता है, धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है और यही वो ट्रस्ट है जो आपको स्टडी डिसीजंस लेने, बाउंड्रीज सेट करने और अपनी कैपेबिलिटीज पर यकीन रखने में मदद देता है, जो प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल और सस्टेनेबल बना देता है। दोस्तों, पर्पस के साथ काम करने वाला इंसान अपनी एनर्जी बेकार चीजों पर जाया नहीं करता। करियर ट्रांजिशन में ये क्लियरिटी बहुत कीमती होती है। जब मकसद सामने हो तो डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इंसान समझ जाता है कि हर जिम्मेदारी परमानेंट नहीं होती और ये समझ स्ट्रेस को कम करती है। ग्रोथ तब होती है जब इंसान सीखने को ईगो पर तरजीह देता है। ऐसी सोच प्रोफेशनल मैच्योरिटी को बढ़ाती है। धीरे धीरे आप नए रोल को सिर्फ पोजीशन नहीं बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट के जरिए देखने लगते हैं और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अंदर से, हर वक्त हमेशा के लिए। तो जनाब, जब इंसान अपनी ग्रोथ का जिम्मा खुद लेता है तो करियर ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। पर्पस ये सीख देता है कि रुकावट फेलियर नहीं होती। करियर ट्रांजिशंस के दौरान ये सोच बहुत मददगार साबित होती है। जब आप पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं तो रिजल्ट्स बेहतर निकलते हैं। हर एक्सपीरियंस आपको इनसाइट देता है। ये इनसाइट फ्यूचर डिसीजंस को बेहतर बनाता है। धीरे धीरे इंसान अपनी सोच को रिएक्टिव होने के बजाय रिस्पॉन्सिव बना लेता है और यही वो वजह है जो प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन पैदा करती है, जो इंसान को इमोशनली और मेंटली बैलेंस रखती है। भाई, मकसद और ग्रोथ के साथ चलने वाला इंसान करियर ट्रांजिशन से नहीं घबराता। वो जानता है कि हर फेज टेम्पररी होता है। जब मकसद क्लियर हो तो चेंज कंफ्यूजन पैदा नहीं करता। ग्रोथ को एक्सेप्ट करना इंसान को फ्लेक्सिबल बनाता है और यही फ्लेक्सिबिलिटी फ्यूचर चेंजेस के लिए तैयार करती है। धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली डेवलप होता है। ऐसी ग्रोथ टाइटल से आजाद होती है। इसीलिए जब डेजिग्नेशन चेंज होता है तो इंसान अंदर से स्टेबल रहता है और ये स्टेबिलिटी प्रोफेशनल सफर को बेहतर बनाती है और हर नया रोल ग्रोथ का मौका बनता है हमेशा जिंदगी में रहने के लिए। तो जनाब, करियर ट्रांजिशंस के दौरान सबसे अहम चीज कंसिस्टेंसी होती है। जब इंसान रोज छोटी छोटी एक्शंस लेता रहता है तो ग्रोथ नजर आने लगती है। पर्पस आपको ये याद दिलाता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। इसी वजह से थकान भी मैनेजेबल रहती है। जब डायरेक्शन क्लियर हो तो फोकस बरकरार रहता है। इंसान अपनी एनर्जी सही जगह लगाता है। धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टेबल हो जाता है और ये स्टेबिलिटी इंसान को डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करती है, जो हर नए रोल में काम आता है और आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती जाती है। दोस्तों, करियर ग्रोथ का एक अहम हिस्सा रिफ्लेक्शन होता है। जब इंसान रुक कर अपनी प्रोग्रेस को देखता है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत का अंदाजा होता है। मकसद रिफ्लेक्शन को मीनिंगफुल बनाता है। ये आपको सिर्फ बिजी नहीं रहने देता बल्कि बेहतर बनने पर फोकस करवाता है। करियर ट्रांजिशंस के वक्त आदत बहुत मदद करती है। इससे कंफ्यूजन कम होते हैं। इंसान समझ जाता है कि कौन सी चीज काम कर रही है। धीरे धीरे डिसीजन से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और यही कॉन्फिडेंस इंसान को अपनी जर्नी पर यकीन रखने में मदद देता है और फ्यूचर के लिए रेडी रखता है। मकसद के साथ काम करने वाला इंसान प्रेशर को पर्सनल अटैक नहीं समझता। दोस्तों, वो जानता है कि चैलेंज ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। करियर ट्रांजिशंस में ये सोच बहुत कीमती है। इससे स्ट्रेस कम होता है और जो लड़ने की ताकत है, कुव्वत है, वो तेज होती है। जो सीखने की ताकत कुव्वत है वो भी तेज होती है। जब इंसान हर सिचुएशन को सीखने के एंगल से देखने लगता है तो घबराहट भी कम हो जाती है और धीरे धीरे नए रोल कंफर्टेबल लगने लगते हैं। वहीं इंसान अपनी मिस्टेक से भागने के बजाय उन्हें समझ लेता है। ये अप्रोच प्रोफेशनल मैच्योरिटी को बेहतर बनाते हुए मैच्योरिटी के साथ ही इंसान को लंबे अरसे तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के काबिल बनाती है, वो भी अपनी वैल्यू प्रूव करते हुए। तो जनाब, करियर ट्रांजिशन इंसान को सब्र करना सिखाते हैं। हर चीज फौरन क्लियर नहीं।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों के उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।

0: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड प्रोग्राम। भाई एक ऐसा सफर जहां हम उन किताबों की कहानी सुनाते हैं जिनके अल्फाज ने दुनिया भर के लोगों को बदला, बेहतर सोच दी और जिंदगी को नए अंदाज से देखना सिखाया है। हर एपिसोड में हम एक ऐसी किताब पर बातचीत करते हैं जिसने दुनिया भर की सोच को बदला है और एक बेहतर तरीके पे लाया है। आज भी हम एक ऐसी ही किताब पर बातचीत करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों कायरीन के दिलों को छुआ है और वो किताब है द लेट देम थियरी। लिखने वाली हैं मेल रॉबिन्स। तो दोस्तों आज के खास प्रोग्राम में हम जहां बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो हमारी रोजाना जिंदगी को आसान, हल्का और बेहद पुरसुकून बना सकती है। भाई अक्सर हम अपनी जिंदगी में इतना बोझ उठा रहे होते हैं जो असल में हमारे हैं ही नहीं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कोई नाराज हो गया तो क्या होगा, भाई ये सब सोच हमारी एनर्जी को खा जाती हैं। तो आज का प्रोग्राम एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल थॉट पर मबनी है जो कहता है लेट देम, मतलब लोग जो चाहें करें और हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना सीखें। भाई आज हम बात करेंगे मेल रॉबिन्स की किताब द लेट देम थ्योरी पर, जो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट है, कोई फिलॉसफी नहीं है। और इसी के साथ ये प्रोग्राम आपको इस पर सोचने को मजबूर करेगा कि भाई किस तरीके से हम दूसरों को अलग रखते हुए अपनी चीज़ें कर सकते हैं। भाई इस शो का मकसद सिर्फ एक किताब इंट्रोड्यूस करना नहीं बल्कि अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी के उन

लम्हों को एड्रेस करना है जहां आप खुद को थका हुआ, कंफ्यूज या इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। कभी किसी का रवैया बुरा लगता है, कभी किसी का डिसीजन समझ नहीं आता और कभी हम खुद से ही ना खुश हो जाते हैं। मेल रॉबिन्स यहां एक बहुत आसान सा नुस्खा देती हैं। जब कोई ऐसा काम करे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो बस कह दीजिए लेट देम। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह हो जाएं, बल्कि ये है कि आप अपना इमोशनल रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लीजिए। इसमें ही हमारी भलाई है और समझने की कोशिश ये करवाई गई है कि दूसरों के एक्शन पर रिएक्शन देना हमें अंदर से कमजोर करता है और कैसे लेट देम कहना ही एक इमोशनल बाउंड्री बन जाता है जो हमारी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। मसलन रेडियो पर बैठकर बात करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हर लिसनर किसी ना किसी लेवल पर किसी और की एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे दबा हुआ है। भाई पेरेंट्स हैं, बॉसेस हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं वगैरह वगैरह, सबके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब तक हम ये समझने लगते हैं कि हर इंसान अपनी स्टोरी जी रहा है, तब तक हम उनकी हर बात को पर्सनल लेते रहते हैं। सो लेट देम एक परमिशन नहीं बल्कि एक रिलीज है, खुद को आजाद करने का तरीका है। ठीक है भाई, तो आपको मेंटल तौर पर रेडी करती है ये किताब और जो इसकी राइटर हैं, और वो हमें समझाती हैं कि कैसे हम थ्योरी नहीं बल्कि रोजाना जिंदगी में इन चीजों को अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं बुक ऑफ द वीक में, प्रोग्राम के अगले हिस्से पे चलते हैं और क्यूज को हमने सिलेक्ट किया है तो इसके हवाले से भी जानेंगे। तो भाई द लेट देम थियरी मेल रॉबिन्स की वो किताब है जो सीधी बात सीधे अल्फाज में करती है। इस किताब की बुनियाद एक जुमले पर है जो पहले सिंपल लगता है, लेकिन जब आप उस पर अमल शुरू कर देते हैं तो जिंदगी का प्रेशर नोटिसेबल तौर पर कम हो जाता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि दुनिया के आधे मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि हम दूसरों के रिएक्शंस अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। कोई नाराज हो गया, हम अपसेट हो गए, कोई अग्री नहीं किया किसी बात पे और हम इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये किताब हमें याद दिलाती है कि हर शख्स को अपनी सोच, अपनी हरकत और अपनी चॉइस का हक है और हमें भी इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहिए। सो द लेट देम का मतलब यह है कि आप लोगों को उनकी जगह रहने दें और खुद को अपनी जगह वापस ले आए। किताब का स्टाइल बिल्कुल लेक्चर जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोस्ताना और रिलेटेबल लगता है। मेल रॉबिन्स खुद अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स देती हैं, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, फ्रेंडशिप्स का प्रेशर, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस, और फिर बताती हैं कि कैसे उन्होंने एक वक्त पर कितना या कहना सीखा लेट देम थिंक व्हाट दे वांट। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है भाई। इसका मैसेज बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि हम सब किसी ना किसी रिलेशनशिप में इमोशनली ओवर इन्वेस्टेड हो जाते हैं, तो ये समझने की जरूरत है इस किताब के जरिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी का एक मजबूत फ्रेमवर्क जो है उसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मेल रॉबिन्स ये भी समझाती हैं कि जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तब हम केयरलेस नहीं होते बल्कि क्लियर हो जाते हैं। लेट देम कहना एक तरह से अपने आप से ये कहना होता है कि मैं अपनी पीस को किसी और के मूड के हवाले नहीं करूंगा या करूंगी। किताब का ये हिस्सा एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और पीपल प्लीजिंग पर रोशनी डालता है। आजकल बहुत से लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, और ये किताब वही साइकिल तोड़ती है और समझाती है कि किस तरीके से, या हमें एनकरेज करती है कि वो अपनी जिंदगी एक रिलेशनशिप के बारे में सोचें जहां उन्होंने हद से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया हो, और फिर खुद से पूछें अगर मैं सिर्फ लेट देम कह देता तो शायद मेरा दिल ज्यादा हल्का हो जाता। तो दोस्तों बुक के मुताबिक सबसे मुश्किल काम है रिएक्शन कंट्रोल करना। लोग क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, क्या पोस्ट करते हैं, हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि रिएक्शंस डिले करना इमोशनल इंटेलिजेंस की पहचान है, लेट देम एक पॉज बटन है, और ये हमें बताता है कि जब आप किसी सिचुएशन में फौरन जवाब देने के बजाय थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं तो आप अपनी पावर वापस ले लेते हैं। बात बहुत इफेक्टिव है दोस्तों।

दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम वर्क प्लेस या फैमिली कन्फ्लिक्ट से घिरे हुए होते हैं और ये हमें समझने सीखने की ज़रूरत है कि साइलेंस कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है और लेट देम उस साइलेंस को मीनिंगफुल बना देता है। एक और पावरफुल एस्पेक्ट जो मेल रॉबिन्स हाईलाइट करती हैं वो ये है कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ज़रूरी है। हम अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारी तरह सोचें, हमारी तरह बिहेव करें। ये कैसे पॉसिबल है? जब ये नहीं होता है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेट देम थ्योरी ये कहती है कि एक्सपेक्टेशन कम करना कन्फ्यूजन कम करना है और डिटेल्स यही समझाती हैं या बताती हैं कि कैसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा और एक्सेप्टेंस कम होने से रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती हैं। जब आप लेट देम कह देते हैं, आप लोगों को उनकी असली शक्ल में देखना शुरू कर देते हैं, बिना फिल्टर्स वाली जो शक्ल होती

है, और इन सारी चीज़ों को अगर हम फिक्स करना चाहें तो ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं है। किताब का एक हिस्सा सेल्फ ब्लेम पर भी बात करता है। जब कोई आपसे दूर हो जाए, जब कोई दोस्त बदल जाए, तो हम खुद को कसूरवार समझने लगते हैं। मेल रॉबिन्स यहाँ बहुत जेंटली कहती हैं, लेट देम ग्रो अवे। ग्रो हाँ, घो नहीं, ठीक है, फर्क है। देखिए यहाँ पर बात सिर्फ अपने आप को समझाने की हो रही, दूसरों से टूटने की, दूसरों को छोड़ने की, दूसरों के काम को मना करने की, नो नो नो नो नो, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है बारीकी जो यहाँ पर बताई गई है इस किताब के ज़रिए। भाई हर इंसान हर फेस में साथ नहीं चल सकता, तो समझने की ज़रूरत ये है कि इमोशनली अगर हम अपने आप को प्रिपेयर करें तो हर सेपरेशन फेलियर नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ अलाइनमेंट का ख़त्म होना होता है। ये बात सुनना आसान नहीं होती लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। तो इंटेंशनली स्लो और सॉफ्ट रखा अगर जाए अपनी बात को, या मैसेज अगर पहुंचाना हो तो वो दिल तक पहुंचता है। तो जनाब इनर पीस के हवाले से हमने बहुत कुछ इस किताब के ज़रिए सुना है, लेट देम थ्योरी के ज़रिए। जब आप लोगों के एक्शंस को पर्सनल लेना छोड़ देते हैं तब आप अपने थॉट्स को ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब आप दूसरों को उनकी जर्नी पर छोड़ देते हैं तब आप खुद अपनी जर्नी पर फोकस कर पाते हैं। और गोल क्या है, वो ये है कि महसूस करवाएं कि पीस कोई लग्जरी नहीं, या ये किताब हमें ये महसूस कराती है कि पीस कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक डिसीजन है, और लेट देम उस डिसीजन का पहला कदम होता है। मेल रॉबिन्स एक बहुत अहम पॉइंट उठाती हैं और वो है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कन्फ्यूजन। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई परेशान है, अपसेट है या नाराज है तो शायद उसकी वजह हम हैं। लेट देम थ्योरी ये कन्फ्यूजन क्लियर करती है। मेल कहती हैं कि हर इंसान अपनी इमोशनल जिम्मेदारी खुद उठाता है। आप दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपनी रिएक्शन को जरूर मैनेज कर सकते हैं। जब कोई बिना वजह रूड हो, जब कोई आपसे दूर हो जाए, या जब कोई आपकी मेहनत को अप्रिशिएट ना करे, तो ऐसे में खुद को ब्लेम करना सबसे आसान लगता है। लेकिन लेट देम यहां एक शील्ड का काम करता है। ये कहता है उन्हें अपना फील जीने दीजिए, आप खुद को अननेसेसरी शर्मिंदगी में मत डालिए। दोस्तों मेल रॉबिन्स की किताब में ये भी बताया गया है कि हम अक्सर चीज़ों को अननेसेसरली पर्सनलाइज कर लेते हैं। कोई रिप्लाई लेट कर देता है तो हम समझने लगते हैं कि शायद हम इम्पोर्टेंट नहीं। कोई मीटिंग में इग्नोर कर देता है तो हमें अपनी वर्थ पर सवाल उठता हुआ दिखता है। लेट देम थ्योरी ये रिमाइंड करवाती है कि हर बिहेवियर का ताल्लुक हमसे नहीं होता भाई। लोग अपनी बैटल्स में उलझे हुए हैं, अपनी लड़ाई झगड़े अपनी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ में उलझे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस में उलझे हुए हैं। जब हम हर चीज़ को अपनी पर्सपेक्टिव से देखना छोड़ देते हैं तो हम इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो मैसेज ये है कि हर साइलेंस डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, हर डिस्टेंस रिजेक्शन नहीं होता, और हर चेंज नुकसान नहीं होता। कभी कभी बस ये लाइफ का नेचुरल फ्लो होता है और हमें बस लेट देम कर आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों किताब में एक बहुत रिलेटेबल सिचुएशन पर बात की गई है, लोगों को समझाया गया है। हम कितनी बार चाहते हैं कि लोग सिर्फ हमारी बात समझ लें, हमारी फीलिंग्स को वैलिडेट कर दें। हम आर्ग्यू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिफेंड करते हैं, लेकिन फिर भी समझा नहीं।

जीतना जरूरी नहीं होता, कभी-कभी अपनी एनर्जी बचाना भी जीत ही होती है। मेल रॉबिन्स इस किताब में कंपैरिजन के बारे में भी बहुत क्लियरली बात करती हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हम खुद को हर वक्त कंपेयर कर रहे होते हैं, किसी की सक्सेस से, किसी की लाइफस्टाइल से, किसी के कॉन्फिडेंस से वगैरह वगैरह। लेट देम थ्योरी यहाँ कहती है लेट देम बी अहेड। हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। जब हम अपनी जिंदगी को किसी और के पेस से मेजर करते हैं तो हम अपनी जर्नी का लुत्फ खत्म कर देते हैं। तो फोकस क्या है, वो ये है कि जेलेसी या इनसिक्योरिटी असल में एक सिग्नल होती है कि हम अपनी डायरेक्शन भूल रहे हैं। जब हम लेट देम कह देते हैं तो हम कंपैरिजन से निकलकर क्लियरिटी की तरफ आते हैं। तो साहब किताब ये सिखाती है कि काम फील में रहिए और ये एक्नॉलेज करिए कि स्लो होना फेलियर नहीं है बल्कि बैलेंस की निशानी है। किताब का एक और स्ट्रॉन्ग पहलू ये भी है कि हर इंसान के साथ आपको रोल जो है मेजर नहीं करना होता। हर इंसान का अपना रोल अलग होता है। हर रिलेशनशिप के लिए सेम एफर्ट, सेम एक्सेस और सेम प्रायोरिटी ज़रूरी नहीं होती। मेल रॉबिन्स यहाँ इमोशनली बाउंड्रीज की बात करती हैं। लेट देम का मतलब है कि अगर कोई आपको लाइट ट्रीट कर रहा है तो आप भी खुद को हैवी इन्वेस्ट करने से रोकें। ये पनिशमेंट नहीं होती, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो भाई समझना ये है, या किताब बताती है कि बाउंड्रीज साइलेंस से भी सेट होती हैं। आप हर दफा कन्फ्रंट करें ये जरूरी नहीं। कभी कभी आपका काम रिस्पॉन्स ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है। तो भाई सबको ये मैसेज के गिव एंड टेक के इम्बैलेंस से बचिए। लेट देम, उन्हें इमोशनल ब्रीदिंग स्पेस देता है। मेल रॉबिन्स ये भी कहती हैं कि सबसे मुश्किल जगह जहां लेट देम अप्लाई होता है वो है फैमिली, क्योंकि यहां एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस ज्यादा गहरे होते हैं। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, हर कोई आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। तो समझना क्या है, या आपको समझाया क्या गया है कि फैमिली में एग्रीमेंट होना जरूरी है, रेस्पेक्ट होना जरूरी है। बस ये है एक दूसरे को समझा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपके डिसीजन से खुश नहीं है तो ये उनका हक है भाई, आपके अपने लोग हैं। इसमें लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, या टेंशन लेने या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेट देम का यहां पर मतलब ये निकलेगा, या ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बदतमीज हो जाएं, बल्कि ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस ना करें। आराम से उनकी भी बात सुनिए, अपनी बात भी रखिए, और जो बेहतरीन तरीका है उसके ऊपर फैसला लिया जाए, व्हाई नॉट। तो भाई उन्हें इजाजत दीजिए कि वो अपनी स्पेस डिमांड कर सके बिना शर्मिंदगी के, और वही आपके साथ भी हो वाइस वर्सा। तो जनाब मेल रॉबिन्स वर्कप्लेस डायनेमिक्स पर भी बात करती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, एप्रिसिएशन की कमी या अनफेयर ट्रीटमेंट, ये सब बहुत कॉमन है। लेट देम थ्योरी यहाँ कहती है कि हर चीज़ पर्सनलाइज ना करें। अगर कोई कलीग आगे बढ़ जाता है, अगर कोई बॉस आपको नोटिस नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। कभी कभी सिस्टम अनफेयर होता है, तो यही समझने की भी ज़रूरत है, और हमें यही रिमाइंड किया कराया जाता है कि सेल्फ वर्थ का स्केल जो है वो किसी और के ओपिनियन से मेजर नहीं होता। जब आप अपना बेस्ट देते हैं और फिर लेट देम कहकर एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं तो आप काम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, और यही वो माइंडसेट है जो बर्नआउट से बचाता है और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस को अंदर से मजबूत करता है। किताब का एक इमोशनल हिस्सा ये भी है कि जब लोग आपको छोड़ देते हैं या खुद दूर हो जाते हैं, तो मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब कोई चला जाता है तो उसे रोकने से बेहतर है ये कहना कि लेट देम गो। भाई हर डिपार्चर रिजेक्शन नहीं होता, याद रखिए। कभी कभी लाइफ आपके रास्ते को साफ कर रही होती है, तो इंटेंशनली सॉफ्ट रखा जाए, क्योंकि हार्ट ब्रेक और लॉस से रिलेटेड ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है। कंफर्ट मिलता है कि हर खत्म होने वाली कहानी फेल नहीं होती। तो भाई कुछ लोग आपकी ग्रोथ के लिए आए होते हैं, हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं। लेट देम यहाँ एक इमोशनल क्लोजर बन जाता है।
दोस्तों मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब आप लेट देम का यूज करना शुरू कर देते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपका

0: माइंडसेट ज्यादा क्लियर हो रहा है, ओवरथिंकिंग कम होती है, एंजाइटी धीमी पड़ जाती है और आप बेहतर महसूस करते हैं। तो यहाँ समझना ये है या समझाया ये गया है कि कंट्रोल छोड़ना स्ट्रेंथ की निशानी होती है। जो लोग सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं असल में वो डर के साथ जी रहे होते हैं। लेट देम, डर को एक्सपोजर देता है और ट्रस्ट को ग्रो करता है। तो साहब, जिंदगी को थोड़ा लूज पकड़ना भी जरूरी होता है, हमेशा याद रखिए। हर चीज टाइट पकड़ने से टूट जाती है, तो ये मैसेज बहुत ज्यादा मायने रखता है। द लेट देम थ्योरी का एक और गहरा पहलू सामने ये भी आया है कि वो अप्रूवल की एडिक्शन को दिखाता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी इस तरह जी रहे होते हैं जैसे हर वक्त किसी अप्रूवल स्टैंप का इंतज़ार हो। काम पर बॉस खुश हो, घर पर सब राजी हो, दोस्तों की नज़रों में इमेज परफेक्ट हो, और इसी चक्कर में हम अपने रियल इमोशंस को दबा देते हैं। लेट देम थ्योरी यहाँ सीधी बात करती है, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, अगर कोई आपकी चॉइसिस से अग्री नहीं करता, तो लेट देम। आप हर किसी के लिए बनाए नहीं गए हैं भाई। बात यह समझनी जरूरी है कि जिंदगी का रुख सीधा ही रख देना बेहतर होता है और खुद के साथ ना इंसाफी नहीं है। जब आप ये छोड़ने लगते हैं तब आप अंदर से फ्री महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, मेल रॉबिन्स इस किताब में कंट्रोल और ट्रस्ट के दरमियान फ़र्क बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाती हैं। वो कहती हैं कि कंट्रोल एक इल्यूजन है, हम सिर्फ अपनी नीयत और अमल कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों के डिसीजंस नहीं। तो क्या यहाँ पर समझाया गया है, वो ये कि जब कोई आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ काम करता है तो गुस्सा आना फितरी होता है, लेकिन गुस्से के बाद जो सबसे जरूरी कदम होता है वो है एक इंटीरियर डिसीजन। लेट देम बी हु दे आर, ये डिसीजन आपको पावरलेस नहीं बनाता बल्कि इमोशनली स्टेबल करता है। तो साहब, ट्रस्ट का मतलब अंधा भरोसा नहीं होता बल्कि हकीकत को एक्सेप्ट करना होता है। जो जैसा है उसे वैसे ही देखना, ना कम ना ज्यादा। यही वो फील देती है जो जिंदगी को स्मूथ चलने के लिए हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, ये मैसेज हम तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, पीपल प्लीजिंग के टॉपिक को डायरेक्टली एड्रेस ये किताब करती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि लोगों को खुश रखते रखते हम कब अपने आप को नाराज कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हर दफ़ा हाँ कहना और हर दफ़ा एडजस्ट करना, हर दफ़ा चुप रहना, ये सब जो आदतें हैं धीरे धीरे सेल्फ आइडेंटिटी को कमज़ोर कर देती हैं। लेट देम थ्योरी यहाँ एक हेल्दी रिमाइंडर है कि आप दूसरों की कन्वीनियंस के लिए अपनी वैल्यूज कुर्बान मत कीजिए। कुर्बानी बहुत जरूरी है रिलेशनशिप्स में, बिल्कुल, बट जो इसके बीच का फासला है उसको कैसे भरा जाए, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट देम कहना सेल्फिशनेस नहीं होती बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और अगर कोई आपकी हद को समझने के लिए तैयार नहीं तो शायद उन्हें समझने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं। तो ये बात सुनकर आपको कुछ और थॉट्स ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरों को इज्जत देकर उनकी बात समझना भी बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ फिर आपके ऊपर अप्लाई करी जाती है। मेल रॉबिन्स यहाँ एक और बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो शेयर करती हैं। जब लोग बार बार आपको डिसअपॉइंट करते हैं फिर भी आप उम्मीद रखते हैं, तो ये एक फोकस है रियलिस्टिक एक्सेप्टेंस पर कि भाई अगर कोई बार बार लेट होता है, बार बार वादा तोड़ता है या बार बार इग्नोर करता है तो वो अपनी प्रायोरिटीज दिखा रहा होता है। लेट देम थ्योरी कहती है कि लोगों को उनके एक्शंस के जरिए समझा जाता है, उनके लफ्जों के जरिए नहीं। तो रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट असल में क्लियरिटी होती है। लेट देम का इस्तेमाल यहाँ एक इमोशनल बाउंड्री बन जाता है जो दिल को फ्यूचर के अननेसेसरी दर्द से बचाता है। भाई जब आप लोगों को उनकी जगह रहने देते हैं तब आप खुद को अपनी जगह वापस ले आते हैं। मेल रॉबिन्स के मुताबिक ये थ्योरी सिर्फ एक वक्त का सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। तो बुक ऑफ द वीक में हमने इस किताब को इसीलिए शामिल किया दोस्तों कि हम समझते हुए इस बात को आगे बढ़े कि किस तरीके से हर बार आगे बढ़ जाना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता।
1: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों

0: जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन किताब की और वो है द लेट देम थ्योरी और लिखने वाली हैं मेल रॉबिन्स। अभी तक हमने जाना कि किस तरीके से इस किताब ने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, उनको अपने सोचने के स्टाइल को बदलना सिखाया है और किस तरीके से लेट देम जो है उसका जो लुबे-लुबाब निकल के आता है वो ये। किताब का मकसद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के उन लम्हों को एड्रेस करना है, या मकसद ये है कि किस तरीके से हम नॉर्मली आगे बढ़ सकते हैं चीजों को बिना अपने सर पे उठाए और बिना परेशान हुए। कंफ्यूज्ड या इमोशनली ड्रेन्ड महसूस जो लोग करते हैं उनको इस किताब से बड़ी मदद मिली है। कभी किसी का रवैया बुरा लगता है, कभी किसी का डिसीजन समझना आसान नहीं होता, परेशानी का सबब बनता है। काफी कैरेक्टर्स हमारे बीच होते हैं ऐसे जो हमारे अपने होते हैं बट हम उनको समझ नहीं पाते, पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है बट फिर भी उनको समझना मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह ऐसे लोग हर किसी की जिंदगी में होते हैं, तो ये नहीं कि वो बुरे हैं या आप उनको बुरा समझिए। हर चीज का सॉल्यूशन निकालना जरूरी होता है दोस्तों, और वो सॉल्यूशन जब ही निकलता है जब हम बहुत अकलमंदी का मुजाहरा करते हैं, बड़े सोचते हुए समझते हुए अपनी बात को रखते हैं, तो ये चीजें हमारे सामने बहुत आसानी बन जाती हैं। भाई पेरेंट्स हैं, बॉसेस हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं वगैरह वगैरह, सब के अपने अलग अलग मिजाज हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, अपने अपने रवैये हैं। किताब के जरिए हमें यहाँ पर यह समझाया गया है कि इंसान अपनी स्टोरी तो जी रहा है लेकिन दूसरे के हिसाब से, जो कि गलत बिल्कुल भी नहीं है। किताब ये नहीं कहती कि आप स्वार्थी बन जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट जो हकीकत है वो दूसरे के सामने लाएं, भले प्यार से बात करें, एक दूसरे को समझाते हुए बात करें, कोई कंफ्यूजन जो है वो रिलेशनशिप में बाकी ना रहे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को आजाद करने का तरीका जो है, तरीका देखिए यहाँ पर, खुद को आजाद करना तो बहुत आसान है। हाँ भाई ओके, टॉक टू माई हैंड, सॉरी टू एक्सप्लेन लाइक दिस, बट ये भी एक तरीका होता है, आदमी बातें नहीं कर रहा चला गया, ना ना ना, यहाँ पे कहा गया है खुद को आजाद करने का तरीका, मतलब किस तरीके से आप अच्छी तरीके से आप दूसरे को दिल में जगह बना सकते हैं, वो आपकी बात समझ सकता है, आप उसकी बात समझ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इस किताब ने ये बताया है कि किस तरीके से आप जब ये थियोरी अप्लाई करने लगते हैं अपनी जिंदगी में तो आप आसानी में होते हैं, आप मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। वहीं दोस्तों, किताब का जो जिस तरीके से हमने अभी तक जाना और मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि स्टाइल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको कोई लेक्चर वगैरह दिया जा रहा है, बल्कि किताब का स्टाइल बहुत ही दोस्ताना है और रिलेटेबल लगता है जब आप इसको पढ़ते हैं। खुद आप अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स देखने लगते हैं, भाई फैमिली कन्फ्लिक्ट हैं, फ्रेंडशिप्स के प्रेशर हैं, प्रोफेशनल लाइफ का मसला है, पर्सनल लाइफ का मसला है, इनके मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जो मुख्तलिफ पड़ाव जिंदगी में आते हैं, मुख्तलिफ कदम जब हम उठाते हैं और ये चीजें हमारे सामने आने लगती हैं, और फिर हम किस तरीके से इन चीजों को अपने ऊपर लाद लेते हैं जो जिनको लादने की भी हमें जरूरत नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो थियरी है लेट देम, कि भाई उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, आप जबरदस्ती ना कीजिए, वो दूसरों को चेंज करने के बजाय खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किस तरीके से आप बेहतर हो सकते हैं, किस तरीके से आप रिश्तेदारी या रिलेशनशिप्स जो भी आपकी अपनी है उनको बेहतर बना सकते हैं, इस किताब में बहुत ही खूबसूरती से हमें समझाया गया है। किताब में एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और पीपल प्लीजिंग पर रोशनी डाली गई है जो आजकल की जिंदगी का बहुत ही एक आम सा मसला बन गया है। तो ये किताब वही साइकिल तोड़ती है और हमें जीना सिखाती है, एनकरेज करती है कि हम कैसे अपनी रिलेशनशिप को, जो हमारी जिंदगियों में रिलेशनशिप हैं उनके बारे में सोचें जहां उन्हें हम किसी हद तक महदूद कर सकें। तो ये कुछ मुख्तलिफ बातें किताब में हमने अभी तक देखी हैं, जानी हैं। किताब में सेल्फ ब्लेम पर भी बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया गया है कि हर चीज़ का ब्लेम खुद पर ले लेना या खुद ये सोचना कि मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी वजह से ये गलती हो गई, तो ये टेंशन का सबब बनता है दोस्तों। आप जब कोई आपसे दूर हो जाए

जब कोई आपसे कुछ अलग रवैया अख्तियार करे, बदला हुआ आपको लगे, तो आप खुद को कसूरवार समझिए मत बिल्कुल भी। बहुत जेंटली इस बात को समझिए कि लेट देम, उनको जो सही लग रहा है, हाँ वो फिलहाल कर रहे हैं, उनको हम प्यार से समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे है, शायद तुम्हें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आओ मिलके बात कर लेते हैं, हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, तो क्यों ये कन्फ्यूजन हमारे दरमियान आ रहा है जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों अब किताब के बारे में हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से इस किताब का जो इम्पैक्ट है दुनिया भर पे हुआ है, इसको हम ज़रा सा और समझने और देखने की कोशिश करेंगे कि भाई द लेट देम थ्योरी दुनिया पर किस तरह असर डाल चुकी है या डाल रही है। सबसे पहले बात आती है रिलेशनशिप्स की। जब लोग अपने पार्टनर या दोस्त या फैमिली मेम्बर को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं तो रिलेशनशिप का प्रेशर कम हो जाता है। मेल रॉबिन्स जो इस किताब की राइटर हैं, उनके मुताबिक दुनिया की बहुत सी कन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप्स इसलिए खराब होती हैं क्योंकि हर शख्स दूसरे को अपनी एक्सपेक्टेशन के मोल्ड में डालना चाहता है। लेट देम थ्योरी ये कहती है कि जब आप लोगों को उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ रहने देते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स नेचुरली कम हो जाते हैं। तो इम्पैक्ट ये है कि अभी एहसास होता है कि बेहतर रिलेशनशिप का मतलब ज़्यादा कंट्रोल नहीं बल्कि ज़्यादा एक्सेप्टेंस होता है। सोसाइटी में अगर ये सोच आम हो जाए तो अननेसेसरी क्लैशेस, ईगोज या ईगो वार्स और इमोशनल एग्जॉशन जो है उसमें कमी आ सकती है। अब अगर हम इस थ्योरी को पेरेंटिंग के एंगल से देखें तो इसका इम्पैक्ट और भी गहरा नज़र आया है। आज के दौर में पेरेंट्स अक्सर बच्चों की ज़िंदगी के हर डिसीजन पर नज़र रखना चाहते हैं, करियर हो, फ्रेंड्स हो, लाइफस्टाइल हो, हत्ता के इमोशंस भी। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ठीक है, बट एक हद पर जाकर, एक टाइम पर जाकर लेट देम थ्योरी यहाँ एक हेल्दी बैलेंस सिखाती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा सा स्पेस देते हैं, उन्हें अपनी गलतियों से सीखने देते हैं, देखिए ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। तो उनको देखते रहिए, छुपके देखते रहिए, कोने में देखते ना, दीवार के पीछे से गिरा, ओहो उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा, हाँ भाई उठ गया, वेरी गुड, सो दिस गिव्स देम कॉन्फिडेंस एक्चुअली। तो डिस्कशन का एंगल ये है कि लेट देम का मतलब लापरवाही नहीं है दोस्तों, बल्कि ट्रस्ट बढ़ाना है इंसान के खुद के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर। अगर ये अप्रोच सोसाइटी में कॉमन हो जाए तो एक ऐसी जनरेशन तैयार हो सकती है जो डिसीजन लेना जानती है, अपनी जिम्मेदारी उठाना जानती है और हर बात के लिए ब्लेम कल्चर का हिस्सा नहीं बनती। तो दोस्तों इस थ्योरी का एक और मजबूत इम्पैक्ट वर्कप्लेस कल्चर पर भी पड़ता है। ऑफिसेस में स्ट्रेस, कंपटीशन और कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसके तरीके से काम करे, उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। लेट देम माइंडसेट यहाँ एक हेल्दी शिफ्ट लाता है। जब लीडर्स और एम्प्लॉयज ये समझ लेते हैं कि हर शख्स का वर्किंग स्टाइल अलग होता है, प्रेजेंटेशन अलग होती है, बात करने का तरीका अलग होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भैया माइक्रो मैनेजमेंट कम हो जाता है। तो समझना क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में लेट देम कल्चर एडॉप्ट किया जाए टू क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाने के लिए। लोग खुद को कंस्टेंटली प्रूफ करने के बजाय अपना बेस्ट देने पर फोकस करते हैं। यहाँ ये महसूस किया जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ इंडिविजुअल स्किल नहीं है भाई, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ भी बन सकती है। तो दोस्तों सोशल मीडिया के दौर में लेट देम थ्योरी का इम्पैक्ट और भी रेलेवेंट होता नज़र आता है। हर वक्त लोग ओपिनियंस दे रहे होते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, जजमेंट, ये ओपिनियन ही तो है सोशल मीडिया के। अगर सोसाइटी लेट देम माइंडसेट अडॉप्ट कर ले तो ऑनलाइन टॉक्सिसिटी बहुत हद तक कम हो सकती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हर कमेंट का रिप्लाई करना, हर क्रिटिसिज्म को जस्टिफाई करना ज़रूरी नहीं होता। लेट देम टॉक, लेट देम जज और आप अपनी मेंटल पीस

20 बचाएं तो स्पेशली आपको ये समझना जरूरी है कि पावर बल्कि ये एक पावरफुल मैसेज है कि क्योंकि अक्सर लोग ऑनलाइन ओपिनियन को रियल लाइफ से ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं और ये हिस्सा उन्हें याद दिलाता है कि दूसरों की सोच पर कंट्रोल नहीं लेकिन अपनी अटेंशन पर कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तो जनाब सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पर बात करते हैं, शादी कब करनी है, करियर कौन सा चूज करना है, लाइफ का पेस क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। सोसाइटी हर चीज़ डिसाइड करने की कोशिश करती है तो लेट देम थ्योरी यहाँ एक साइलेंट रेबिलियन बन जाती है। ये कहना कि लेट देम एक्सपेक्ट व्हाट दे वांट असल में अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेना होता है। अगर ये सोच सोसाइटी में ज़्यादा लोग अपना लें तो कंपेरिजन जेलसी और प्रेशर का कल्चर धीरे धीरे कम हो जाता है। इम्पैक्ट ये है कि महसूस होता है कि फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती, ये एक इंटरनल डिसीजन होता है और लेट देम इस डिसीजन का गेटवे है। मेल रॉबिन्स दोस्तों इनके मुताबिक जब लेट देम माइंडसेट इंडिविजुअल लेवल से सोसाइटी लेवल तक फैलता है तो कन्फ्लिक्ट्स का नेचर बदल जाता है, लोग डिसएग्री करना सीख जाते हैं बिना डिसरिस्पेक्ट के। तो भाई हेल्दी सोसाइटीज वो होती हैं जहां हर ओपिनियन से अग्री होना जरूरी नहीं होता लेकिन हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए। लेट देम थ्योरी यहां टॉलरेंस और एम्पैथी को प्रमोट करती है। रीडर्स एक मैच्योर पर्सपेक्टिव से जुड़ते हैं तो हार्मनी का मतलब सेमनेस नहीं होता। अगर दुनिया इस कंसेप्ट को सीरियसली ले तो पोलराइजेशन और एक्सट्रीम रिएक्शंस में काफी कमी आ सकती है। तो दोस्तों लेट देम थ्योरी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए किस तरह हेल्पफुल बनी है ये भी जानिए। एंजाइटी और डिप्रेशन के बहुत से केसेस इस बात से लिंक्ड होते हैं कि हम दूसरों के रिएक्शन को अपनी वर्ड्स से जोड़ देते हैं। जब ये थ्योरी आम होती है तो लोग इमोशनल बाउंड्रीज को नॉर्मल समझने लगते हैं। भाई कहना सीख लीजिए कि ये मेरा कंट्रोल नहीं, तो जितनी भी शर्मिंदगी है और सेल्फ ब्लेम है इसका प्रेशर कम हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि रोज़ाना एक छोटे डिसीजन का नतीजा बेहतरीन निकालना एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। लेट देम थ्योरी का एक और ग्लोबल इम्पैक्ट लीडरशिप पर पड़ता है दोस्तों। वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स वो नहीं होते जो हर चीज़ कंट्रोल करते हैं बल्कि वो होते हैं जो लोगों को ग्रो करने का मौका देते हैं। अगर लीडर्स लेट देम माइंडसेट अडॉप्ट करें तो टीम्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। माइक्रो मैनेजमेंट की जगह ट्रस्ट का कल्चर आता है। रीडर्स को यहाँ ये समझाया गया है कि थ्योरी सिर्फ पर्सनल हीलिंग का टूल नहीं बल्कि पावरफुल लीडरशिप फिलॉसफी भी बन सकती है। तो जनाब हम कल्चरल डाइवर्सिटी और ग्लोबल सोसाइटी की बात करें तो हर कल्चर और हर बैकग्राउंड हर नेशन की अपनी वैल्यू में ढला होता है। लेट देम थ्योरी यहाँ एक यूनिवर्सल ब्रिज का काम करती है। मेल रॉबिन्स के मुताबिक अगर हम हर चीज़ को अपने स्टैंडर्ड से जज करना छोड़ दें तो दुनिया ज़्यादा पीसफुल हो जाती है या हो सकती है। तो साहब ये पर्सपेक्टिव देना कि डिफरेंस खतरा नहीं होते बल्कि ग्रोथ का सोर्स होते हैं अगर हम कह सकें लेट देम बी डिफरेंट। तो दोस्तों द लेट देम थियरी असल में कंट्रोल बेस्ड दुनिया से ट्रस्ट बेस्ड दुनिया की तरफ एक कदम है। जब इंडिविजुअल्स फैमिलीज वर्क प्लेसेस और सोसाइटीज इस माइंडसेट को अपना लेती हैं तो प्रेशर कम और क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है। ये थियरी दुनिया को परफेक्ट नहीं बनाती लेकिन ज़्यादा ह्यूमेन ज़रूर बना सकती है। रीडर्स के लिए चेंज बाहर से शुरू नहीं होता, ये अंदर से स्टार्ट होता है सिर्फ एक सिंपल डिसीजन से और वो है लेट देम। तो जनाब अब बात करते हैं जब लेट देम थ्योरी सोसाइटी में धीरे धीरे फैलती है तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका भी बदल जाता है। लोग लड़ना कम कर देते हैं और समझना
ज्यादा शुरू कर देते हैं। हर पॉइंट प्रूफ करना जरूरी नहीं लगता है, हर बहस जीतने की भी जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब हम ये मान लेते हैं कि हर शख्स अपनी सोच के साथ ठीक है, तो हम इमोशनल वॉर्स से निकल कर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन की तरफ आ जाते हैं। इम्पैक्ट ये होता है कि हम महसूस करते हैं कि सोशल पीस किसी रूल या लॉ से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है। अगर हर इंसान ये सीख ले कि हर डिसएग्रीमेंट खतरा नहीं होता, तो सोसाइटी में ट्रस्ट का लेवल नेचुरली बढ़ सकता है। दोस्तों, इस थ्योरी का एक और पहलू भी सामने आता है, आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ की जिम्मेदारी के साथ। आज के जमाने में बहुत से लोग अपनी पहचान दूसरों के फीडबैक से जोड़ देते हैं। लेट देम थ्योरी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रीसेट बटन बन जाती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं या उनके मुताबिक, जब आप खुद को दूसरों के जजमेंट से अलग कर देते हैं, तो आप पहली दफा अपनी असली आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। किताब के जरिए हमें बताया गया है कि कैसे ये थ्योरी लोगों को अपनी वैल्यूज के मुताबिक जीने का हौसला देती है, चाहे दुनिया उस पर ताली बजाए या ना बजाए। क्योंकि अक्सर लोग चुपचाप अपने ख्वाबों को साइड पर रख देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, तो ये गलत है। दोस्तों, फ्रेंडशिप्स और सोशल सर्कल्स के हवाले से भी अगर हम देखें, तो ज़िंदगी के सफ़र में दोस्त बदलते रहते हैं, सर्कल्स शिफ्ट होते रहते हैं, और इस चेंज के साथ दर्द भी बढ़ता रहता है। लेट देम थ्योरी यहाँ एक्सेप्टेंस का एक हेल्दी एंगल देती है। अगर कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी से नेचुरली फेड हो रहा है, धुंधला हो रहा है, अगर प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं, तो उसे ज़बरदस्ती होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। लेट देम का मतलब यहाँ होता है कि मेमोरीज़ को इज्जत दें, लेकिन फोर्स ना करें। मैच्योरिटी का लेसन ये है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता बेकार भी नहीं होता। ये रियलाइजेशन सोसाइटी को इमोशनली ज़्यादा बैलेंस बना सकता है। दोस्तों, मेल रॉबिन्स के मुताबिक अगर लेट देम माइंडसेट वाइड स्प्रेड हो जाए, तो एंगर और रीसेंटमेंट का कल्चर भी धीरे धीरे कम हो सकता है। क्योंकि रीसेंटमेंट ज़्यादातर वहीं पैदा होता है जहाँ एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप होता है। एक्सपेक्टेशन कम करना और एक्सेप्टेंस बढ़ाना, ये दोनों ही हम सीखते हैं, समझते हैं पूरी ज़िंदगी, तो गुस्सा नेचुरली डिसॉल्व होने लगता है। भाई, ये समझिए कि माफ़ी देना हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इमोशनली फ्री होना ज़रूरी है, और लेट देम इस फ्रीडम का शॉर्टकट है। ये बात सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनरिजॉल्व्ड एंगर जो है इंडिविजुअल से निकलकर कलेक्टिव टेंशन बन जाता है। जेंडर रोल्स और सोशल लेबल्स की अगर हम बात करें, तो कौन क्या करे, कौन क्या ना करे, सोसाइटी ने हर रोल के साथ एक्सपेक्टेशन टैग्स लगा रखे हैं। लेट देम थ्योरी यहाँ एक क्वाइट करेज सिखाती है। अगर कोई आपकी छोटी चॉइस को समझ नहीं पा रहा, अगर कोई आपके रोल से अनकंफर्टेबल है, तो लेट देम फील कंफर्टेबल। हर चीज़ लाउडली फाइट करके बदल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। कभी कभी बस अपनी लाइफ अपनी तरह से जी लेना ही काफ़ी होता है। अगर ये सोच सोसाइटी में फैल जाए, तो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। चलिए भाई, अब यहाँ हम लेट देम थ्योरी को एजुकेशन और लर्निंग कल्चर से जोड़ते हैं। स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स, सब बच्चों को एक ही स्टैंडर्ड में फिट करना चाहते हैं। मेल रॉबिन्स के मुताबिक, जब हर बच्चे को उसकी स्पीड पर ग्रो करने दिए जाए, तो रियल टैलेंट सामने आता है। तो अगर सोसाइटी लेट देम अप्रोच अडॉप्शन करे, तो कंपैरिजन बेस्ड एजुकेशन के बजाय क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जा सकता है। ये महसूस करना जरूरी है कि सक्सेस का एक ही मॉडल नहीं होता, हर इंसान का रास्ता अलग होता है और हर रास्ता वैल्यूएबल होता है। तो अब यहाँ हम जिस तरीके से प्रोग्राम के आगाज में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जानिए कि लेट देम थ्योरी इंडिविजुअल से लेकर ग्लोबल लेवल तक एक माइंडसेट शिफ्ट है। अगर ज्यादा लोग ये सीख लें कि हर चीज उनके कंट्रोल में नहीं, तो दर्द कम हो सकता है। यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि वो खुद इस चेंज का हिस्सा बन सकते हैं, सिर्फ अपनी रिएक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट करके। तो जनाब, ये जानना बहुत जरूरी है कि कल जब कोई चीज आपको ट्रिगर करे, तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो बस लेट
करते हैं। तो इस सिंपल एक्सरसाइज से जिंदगी का लोड काफी हल्का हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो जनाब मेल रॉबिन्स को क्रेडिट देते हुए कहा जा सकता है कि दुनिया को हमेशा नए रूल्स की जरूरत होती है, कभी कभी नए रिएक्शंस की जरूरत भी पड़ती है। लेट देम एक नया रिएक्शन नहीं बल्कि एक पुराना विजडम है जो मॉडर्न जुबान में वापस आया है। आप सभी का

0: शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, हम इस पूरे सफर का खुलासा अगर करें तो ये देखें कि दूसरों को उनकी जगह रहने देना कमजोरी नहीं होती, ये इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को पकड़ पाते हैं। द लेट देम थ्योरी हमें ये याद दिलाती है कि हर चीज हमारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अपनी पीस जरूर हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ ये प्रोग्राम यही खत्म होता है, इस उम्मीद के साथ कि आज के बाद जब जिंदगी हैवी लगे तो आपके पास एक सिंपल सा जवाब है, लेट देम। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड में हमने जाना कि जो जिंदगी को बेहतर जीने और अपनी परेशानियों से निकलने का तरीका किस तरह उसने हमें बताया। अगले एपिसोड में हम एक और इसी तरीके की बेहतरीन किताब के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रूह पर असर अंदाज किताब पर बात करेंगे। इसी के साथ मुझे सरवर मिर्जा को भी इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम। आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पर्ल्स ऑफ कुरान। आज हम बात करेंगे जिस आयत की, वो है सूरह मुल्क की आयत नंबर 2, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अल्लाह जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है, और वही जबरदस्त खालिब और बहुत बख्शने वाला है। सूरह मुल्क कुरान मजीद की एक नहायत अहम सूरत है जो इंसान को उसकी हकीकत, मकसद, जिंदगी और आखिरत की याद दिलाती है। ये सूरत ज्यादातर मक्की दौर में नाजिल हुई, जब लोगों के अकायद की इस्लाह और उन्हें तौहीद और आखिरत का यकीन दिलाना बुनियादी जरूरत थी। उस जमाने में बहुत से लोग ये समझते थे कि जिंदगी बस एक इत्तफाक है और मौत के बाद कुछ नहीं। वो ना तो किसी हिसाब किताब पर यकीन रखते थे और ना ही अपनी जिंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाकर एक बुनियादी हकीकत वाज़े की, मौत और जिंदगी दोनों अल्लाह की तख्लीक हैं और उनका एक वाज़े मकसद है। इस आयत में खास बात यह है कि अल्लाह ताला ने पहले मौत का जिक्र किया और फिर जिंदगी का। उलमा के नजदीक इस तरतीब में गहरी हिकमत है। इंसान को याद दिलाया जा रहा है कि उसका अंजाम मौत है, दुनिया की जिंदगी

आरजी है और हमेशा रहने वाली नहीं। असल जिंदगी आखिरत की है और दुनिया एक इम्तिहान का है। इस आयत का मरकजी नुक्ता इम्तिहान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। यहां एक निहायत अहम बात यह है कि अल्लाह ने ज्यादा अमल नहीं फरमाया बल्कि बेहतर अमल फरमाया। इसका मतलब है कि असल अहमियत अमाल की तादाद नहीं बल्कि उनके मयार की है। अमल में इखलास होना जरूरी है। अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने दो सिफात बयान की हैं, अलअजीज जबरदस्त गालिब। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, कोई उसके फैसलों को रोक नहीं सकता। अलगफूर बहुत बख्शने वाला, वो बंदों की गलतियों को माफ करता है और तौबा का मौका देता है। इन दोनों सिफात को एक साथ जिक्र करने में ये हिकमत है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ भी रहे और उसकी रहमत की उम्मीद भी कायम रहे। सूरह अल-मुल्क की इस आयत का आगाज ही एक निहायत अजीम हकीकत से होता है कि अल्लाह वो है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। यहां सबसे पहले हमें अल्लाह ताला की इस बुनियादी सिफत को समझना जरूरी है कि वो खालिक है, यानी हर चीज को अदम से वजूद में लाने वाला। अल्लाह की सिफत खालिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसने पैदा किया बल्कि इसका मतलब यह है पूरी कायनात, जमीन, आसमान, सितारे, सैयारे, वक्त, हालात, जिंदगी के मराहिल, हत्ता के मौत जैसी चीज भी, सब कुछ अल्लाह की तख्लीक है। ये तसव्वुर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा करता है जब इंसान ये समझ लेता है कि वो खुद से कुछ नहीं बल्कि एक खालिक की तख्लीक है, तो उसके अंदर आजजी पैदा होती है। वो अपने आप को खुद मुख्तार नहीं समझता बल्कि अपने रब का मोहताज समझता है। कुरान बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि अल्लाह ही वो जात है जिसने हर चीज को बनाया और उसके बनाने में कोई शरीक नहीं। इसका मतलब यह है कि कोई और ताकत ऐसी नहीं जो तख्लीक में अल्लाह के बराबर हो। ना कोई इंसान, ना कोई निजाम, ना कोई कुदरती कुव्वत। यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह खालिक है तो उसका हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक बनता है? इसका सीधा जवाब यह है कि जो पैदा करता है वही हक रखता है कि वो बताए कैसे जीना है। जैसे एक कंपनी किसी मशीन को बनाती है तो उसके साथ एक मैनुअल देती है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है वरना वो खराब हो सकती है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और कुरान और सुन्नत के जरिए उसकी रहनुमाई भी दी कि उसे जिंदगी कैसे गुजारनी है। अगर इंसान इस हकीकत को नजरअंदाज कर देता है और वो अपनी मर्जी से जीना शुरू कर देता है तो दरअसल वो अपने मकसद से हट जाता है। यही वजह है कि आज बहुत से लोग बज़ाहिर कामयाब होने के बावजूद अंदर से बेसुकून होते हैं क्योंकि वो अपने खालिक से जुड़े नहीं होते। अल्लाह की सिफत खालिक को मानने का एक और अहम पहलू ये है, इंसान अपने रब पर भरोसा करना सीखता है जब उसे यकीन हो जाता है कि जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे रिज़्क देता है, वही मेरे हालात को बदलने पर कादिर है,

0: मन में हो और तुम्हें एक दिन अपने रब के सामने जाना है। अगर इंसान इस हकीकत को वाकई समझ ले तो उसकी जिंदगी बेमकसद नहीं रहती, बल्कि वो हर दिन को एक नया मौका समझकर बेहतर से बेहतर अमल करने की कोशिश करता है। सूरह मुल्क की इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। अभी तक हमने देखा कि मौत की हकीकत क्या है, अब हम जिंदगी की तख्लीक को गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो मरहला है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं और जिस पर हमारी कामयाबी या नाकामी का दारोमदार है।
1: आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: जिंदगी क्या है? आम तौर पर हम जिंदगी को सिर्फ सांस लेने, चलने फिरने, दुनिया के काम करने का नाम समझते हैं, लेकिन कुरान के मुताबिक जिंदगी इससे कई ज्यादा बड़ी हकीकत है। जिंदगी एक अमानत है जो अल्लाह ने हमें दी है। ये हमारी मलकियत नहीं है कि हम इसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। जिस तरह किसी को कोई कीमती चीज अमानत के तौर पे दी जाए तो उसका ख्याल रखता है, इसी तरह जिंदगी भी एक अमानत है जिसका हिसाब देना होगा। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि हमने खुद को पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने पैदा किया है। हमने ये फैसला नहीं किया कि हम कब पैदा होंगे, हमने ये नहीं चुना कि हम किस खानदान में आएंगे, हमने ये भी तय नहीं किया कि हमारी शक्ल, सलाहियतें और हालात क्या होंगे। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इस हकीकत को मानने से इंसान के अंदर दो अहम चीजें पैदा होती हैं। फर्स्ट, ह्यूमिलिटी, आजजी, वो खुद को सब कुछ समझना छोड़ देता है। एंड सेकंड, शुक्र, ग्रैटिट्यूड, वो अपनी जिंदगी को एक नियमत के तौर पर देखता है। जिंदगी का मकसद क्या है? तो यह आयत खुद इस सवाल का जवाब देती है, ताकि वो तुम्हें आजमाए। यानी जिंदगी का असल मकसद खाना पीना, पैसे कमाना, ये सिर्फ मजे करना नहीं है, बल्कि असल मकसद ये है कि हम देखे जाएं कि हम कैसे अमल करते हैं। ये दुनिया एक इम्तिहान का है और जिंदगी इस इम्तिहान का वक्त है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जिंदगी एक इम्तिहान है, तो हमारा जाविये नजर बदल जाता है। मसलन, कामयाबी मिले तो ये भी इम्तिहान है, क्या हम शुक्र करते हैं या गुरूर करते हैं। नाकामी आए, ये भी इम्तिहान है, क्या हम सब्र करते हैं या मायूस हो जाते हैं। यानी हर हालत में इंसान आजमाइश में है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में कोई भी लम्हा बेमकसद नहीं। चूंकि जिंदगी महदूद है, इसलिए इसका हर लम्हा कीमती है, लेकिन अक्सर इंसान वक्त जाया करता है, गैर जरूरी चीजों में उलझा रहता है और असल मकसद को भूल जाता है। अगर इंसान को वाकई यह एहसास हो जाए कि मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है किसी भी वक्त, तो वो अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल करेगा, नेक अमाल की तरफ बढ़ेगा, फजूलियात से बचेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी के साथ एक और बड़ी नेमत दी है, इख्तियार, चॉइस, या आप जिसे कहते हैं फ्री विल। इंसान अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी। यही इख्तियार उसे

मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान, और शो है ये इस्लामिक मॉडर्न लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मजे में होंगे। आज इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये बहुत ही अहम है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो आजकल हमारे मॉडर्न मोरल डाइलेमास हैं उनके हवाले से। आज का दौर तेजी से बदलता हुआ दौर है। पहले जमानों में इंसान के मसाइल ज्यादातर महदूद होते थे, रिस्क, सफर, तालीम या मकामी माशर्ती मसाइल। लेकिन आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एक मुल्क में होने वाला वाकया चंद सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिंदगी को आसान भी बनाया है और पेचीदा भी। इस तब्दीली के साथ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्या हमारी इखलाकियात यानी मोरालिटी भी तरक्की कर रही है या कमजोर हो रही है? इस्लामी नुक्ते नजर से इखलाकियात सिर्फ अच्छे बुरे रवैये का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान की पूरी शख्सियत का आईना है। एक मुसलमान की पहचान उसके किरदार, सच्चाई, अमानत और तकवा से होती है। लेकिन जदीद दौर में यही चीजें सबसे ज्यादा चैलेंज हो रही हैं। इखलाकियात का मतलब है इंसान का वो अंदरूनी निजाम जो उसे बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। इस्लाम में इखलाकियात सिर्फ माशर्ती उसूल नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जुड़ी हुई हैं। कुरान में बार बार अच्छे अखलाक, सच्चाई, इंसाफ और तकवा का हुक्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इखलाके अजीम का अमली नमूना कहा गया। लेकिन आज के दौर में इखलाकियात अक्सर रिलेटिव बन गई हैं, यानी हर शख्स अपने हिसाब से सही और गलत डिफाइन करता है। यही वो बुनियादी मसला है जो मॉडर्न मॉरल डिलेमा को जन्म देता है। अगर हम पिछले जमाने को देखें तो माशरे में कुछ वाजे उसूल थे। बड़ों का एहतराम लाजमी था, झूठ और धोखा बुरा समझा जाता था, वादा खिलाफी को शर्मिंदगी समझा जाता था, सादगी और कनात को इज्जत दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में सूरत हाल बदल गई है। झूठ को अक्सर स्मार्टनेस समझा जाने लगा है, धोखे को सर्वाइवल स्किल कहा जाता है, सादगी को फेलियर समझा जाता है और फेम को मोरालिटी से ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये तब्दीली सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी सोच में भी आ चुकी है। टेक्नोलॉजी बजाते खुद बुरी नहीं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल इंसान के अखलाक को मुतासर करता है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर झूठी मालूमात तेजी से फैलती हैं। लोग अपनी असल जिंदगी छुपाकर फेक जिंदगी दिखाते हैं। कंपैरिजन कल्चर बढ़ गया है, वक्त जाया करना मामूल बन गया है। ये सब चीजें इंसान के दिल और दिमाग पर असर डालती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके अखलाक को बदल देती हैं।
اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ مکمل دنیا سے دوری نہ مکمل دنیا میں گم ہونا۔ آج کی نوجوان نسل ایک بڑی مشکل کا سامنا کر رہی ہے، آئیڈینٹیٹی کرائسس، یعنی میں کون ہوں۔ ایک طرف ماڈرن کلچر ہے جو مختلف ویلیوز کو پروموٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف اسلامی تعلیمات ہیں۔ نوجوان اکثر ان دونوں کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر میں دین پہ چلوں تو شاید آؤٹ ڈیٹڈ لگوں گا، اگر میں ماڈرن بنوں تو شاید میں دین سے دور ہو جاؤں گا۔ یہی وہ مورل ڈائلیما ہے جو آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا نظام ہے۔ اس کا مقصد انسان کو بیلنسڈ اور مورلی اسٹرانگ بنانا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہ کر بھی حق پر قائم رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انصاف قائم کرو، جھوٹ سے بچو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور ہر حال میں سچ کے ساتھ رہو۔ یہ اصول ہر زمانے کے لیے ہیں، خاص طور پر آج کے دور کے لیے۔ آج کے نوجوان کو کئی اخلاقی چیلنجز کا سامنا ہے، پیئر پریشر، نئے دوستوں کا دباؤ، سوشل میڈیا ویلیڈیشن، انسٹنٹ سکسس کی خواہش، مٹیریلزم کی دوڑ، اور مورل کنفیوژن۔ یہ سب چیزیں اس کے فیصلوں کو متاثر کرتی ہیں۔ مثلا ایک طالب علم سوچتا ہے کہ اگر میں چیٹ نہ کروں تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور یا پھر ایک نوجوان سوچتا ہے کہ اگر میں ٹرینڈ فالو نہ کروں تو ایکسیپٹ نہیں کیا جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اخلاقی امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان روزانہ چھوٹے بڑے فیصلے کرتا ہے، سچ بولنا یا جھوٹ بولنا، انصاف کرنا یا فائدہ دیکھنا، حلال کمائی یا آسان راستہ، عزت بچانا یا فقتی فائدہ اٹھانا۔ یہ فیصلے ہی انسان کی شخصیت بناتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر فیصلہ آخرت کے حساب سے سوچ کر کرو۔ آخر میں اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا بدل گئی ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اخلاقیات کو اس بدلتی ہوئی دنیا میں محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اسلام کا جواب واضح ہے، ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں، اگر ہم اپنے ایمان، علم اور شعور کو مضبوط کریں۔ جدید دور کی سب سے بڑی اخلاق

अक्सर सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा हो तो तरीका नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये ही वो जगह है जहां अखलाकी उसूल कमजोर पड़ जाते हैं। मसलन अगर किसी ने झूठ बोलकर कामयाबी हासिल की तो लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं। अगर किसी ने गलत तरीके से माल कमाया तो लोग सिर्फ वेल्थ देखते हैं। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि असल मयार नियत और तरीका दोनों है। लेकिन एक अखलाकी सवाल ये भी है, क्या हम वाकई मजबूर हैं या हम इंतखाब कर रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम हमें मजबूर करता है, लेकिन हकीकत यह है कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ चॉइस मौजूद होती है। इस्लाम इंसान को अकाउंटेबल बनाता है, यानी हर फैसले का जवाब देना होगा। हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है जो उसे सही और गलत बताता है, लेकिन जब इंसान बार बार गलत काम करता है तो ज़मीर कमज़ोर हो जाता है। यही मॉडर्न मोरल क्राइसिस है। गलत चीज़ें आम हो जाती हैं, ज़मीर की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है और इंसान आदत का ग़ुलाम बन जाता है। इस्लाम चाहता है कि इंसान का ज़मीर हमेशा ज़िंदा रहे। इस्लाम ना तो एक्सट्रीम रिजिडिटी देता है और ना ही कंप्लीट फ्रीडम, बल्कि वो एक बैलेंस्ड सिस्टम देता है। हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क वाज़े है, लेकिन इंसान को समझदारी, इल्म और तक्वा के साथ फैसले करने हैं। असल मसला ये नहीं कि हलाल और हराम मुश्किल हो गए हैं, बल्कि मसला ये है कि इंसान ने आसान रास्तों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया सिर्फ एक रابطे का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये इंसान की सोच, रवैये और अखलाकियात को मुतासिर करने वाला एक ताकतवर निज़ाम बन चुका है। मोबाइल फ़ोन की एक स्क्रीन के ज़रिए इंसान दुनिया भर से जुड़ जाता है, लेकिन इसी जुड़ने के साथ साथ कई अखलाकी आजमाइशें भी सामने आती हैं। इस्लामी नुक्ते नज़र से इंसान का हर अमल, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसके किरदार और आखरत दोनों पर असरअंदाज होता है। इसलिए सोशल मीडिया को सिर्फ तफरी या वक्त गुजारी का जरिया सना एक महदूद सोच है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मालूमात की तरसील को बहुत आसान बना दिया है। कोई भी खबर, वीडियो या ख्याल चंद सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जबान से निकलने वाला लफ्ज या एक क्लिक के जरिए शेयर किया गया मवाद इंसान के लिए नेकी या गुना बन सकता है। यही वो मकाम है जहां अखलाकी आजमाइश शुरू होती है। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा मसला इंफॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी यानी सच और झूठ की पहचान है। बगैर तहकीक के खबरें फॉरवर्ड करना, झूठी अफवाहें फैलाना, मिसलीडिंग हेडलाइंस, फेक वीडियोस या फिर एडिटेड वीडियोस, ये सब चीज़ें माशरे में कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। इस्लाम हमें वाज़े हुक्म देता है कि अगर कोई खबर आए तो तहकीक करो, क्योंकि बगैर तहकीक के बात फैलाना जुल्म भी बन सकता है और फितना भी। पहले गीबत को सिर्फ आम गुफ्तगु तक महदूद समझा जाता था, लेकिन आज ये सोशल मीडिया पर बहुत आम हो चुकी है। किसी की पोस्ट पर ताने देना, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर तबसरा करना या फिर ऐसे अननोन अकाउंट से इल्ज़ाम लगाना, ट्रॉलिंग, हरासमेंट, ये सब चीज़ें गीबत और बहतान की जदीद शक्लें हैं। इस्लाम में गीबत को ऐसे बयान किया गया है जैसे किसी मुर्दा भाई का गोश्त खाना। ये तशबीह इसकी संगीत

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी

0: की जब्त शामिल है। वजारत दाखला अपने इरादों का वाज़े तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग न सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट हर संडे दोपहर 3 to 4 PM सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: क्या आपने सोचा है कभी कि छोटी छोटी जो डेली हैबिट होती है वो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने में मदद करती है. हेल्थ कोई बहुत बड़ा रिजोल्यूशन नहीं होता है कि चलो नया साल स्टार्ट हो चुका है, इस साल से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा. जिस मोमेंट भी आपको लगता है कि नाउ इज द हाई टाइम, आपको तुरंत अपनी हेल्थ का ख्याल रखना स्टार्ट करना होगा. एंड ये सब चीजें छोटी छोटी डेली हैबिट से बनती है. जैसे कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं? ओके, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 4 से 6 लीटर पिए, पर मैं हमेशा ये जरूर कहूंगी कि जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जब जब आपका शरीर पानी मांगता है आपको तब तब पानी पीना चाहिए. और उसका भी एक तरीका होता है, पानी को एक साथ अपने गले में नहीं डालना है बल्कि सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीना है. और बस इस साल आपको यही सारे छोटे छोटे रेजोल्यूशंस लेने हैं कि सबसे पहली चीज आपको पानी ढेर सारा पीना है क्योंकि इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, ये मैंने खुद के लाइफ में भी नोटिस किया है. सेकेंडली, कभी भी अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, माइग्रेन हो रहा है या लाइफ में और कोई भी टेंशन है, तो बस ब्रीद इन ब्रीद आउट. ब्रीदिंग आपको अच्छे से करनी है. वो जैकी श्रॉफ का एक डायलॉग था, आपने सुना ही होगा, सांस लो, सांस लेना मत छोड़ो. सो अपनी ब्रेथ को काउंट कीजिए कि क्या आप सही में प्रॉपरली सांस ले रहे हैं. इस वक्त अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या मेरी आवाज कहीं भी सुन रहे हैं तो एक बार जोर से सांस ले, ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट, यूल फील बेटर. आपको अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना होगा. आप लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कितना भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आपकी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो आपके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे. दिन भर में 18 घंटों का काम करके हम अपनी बॉडी को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि बाकी के बचे हुए 6 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमें आराम करना चाहिए. तभी नए सेल्स बनेंगे, तभी दिमाग अच्छे से चलेगा. और अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है इज बिकॉज आपकी स्लीप साइकिल पुअर है. मेक श्योर करें कि आप एक स्ट्रेच में एटलीस्ट 6 घंटा सो पाए. एंड ये टाइम भी मैनेजेबल हो सकता है इफ यू रियली वॉन्ट टू डू इट. अगर किसी की नाइट ड्यूटी है तो वो डे टाइम पे आर्स कंप्लीट करे. अगर कोई डे टाइम पे अपनी ड्यूटी करता है तो वो अपने नाइट आर्स कंप्लीट करे. एंड जितने भी न्यू मॉम्स है, आई नो इट कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम्स, बट अगर आपके साथ आपके घर वाले रहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना पॉसिबल होता है वो आपकी बॉडी को रेस्ट करने दे, सो दैट जब भी आप अपने बेबी को दोबारा उठाए उसी एनर्जी उसी चार्म के साथ उठाए विद ऑल द हैप्पीनेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर कीजिए कि आप रोज 10 मिनट का वॉक कर रहे हैं फॉर डाइजेशन. इससे सिर्फ आपका खाना ही नहीं पचेगा बल्कि आपका मूड और फोकस दोनों इंप्रूव होगा.
0: योर हेल्थ मैटर, योर हेल्थ मैटर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी.

मदमीन और आज हम बात करेंगे अर्जुन तेंदुलकर के बारे में। जी हाँ, नाम ही काफी है अर्जुन तेंदुलकर, बिकॉज वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं और उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, बड़े बाप का कोई बेटा हमेशा देखा गया है कि स्ट्रगल ही करता है। जहां सचिन तेंदुलकर को आज भी लोग रिलेट करते हैं क्रिकेट डिस्कशंस में, वहीं अर्जुन तेंदुलकर आज भी आईपीएल में एक मैच के लिए इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट प्लेइंग 11 में उनको जगह ही नहीं दी जा रही, एंड दैट इज व्हाट। और आज सभी लोग यही बात कर रहे हैं, क्या अर्जुन इतना बुरा क्रिकेटर है? नहीं, बुरा क्रिकेटर नहीं हो सकता, लेकिन वो बॉलिंग करता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अनलाइक हिज फादर सचिन तेंदुलकर। अर्जुन एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और लोअर ऑर्डर बैट्समैन है जो अपनी स्विंग और पेस की वजह से पहचाने जाते हैं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में गोवा की तरफ से खेलते हुए कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, लेकिन अभी भी कंसिस्टेंसी हासिल करना उनके लिए चैलेंज है। अर्जुन को आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने साइन किया था, जो उनके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी लीग का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें अब तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, और ये बात अक्सर फैंस और एक्सपर्ट्स के दरमियान डिस्कशन का टॉपिक बनी रहती है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस उनसे ज्यादा हैं क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, लेकिन अर्जुन अपनी मेहनत से अपना अलग नाम बनाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि फ्यूचर में क्या उन्हें आईपीएल में डेब्यू का चांस मिलता है या नहीं, और क्या वो अपनी पोटेंशियल को पूरा कर पाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स टॉक के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
3: फ्रॉड अवेयरनेस।
4: ऑफिस में बैठे हुए थोड़ा सा कॉफी ब्रेक लिया, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच ही रहे हैं, तभी आपको एक कॉल आती है।
5: सर गारंटीड रिटर्न्स, 30 दिन में पैसा डबल, जीरो रिस्क।
4: और आप पूरी स्कीम समझ के इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, पहले थोड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट और फिर एक लंबा साइलेंस। अस्सलाम वालेकुम, यह है फ्रॉड अवेयरनेस और मेरा नाम है वेद। इस किस्म के फ्रॉड को कहते हैं फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम। शुरू में छोटा प्रॉफिट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, बाद में बड़ा पैसा और एग्जिट। क्रिप्टो स्टॉक्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप्स, सबका मिसयूज। तो थोड़े ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद जैसे ही आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही ये कंपनियां, ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। तो अपने आप को ऐसे फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचाएं। तो कैसे पहचानेंगे ऐसे स्कैम्स को? जब बहुत ही ज्यादा गारंटीड रिटर्न की बात हो, कोई अगर सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आपको देता है उससे दूर रहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स को ही ट्रस्ट कीजिए। तो अगर कोई बोलता है जल्दी इन्वेस्ट करो और मौका जीतो, ये कार जीतने का मौका जीतो, पैसे डबल करने का, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। कहते हैं ना मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन गारंटीड रिस्क सिर्फ स्कैम में होता है।
3: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
6: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
7: Yes, anytime, anywhere.
6: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
8: FM 107.
6: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Students ke liye aaj ke daur ka sabse bada challenge hai ki kaun sa rasta chune. नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कंपास सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट।

0: एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ. आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन एफएम 107. दिल से बीसी.
1: वेलकम टू पिच परफेक्ट शो.
2: एफएम 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम.
1: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पर.
2: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
1: ऑन पिच परफेक्ट.
2: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट.
1: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
2: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन एफएम 107. एफएम 107 दिल से देसी.
2: वैल्यूज आर वैल्यूज. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल स्ट्रेस. ये भी बड़ा जरूरी है. देखिए फाइनेंस कैसे मैनेज करें, सेविंग्स क्यों जरूरी है और स्पेंडिंग और सेविंग्स का गुड बैलेंस, ये हम सबके लिए, हम सबको जानना बड़ा जरूरी है. देखिए आज के दौर में फाइनेंशियल स्ट्रेस हर दूसरे इंसान का एक बड़ा मसला बन चुका है. महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बिल्स है, रेंट है, बच्चों की पढ़ाई है और कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर भी हम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है ही, तो उसकी प्लानिंग भी है. ये सब चीजें दिमाग पर अननेसेसरी का बोझ डालती हैं. जब पैसों का प्रेशर बढ़ता है तो सिर्फ पॉकेट ही नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी अफेक्ट होती है. इसीलिए बड़ा जरूरी होता है कि हम अपने फाइनेंसेस को समझ कर मैनेज करें और स्ट्रेस को कंट्रोल करें. देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या है और ये क्यों होता है. फाइनेंशियल स्ट्रेस तब होता है जब इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस ना रहे या फिर जब आदमी बिना प्लानिंग के पैसा खर्च करता है और बाद में रिग्रेट होता है. कब होता है, कभी इमरजेंसी आ गई या इनकम कम हो गई तो स्ट्रेस बढ़ जाता है. देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस का असर सिर्फ पैसों तक ही नहीं है, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप इरिटेटेड होते हैं, आपका गुस्सा बढ़ता है, रिश्तों में जो है वो दरार आती है, अननेसेसरी का टेंशन, आपकी भूख मिट जाती है, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ पूरी तरह से तबाह होती है.

ऑप्ट करने की। देखिए, सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि फाइनेंस कैसे मैनेज करें। फाइनेंस मैनेज करने का पहला कदम है कि अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस का आप क्लियर रिकॉर्ड रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप हर महीने कितने पैसे कमा रहे हैं और कहां कहां खर्च कर रहे हैं। जब एक्सपेंसेस लिखे होते हैं ना, आई रिपीट, लिखे होते हैं, तो पता चलता है कि कौन सी चीज जरूरी रही और कौन सी हमने बस यूं ही दिखावे के लिए की। दूसरा बड़ा कदम, बजट बनाना। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, बजट बनाना चाहिए। देखिए, बजट का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी को एंजॉय ना करें, मैं बजट बना लूं, मैं स्टिक करूं, फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी ना करूं, ब्ला ब्ला। बजट बनाना ये है कि हर चीज की एक लिमिट सेट हो जाए। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट बिल, एजुकेशन, सबके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हो। जब बजट फ्लो होता है तो पैसों पर कंट्रोल आता है और इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वही तीसरा बड़ा कदम जो है वो है इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना। हम अक्सर इमोशंस में बहकर कुछ चीजें खरीद लेते हैं। इमोशनली अगर हम थोड़ा स्ट्रेस में हैं तो कुछ अननेसेसरी कुछ जाके हमने खरीद लिया। सेल देखी, बिल्कुल बिल्कुल घबरा गए एकदम से। डिस्काउंट्स हैं तो बस एकदम बेचैन हो गए खरीदने के लिए। कई बार हम दूसरे से खुद को कंपेयर करने के चक्कर में भी फालतू के खर्चे करते हैं। तो भैया, बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि कोई चीज लेने से पहले जरा खुद से सवाल कर लो, क्या ये वाकई जरूरी है। आई एम श्योर आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो इसका जवाब देंगे नहीं।

ये जरूरी तो नहीं है। हाँ 1% होगा कोई जो कह दे कि भाई जरूरी है, वो बड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन सेविंग भी लाइफ में बहुत जरूरी है। सेविंग फ्यूचर की सेफ्टी नेट है। जिंदगी बड़ी अनप्रडिक्टेबल है और अब तो बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल हो ही चुकी है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, जॉब इश्यूज आ सकते हैं, कोई और बड़ी नीड फैमिली की वो सामने आ सकती है। अगर सेविंग्स ना हो तो ऐसे वक्त में स्ट्रेस और डबल हो जाता है और डिसीशंस शायद हम ले ही नहीं पाते, हमारा ब्रेन जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। तो सेविंग सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं, या अपने कॉन्फिडेंस और सुकून के लिए भी कीजिए। जब आपको पता होता है कि कुछ पैसे आपके पास बैकअप में है तो आप सुकून महसूस करते हैं और शायद कॉन्फिडेंट भी। आप अपनी जिंदगी के गोल्स, घर है, एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, इसकी ठीक तरह से वक्त निकाल के कभी भी प्लानिंग कर लीजिए। और एक अच्छी बात ये कि पहले सेव करें फिर खर्चे करें। जैसे सैलरी आई चाहे थोड़ी सी ही सही, सेविंग के लिए अलग कर दें। ये छोटा सा अमाउंट जो देखने में बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप कंसिस्टेंट रहे, मतलब हर बार ऐसा हर महीने करते रहे, तो आखिर में ये एक अमाउंट बड़े अमाउंट में तब्दील हो जाता है और शायद ये बड़ा अमाउंट आपका सुकून भी बन जाता है। वैसे तो पैसों से सुकून नहीं मिलेगा कभी भी, लेकिन हाँ कुछ छोटा मोटा कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि चलो कुछ ना कुछ मेरे पास है। वहीं पर स्पेंडिंग और सेविंग में गुड बैलेंस क्रिएट करना। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेव करें और कुछ भी स्पेंड ना करें, या सिर्फ स्पेंड ही कर रहे हैं और फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए दोनों का हेल्दी मिक्स बड़ा जरूरी है। इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं, जैसे जरूरी खर्च एक तरफ लिखना, सेविंग्स हर महीने लिख देना, वहीं पर कुछ एंजॉयमेंट के लिए अपने लिए आपने कुछ खर्चे करने हैं तो वो भी आप एक तरफ लिख लें। अगर आप अपनी इनकम का एक हिस्सा एंजॉयमेंट के लिए भी रखना चाहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन कम होगा, क्योंकि आपने बजटिंग की है ना और फिर आप उसे फॉलो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग होगी। वो जो गिल्ट आती है ना हम लोग के अंदर, वो नहीं होगी और ये आपकी स्पेंडिंग भी कंट्रोल्ड होगी, तो इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा। वहीं पर फाइनेंशियल स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए रेगुलर फाइनेंशियल चेक जरूर करें। लोन्स और क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है बड़ा सोच समझ के किया करें। लाइफस्टाइल कंपैरिजन से नहीं क्वालिटी से, कॉन्फिडेंस से बनता है। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करो, वहीं अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें रियलिस्टिक रखिए जी। फिर जरूरत अगर आपको फिर भी पड़ रही है, मतलब इतना कुछ मेरे बोलने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ और मुझे एडवाइस लेना है कहीं से, तो हाँ यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत ही अच्छे कमाल की एडवाइस दे सकते हैं कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको जो है सेव करना है, या बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो उनकी भी एडवाइस जरूर ले लीजिए। देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है जब हम पैसों को समझदारी से हैंडल करते हैं, सेविंग्स को प्रायोरिटी देते हैं और स्पेंडिंग्स में गुड बैलेंस रखते हैं, तो स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है। पैसा हमारी जिंदगी का मास्टर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट टूल जरूर है। जब कंट्रोल पैसों के हाथ में होता है तो टेंशन ज्यादा होती है, और जब कंट्रोल हमारे हाथों में होता है तो जिंदगी ज्यादा पुरसकून और स्टेबल हो जाती है। तो बस अपनी जिंदगी को ज्यादा पुरसकून स्टेबल बनाइए। फिलहाल मुझे तो इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कंपास सीजन 2, जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ऊपर एक मौज छाई हुई है उस पर एक और मौज और उसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी न देखने पाए जिसे अल्लाह नूर न बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और जमीन में हैं और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है और ये सब जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और उसी की तरफ सबको पलटना है।